0: क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। उसने सूरज और चांद को मुसख़र कर रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहे हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और उसे छोड़कर जिन दूसरी चीजों को ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल है, और इस वजह से कि अल्लाह ही बुजुर्ग बहतर है। क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। और जब समंदर में इन लोगों पर एक मौज साहिबानों की तरह छा जाती है तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को बिल्कुल उसी के लिए खालिस करके। फिर जब वो बचाकर उन्हें खुशकी तक पहुंचा देता है तो इनमें से कोई इक्तसाद बरतता है और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता मगर हर वो शख्स जो गद्दार और नाशुक्रा है। लोगों, बचो अपने रब के गजब से और डरो उस दिन से जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला न देगा और न कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। फिल वाकया अल्लाह का वादा सच्चा है। बस ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और न धोखाबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माओ के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफ्फिस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है और न किसी शख्स को ये खबर है कि किस सरजमीन में उसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك

فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: यानी अल्लाह का घर, जिसकी तरफ रुख करके दुनिया भर में नमाजें पढ़ी जाती हैं। यही उम्रे और हज की अदायगी का भी मरकज है। गुज़िश्ता जमानों में जब बातचीत का वसीला नहीं था तो लोग उम्रे या हज के लिए आने से पहले उन लोगों से मालूमात हासिल किया करते थे जो उनसे पहले उम्रा या हज करके जा चुके होते थे। अब मीडिया के जरिए घर बैठे मालूमात हासिल हो जाती है। इस प्रोग्राम का मकसद भी हज के लिए रहनुमाई और जरूरी मालूमात फराहम करना है। तो हज़्ब मामूल गुज़िश्ता प्रोग्राम की खास खास बातें दोहरा दें। अल्लाह के ऐसे अहकाम जिनको अल्लाह ने राज रखा है और हमें बगैर अक्ल इस्तेमाल किए इन पर अमल करना है, जैसे हजरे अस्वद को बोसा देना। इसके अलावा हमने मक्का में दुआओं की कबूलियात के 15 मकामात बताए। ये बताया कि सफर मेराज से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब को धोया गया। हज करने पर अल्लाह के इनामात और ना करने वाले से अल्लाह की नाराजगी।
1: जैसा कि हम पहले प्रोग्रामों में बता चुके हैं कि हज के 3 तरीके होते हैं, हज अफराद, हज कैरान और हज तमत्तो। आज के प्रोग्राम में हम इनकी मजीद तफसीलात पेश करेंगे। इन तीनों तरीकों में एहराम बांधते वक्त नियत का फर्क है। हज अफराद के लिए सिर्फ हज की नियत बांधी जाती है, हज कैरान में उम्रे और हज दोनों की नियत बांधी जाती है, और हज तमत्तो में पहले सिर्फ उम्रे की नियत बांधी जाती है और उम्रे के बाद एहराम खोल दिया जाता है और फिर हज के लिए दोबारा मीकात पर जाके एहराम बांधते वक्त हज की नियत की जाती है। इन तीनों तरीकों में बाकी तमाम अमल बिल्कुल एक ही हैं। इसलिए हम आज अफराद के हवाले से इन अवामिल की तफसीलात बयान करेंगे। मिकात पर वजू या गुस्ल करके एहराम बांधें, 2 रकात नफिल अदा करें और हज की नियत बांधें।
2: लबैक हज्जन।
1: इसके बाद 3 बार तलबिया पढ़ें। मर्द बुलंद आवाज से और औरत को धीमी आवाज से पढ़नी चाहिए। मक्का में दाखिल होते वक्त मस्तून दुआएं पढ़ता रहे। दुआएं याद कर ले तो बेहतर है या दुआओं की किताब साथ रखे और इसको देख के पढ़ता जाए। मस्जिद हराम में दाखिल होकर तवाफ़े कुदूम करे और उसकी दुआ पढ़े।
2: रिवायतों में तवाफ़े कुदूम के लिए कोई दुआ खास नहीं की गई है। तवाफ में हम अपनी जायज हाजात के लिए कोई भी दुआ कर सकते हैं। अलबत्ता तवाफ के लिए उमूमन चंद दुआएं मासूर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़ते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तवाफ में ये दुआ पढ़ा करते थे, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير। और फिर ये दुआ पढ़ते थे, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। शवाफ़े ने तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में ये दुआ पढ़ना मुस्तहब कहा है, اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا। और बाकी चक्करों में ये दुआ पढ़े, اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار।
1: तवाफ़े कदूम के बाद अगर सही का इरादा हो तो तवाफ़े इस्तला के साथ करना होगा। हजरे अस्वद के इस्तलाम के लिए पहली और 8वीं बार हाथ उठाए, बाकी में इख्तियार है कि उठाए या ना उठाए। आखिर में हजरे अस्वद को बूसा दे और अब मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज अदा करे। फिर मौका हो तो मुल्तजम पर चिमट के खड़ा हो, इस तरह के सीना और मुंह काबे की दीवार से लग जाए। यहाँ से जाकर जमजम पर पेट भर के पानी पिए, पानी 3 सांसों में और खड़े होकर पीना सुन्नत है। सही का इरादा हो तो पानी पीकर हजरे अस्वद का इस्तलाम करे और बाबुल सफा से निकल कर सही करे। सही के बाद मताफ में आकर 2 रकत नमाज अदा करे, जब तक मक्का में रहे तवाफ करता रहे।
0: 8 दुलहज को तुलू आफ्ताब के बाद जोहर के वक्त तक मीना जाएं और 9 दुलहज को फजर पढ़कर अराफात के लिए रवाना हो जाएं। 9 दुलहज को जव्वाल के बाद से

0: डूबे आफताब तक अराफात में ठहरना हज का रुकने आजम है। यहां मस्जिद निमरा में जोहर और असर की नमाजें एक साथ पढ़ना सुन्नत और खुतबा सुनना जरूरी है। दोनों नमाजों की तकबीरें अलग अलग होंगी और इकट्ठी नमाज सिर्फ जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। इसके बाद मुजदलिफा आ जाएं, जहां मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ पढ़ी जाएंगी जो वाजिब है। फिर वहां फज्र तक कयाम होगा। 10 दुलहज को जमात के साथ फज्र पढ़ें और मीना को रवाना हो जाएं। मुजदलिफा से कंकड़ियां लेते जाएं और जमरा अकबा पर 7 कंकड़ियां मारें। रमी के बाद कुर्बानी दें और हज के शुक्रिया में कुर्बानी दें जो मुस्ताहिब है। कुर्बानी के बाद बाल कुतरवाएं या सर मुंडवाएं। औरत को चाहिए कि सिर्फ उंगली की पूर के बराबर बाल काटें। अब इन पर सब चीजें हलाल हो गईं जो एहराम की हालत में हराम थी। लेकिन मियां बीवी के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात अब भी जायज नहीं। अब हाजी को मक्का वापस आकर तवाफ जियारत करना है जो 12 दुलहज को गुरूब आफताब तक किया जा सकता है, लेकिन 10 को करना मुस्ताहिब है। अगर तवाफ कुदूम में साई ना कर चुका हो तो तवाफ जियारत के पहले 3 चक्करों में रमल करें। तवाफ के बाद तवाफ की नमाज पढ़ें, फिर हजर अस्वद के इस्तलाम के बाद साई करें।
1: अगर तवाफ कुदूम के बाद साई कर चुका है तो तवाफ जियारत में रमल और इस्तबाक ना करें, ना ही साई करें। तवाफ के बाद मना में जाकर रात गुजारे और 11 और 12 को तीनों जमरात पर रमी करे। अब वो वापस आ सकता है, लेकिन बेहतर है कि 13 को भी रमी करके वापस आए। वापसी पर वादी मुहसस में जोहर ता इशा की नमाज पढ़े। मक्का से वापसी का इरादा करे तो तवाफ विदा या सदर करे, ये वाजिब है। तवाफ के बाद मकाबे इब्राहिम पर आके 2 रकत नफिल पढ़े और जमजम पर आकर खूब पानी पिए। मौका मिले तो मुल्तजम पर सीना और रुखसार लगाकर मगफरत मांगे और हजरे अस्वद को बूसा दे। फिर बाबुल विदा से बाहर आ जाए, यूं हज मुकम्मल हो गया। हज की बाज जुजियात में मुख्तलिफ मसालिक में फिक्की मसाइल हैं, हाजी वो अपने मसलक के मुताबिक अदा करें।
0: हज किरान और हज तमत्तो का भी यही तरीका है। सिवाय एहराम के बांधने और खोलने की नियत जो मुख्तलिफ है, हज के हर अमल के लिए मुकर्ररा दुआएं हैं जो मुकम्मल तौर से प्रोग्राम में शामिल करना मुमकिन नहीं है और इसका फायदा भी नहीं है, क्योंकि एक बार सुनने से सब याद नहीं होंगी। इसलिए बेहतर है कि दुआओं की किताब साथ रखी जाए और मौके के मुताबिक पढ़ी जाए। अलबत्ता कुछ बहुत मुख्तसर दुआएं हमने कहीं कहीं शामिल की हैं, इसलिए कि इससे अमल की माहियत पर रोशनी पड़ती है। जैसे तवाफ विदा की दुआएं, जब हाजी अपनी मगफिरत और हज की कबूलियात की दुआ करता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि इसे फिर ज़ियारत काबा का मौका अता फरमाए। हज का मुकम्मल तरीका और तमाम अमल तो बयान कर दिए गए। हर साल लाखों की तादाद में अफराद हज की सआदत हासिल करते हैं और इनमें से हर एक बिल्कुल यही अमल करता है और कोई फर्क नहीं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि किसी का हज मकबूल हो जाता है और किसी का नहीं। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकबूल और गैर मकबूल हज का फर्क बताया है। ये बात कोई भी हाजी सोच सकता है कि ये फर्क क्यों है? ये फर्क है लगन, खुलूस और इश्क इलाही के दर्जात का। जो बंदा जिस कदर अबूदियात के जज्बे से सरशर होता है, उतना ही उसके हज के कबूल होने की उम्मीद होती है।
1: अगर कोई शख्स महज पढ़ समझ कर हज के लिए आया, तमाम अमल एक मशीन की तरह अदा किए, न दिल की गहराई से दुआएं की, न इज्जन के सार से गिरगिरा कर और आंसू बहाकर अपनी मगफरत की दरख्वास्त की, अपने गुनाहों की शर्मिंदगी के जज्बे के साथ माफी ना मांगी, तो उसका हज भी बराए नाम ही होता है और उसकी मकबूलियत भी मशकूक हो जाती है। बहरहाल ये भी हकीकत है कि अल्लाह अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है और ऐसे शख्स का हज कबूल करना भी उसी की मर्जी है। और अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि अगर कोई शख्स उसके अहकाम की पैरवी ना करे तो अल्लाह उससे बेपरवाह है, जो नाराजगी की इंतहा है कि अल्लाह ऐसे बंदे से लातालुक हो जाए। बहरहाल जो शख्स अल्लाह اور اس کی صفات پر

0: पुख्ता यकीन रखता है तो उसके लिए जायज नहीं कि वो लागुनाहों के बावजूद अल्लाह की मगफरत से नाउम्मीद हो जाए।
1: चुनाचा एहकाफ में एक हदीस रिवायत की गई, वो शख्स बहुत बड़ा गुनहगार है जो अराफात के मैदान में ये समझे कि उसकी मगफरत नहीं हुई। हज की हिकमतों पर गौर करें तो कई बातें समझ में आती हैं। मसलन, अल्लाह कसीर तादाद में अपने बंदों को मक्का में एक मकाम पर जमा करता है, जिससे दुनिया पर अल्लाह की अजमत और जलाल का गहरा तासुर कायम होता है। दूसरा ये कि मुसलमानों को अपने गुनाहों पर नजर करने और शर्मिंदा होने का मौका मिलता है, जिससे अल्लाह ताला इनकी मगफरत भी करता है और इन पर अपनी रहमतें और बरकतें न्योछावर करता है। इंसान को यहां आकर इस्लामी तारीख के ऐसे वाज़े निशान मिलते हैं कि इसके जहन में एक तरफ वो मंजर जागता है जब इस्लाम की इब्तिदा थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथ सहाबा की महदूद तादाद ने कैसी कैसी तकलीफें सही, लेकिन इस्लाम को फैलाने में पुरआज़म की। और इसके साथ मैदान अराफात में वो मंजर भी जहन में ताज़ा होता है जब इसी जगह जबल अराफात पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम खुतबा फरमाया और मुसलमान लाखों की तादाद में मौजूद थे और इस्लाम की शान और शौकत पूरे आबोताब से रोशन थी। यकीनन हज में और भी बहुत सी हिकमतें होंगी, लेकिन सब इंसानी अकल में नहीं आ सकती, ये तो अल्लाह ही जानता है। और इसके तहत उसने अपने बंदों के लिए हर साल ऐसे बड़े इज्तमा का अहतमाम किया जो दुनिया की तारीख में किसी मजहब में नहीं पाया जाता।
0: आइए अब अल्लाह के घर से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चलें। अगरचे मदीने का सफर और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हज या उम्रे का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उस अजीम हस्ती के रोज़ा मुबारक और मस्जिद क्यों ना जाएं, जिसने हम तक अल्लाह के तमाम अहकामात नहायत वजाहत से और बेशुमार तकालीफ उठाकर हम तक पहुँचाए, जिन्होंने पूरी उम्मत के लिए अल्लाह से मगफरत तलब की और जिनकी शफाअत रोज़े क़यामत हर मोमिन

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: लो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए, सब कुछ एक ही शो में। तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से,
1: हर मंडे 3 बजे से
0: विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: एक अच्छी दोपहर वो होती है जहाँ अपनों का साथ हो और दिलों की बात हो,
3: दिलों की बात हो।
2: तो अपने अपने कुर्सी की पेटियाँ बांध लें, क्योंकि अब आफ्टरनून का माहौल बदलने वाला है,
3: बदलने वाला है।
2: पेश है आफ्टरनून एक्सप्रेस।
4: जहाँ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का होगा एक बेहतरीन संगम, आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
2: हर टॉपिक पर होगी खुलकर बात, हंसी मजाक, लाइव इंटरेक्शन
4: और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स।
2: चाहे आप घर पर हो या अपनी कार में, बनाइए अपनी आफ्टरनून को यादगार।
4: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
2: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
6: Values are values. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आर वैल्यूज। दोस्तों, आज मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूं। आज मैं बात करूंगी कि खुद को वक्त के साथ चेंज करते रहना क्यों जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा सुना भी जाता है कि लोग कहते हैं कि जी चेंज करना यानी अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। लेकिन आज का दौर तो डिमांड करता है कि हम और आप चेंज को एम्ब्रेस करें। देखिए, आज के एरा में सब कुछ बहुत तेजी से बदल भी रहा है। टेक्नोलॉजी, चाहे लाइफस्टाइल, चाहे करियर्स, चाहे चॉइसेस, चाहे सोचने का तरीका, ऐसे में अगर इंसान खुद को वक्त के साथ नहीं बदलेगा तो शायद वो एक फोन की कंपनी थी, आई डोंट नो मुझे इसका नाम लेना चाहिए कि नहीं, उस कंपनी की तरह मार्केट से धक्के देके निकाल दिया जाए। वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद को बदलेंगे नहीं तो लोग आपको ही उस जगह से बदल देंगे, आपको मतलब रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर इंसान खुद को वक्त के साथ चेंज नहीं करता तो वो पीछे रह जाता है या तो हटा दिया जाता है। चेंज आज के दौर में सिर्फ एक कांस्टेंट चीज है, एक ऐसा ऑप्शन है जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी बन चुका है। सबसे पहली बात तो ये कि चेंज ग्रोथ का जरिया है। इस माइंडसेट के साथ हमें चेंज को एम्ब्रेस करना है। जब हम नए आइडियाज एक्सेप्ट करते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और अपने थिंकिंग को अपडेट करते हैं, तब जाके हम कहीं बेहतर से बेहतरीन बनते हैं। अगर कोई इंसान एक ही जगह पर रुक जाए, नए ट्रेंड्स को इग्नोर करता रहे, तो वो लिमिटेड और शायद ऑब्सलीट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं हुए, उन्हें आज के डिजिटल वर्ल्ड में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। या सही साफ लफ्जों में कहूँ कि उनकी आज के इस दौर में, इस डिजिटल वर्ल्ड में जरूरत ही नहीं रही। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, इसलिए अडैप्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। हर फील्ड में कंपटीशन भी बढ़ रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, मीडिया हो या फिर जॉब मार्केट्स। जब लोग फ्लेक्सिबल होते हैं और चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। देखिए, चेंज का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आइडेंटिटी को ही खो दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को नए तरीके से यूज करें। लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न जो सामने निकल के आता है वो ये कि क्या चेंज के चक्कर में मैं अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स छोड़ दूं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। चेंज और कॉम्प्रोमाइज दो अलग चीजें हैं। आप अपनी हैबिट्स, अपनी स्टाइल, अपनी सोच, अपने अप्रोच चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो कोर वैल्यूज हैं, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, ये वो चीजें हैं जिन्हें आपको डिफाइन करते ही रहना है, इन्हें कभी नहीं बदलना है।

0: असल में कामयाब लोग वो होते हैं जो आउटर चेंज को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन इनर वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग ही रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है मार्केट के हिसाब से, लेकिन अगर वो अपनी ऑनेस्टी और अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है तो उसकी सक्सेस सस्टेन करती है. ये भी समझना जरूरी है कि हर चेंज अच्छा नहीं होता. ब्लाइंडली हर न्यू ट्रेंड को फॉलो करना भी गलत है. देखिए, स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप इवैल्यूएट करें कि कौन सा चेंज आपके लिए फायदेमंद है और कौन सा नहीं. हर नई चीज को अडॉप्ट करना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ वो चेंजेस लेना जरूरी है जो आपकी ग्रोथ और आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वैल्यूज टाइम के साथ इवॉल्व हो सकती हैं, लेकिन टूटनी नहीं चाहिए. जैसे पहले लोग सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करते थे, आज लोग वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं. ये भी तो एक तरह का चेंज है ना. ये शिफ्ट हमें और आपको क्या ये सिखाता है कि अपने वैल्यूज अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करो? ये चेंज है, बट ये प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं है, ये उन्हें बेहतर बना रहा है. देखिए, आज के दौर में स्पेशली यंग जनरेशन के लिए ये समझना भी जरूरी है कि चेंज का मतलब अपने आप को अपग्रेड करना है, डिग्रेड करना नहीं. और प्रिंसिपल्स का मतलब अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, आइडेंटिटी के खिलाफ खड़े होना नहीं. जब आप दोनों का बैलेंस होते हैं और गुड बैलेंस क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, तभी आप एक्चुअल में कामयाब होते हैं. तो बस दोस्तों, जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि वक्त के साथ चेंज जरूरी है, क्योंकि दुनिया रुकती नहीं है. लेकिन ये चेंज तभी मीनिंगफुल होता है जब आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें. स्मार्ट इंसान वही है जो नए जमाने के साथ चलना भी जानता है और अपनी पहचान भी बनाए रखता है. इसीलिए याद रखिए, अपने आप को अपडेट करें लेकिन अपने वैल्यूज को प्रोटेक्ट करें. बल आज के लिए इतना ही. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: कुछ अवाश लोगों को इशारा करते हैं कि जरा उनकी खबर लो। फिर वो नक्शा जमता है जिसको बयान करते हुए जबान लड़खड़ाती है। ताइफ की गलियां हैं, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बयान ही वही नक्शा है जो हमारी आबादियों में कभी कभार देखने में आता है कि जैसे कोई दीवाना शख्स और अवाश छोकरे चारों तरफ से उसे कंकरियां मार रहे हों, हंसी मजाक हो रहा हो। ताइफ की गलियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, खास तौर पर टखनों की हड्डियों को निशाना बनाया जा रहा है जिसके तसव्वुर ही से लर्जा तारी हो जाता है, जिसमें मुबारक लहू लहान हो गया है, खून बह रहा है और नालेन में आकर जम गया है। एक वक्त ऐसा भी आया कि नकाहत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते हैं तो हुंडे आगे बढ़ते हैं, एक दाहिनी बगल में हाथ डालता है, दूसरा बाएं में उठाकर खड़ा कर देते हैं कि चलो आगे चलो। ताइफ की गलियों में क्या कुछ नहीं हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कई बरस बाद मदनी दौर में एक बार हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यौम उहद से ज्यादा सख्त भी कोई दिन गुजरा है, इसलिए कि उनकी होश में हयात तैयबा का सख्त तरीन दिन यौम उहद था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। ज्यादा खून बह जाने के बायस ज़ुफ़ व नकाहत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी भी तारी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी अजीज और जान निसार साथियों की लाशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने आई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसी हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि इससे भी ज्यादा कोई सख्त दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरा है। आपने फरमाया, हाँ, ताइफ का दिन मुझ पर इससे कहीं ज्यादा भारी था। उहद के दामन में वो तो जान निसार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जिस्मों को ढाल बनाया हुआ था। ताइफ में सिवाय एक गुलाम के और कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल यका व तन्हा थे, और ताइफ की गलियों में नक्शा वो जमा जिसके तसव्वुर से लर्जा तारी होता है। चुनांचे ताइफ से वापसी पर एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम के ख्याल से जरा बैठे तो उस वक्त आपकी जबान पर जो दुआ आई उसने यकीनन अर्श को हिला कर रख दिया होगा। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु दुअफ कुव्वती व किल्लत हैलती व हवानी अला नास। ए अल्लाह, तेरी ही जनाब में शिकवा लेकर आया हूँ अपनी कुव्वत की कमी का, अपने वसाइल व ज़राए की किल्लत का, और उस इहानत और रुसवाई का जो लोगों के सामने हुई। इला मन तकिलुनी, ए परवरदिगार, तूने मुझे किसके हवाले कर रखा है? इला बईदी जमुनी औ इला अदुविन मल्लकतहु अमरी, क्या मेरा मामला दुश्मन के हवाले कर दिया है कि जो चाहे मेरे साथ कर गुजरे? इल्लम यकुन अलैया गदबुक फला उबाली, अगर तू नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, अगर तुझे यही मंजूर है यही पसंद है तो सर तस्लीम खम है। अऊदु बिनूर वजहिका अल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात, परवरदिगार, मैं तेरे ही रूए अनवर के ज़िया की पनाह में आता हूँ जिससे तमाम तारीकियाँ छट जाती हैं। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, मुलाकात होती है ब्रेक के उस पार, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: आइए फलाह अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
0: वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान में। सामीन किराम, अगर हम यौम ताइफ के हवाले से बात करें तो यहाँ एक नुक्ता ये है कि शख्सी और ज़ाती एतबार से ताइफ का ये दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की हद तक इब्तिला व आजमाइश का मामला उस आखिरी इंतहा को पहुँच गया जिसका जिक्र सूरतुल बकरा की आयत 214 में आया है। مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب। ये इब्तिला व आजमाइश का वो नुक्ता उरूज है जिसके बाद अल्लाह की मदद आती है। चुनांचे रिवायत में आता है उस वक्त मलकुल जिबाल यानी वो फरिश्ता जो पहाड़ों पर मामूर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया कि अल्लाह

ने मुझे भेजा है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो मैं ताइफ के चारों तरफ के पहाड़ों को आपस में टकरा दूं कि ताइफ के रहने वाले सुरमा बन जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्या अजब कि अल्लाह ताला उनकी आइंदा नस्लों को हिदायत से नवाज दे और उन्हें इस्लाम लाने की तौफीक अता फरमा दे। सैन कराम, एक मरतबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और मुसाबरत का मामला उसी को इख्तियार किया। बहरहाल यौम ताइफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ाती एतबार से सख्त तरीन दिन था। किस रोज़ सब्र मुसाबरत का मरहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गोया नुक्ते उरूज पर पहुंच गया था। फिर उसी साल आपकी रफीका हयात उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हो गया और दुनिया में सहारा देने वाले चचा अबू तालिब भी इंतकाल कर गए। चनाचा संदस नबवी को आमुल हुज़्न से भी ताबीर किया जाता है, यानी रंजो गम और अफसोस का साल। ताइफ से वापस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचे तो हालात इतने मखदूश थे कि मक्के में दाखिला मुमकिन न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के एक मुशरिक सरदार मुतइम इब्न आदी को पैगाम भेजा कि अगर तुम मुझे अपनी पनाह में ले लो तो मैं मक्के में दाखिल हो सकता हूँ। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पैगाम भिजवाया, किस तरह नहीं, तुम खुद आओ और मुझे लेकर जाओ। हालात इस दर्जे नामुवाफिक और नामुसाइद हो चुके हैं कि मुतइब ने आदि अपने छह बेटों को लेकर हथियार लगा कर आता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्के में दाखिल होता है। उसके बाद अलबत्ता हालात का रुख बदलता है और बज़ाहिर मायूसी और नाउम्मीदी के घटा टोप अंधेरों में उम्मीद के दिए रोशन होने लगते हैं। सामने कराम, ताइफ से वापसी के बाद से लेकर हजरत मदीना तक 2.5-3 साल का अरसा हमारी इस वक्त की गुफ्तगू के लिहाज से दो एतबारात से काबिल तवज्जो है। एक ये कि नुसरत खुदावंदी का जहूर इस शान के साथ होता है कि सन 11 नबवी में मदीना के 6 अफराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं। ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखिए, हज का मौसम है, मुख्तलिफ जगहों से आए हुए काफिले मुख्तलिफ वादियों में पड़ाव डाले हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने और मखलूक खुदा को राह रास पर लाने की शदीद आरजू दिल में लिए एक वादी में से गुजर रहा है। एक जगह 6 अफराद मिलते हैं, उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत पेश करते हैं। वो 6 अफराद यसरिब की बस्ती से आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर वो एक दूसरे को देखते हैं, आंखों ही आंखों में ये बात होती है कि यहूदी जो दावा करते थे कि एक नबी के जहूर का वक्त करीब है, शायद ये वही नबी है। आओ कि हम इन पर ईमान में सबकत कर ले, मुबादा यहूदी हमसे आगे बढ़े और वो पहले उनकी तस्दीक कर दें। वो औस और खजरज को यहूद के जरिए से जो मालूमात हासिल हुई वो उनके ईमान का जरिया बन गई। समीन, इस बात की वजाहत भी हो जाए कि यसरब में दो कबाइल औस और खजरज आबाद थे जिन्हें वहाँ के कदीम बाशिंदे करार दे सकते हैं, जबकि यहूदियों के भी 3 कबाइल मदीने के क़ुर्ब व जवार में आकर आबाद हो गए थे। फिर सन 12 नबवी में मजीद 12 अफराद ईमान ले आए और उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। ये बैत अक़बा उला है। साथ ही उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि अपना कोई नुमाइंदा हमें दीजिए जो हमें कुरान की तालीम दे। और इस तरह कुरान की तालीम और इस दावत को फैलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब फरमाया। ये मुसअब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान उस वक्त लाए जब अभी बिल्कुल नौउमर थे। बड़े ही नाज़ और नेम में परवरिश हुई। उनके लिए 200 दिरहम का जोड़ा शाम से तैयार होकर आता था। नहायत कीमती और मुअत्तल लिबास में मलबूस जहाँ से गुजरते लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते। लोग इशारा करते कि वो मुसअब जा रहा है। ईमान ले आए तो घर वालों ने सब कुछ छीन कर बिल्कुल बरहना हालत में निकाल बाहर किया। अगर तुमने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ा है तो अपने आबा व अजदाद की दौलत और उनकी वरासत से भी तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिल सकता। अब वो नौजवान हर शय से कटकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता हो जाता है। ये वही मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि जिनके नाम कुरआए फाल निकलता है और वो मुअल्लिम कुरान बनाकर यसरिब भेज दिए जाते हैं। वहाँ उनका नाम अल-मुक़्रि पढ़ाने वाला मशहूर हो गया। उनकी मेहनत का हासिल ये था कि अगले

0: treabă, Gitac. Surf FM 107.
1: दोस्तों साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है अगर साइक्लिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है खासतौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए अक्सर साइक्लिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है हेलमेट्स सिर्फ साइक्लिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं जो काफी जरूरी है खासतौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं साइक्लिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है

0: the vibe true.
1: एक अच्छी दोपहर वो होती है जहाँ अपनों का साथ हो और दिलों की बात हो तो अपने अपने कुर्सी की पेटियां बांध लें क्योंकि अब आफ्टरनून का माहौल बदलने वाला है। पेश है आफ्टरनून एक्सप्रेस।
2: जहाँ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का होगा एक बेहतरीन संगम आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ।
1: हर टॉपिक पर होगी खुलकर बात, हंसी मजाक, लाइव इंटरेक्शन
2: और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स।
1: चाहे आप घर पर हो या अपनी कार में, बनाइए अपनी आफ्टरनून को यादगार।
2: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
1: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: FM 107 Time Check.
1: सबसे पहले तो भाई साहब गुड मॉर्निंग, उसके बाद 6:01, उसके बाद FM 107 पे मैं दुहा वाला कबीर. एंड एक अलग सी फीलिंग है क्योंकि आज कल और उसके बाद सीधा 31 तारीख को इस महीने के बिल्कुल आखिर में ये तीन शोज बाकी हैं, सुबह के तीन शोज बाकी हैं मॉर्निंग के, फिर मैं इवनिंग में चला जाऊंगा. तो ये जो फीलिंग है बड़ी कमाल की है, एक एक्साइटमेंट है, एक होता ना कि आप घर शिफ्ट कर रहे होते हैं उस टाइप की फीलिंग है. बट इट्स एन अमेजिंग फीलिंग दिस मॉर्निंग, मज़ा ही आ रहा है. और वैसे भी अभी तैयारियां चल रही हैं ईद की भी, तो आप सबको एडवांस में हर एक दिन की मुबारकबाद. व्हाट्सएप 666-22107 है, 666-22107. आज के शो की शुरुआत भी सबसे पहले तो मॉर्निंग अदकार से करेंगे. मगर आज मेरे पास बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है. ये तीन दिन ना ऐसी स्टोरीज आएंगी, वो होता ना कि कुछ पिक्चर्स होती हैं 1, 2, 3 है ना, सीक्वल आता है, फिर प्रीक्वल आता है, फिर कहानी कंक्लूड होती है, वैसी वाली. आपको ना मजा आ जाए तो कहिएगा भाई साहब. सबसे पहले आप आ जाइए 666-22107 पर, 666-22107 पर. ऑफकोर्स फोन अभी चार्जिंग ले रहा है तो आपका फोन सॉरी मैसेज डिलीवर नहीं होंगे, बट हो जाएंगे कुछ देर में. 666-22107, स्टे ट्यून्ड.
2: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशाद खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

0: बस एक
1: सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो फिर उसको भूला नहीं कहते, तो फिर हम आपको भी भूला नहीं कहेंगे, कबीर भाई कहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाई, जरूर जरूर इंशाल्लाह। ठीक है मेरा भाई,
1: ओके सर,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और बिलाल भाई के बाद जो एक मैसेज आया है, क्या मैसेज है, एक सेकंड भाई, अच्छी तनवीर भाई, तनवीर अहमद भाई ने मैसेज किया, लिखते हैं, सलाम अलैकुम कबीर भाई, दैट वुमन हु डज नॉट फॉरगेट और हु हैज़ दिस डिसऑर्डर फॉर नॉट फॉरगेटिंग थिंग्स इज एन एपिटमी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर वाइव्स। मुझे लगा कोई मेडिकल रेफरेंस देने वाले आप। इतनी खतरनाक अंग्रेजी में भाई ने जो है, भाई बहुत कर रहा जोक था। मुझे पहले पता पढ़ते पढ़ते लगा मैं कोई डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, शायद आप बताने वाले मुझे कि नहीं इसको मेमोरी को ये कहते ये नहीं कहते। देखो उन्होंने कैसे लिखा, दैट वुमन हु डज नॉट फॉरगेट हु हैज दिस डिसऑर्डर फॉर नॉट फॉरगेटिंग थिंग्स इज एन एपिटमी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर वाइव्स। बढ़िया था तनवीर भाई। आगे लिखते हैं, बाय द वे हु इज कमिंग इन द मॉर्निंग शिफ्ट आफ्टर यू गो इन द इवनिंग शिफ्ट फ्रॉम 1st June। तो जब मैं पहली जून को इवनिंग शिफ्ट में चला जाऊंगा तो सुबह को महविश और नाजिया होंगी आपके साथ, ठीक है? तो महविश और नाजिया आपके साथ होंगी सवेरे। अब आकिब भाई, वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैनेजर जो है ये ऐसी जात है इसकी मेमोरी शार्प होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ एहतशाम भाई, हाई फाइव ऑन दैट। तो आप अगर आप और मैं अगर मैनेजर कभी फ्यूचर में किसी जगह बने तो मतलब सबके बल्ले बल्ले हैं। एक मैसेज है सर्वर भाई की तरफ से, सर्वर भाई की तरफ से क्या है ये? अच्छा हमसे होशियारी। एक मैसेज है, मुझे तो सबसे बड़ी बीमारी भूलने की है और इसका नुकसान मुझे होता ही है, पर अगर सब कुछ याद रहता समी भाई आपको, इफ़ यू हैड अ वेरी गुड मेमोरी, आपको लगता बहुत बढ़िया था सब कुछ। वकास भाई ने, अरे वकास भाई को दिख गई पिंक गाड़ी, वकास भाई मैं चश्मा उतार दिया मैंने, गाड़ी की शोएं आ गई भाई मेरी आंखों में, गाड़ी की शोएं। ये कितने लोग लेके फिर रहे यार, मुझे लगा था कतर में इक्का दुक्का और पिंक गाड़ियाँ होती होंगी। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ शेयर टुडे स्टोरी। मैं तो जी सुना दूँ पहले, मैंने सुनाई नहीं है अभी तक। अमन भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग कबीर भाई और बीजे फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम 1st June। अमन भाई कैसे हैं आप? बढ़िया चल रहा है माहौल। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर मेमोरी की बात आती है तो मेरी मेमोरी बहुत ज़बरदस्त है। और आगे लिखा, कबीर भाई मैं भूल नहीं पाता हूँ कुछ भी और इसलिए मुझे कई मरतबा गम के क्या आते हैं, झोंके आते हैं गम के। नहीं ये भाई बहुत शायराना हो रहे हैं, लोग सुबह सुबह कह रहे हैं मुझे गम के झोंके आते हैं क्योंकि मैं भूल नहीं पाता हूँ। अच्छा, और कहते हैं कि अगर मैं भूल सकता आपकी तरह तो ये तो बहुत फ़ायदे की बात है क्योंकि कुछ चीज़ें याद ना रखने में फ़ायदा है। मैं यही कहता हूँ, देखो मैं मानता हूँ अच्छी याददाश्त होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ को याद रखना ना बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, सच में बता रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारे घर में जो है ना, हमारे घर में सबकी मेमोरी मुझे छोड़ के अच्छी है, सबकी, और ऐसी शार्प याददाश्त लेके बैठे हैं सबके सब भाई, मेरा सारा हिसाब किताब रखते हैं वो, लेजर अकाउंट सब, बैलेंस सब पता है, भूलता ही नहीं है। पता नहीं कैसे घर वाले। पर वो मुझसे कहते हैं बेटा तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, और हर बार मेरा मजाक बनता, हर बार बड़ा मौके विद इट, मुझे लगता है कि मैं क्यों याद रखूँ भाई, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आप लोग याद रख रहे हैं मेरे लिए। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इसलिए जो है ना हमको जो भूलने वाले होते हैं, जिनको जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, उनको मिलाते भी अल्लाह में उन लोगों से हैं जिनकी याददाश्त बहुत ताकतवर हो, ताकि वो लोग हमारे लिए याद रख सकें। हम बड़ी मासूम किस्म की वो हैं स्पीशीज़ जिन्हें याद नहीं रहता। हमें तो भाई सोशल मीडिया से याद आता है कि किसका बर्थडे है, वरना अरे भाई आज की तारीख याद रहना एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, एक सेकंड मैसेज ही पीछे चला गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमें कुछ याद नहीं, हम याद नहीं करते हमसे फिरकी लेते हैं, हम कुछ याद नहीं रखते हमसे फिरकी लेते हैं, कौन फिरकी ले रहा है? एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, कह रहे हैं कबीर भाई मेरी वाइफ को ये वाला डिसऑर्डर है कि वो कुछ भी नहीं भूलती और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। लास्ट ईयर मैं हमारे एनिवर्सरी भूल गया था, इनफैक्ट भूला नहीं था, पर लास्ट मोमेंट पे मुझे नींद आ गई, दोपहर के 2 बजे में सो गया और सीधा रात को उठा और फिर अचानक से वाइफ ने मुझसे पूछा कि क्या प्लान है और मुझे समझ नहीं आया किस बारे में प्लान पूछा जा रहा है।

उस टाइम आदमी बहाना भी नहीं बना सकता नींद से खुला आदमी पूछ रहा है कौन सा क्या क्या प्लान है ये कौन सी गुफा में आंखें खुली है मेरी कौन से प्लान की बात कर रही हो तो क्या आगे क्या हुआ कितनी मार पड़ी वो तो बताओ अच्छा आगे लिखा है सॉरी मैंने नहीं पढ़ा कह रहे हैं कि आगे जब उसने पूछा क्या प्लान है तो मैं उसे बता नहीं पा रहा था मैंने बहुत सारे बहाने बनाने की कोशिश करी अरे है ना प्लान है ना पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्लान है बच गए ना कुल मिला के आप कह रहे हैं हम उसके बाद मैंने प्लान किया जैसे तैसे सबको इंतजाम करके मैं बच गया वेरी गुड आप बच गए मुझे लगा था ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है आदमी उस टाइम पे ना जानबूझ के बना रहा होता है बातें हाँ हाँ प्लान है ना बहुत बढ़िया प्लान है क्या प्लान है फिर है अभी प्लान है उड़ तो जाऊँ एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम सैयद एम यकीन साहब ने लिखा है दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज ब्लेसिंग इन डिसगाइज व्हाट सब कुछ याद रहे ना आई थिंक यस सब कुछ याद रखना इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या फिर सब कुछ भूल जाना इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मुझे लगता है भाई सब कुछ याद रखना इज़ वेरी डेंजरस मतलब अब मैं उस पड़ाव पे आ गया हूँ जिंदगी की जहाँ मुझे लगता है कि अच्छा है मुझे बहुत सारी चीज़ें लोग डेट्स याद नहीं है अच्छी बात है भाई मैं दो तीन तारीख याद रखता हूँ उतने ही मेरा काम चल जाता है नहीं तो मैंने देखा है लोगों को अपने अकाउंट की डिटेल्स पूरे पूरे इतने बड़े बड़े नंबर मतलब उन नंबरों में बीच में अल्फाबेट्स मतलब अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स याद हैं लोगों को ये कौन सी मिट्टी थी जिनसे ये बने थे भाई एक और मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम भाई मेरे साथ ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है कि मुझे सब कुछ याद रहता है आज मैं एक मैनेजर की पोस्ट पर हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजरियल पोस्ट पर तो सब कुछ याद रहना चाहिए यासीम भाई लिख रहे हैं और आगे लिखते हैं कि भाई मगर इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं कि मैं कुछ नहीं भूलता समटाइम्स आई वॉन्ट टू फॉरगेट लेकिन फिर याद आता है और फिर मुझे लगता है कि जब याद आ ही गया है तो वो काम कर ही क्यों ना लूँ ये वाली परेशानी समझ रहे हैं आप अब आप जो है मतलब आप भूल गए कोई काम आप करने निकले थे आपके दिमाग से उतर गया क्योंकि दिमाग ने बोला अरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिलीट करो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट तो दिमाग ने वो काम डिलीट ही कर दिया अब अगर मुझे सब कुछ याद रहेगा तो वो जो इतना सा काम है वो भी मुझे जो है चुभेगा मुझे अरे अब याद आ ही गया है तो ये काम मैं कर ही लेता हूँ एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स बेसिकली समझ रहे हैं आप एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम शानी भाई ने मैसेज किया शानी भाई कह रहे हैं कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम आपके इवनिंग शो का सुन के मैं तो बहुत खुश हूँ बाकियों को बता रही बाकियों को पता नहीं मैं बहुत खुश हूँ भाई कह रहे हैं कि शाम में आपको सुने हुए अरसा हो गया है भाई इंशाल्लाह ज़रूर एक जून से और आगे लिखते हैं और भाई रही बात आपके सवाल की तो मुझे ऐसा लगता है कि भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ मैं कई दफ़ा पासपोर्ट भूल चुका हूँ घर एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए मैं कई मरतबा फ़ोन भूल चुका हूँ और हज़ारों दफ़ा वॉलेट रख के भूल चुका हूँ तो भाई भूलने की बीमारी कैन बी वेरी डेंजरस भाई आपका केस थोड़ा सा ज्यादा ही क्रिटिकल है इतना नहीं होने का ठीक है मतलब पासपोर्ट भूल जा रहे हैं आप एयरपोर्ट जाते हुए ये तो बहुत ही कंसर्निंग बात है पता चला आदमी सोचा अरे एयरपोर्ट आराम से पहुंच जाऊंगा एंड के आधे घंटे में क्या है पर फिर पासपोर्ट अगर आप भूल गए फिर तो भूल गए एक मैसेज आया है गुलरेज भाई का अस्सलाम वालेकुम भाई गुड मेमोरी इज़ अ ब्लेसिंग इन प्रोफेशनल लाइफ यू विल बी परफेक्ट इन योर वर्क एग्जीक्यूशन लेकिन पर्सनल लाइफ में ये एक बीमारी क्योंकि आप लोगों के रवैयों को नहीं भूलते और रिश्ते ख़राब होते हैं गुलरेज भाई क्या क्लिनिकल आंसर दिया है भाई ने एकदम क्लिनिकल आंसर कह रहे देखो अच्छी मेमोरी होना ना ये बढ़िया बात है ऑफिस में लेकिन भाई साहब घर में यो बढ़िया बात ना रहा करे इसमें हो जा दिक्कत आप क्या कहते हैं जो सुन रहे हैं व्हाट्सएप 666-22107 है 666-22107 टू लेट मी नो कि एक बहुत अच्छी मेमोरी होना ये बहुत ही अच्छी बात है ये आपको लगता है कि इसके नुकसान भी हैं इसके नुकसान एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम इनका नाम है कमकम जिन्हें नहीं पता भाई का एक्चुअल नाम यही है आई एम नॉट किडिंग बहुत यूनिक नाम है भाई का बहुत ही यूनिक नाम है नेपाल से हैं इनके नाम है KAM भाई कमाल का नाम है मैं बताऊं मैंने अभी रिसेंटली कोई नाम सुना था

0: मैंने बताया भी था उन्हें, एक एक का नाम था भाई, बच्चे का नाम है वो, उसका नाम है बारकोड। ये मुझे लगा था ये जो है ये ऐसा नाम है, अगर ये देसी कंट्री में होता तो बेचारे को लेने के देने पड़ जाते हैं, बट शुक्र है कि उसका बाहर की तरफ, बाहरी कंट्रीज में नाम है, पीपल डोंट रियली केयर। बट एनीवे, तो मैं ये पूछ रहा था कि कितना फ़ायदा है अच्छी मेमोरी का, डू यू थिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है या इसके नुकसान बहुत हैं। एक मैसेज आया है, किसी को पैसे दो वो याद रहते हैं, मगर किसी से उधार ले लो वो कभी याद नहीं, वो कभी नहीं लौटाता या कभी नहीं लाता। पर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मिसेस अहमद। ओके, ज़िंदगी में सब कुछ याद रखना बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन कामयाब होने के लिए कुछ लेसन्स को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को भूल जाना बहुत ज़रूरी है। एकदम, मतलब मिसेस अहमद जी, ऐसा आपने फिलोसफिकल इसको बना दिया है, पर बात में दम है। पर मुझे ना रोज़मर्रा की चीज़ों में, लेट्स मेक इट मोर सिंपलर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना इफेक्टिव लगता है आपको? एक मैसेज हमें कॉल भी आ गया इनफैक्ट। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: अरे जेबी भाई, क्या हाल है?
1: आप मुझे भूल जाएं ये हो नहीं सकता, और मैं आपको भूल जाएं ये होने नहीं दूंगा।
0: ओ नहीं सकता, तो बताइए फिर। क्या क्या क्या चल रहा है जेबी भाई जिंदगी में?
1: जिंदगी बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत और बड़ी हसीन चल रही है एज यूजुअल। चीजों के पीछे दौड़ते नहीं हैं, बातों को याद रखते हैं, अच्छी चीजों को याद रखते हैं। तल्ख यादों को याद रखना चाहिए, लेकिन साथ लेके नहीं चलना चाहिए। और बाकी रही बात याददाश्त की, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला अभी ब्लेस्ड हूँ कि मैं कोई भी किसी की, जो भी मेरे रिलेटिव या हल्का है, बड़ा छोटा सा, आई डू रिमेम्बर कि मैं कभी भी किसी को लेट नहीं हुआ किसी काम में, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा, तो आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा डेंजर है, मतलब आपको सारी मेमोरी अच्छी है आपकी, कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं
1: यार? आप दो चीजें अच्छी है डेंजर, मतलब व्हाट डू यू मीन आपका मतलब?
0: क्योंकि हम जो लोग भूल जाते हैं उनके लिए बहुत डेंजर है भाई, जो लोग सबको याद रखते हैं। मेरे तो घर में सबकी माशाल्लाह अच्छी मेमोरी है, पर मुझे लगता है कि काश ही थोड़ी बहुत चीज़ें भूल जाते तो बढ़िया होता। भूलते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलते हैं। तो आप कैसे, आपके साथ क्या सीन है? मतलब डू यू हैव अ रियली रियली गुड मेमोरी और डेली बेसिस पे रिश्ते विश्तों को छोड़ देते हैं अगर उनकी बात करूँ, उन चीज़ों की जैसे तारीखें हो गई, मेमोरीज हो गई, फ़ोन नंबर्स हो गए, इनमें कैसी आपकी दिमाग काम करता है?
1: बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर एक दो दफा मेरी आंखों के सामने से गुजरेगा तो वो मेरे मेमोरी में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये देखिए मेरे मतलब बच्चों के या रिलेटिव जिनको भी हम कुछ भी काम करते हैं उनके नंबर्स, जो जो मेरे कोलीग्स हैं, मतलब सारे ये तकरीबन ऑलरेडी मेरे दिमाग में आई चीजें। और जहां तक मेमोरी है वो माशाल्लाह, मैंने कहा मैं ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं याद रखता हूँ हर चीज को, किसी भी बात को डिले या आफ्टर डेट नहीं, अप टू डेट मैंने रखा हुआ।
0: तो ये मैं जैसे मानता हूँ कि हर घर में एक दो बंदे हों जिन्हें सब याद रहे, बढ़िया है। आपके घर में कोई ऐसा जिसको याद नहीं रखना पड़ता उनका, क्या आप पे रिलाय करते हैं? सारे घर वाले आप पे रिलाय करते हैं? क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही ये सबके अच्छी
1: मेमोरी कबीर भाई ने, अच्छी मेमोरी तो है, लेकिन पता क्या, जब एक इंसान कंटिन्यूसली वो काम करता है ना तो वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये तो भूलेगा नहीं, तो वो बेफिक्र हो जाते हैं किसी से भी।
0: ये मेरे साथ भी नहीं, बिल्कुल ट्रू, मैं ये बात मानता हूँ, ये बात मानता हूँ। तो मैंने भी ऐसे कर रखा है कि आप अपनी सारी मेमोरी को मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, क्यों खर्च करूँ मैं जब घर पे सबको याद रहता है? तो वेरी गुड, ये अच्छी बात बताई आपने। तो आप उनमें से हैं जो
1: आपको याद रखने की जरूरत क्या है? आप माशाल्लाह सुबह 6:14 से लेकर 9 बजे तक जो सबकी मेमोरी मारते हैं, आपको जरूरत क्या?
0: बात तो सही है, उसके बाद में बिल्कुल शट डाउन हो जाता है मेरा पीसी, और फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता है ऑन करने का।
1: खुश रहिए, खुश रहिए।
0: जज़ाकअल्लाह जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जेबी भाई के बाद जो एक मैसेज आया, कबीर भाई एक दिन आप हरियाणवी में पूरा शो करो, बहुत अच्छा बोलता हूँ भाई। सभी भाई ये मेरा भी प्लान है, बता मेरा बहुत दिल से मन है पूरा शो भाई एक बारी तो करेंगे, मौज आ जाएगी भाई, मौसम बदल देंगे। एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अच्छी मेमोरी होना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये हमें बहरीन से भी, हमारी बहन ने मैसेज किया। वैसे बहन, व्हाई डू यू थिंक कि अच्छी मेमोरी नहीं अच्छी बात रही? बिकॉज आई थिंक ये बहुत डेंजर चीज़ है। एक मैसेज आया, यस ब्रो, आई एम आल्सो ब्लेस्ड विद रिमेंबरिंग द रिमेंबरिंग द डिजिट्स। ये अमन भाई ने मैसेज किया है, एंड आई रिमेंबर द फोन नंबर्स एंड रोल।

पता नहीं कमी नंबर होंगे जितने भी हैं मुझे नहीं याद, एक नंबर याद नहीं है मुझे, एक नंबर, फॉरगेट अबाउट वन नंबर, किसी दोस्त के नंबर का पहला डिजिट भी याद आया तो बहुत बड़ी बात है। तो बिना सेव किए भाई मैं तो सह नहीं पाऊंगा। जो लोग सब कुछ याद रख पा रहे हैं, दिस इज अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स एट द सेम टाइम। तो मैं, अमन भाई आपको मुश्किल भी आती होगी तो सब कुछ याद रखना कुछ ज्यादा अच्छी बात नहीं है, मुझे लगता है कुछ चीजें भूल जानी चाहिए अमन भाई, है ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं तो खुद, मैं पता एक बार बैठा हुआ था और ये सवाल पूछने से पहले भी कई वक्त पहले मैं अपनी कतर आईडी याद कर रहा था और फिर याद करते करते मैं कहा आहा अब याद हो गई, मैं तो बहुत तेज बच्चा हूँ बहुत तेज, और उसके बाद भूल गया भाई मिनटों में। फिर मेरे मन, मेरे दिमाग ने मुझे कहा कि अरे क्या ज़रूरत है याद करने की, सोचा फिर मैं सो गया। तो ऐसा सीन है। एक मैसेज है, सलाम कबीर भाई, क्या मैं बेगम का नंबर भूल जाता हूँ क्योंकि फ़ोन में सेव है। देखिए किसी दिन नौमी भाई आपकी पूछताछ हो जाएगी और अगर इस पूछताछ में आप नंबर ना बता पाए तो फिर आप हमें बहुत याद आएंगे फिर हम बोलेंगे इन द मेमोरी ऑफ नौमी भाई तो मुझे लगता है कि ये वाला नंबर जो है, आपने बोला कि भाभी का नंबर याद रहना चाहिए, ये आपको मेरे भाई याद रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मैसेज है, एज़ वी आर वर्किंग इन द ऑफिस, ये अमन भाई लिखा है, एज़ वी आर वर्किंग इन द ऑफिस एंड वन डे माई मैनेजर आस्क्ड द प्रोजेक्ट नंबर एंड फाइल नंबर आफ्टर वन ईयर और टू ईयर्स, व्हाट वॉज दैट फाइल नंबर, व्हेन डिड दिस हैपन दैट हैपन, सडनली इट केम, it popped into my mind, then I said it's a 5 or a 6, then the managers were looking at me, then she found in the system and it was exactly the same number. Bhai sahab ko file number, project number sab yaad hai. Aman bhai ye to aap, ye skill jo hai aap manager ko dhrane ke liye rakhi hai aapne, ye kuch zyada khatarnak skill nahi hai. Aapko yaad hoga hamare show mein ek aaye the hamare maaz bhai, hai na, what he does is wo sari ki sari baatein excel sheet mein likhte hain bhai, मतलब हद हो गई, शीट बना रखी है उन्होंने एक एक तारीख की, इधर आया था इधर आया था इधर आया था, इससे मिला था इससे बात होती ये बात होती, वो ये भी लिखते हैं कि मैंने एक रियाल की चाय पी थी, ये तक है उनकी शीट में, ये क्यों रख रहे हैं लोग। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, क्या है मेरा तो कुछ उल्टा ही है, क्या सीन है, जो याद रखना चाहता हूँ वो भूल जाता हूँ और जो भूलना चाहता हूँ वो भुला नहीं पाता, वे ये क्या नहीं भुला पा रहे, आज जरा अलग से बात करते हैं इनसे, एक सेकंड इधर आओ, ये कौन है, ये है वकास, वकास भी इधर आओ साइड में, इधर बैठो इधर सामने कुर्से पे, क्या नहीं भुला पा रहे ऐसे लग रहा है मैं कोई थेरेपिस्ट हूँ, वकास सब आगे बंद कर लो वकास और मुझे बताओ क्या नहीं भुला पा रहे हो वकास भाई ऐसे क्या है जो भुला नहीं पा रहे, आई डोंट थिंक, अच्छा ओहो दिल टूटने वाला लगा दिया, सो एज अ थेरेपिस्ट मैं आपके पैसे आपको वापस दे रहा हूँ, ये रखो मेरा भाई इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ऐसे का अपना देख लो भाई बहुत डेंजर मैटर हो जाता है वकास भाई, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक मैसेज है, मुझे तो सिर्फ अपना फ़ोन नंबर याद है, बाकी ना आईडी ना पासवर्ड, कोई और नंबर याद नहीं। सभी भाई आप हमारी वाली कैटेगरी में हैं, आ जाइए पीछे लाइन में लग जाइए आप हमारे ही वाले हैं, ये हमारे साथ ही परेशानी, अपना नंबर याद रखना, वो भी नंबर पता क्यों याद है मुझे, अपना नंबर क्यों याद है मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे फैक्ट है, क्योंकि मैंने उसे एक रिदम में याद किया है, अगर मुझे अपने नंबर की रिदम याद ना रहे, वो धुन जिसे मैंने याद किया, जैसे लोग याद करते हैं ना हमारा जो कॉल करने का नंबर है जैसे 4434437, अब ये एक रिदम है, इस रिदम में ही मुझे अपना नंबर याद है, अगर मैं भूल गया तो वो रिदम की वजह से भूलूंगा वरना तो अपने नंबर ही, इसलिए उसके बाद क्या आता था 7 के बाद पता नहीं फोन में देख के होता था। एक मैसेज है अब्दुल्ला भाई का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है, कह रहे हैं कबीर भाई मेरी मेमोरी तो ऐसी है कि मैं अपना फ़ोन नंबर भी मेरे को याद नहीं रहता, अगर मैं रिचार्ज करता हूँ मोबाइल देकर उसका नंबर निकाल कर उसको बताता हूँ, समझ में नहीं आता लोगों की मेमोरी कैसे इतनी ज़्यादा होती है, हाई फाइव मेरा भाई ये मैं बहुत मरतबा कर चुका हूँ अब्दुल्ला भाई, सेम हाल है, मैं कहता हूँ भाई 2 मिनट रुको मैं नंबर ज़रा याद करके बताता हूँ, सामने वाला ऐसे देखता है अरे कैसा आदमी भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई आप लोगों से वो सवाल क्यों पूछते हैं, इस रात में माफ़ी मांगनी पड़ती है, अभी सबको घर जाके वाइफ का नंबर याद करना पड़ेगा जिन जिन को अपने पार्टनर्स के नंबर नहीं याद हैं,
ऑल द बेस्ट, आज आपसे पूछा जाएगा यही सवाल है आपका।

0: 100 नंबर का सवाल है ये, और पासिंग मार्क्स कितने 100 कोई पासिंग मार्क्स नहीं है इसमें। फैसल लिख रहे हैं भाई मेरे साथ मसला ये है कि काम की बात भूल जाता हूँ और जो काम की बात नहीं होती सब याद रखता हूँ। ये फैसल भाई एग्जैक्टली मेरी परेशानी, एग्जैक्टली मेरी परेशानी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बताऊँ क्या है, मैं सब भूल चुका हूँ। रात में मैंने कोई वीडियो देखा होगा, वीडियो आपने देखा वो जो रात के 2-3 बजे जो वीडियोज आते हैं ना, आपको अचानक से आपके सामने वीडियोज आ जाते हैं, उसमें होता है कि क्या होगा अगर आप धरती में 12 किलोमीटर का छेद करें। ऐसे वाले वीडियोज बाकायदा याद रहते हैं मुझे, ये याद नहीं रहता क्या करना है। तो फैसल भाई हाई फाइव मेरे भाई, कह रहे हैं रट्टा रट्टा मारा है मैंने, तो भाई मैंने भी रट्टा ही मारा है समी भाई। वो जो धुन होती है ना, धुन पे दिमाग में एक धुन पे नंबर याद है, इतनी इतनी ती ती ती ती ती ती ऐसे नंबर याद है। और बहरीन से हमारी बहन कह रही कुछ चीज़ें याद नहीं रखनी चाहिए और अगर अच्छी मेमोरी रहे तो फिर सब याद रहता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। पर इन जनरल नादिज बहन, मतलब लोग कहते हैं ना कि वुमेन हैव ग्रेटर स्टोरेज पावर, मेमोरी में कुछ ज़्यादा ही उनकी चीज़ें रह जाती हैं, ये मैं मानता हूँ, ये सच है, ये सच है। खादिमा लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग कबीर, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद जी? खादिम भाई सुबह सुबह ही सर, ऑफकोर्स भाई ऑफकोर्स, एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात।
0: जी मेरे भाई आपका नाम?
1: सैयद खादिम हुसैन।
0: अरे डेट ऑफ बर्थ बताइए, मेरी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? 1553 इटली। 1553 इटली, 30 अगस्त
1: 1553
0: इटली।
1: अच्छा
0: हाँ, लियोनार्डो द विंची के साथ था मैं। जी जी जी जी जी 15 अगस्त नहीं, उस टाइम पे 15 अगस्त नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे मैं और विंची साहब मोनालिसा पेंट कर रहे थे, आप बताइए।
1: अच्छा सही है, बस यानी हाँ। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद है?
0: हाँ देखिए है ना,
1: आपका डेट ऑफ बर्थ तो बहुत इजी है ना।
0: अरे
1: 15 अगस्त तो 15 अगस्त है।
0: नहीं नहीं 15 अगस्त मेरा नहीं है भाई, 15 अगस्त क्यों पता करवा रहा जबरदस्ती। 15 अगस्त नहीं है मेरा, वो तो अलग है। हाँ बताइए
1: कबीर भाई, ये कैसे सोचा आपने कि आपको नंबर याद है या आपको ये याद है, ये कैसे आपने ये टॉपिक सोची?
0: क्योंकि मैं जो था ना एक कहानी सुनाने वाला था बहुत दिनों पहले, उसमें था एक औरत है उसको हर चीज याद रहती है डिटेल में और टाइम के साथ, तो शुरुआत में जब वो बड़ी हो रही थी तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन बड़े होते होते उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज बन गई। तो मेडिकल टर्म्स में उसको कहा गया कि एक किस्म का डिसऑर्डर है, मतलब इतना भी डिटेल में याद रखना अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपकी मेमोरी भी उसमें एक प्रॉब्लम में फंस जाती है, क्योंकि उसके पास इतना कुछ है याद रखने के लिए दैट इट बिकम्स ओवरवेट, समझ लो उस टाइप का सीन है। तो ये इसलिए मैंने सवाल पूछा ये।
1: अच्छा एक बात मैंने नोट भी की और मैंने ऐसे सुनी भी थी, पढ़ी नहीं थी सुनी थी ऐसे,
0: हाँ हाँ,
1: कि जब एज बढ़ जाती है तो किसी किसी बंदे की याददाश्त जो है वो कमजोर, यानी मेमोरी कमजोर हो जाती है, वो याद नहीं रख सकते। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मेमोरी जो है याददाश्त वो बढ़ जाती है, एज के हिसाब से, यानी मतलब ये कि अगर एक बंदा है वो 60-70 साल तक पहुंच गया तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ा थोड़ा भूल जाता है सब कुछ, और कोई कोई बंदे ऐसा होता है कि वो 100 साल तक भी अगर जिए तो वो
0: नहीं भूलते, पुरानी
1: यादें हैं वो बचपन वो नहीं भूलते,
0: नहीं भूलते।
1: तो मैंने ये सुना था कि जो यानी मैक्सिमम लोग जो है जिनकी एज ज्यादा हो जाती है तो वो वही बात है, वो सब कुछ उनको याद रहता है।
0: राइट,
1: एक बात ये
0: आपके साथ क्या सीन है?
1: मैं अपना नंबर मुझे याद नहीं रहता था तो मैंने क्या किया था कि एक ये वॉलपेपर पे एक फोटो लगाया था बच्चे के और उस पे मैंने लिखा था, वो फिर मुझे याद बार बार देखता था तो वो मुझे याद आया अपना नंबर इधर ही का।
0: अच्छा वेरी गुड।
1: और घर का नंबर जो है तो वो तो लैंडलाइन है, वो तो ऐसा है कि बस आसान नंबर है और याद भी रहता है और बहुत पहले से बस 001 नंबर है, बहुत आसान है।
0: वैसे अब चीजें नंबरों को छोड़ के चीजें आपको याद रहती हैं, मतलब आप अमूमन मतलब ऐसा होता है ना कि एक शख्स होता है घर में, लोग सब उसी पे डिपेंड करते हैं कि भाई इनको सब याद रहता है, रस्ते से लेकर हर एक चीज याद रहती है, कौन सी चीज कहाँ रखी है।
1: तकरीबन कबीर भाई अभी अभी की बात है कि मैं अभी बहुत कुछ ऐसे भूल चुका हूँ, यानी याद ज्यादा नहीं रहता, लेकिन बहुत चीजें याद रहती थी कि मैंने ये चीज इधर रखी हुई है या ये चीज ये लेके आना है। अभी ज्यादातर मैं अगर बाजार में जाऊं या जब भी मुल्क की बात है तो इधर भी कभी कभी ऐसा होता है भूल जाता हूँ, लेकिन फिर फोन पे पूछता हूँ कि हाँ क्या क्या लाना है। बहरहाल वो अक्सर मैं भूल जाता हूँ, पहले ऐसे नहीं। ये जो क्रिकेट की तारीख थी, क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री कि ये खिलाड़ी इधर खेला वो खेला, ये पाकिस्तान के या इंडिया के या जो भी था खिलाड़ी, वो सारे नाम मुझे याद आते थे। अभी मैं थोड़ा सोचता हूँ, जैसे अभी मुझे मुझे आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे वो यानी जो 81-82 के प्लेयर्स हुए उस टाइम में 6-7 साल का था, वो भी मुझे याद है।
0: तो आपका वो मैं सिस्टम समझ गया, आप ना वो हैं सेलेक्टिव होते हैं ना लोग कि मैं मुझे इस बारे में सब कुछ याद रखना है और इस बारे में याद नहीं रखना है, वैसा सीन लग रहा है मुझे आपका।
1: जी
0: सेलेक्टिव मेमोरी।
1: जब इधर स्कूल की बात आती थी, जब मैथ्स की बात आती थी ना, तो कुछ याद ही नहीं रहता था।
0: वो तो फिर वो तो हमारे हमारे भी यही कहानी है खादिम भाई, मार्क्स की याद दिला रहे
1: उसमें
0: नंबर।
1: वो बोलते अगर कोई बोलते थे कि मैच में ये है वो, मैं बोला यार मुझे याद ही नहीं आता था तो क्या करूं।
0: चलिए ठीक है,
1: मुझे अगर उसमें मुझे कोई एक एक हिस्ट्री की किताब, वो मुझे बहुत पसंद थी, वो इसलिए कि वो हिस्ट्री में ऐसे ही सुना भी था कि एक ये हुआ या वो, बहरहाल वो पहले मैं पढ़ता था फिर उसके हिसाब से मैं अपना भी बना सकता था। लेकिन मैथ्स जो है वो खुद बना ही नहीं सकते आप।
0: हाँ वो तो है,
1: जो चीज है वो वही चीज है ना। तो ये बहरहाल याददाश्त जो है, अभी मुझे अभी मालूम हुआ है कि अभी मेरे याददाश्त कमजोर हो रहे हैं।
0: मुझे लग नहीं रहा है आपकी याददाश्त कमजोर है, कन्विंस नहीं कर पाया आप मुझे इतनी देर कॉल में रह के नहीं कन्विंस कर पाया।
1: लेकिन नंबर नंबर जो है नंबर मैं अगर बताऊं तो बच्चों के नंबर भी मुझे याद है कि मेरे बच्चे का ये नंबर है, और घर का नंबर वो तो लैंडलाइन है वो आपको बताया कि वही है, वो तो याद रहता है वो।
0: अरे
1: तो
0: बहुत तेज हो कादिम भाई, समझ गया अच्छी खासी मेमोरी माशाल्लाह।
1: नहीं हाँ। तो अक्सर हमारे घर में कोई लैंडलाइन पे कॉल आती है ना, बोलते हैं ये पुलिस स्टेशन है, हम लोग बोलते हैं नहीं अस्पताल है। असल में हमारे उधर पुलिस स्टेशन का नंबर वो भी 001 है, वो जो पहले दो तीन डिजिट है ना, दो डिजिट है वो अलग है वो, और बाकी जो लास्ट ये तीन डिजिट है ये बिल्कुल सेम मिलते हैं। तो हमारे भी इधर 001 है और उधर भी वो पुलिस स्टेशन का 001, बोलते ये पुलिस स्टेशन, तो हम बोलते नहीं अस्पताल है।
0: अरे भाई आपको सब कुछ तो याद है, पर थैंक यू सो मच खादिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी टॉपिक आप लेके आते हैं, लेकिन अभी ये मेरे ख्याल में आपका शो जो है वो इवनिंग का शिफ्ट हो रहा है।
0: जी जी जी बिल्कुल
1: इंशाल्लाह, चलो ठीक है इंशाल्लाह, फिर मुलाकात उधर ही होगी इंशाल्लाह,
0: बिल्कुल
1: इंशाल्लाह।
0: ओके
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह
0: हाफिज़। अल्लाह वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो खादिम साहब ने बोला मुझे कुछ याद नहीं रहता, सब याद है उन्हें। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर जानी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, बताइए मेरे भाई
2: कैसे
0: हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुझे याद नहीं मैं कैसा हूँ, बताइए कैसे।
2: कभी जाने आपने जो क्वेश्चन किया याददाश्त के बारे में,
0: जी जी जी,
2: तो याददाश्त तो मेरी इतनी जबरदस्त है कि अपना नंबर अपने मोबाइल में माय नंबर के नाम से सेव किया हुआ है।
0: भाई मेरा भी आई मी माय सेल्फ के नाम से सेव है। मुझे पता है नहीं याद रहने वाला।
2: और बात है कुछ चीजें जो कभी जिनको याद रखना पड़ता है, जैसे एनिवर्सरी की डेट हो गई या वाइफ की डेट ऑफ बर्थ हो गई, तो मतलब क्या करता हूँ कि मैं अलार्म लगा लेता हूँ मोबाइल के अंदर कि भाई एक दिन पहले का ना, यानी कि अगर जिस डेट को एनिवर्सरी है तो उससे एक दिन पहले का मोबाइल में अलार्म लगा कर लिख लेता हूँ कि एनिवर्सरी।
0: पर कभी ऐसा हुआ है कि स्लिप हो गई हो डेट, मतलब याद ना रही हो, वो होता ना एक मोमेंट ऑफ शॉक होता है।
2: कबीर भाई बंदा एक दफा ऐसे हुआ कि जो है मुझे जो है बिल्कुल डेट लिटरली याद नहीं थी, तो जब मैं घर आया तो वाइफ ने बलून वलून लगाए हुए थे और वो जो है तो मुझे कहा था यार गिफ्ट तो मैंने इतना ही कुछ नहीं है। वो उसके बाद जनाब मैं जो है बहाना करके गया कि वो मेरे सिगरेट जो है मेरे सिगरेट लेके आया मैं लेके आता हूँ शॉप से ना, तो नीचे ही हमारे कागज तक मैंने 1.5 किलोमीटर के फासले पे एक मॉल था, मैं मॉल पे गया वहां से जल्दी से एक परफ्यूम ली, बैग लगाया, बैग लगा के लेके आया।
0: वेरी गुड, ये वाली बात है नवाजुद्दीन ने बोला ना, वो टक छू के वापिस आ गए मौत को। अभी अभी क्या सीन है, मतलब जनरली अभी क्या डिपेंडेंसी है आपकी? मुझे लगता है कि हमारी बहन की मेमोरी ज्यादा अच्छी होगी, भाभी की मेमोरी अच्छी है।
2: जी वाइफ मेरी की मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मेरी मेमोरी के मैं आपको बताता हूँ कि जो अटेंडेंस पंचिंग कार्ड होता है ना, वो जो है मैंने आपने चेक किया, मैंने कहा यार अटेंडेंस पंचिंग कार्ड मैंने नहीं दिया। मैं रस्ते में गाड़ी तक 2-3 किलोमीटर आके निकल आया था जॉब पे जाने के लिए, तो मैं वापसी पर गाड़ी को टर्न किया, मैं वाइफ को फोन किया कि भाई मेरा पंचिंग कार्ड है वो घर में रह गया, तो उसको ढूंढो मैं आ रहा हूँ जो है ना। मैं जब जनाब घर में पहुंचा देखा वो भी ढूंढ रही है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। कहती है आप लेके किए, मैंने ये चीजें सारी एक जगह पे रखी थी, वॉलेट आपका, गाड़ी की की, आपके सिगरेट और ये सारी चीजें मैंने सारी रखी थी एक जगह पे, आपने मेरे सामने उठा के लेके। मैंने कहा नहीं मैं पॉकेट में देखा, वो तो मैंने जब ट्राउजर पहना तो बैक साइड की जेब में, मैंने जब पीछे हाथ मारा तो मेरे बैक साइड वाली जेब में पड़ा वो कार्ड।
0: वहां से तो भाग जाना चाहिए था फिर आपको, भागे
2: जनाब बहुत अच्छा। जो है अभी जब आपकी आदत हो गई हमें सुनने की सुबह में, तो आप अभी अपना जो है इवनिंग में जा रहे हैं।
0: भाई मुझे ब्लेम कर लिया कोई फायदा नहीं भाई, मैं रो दूंगा बता रहा हूँ। नहीं ये तो रोटेशन का सीन है भाई हमारे यहाँ, तो रोटेट होता रहेगा सब कुछ।
2: तो ईद के बाद क्या आ रहे हैं?
0: ईद के बाद भाई 31 तारीख को एक शो और है, 31 मई को, और उसके बाद सीधा 1 जून से इवनिंग है।
2: ओके ओके, मेरी जो काम खत्म होता है 6 बजे, तो 5 से 7 आ रहे हैं ख्याल से, या 5 से 8?
0: 5 से 7, 5 से 7,
2: 5 से 7। चलिए ठीक है, जाते हुए जो आपको फिर भी आधे घंटे का सफर है तो सुना करेंगे।
0: डन डन डन मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: डन हो गया, ओके टेक केयर,
0: टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद एक और कॉल है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कबीर भाई अमन बोल रहा हूँ जी।
0: जी अमन भाई क्या हाल है भाई के?
3: जी ठीक हूँ जी, ठीक हूँ, शुक्र है ऊपर वाले का, सब ठीक ठाक चल रहा है।
0: फिर वीर जी
3: टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे काम पे जा रहे हैं, बस जिंदगी निकल रही है।
0: इतना टाइम पे रहते हैं आप, तो आपकी मेमोरी भी आपने बताया बहुत ज्यादा ही मतलब जबरदस्त मेमोरी है माशाल्लाह।
3: मैंने मैसेज किया था कि आपका बर्थडे 30th अगस्त को है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने लिखा था, आपने पढ़ा नहीं अभी तक।
0: अभी मैं कॉल पे था ना इसलिए बताइए ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
3: जी जी, बाद में आपने अपने बर्थडे की डिस्कशन की तो मैंने सोचा सही है, सही है, सही गेस्ट किया मैंने।
0: बिल्कुल सही गेस्ट भाई, आपकी बहुत खतरनाक मेमोरी है, ये मुझे बहुत डर लगता है ऐसे लोगों से।
3: ये पहली बात तो ये है कि आपकी मेमोरी शार्प है, वो वरदान है आपके लिए।
0: वो तो है ठीक है, पर
3: अगर आप भूलते नहीं है सब कुछ, आपका बढ़िया से दिमाग चल रहा है ना, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं भूलनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी के अच्छे के लिए भूल जानी चाहिए।
0: हाँ तो आपको तो बड़ी परेशानी होती होगी, आप तो कुछ भूलते भी नहीं है।
3: नहीं परेशानी तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि मेमोरी शार्प होनी चाहिए। और जैसे मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, कंपनी में 3 बार आईडी का पैसा पे किया था, कंपनी ने 2 बार बनाया।
0: अच्छा।
3: आपका आपने 2 बार पे किया, हमने आपको 2400 पे करना है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं आप मिस कर रहे हैं। कहते कौन कौन सा डेट है, आपने जून को किया था, ये June 23 then 25। मैंने कहा September 17 24 चेक करो, वो चेक किया, उसका भी 1200 रियाल एक्स्ट्रा कर दिया उसने।
0: अरे भाई कौन सी मिट्टी के हो रहा।
3: मैंने कहा सितंबर 17th 24 को का तारीख चेक करो, मेरा एटीएम से आपने कट किया है। उसने देखा और सिस्टम में प्रिंट दिया और वो भी 1200 का ऐड कर दिया। मतलब मैंने अपनी शार्प मेमोरी की वजह से अपना 1200 बचा लिया मैंने
0: भाई। तो घर पे तो लोग आपको आप ही पे डिपेंड होते होंगे, ये सबकी मेमोरी माशाल्लाह अच्छी है घर पे, ये सिर्फ आप ही हैं अकेले जिसको प्रॉब्लम है इतनी।
3: सिस्टर की मेमोरी अच्छी है, बाकी नॉर्मल है, यानी नॉर्मल है, इतना भुलक्कड़ नहीं है। मम्मी डैडी थोड़े से भुलक्कड़ हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मल है।
0: जानबूझ के एक्टिंग करते हैं मम्मी पापा बोलने की, ठीक है सब पता है उन्हें।
3: जी नंबर्स वगैरह सबके याद हैं, बर्थडेज वगैरह सबके याद हैं। आज जैसे आज डेट रहेगी तो मुझे ये रहेगा कि हाँ आज फलाने बंदे का बर्थडे है यार, उसको विश करो, अगर क्लोज रहेगा। नहीं क्लोज रहेगा तो बस खाली ऐसे ही जाने देंगे, ठीक है आज उसका बर्थडे मना रहा होगा कहीं। ऐसा रहता है।
0: 30 अगस्त को देखूंगा मुझे कि कैसे ट्रीट किया जाता, बना रहा होगा कहीं।
3: 30 अगस्त तो छप गई है दिमाग में।
0: ठीक है अमन भाई, ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत सारा
3: प्यार। थैंक यू कबीर भाई, थैंक यू। अभी जा रहा हूँ ऑफिस के अंदर,
0: दन,
3: गाड़ी
0: दन,
3: में बैठा था मैं।
0: डन डन डन मेरे भाई,
3: ओके थैंक यू,
0: ओके भाई,
3: हैव अ नाइस डे,
0: यू टू मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो अमन भाई के बाद 7:02 घड़ी में हो चुके हैं, 7:02 और अभी मेरा साथ देते रहो, वक्त के हिसाब से तो जिंगल बज जाना चाहिए।

0: FM 107. Time check.
1: अस्सलाम वालेकुम, सात दो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, शुगर है, वरना वो मुझसे रह जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। बाकी फोन के मैसेज आना शुरू हो चुके हैं। मैं दुहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, एंड वेज भाई लिखा है कि सलाम इतने पुराने हैं आप, ये किसकी बात करी आपने, मैं समझा नहीं। अच्छा वो बर्थडे वाली बात पे, जी मैं बहुत पुराना हूँ, तकरीबन हो गई मेरे को अच्छा खासी हो गई, विंची के साथ, विंची लियोनार्डो तो विंची, उसके साथ मोनालिसा पेंट करता था। वो हमारी बनाई हुई पेंटिंग बीच में चोरी वोरी हो गई थी, उसकी भी अलग कहानी मैं सुनाऊंगा कभी आपको। विज भाई आप बताइए कैसे हैं ये क्या क्या मैसेज आते हैं। अस्सलाम वालेकुम विज भाई, एंड देन एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे मैसेजेस आपको डिलीवर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। वो एक्चुअली क्या फ़ोन थोड़ा सा नहीं अच्छा खाता, थोड़ा सा क्या होता है चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत लग रही है। इंशाल्लाह भी सारे मैसेजेस पड़ जाएंगे, तो बेफिक्र हो जाओ आप। अच्छा मीनवाइल फोन ऑन हो रहा है तो मैं आपको बता दूं आज की कहानी, क्योंकि मेरे पास 3 दिन है कहानी सुनाने के लिए, सुबह सुबह, उसके बाद शाम में शिफ्ट हो जाएंगे। बट सवेरे सवेरे फवेरे फवेरे 3 दिन की कहानी इतनी ज़बरदस्त होने वाली है ना, आज से शुरू करेंगे किस्सा। और ऐसा भाई साहब ऐसी वैसी कहानी, अरे आप बोलेंगे क्या कर दिया ये, क्या कर दिया ये। गाने के बाद मिलते हैं।

0: गुड मॉर्निंग आजी क्या हाल है? बढ़िया चल रहा है भाई। फोन हो रहा चार्ज कती, थोड़ा सा रुला रहा है आज फोन पर कोई गाल नहीं जी। आप कॉल कर सकते हो, नंबर है 4434377। जिन्होंने मैसेजेस किए डोंट वरी, पढ़ूंगा अच्छी तरह से पढ़ूंगा। आपने गुस्सा नहीं करना है। सबसे पहले आपने क्या डालो था, सबसे पहले आपने भरोसा रखना है। मैं दोहा वाला कबीर एफ एम पर हल्का सा म्यूजिक। अच्छा मैसेजेस किए लोगों ने, अब आके भाई ने बोला कि पता नहीं ये अच्छी बात है कि नहीं, बट उन्हें सब कुछ याद रहता है, फ्रॉम डेट्स टू QID टू पासपोर्ट एंड एवरी नंबर पॉसिबल। भाई देखो, सब कुछ याद रखना इज नॉट अ बैड थिंग, पर अभी तक मुझे ये लगता था, क्योंकि जब उसके बाद मैंने एक कहानी के बारे में पढ़ा, उसमें ये था कि एक हैं खातून, उनको जो है हर डिटेल याद रहती है। डिटेल सिर्फ नंबर वंबर नहीं, उन्हें पता नहीं जब ये याद है, जब वो 6 साल की थी तो जुमेरात का दिन था और दोपहर के 3 बज रहे थे, इतना डिटेल में याद है उन्हें, एंड इट हैज़ बिकम प्रॉब्लमेटिक फॉर हर। वो कहानी मैं कभी और सुनाऊंगा, उसमें बहुत कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी मुझे। तो उनकी कहानी ऐसी है, मैं तो बहुत डर गया। तो कहने को अच्छी बात है, मेमोरी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, बट इट बिकेम प्रॉब्लमेटिक फॉर हर। एंड उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि मेडिकल साइंस में से कहा गया कि भाई ये भी एक किस्म का डिसऑर्डर है, ज़्यादा अच्छी मेमोरी होना भी अच्छी बात नहीं। बट एनीवे, आपकी अगर अच्छी मेमोरी तो बताइएगा मुझे, बिकॉज मैं तो बड़ा हैरान हूँ आज की तारीख में लोग जो है नंबर सेव करने के टाइम पर सबके नंबर याद रख पा रहे हैं। ये तो भाई साहब सल्यूट है आपको। खैर आप कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, 4434377 पर। 7:09 हो रहे हैं और फोन भी बस खुली रहा है, वेटिंग के भाई खुल जा, भाई खुल जा, प्लीज खुल जा। बाकी 666-22107 है। एक भाई ने मुझे मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं जी वधिया, तुसी दसो क्या हाल है। एक और मैसेज है, भाई मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लो फोन पर से बंद हो गया। तो आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या लगता है, मैं एक गाना और चला देता हूँ, जब तक कि फोन जो है थोड़ा सा हल्का सा चार्जिंग ले ले, फिर हम इंशाल्लाह इसको बात करके ऑन करके आराम से बात करेंगे। तो सर ने मैसेज किया था मुझे, जहाँ तक याद है फोन बंद होने से पहले मुझे याद है देख रहे हैं मेरी मेमोरी, ये है मेरी मेमोरी, काम आ जाती है पर मैसेजेस याद नहीं रहते। तो अबू आके भाई ने मुझे मैसेज किया था, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और समीरा जी ने मैसेज किया था, बहन मुझे पता आपने मैसेज किया है, मैं पढ़ते पढ़ते फ़ोन बंद हो गया था तो अभी मैं पढ़ने ही बैठ रहा हूँ। डोंट वरी, आप लोग ऐसी निराशा कि उससे मत सुनिएगा मुझे कि देखो देखो इग्नोर कर दिया, देखो देखो। अभी मैसेज खोले जा रहे हैं, एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है इनका, अभी रुको पढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा चार्ज हो जाने दो। एक काम करते हैं, लेट्स प्ले वन ट्रैक और उसके बाद मैं आता हूँ, मीन वाइल द फोन विल टेक सम चार्ज। एक कॉल आ गई है कमाल भाई की, कॉल उठा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: कमाल भाई मैं बढ़िया, कमाल करते हैं, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है
0: जी। भाई बताइए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: भाई अपनी मेमोरी तो ऐसी है कि बचपन की चीजें तो याद है, लेकिन कुछ खास करके रखते हैं जिसे इसको याद रखना है जरूरी है, उसी टाइम पे भूल जाता हूँ उसको ढूंढने के चक्कर तो कहाँ रख दिया
0: मुझे लगा था कमल भाई आप बोलेंगे कि आपकी मेमोरी बहुत जबरदस्त है।
1: नहीं वो भाई इतनी जबरदस्त है कि आपका बर्थडे अगर कल है मुझे याद रहेगा, लेकिन कल आएगा तो भूल जाऊंगा।
0: अरे मेरी वाली परेशानी है आपकी, वो था ना अभी देखो 12 बजे विश करूंगा, ठीक 12 बजे 12 बज के निकल गए, आदमी सो गया, सवेरे उठ रहा है क्या था कल, वैसा वाला सीन है
1: भाई। जागने के बाद मैं भूल जाता हूँ, सोने तो छोड़िए वैसे याद रहेगा, पूरा साल याद रहेगा कि हाँ ये तारीख को है, कल तक याद रहेगा भाई कि कल करना है अभी, और जब कल का टाइम आता भूल जाता हूँ।
0: अरे मैं समझ पा रहा हूँ अमल भाई, ये अब आपके घर में सबकी मेमोरी कैसी है, मतलब आपको छोड़ के
1: सब इक्वल है भाई
0: कैसे आओ, अरे सारे के सारे भी के हम ही को याद रखना पड़ता है अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा। अच्छा भाभी की मेमोरी कैसी है मुकाबले आपके?
1: भाभी की मेमोरी तो ऐसी है भाई कि मैं याद रख लूंगा वो याद नहीं रख पाएंगे।
0: अरे ऐसा है क्या,
1: तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ।
0: तो ये एनिवर्सरी और बर्थडे वर्थडे कौन याद रखता है, कोई याद रखता है?
1: हाँ नोटिफिकेशन
0: नोटिफिकेशन अरे ये कौन नोटिफाई कर रहा है भाई, तो ये आपने सेव
1: करके
0: हैं?
1: नहीं वैसे तो कैसा है ना कि एनिवर्सरी याद रहती है,
0: एनिवर्सरी
1: भूल जाता हूँ
0: एनिवर्सरी तो एनिवर्सरी कैसे याद रहती है कमाल भाई? अच्छा 26 साल
1: हो गए याद करते
0: इतनी ज्यादा पढ़ाई हो गई है तो अब सबक भूला नहीं जाता है
1: जाता।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, ये तो अच्छी बात है, चलो वेरी नाइस वेरी नाइस। तो कमाल भाई आज आज की कहानी लंबी भी है और अच्छी भी है, तो आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। आज आप देखिएगा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अपना।
1: हाँ भाई अभी एक दो दिन जो भी है सुना दीजिए, तीन दिन तो बचे हैं।
0: अरे तो फिर भेजेंगे अलग से आपको कमाल भाई, आप ऐसे टेंशन मत लिया करें, मैं हूं ना आपके साथ, बेफिक्र रहिए आप। आपको फिर भी स्टोरी मिलेगी, आप बेफिक्र रहें कमल भाई, फिर भी मिलेगी आपको गानी, डोंट वरी।
1: ठीक है
0: भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज।
1: ओके
0: तो भाई कमाल भाई की बात नजर किया फसल भाई ने, कहते हैं भाई आप ना हर महीने में एक दिन हरियाणवी में शो किया करो भाई, मौका लाग जाना भाई एक बारी। अहमद भाई वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, फ़ोन नंबर समन भाई ने मैसेज किया है अपने बारे में। शहजाद सलीम वालेकुम अस्सलाम, मेरा नंबर कब आएगा, कॉल करो ना भाई। एक सेकंड सारे मैसेज पढ़ दूँ क्योंकि वरना फ़ोन बंद ना हो जाए। रमेश यादव भाई क्या कह रहे हैं, रमेश यादव भाई वालेकुम अस्सलाम, मुझे सरूर भाई के कहने पर जो आप लोग भेज रहे हैं बताऊँगा मैं, इसका हिसाब लिया जाएगा। यादव भाई कहते हैं भाई टू ऑल डू एट लीस्ट 2 to 5 minutes न्यूरोलॉजिकल ब्रेन एक्सरसाइज। हम भी बस दोस्तों के लिए लिस्ट में जा रहे हैं अब, क्या अब मेरे दोस्तों की मेमोरी इतनी अच्छी हो रही है, अब उन्होंने अपने मोबाइल कवर्स के पीछे अपना नाम लिखवाया है सो दे रिमेंबर व्हाट्स देयर नेम। कह रहे फ़ोन के पीछे नाम लिखवाया कि याद रहे। आप कौन, ये फ़ोन के पीछे पढ़ लो एक मैसेज। लेकिन क्या कबीर भाई, वैसे तो औरतों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। अरे मैसेज पढ़ ही रहा था मैं, फटान भाई मैसेज पढ़ता हूँ मैं आपका, सॉरी दोबारा से भी फ़ोन ऑन होगा उसके बाद पढ़ा जाएगा। ऐसा लग रहा है वो पहले बत्ती आती थी ना, लाइट जाती थी घर में, दिल्ली में सिस्टम था कि शाम को जाएगी 6:30 बजे लाइट आधे घंटे के लिए। वो वाली फीलिंग आ रही है, आधे घंटे की लाइट गई भाई वापस आ जाएगी, तब मैं पढ़ दूंगा जी आपका मैसेज। एक मिनट एक काम करते हैं, गाना चला देते हैं एंड देन वी विल हैव सम टाइम टू रिचार्ज द फोन। ओके रिचार्ज, बाकी 666-22107 डोंट वरी, आपके मैसेज अगर आपने किए हैं तो पढ़े जाएंगे, बेफिक्र हो जाए। अब कहानी लेकिन एक नंबर है भाई, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपको सुनाने के लिए। बट मीनवाइल ये देखो, जादू दिखाऊं आपको, यहाँ से बैठे बैठे आपकी गाड़ी की वॉल्यूम बढ़वा दूं मैं, यहाँ से बैठे बैठे देखोगे ट्रिक। और देखा कोई कोई मंत्र नहीं कुछ नहीं, सीधा यहाँ से बैठे बैठे वहां की वॉल्यूम बढ़वा दी। आर्ट ही आर्ट। 7:15 बाय द क्लॉक। अभी तो कैसे वॉल्यूम जाएगी आराम से 21:22 में चली गई। आई नो, अभी लास्ट में आप अलाप भी लगाएंगे गाने के साथ साथ, समझ रहे हैं आप, यहां से सब दिख रहा है, सब दिख रहा है यहां से।

0: मुझे पता है, मुझे पता है इस गाने के आखिर में अलाप लगाना बहुत जरूरी है, साथ में नहीं लगा तो लगता नहीं है गाना कंप्लीट हुआ है। नादिश बहन लिखती है जी बिल्कुल सही, मैं 2019 से किंडरगार्टन में हूँ। अच्छा, और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं मुझे सब याद रहता है, अब उन अपनी फैमिली मेम्बर्स के नंबर्स, बर्थ डेट्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के भी। ये तो बहुत ही ख़तरनाक काबिलियत है। ताहिर भाई कह रहे हैं जो मर्जी याद रखें या भूल जाएँ, बट बस मिसिस की डेट ऑफ बर्थ एंड एनिवर्सरी की डेट नहीं भूलनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस एडवाइस। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मेरा गुड मॉर्निंग, आज का टॉपिक आपने तो एक नंबर चुना है। भूलने की बात करें तो भाई मैं इतनी बुरी हालत है कि अगर किसी की इंपॉर्टेंट क्लाइंट की कॉल करने के लिए फ़ोन पकड़ो तो सोशल मीडिया खुल जाता है और 10 वीडियो स्क्रोल करके याद आता है, ओ किसी को कॉल करनी थी। असद भाई आपके हालात हमारे जैसे ही चल रहा है मेरा भाई। समीर हमें लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, नंबर्स तो पहले याद रहते थे व्हेन देवर नो स्मार्टफोन्स, लेकिन मुझे किसी के भी कही हुई बात याद रहती है, मुझे हर बात वर्ड टू वर्ड याद रहती है, और यहाँ तक कि मुझे उनके चेहरे का एक्सप्रेशन एंड टोन भी याद रहती है। और मेरे हस्बैंड का उल्टा है, वो उन्हें बातें याद नहीं रहती लेकिन नंबर सारे याद रहते हैं। आई ये तो बहुत बहन, बहुत ही डेडली पैकेज है ये तो। अरे धीरे धीरे एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
0: भाई कॉल पे ये कौन आया, दिल में हुई हलचल,
1: आगे भूल गया मैं।
0: कैसे भाई तला है,
1: क्या टॉपिक भी यही है ना,
0: टॉपिक भी ऐसी चल रहा है, बहुत बहुत तेजी चल रहा है टॉपिक,
1: गाना भूल गया। तो तला याद है टॉपिक या भूल गए हो?
0: टॉपिक मुझे याद नहीं, मैं तो याद कर रहा हूँ, एक गाने के अंदर मैंने 10 बार हिज्जी किया टॉपिक को। आप बताइए क्या क्या तला भाई, क्या रहता है आपके सीन, मतलब याद रहता है क्या क्या, मेमोरी कैसी है?
1: मेमोरी बहुत अच्छी भाई तुम्हारे भाई,
0: क्या बात कर रहे हो,
1: बेहतरीन
0: क्या बात
1: हो। अब यार कोई बॉदर का चीज एक्सपेक्ट मुझसे नहीं है, तुम ये बताओ।
0: माय गॉड, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, दुगना पैसा डबल किस दिन में।
1: यस यस,
0: अरे अनुराधा
1: मेमोरी बहुत बहुत प्यारी है आपके भाई की, मेमोरी ऐसी है आपको बर्थडे नहीं भूलता आपको भाई, कहीं भी बात भूल जाता लेकिन बर्थडे नहीं भूलता आपको भाई।
0: दिमाग में चिपे भाई के, ऐसी चिपे लगा रखी है भाई ने दिमाग में।
1: फुल भाई, शादीशुदा आदमी कहीं तो कन्फर्म कर रहे हैं, कहीं तो पक्का, मतलब कहीं तो अपनी बात रख रहे थे।
0: तो घर पे क्या मतलब, कभी भूलेंगे कोई तारीख या घर वाले बोलते हैं सब आप पे डिपेंडेंट है मेमोरी के लिहाज से?
1: नहीं नहीं भाई, तारीख याद रहती है आपके भाई को, तारीख पतारीख हर चीज याद रहती है, बाकी चीजें भूल जाता हूँ, कई भी बातें और सारी चीजें फट्टा भूल जाता हूँ मैं, ये फट्टा उसाला हुआ जिन बात पे था। यकीन करो भाई, कई दफा मैंने सरेंडर इस चक्कर में किया कि मेरा ये ना हो, मैं वो वाली बात बोल दू, वो हो ही ना।
0: याद ही नहीं आ रहा
1: बातें,
0: लड़ क्यों रहा
1: हूं? की कसम प्रॉमिस कर रहा हूँ, सीरियसली हकीकत है ये कि मैंने सरेंडर किया है कई दफा। अच्छा सॉरी यार, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअल पट्टा किस बात पर। मैंने कहा ये ना हो कि भाईजान तला साहब तुम जो है ना ये वाले केस में पकड़े गए हो और तुम जो तुम्हें सजा जो है ना वो पिछले केस की हो जाए।
0: पिछली पेशी याद आ गई, इस चक्कर में अभी क्या हुआ था?
1: अरे भाई साहब यकीन करो, फिर बैक के सोचते यार ये मैंने सॉरी वाली कहानी थी या नहीं थी,
0: सामने वाले को लगना चाहिए बहुत अकलमंद आदमी है, बहुत समझदार है।
1: भाई क्योंकि बेगम को ना मेरी बड़ा मतलब करता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, बेगम को बहुत शिकवा गया यार ये आदमी सॉरी नहीं बोलता। अबे मैंने कितनी दफा बोल दिया, ये उस तारीख को मैंने सॉरी बोला था, उस तारीख को मैंने सॉरी बोल, चलो कैसा आदमी साल में 4 दफा सॉरी बोल वो गिनवाता मुझे तारीख हर 3 महीने की एक सॉरी है।
0: तो आप भी गाने सुनाते हैं कि एक वक्त की बात है मई का महीना था उस वक्त, अच्छा वैसा वाला सीन
1: भाई देखो ना। हाँ देखो, शादी रंगीन होनी चाहिए ठीक है ना, छेड़म छाड़ी और ये वाली चीज होनी चाहिए, वरना तो रोज का रूटीन तो चल ही रहा है ना।
0: हाँ बच्चे
1: तो हम जो है ना बच्चों के मम्मी को फूल तपा के रखते हैं। अच्छा बेगम मेरी जो है ना, बेगम को तारीख याद रहती है तो बातें याद रहती है। मैं तुम औरत हो सही है, तुमने हैंड्स प्रूफ
0: रिस्क ले रहे हैं आप,
1: तो मैं दरवाजे पे खड़े के बोलता हूँ ना, जैसे ही कुछ रिस्क फैक्टर आता है दरवाजा खोला बाहर।
0: फिर ठीक है,
1: आसपास जाके बोलता हूँ क्या क्या खाओगी आज। तुम घर आओ, कौन से होंगे तुम्हारे,
0: इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए ना, ये आदमी को ऐसे डायलॉग बोलते हुए भागने के लिए
1: नहीं तो ये चीज है।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस सर, मेमोरी अच्छी अच्छी है आपकी तो बड़ी अच्छी बात है। नंबर्स वगैरह याद रहते हैं आपको या फिर अब सेव वाले नंबर है सेव हुए तो ही?
1: नया नंबर याद रहता, नंबर याद रहता, नंबर भी याद रहते हैं और जो भूलने वाले नंबर है वो भी याद है। आज तक
0: मेरे फोन में तेरा नंबर है पर चाके मिला नहीं सकता मैं। आए हाय हाय
1: सही है, मैं नहीं करूंगा, फैमिली पाकिस्तान भेजूंगा ना फिर करूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको भाई जानता ही नहीं हूँ, ये आदमी मेरे हाथ से मर गया। कोई बात चला भाई, पर सुनिएगा आज की कहानी चलेगी
1: तुम्हारी वाली कहानी सेम टू सेम।
0: अच्छा अच्छा भाई साहब ऐसा है? हेलो हेलो किस गली में आ रहे हैं आप?
1: ऐसे ही थोड़ी तुम्हें हर लैंग्वेज आ रही है, हरियाणवी बोल लो, हिंदी बोल लो, ऐसे थोड़ी घाट घाट का पानी पिए हो तुम।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैं निर्दोष हूँ जज साहब, मैं निर्दोष, मैं इस आदमी को जानता भी नहीं हूँ।
1: हर गुनेगार, हर गुनेगार ये कहता है मैं निर्दोष हूँ। सही बोला सही बोला, मैं लाहौल वाला क्या दिला दिया मुझे, तुम्हारी शक्ल याद आ गई मुझे फलाखों के पीछे।
0: ये तो आपका दिन बन गया, ये तो दिन बन गया।
1: ये तो मौज चरा दी भाई साहब, मौज चरा दी,
0: मौसम बदल देंगे तला भाई आज आप देखो आप।
1: ये तो हालात बदल गए, कुछ बात बदल
0: गया। नहीं, आज की स्टोरी स्पेसिफिकली सुनना तला भाई, अच्छी कहानी है, आई थिंक आपको भी अच्छी लगेगी।
1: यार रोज तुम ये कह रहे हो यार, बदनाम
0: मारोगे तुम आज भी। वो तो मुझे पता नहीं, देखो वो तो कहानी में जो होगा वो, नॉट इन माय हैंड्स, आई एम सॉरी,
1: पकड़ी गई,
0: नॉट इन माय हैंड्स, सॉरी। सुनिएगा
1: मानने वाली कहानी को,
0: नहीं नहीं नहीं नहीं सुनिएगा, अच्छी लगेगी आपको कहानी डेफिनेटली।
1: चलो
0: ठीक है,
1: मौका लगा।
0: ओके मेरा भाई,
1: चलो पार्टी,
0: ओके भाई,
1: ख्याल रखना अपना, अपने अटैच पे काम करो तुम, चल
0: ठीक है, ओके ओके भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और तला भाई के बाद मैसेज किया है सुदीप, तो सर ने लिखते हैं साथ देता रहूँगा, मेमोरी की बात है तो मत करो, मेरी बीबी खोजती जाती है कि इंडियन करेंसी कहाँ रख दी है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली कहाँ रख दिए, मुंबई के घर की चाबी कहाँ रख दी, बट अदरवाइज वी ट्राई टू इरेज नेगेटिव मेमोरी। सुदीप तो सर आप तो, मुझे लगता है आपकी मेमोरी अच्छी है, मैं तो आपका फ़ैन हूँ। एक मैसेज कबीर भाई, वैसे तो औरतों की आदत बहुत कमज़ोर होती है लेकिन अगर झगड़ा हो जाए तो पता नहीं कौन से साल की पुरानी बात याद आ जाती है, लेकिन हमारा मसला ये है कि जब झगड़ा खत्म हो जाता है तो उसके बाद अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं, ये हमेशा से ही होता है। प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम, झगड़े के बाद ही भाई अच्छी बात याद आती है कि काश ये बोल देता, इमाम सलाम कबीर भाई स्टोरी मिल जाती तो मिल जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तुसी ना जाओ कह रहे हैं अहमद भाई क्या करें अहमद भाई। आसिफ भाई वालेकुम अस्सलाम, एक और भाई लिखा अस्सलाम वालेकुम, कुछ याद रहे ना रहे बस ये आवारा पर नहीं भूली जाती। हनीफ मोहम्मद हनीफ भाई फ्रॉम हिलाल, शेख अतीक भाई ने सज किया अस्सलाम वालेकुम, 30-35 आदमी का नंबर याद है, सेव नहीं करता हूँ। शेख अतीक भाई इतना तेज़ हो गए कहाँ जाओगे, धूल उड़ रही होगी पीछे आप जा रहे होगे आगे। इरफान भाई वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि शादी की डेट याद है लेकिन एयर याद नहीं है। मिसेस किसी बात कर रहे तो पता चला मैं घर में आमिर खान वाला कैरेक्टर में घूमता हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इरफान भाई जो है वो रिस्क फैक्टर में जी रहे हैं। कोई पूछ रहे इरफान एयर बताओ मैं कहा हूँ। एक मैसेज है अबू आकिब भाई का, बट लास्ट फ्राइडे आई वन ऑन द लॉन्ग ड्राइव विद आई वेंट ऑन लॉन्ग ड्राइव इन द फैमिली, लिसन टू योर ब्यूटीफुल स्टोरी, वेरी वी रियली एंजॉयड इट एंड माई किड्स ऑल्सो बिग फैन ऑफ योर्स। बच्चे जब फैन बनते हैं ना भाई तो मैं बहुत खुश होता हूँ, थैंक यू सो मच, बच्चों को बहुत सारा प्यार। क्या है, मिस यू टू भाई, दो दिन बाद सुनने को मिला ही हैं, रहा नहीं जा रहा। वालेकुम अस्सलाम भाई। एक और मैसेज आया कबीर भाई, आप ये शाम की शिफ्ट में जाके मेरा दिल तोड़ रहे हो, मुझे बहुत दिक्कत होती है ऐसा सुन के मत बोला कर, मैं तो बस प्रोमो बता रहा हूँ भाई। और हमारे बहन ने मैसेज किया इसी तरह, मैंने लिखती है मेरी मेमोरी तो बहुत ही ख़राब है, जिस कायनात की बात तला भाई कर रहे हैं वो मियाँ की पक्की वाली बहन है, क्योंकि लड़ाई के बाद अगले दिन रीज़न ही भूल जाती हूँ और वो बच के निकल जाते हैं। और तो और ग्रुप में क्या लिखा है, और तो अगर एक सेकेंड ना मैं आपको पहले ये भेजूं क्योंकि मुझे आपने सीधा हंसा दिया बहन सवेरे सवेरे। हाँ क्या है आगे, और तो ग्रुप में अगर कोई गॉसिप चल रही है तो आई फील मिस्ड आउट क्योंकि याद ही नहीं किस बात पे हो रही है। कह रहे मेरे एक्स बॉस जो है यूज टू कॉमेंट यू आर असिस्टेंट बट आई हैव टू रिमाइंड यू। बॉस भी कह रहे बेटे असिस्टेंट मैंने रखा है आपको या आपने मुझे रखा है। एक मैसेज है कबीर भाई, कहते हैं बादाम खाने से मेमोरी अच्छी होती है, भाई इतने पैसे लगा के खा के कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई, खास नूमी भाई बादाम से लेकर अखरोट हैं भाई वो ड्राई फ्रूट के परांठे भी खा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार से आपकी स्टोरीज का फोल्डर कहाँ से मिलेगा? स्टोरीज का फोल्डर कहाँ से? वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन इज डेंजरस। आई डोंट हैव अ फोल्डर, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा ओके, तो आप चूंकि मैं कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मैं एक कॉल उठा लेता हूँ, लास्ट कॉल, उसके बाद फिर सीधा स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, बाय रेडियो की वॉल्यूम, हाँ बंद कर लो पीछे से वरना, हाँ गूंज में बात करेंगे। हाँ जी, आपका नाम?
2: जी कैसे हैं? ठीक
0: खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपका नाम क्या है?
2: मोहम्मद अयूब बलोच।
0: अयूब बलोच भाई, अयूब भाई बताइए क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। भाई मैं कह रहा था कि अच्छी याददाश्त होना जो है बहुत अच्छी बात तो है, लेकिन इसमें दिक्कत भी होती है, तो आपकी याददाश्त कैसी है? मतलब आपको नंबर शंबर डेट वेट ये सब याद रहता है?
2: बहुत आसान है, बीवी को एक बात सुनाओ सारी बातें।
0: ये जो आप ट्रिक खेल रहे हैं ये जो है ना, ये तजुर्बे की बात आती है, ये नए नए लोगों को मत सिखाए।
2: शादी
0: हाँ, ये आपको तो मुझे लग रहा है काफी एक्सपीरियंस हो चुका है इस मामले का मेरे भाई।
2: बहुत एक्सपीरियंस है मुझे यार।
0: कभी भूले हैं आप, कभी तारीखें भूले हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल दिया हो, कभी बार ऐसा हुआ है?
2: इंसान हो जाता है, कभी कभी भूलता है इंसान ऐसी चीजें। मिसाल के तौर पर एक आदमी का मोबाइल होता है किधर रखा है, या चश्मा है।
0: नहीं कभी तारीख, तारीख भूले हैं आप? कभी तारीख भूले जिस वजह से दिक्कत हुई है आपको?
2: तारीख भूल जाते आदमी, कभी किसी का अपॉइंटमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसमें उसी की बात कर रही है। साल का
0: मैं वही सालगिरह वगैरह एनिवर्सरी वगैरह ये वाली तारीखें कर रहा हूँ मैं।
2: हाँ इंसान कभी भूल जाता है यार,
0: ये बहाना घर पे नहीं चलता ना, घर पे कोई भूल गया देखिए इंसान हूँ भूल गया तो बोलते इंसान हूँ बाहर रहो क्या आपका सिस्टम अच्छा है कि सुना दो सामने वाले को उसे याद रहेगा बार बार याद दिलाता रहेगा
2: बार बार
0: भाई अलग टाइप का रिस्क लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अयूब भाई। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। तो अयूब भाई अलग ही मैटर पे हैं, पर अब जरा स्टोरी पे फाइनली आ जाते हैं। तो आज की स्टोरी इज अ लिटिल लॉन्ग बट आपको अच्छी लगेगी बिकॉज ये बहुत ज़रूरी कहानी है, वन ऑफ द मेजर स्टोरी जो मैंने इन तीन दिनों के लिए बचा के रखी है। तो आजकल और 31 को क्योंकि मॉर्निंग शो है, सो आजकल और 31 को आपको बहुत बढ़िया कहानियाँ मिलेंगी। वन ऑफ द मेजर स्टोरीज वो आज मिलेंगी, मैंने ये फिनाले के लिए रखी हुई, समझ रहे आप, एकदम मतलब ओ हो उस टाइप की फिनाले के लिए। सो 666-22-107 नंबर है। अभी वर्क असीस कौर ब्लॉकबस्टर, और उसके बाद ब्लॉकबस्टर स्टोरी FM 107 पर। दिल से

जब तक मॉर्निंग शो है आज कल और फिर 31st तो आपको तीनों दिन बढ़िया एकदम ब्लॉक बस्टर कहानियां सुनाएंगे. ठीक है, सो अब ये कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ. अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो वो तो मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा ही, नॉट अ प्रॉब्लम. सबसे पहले इस कहानी का डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती. FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता है ना ही कभी देगा. लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरीज एवर. तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ा लें. चलो, फिर सुकून से सुनिएगा ये कहानी. मैं दूहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं आपको उस एरा में ले चलता हूं जहां पे एक अलग किस्म का कंपटीशन हो रहा था. ये जो कंपटीशन था कैसा था, कौन सा था, ये आप कहानी में जान जाएंगे. बट लेट मी टेक यू टू 1965 में, मार्च के 18 तारीख, और बाइक्यूनोर कॉन्सोड्रोम. डोंट वरी, नाम एक्सप्लेन करूंगा. ये एक फैसिलिटी, एक बहुत ही मेजर स्पेस फैसिलिटी थी रशिया की, जहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का आगाज हो रहा था. जैसे मैंने कहा कंपटीशन, उस दौर में हर कोई अपने स्पेस मिशंस के थ्रू एक कंपटीशन कर रहा था, और कंट्रीज चाहती थी आपस में कि इस कंपटीशन के जरिए वो सबसे पहले वो कर दिखाएं जो किसी और ने नहीं किया. एंड इसी कॉम्पिटिशन में उतर गया था रशिया. उनका R7 जो रॉकेट था, जो स्पेस शटल था, वो पूरी तरह से तैयार था. एंड उड़ने के लिए जहां से वो तैयार था उस जगह को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज ये आपकी नज़रों में पिक्चर बननी चाहिए. जस्ट इमेजिन, आपने देखा है ना जब स्पेस रॉकेट उड़ने के लिए तैयार होता है उसके इर्द गिर्द का एरिया, बस वो इमेजिन कीजिए उसके इर्द गिर्द का पूरा एरिया. इट वॉज लाइक अ फ्रोजन वैली. जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां पे बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ. और इस स्पेस शटल में, जो कि ज्यादा बड़ा रॉकेट नहीं था, इसके अंदर एक कैप्सूल था, एक बड़ी सी स्टील की बॉल, और इसमें थे दो लोग. उन्हें कहते हैं कॉस्मोनॉट्स. एक एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, कॉस्मोनॉट्स होते हैं. सो दीज वर कॉस्मोनॉट्स, दो लोग जो उसके अंदर कॉस्मोनॉट से, उनमें से एक थे एलेक्स से और दूसरे का नाम था पेवल. मैं पहले नाम लेता हूं ताकि ज्यादा इजी रहे, क्योंकि उनके लास्ट नेम थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट आई विल स्टिल टेक द लास्ट नेम स्टोरी के आसपास जैसी मैं प्रोग्रेस करता रहूंगा. सो एलेक्स से और पेवल, इसमें दो लोग थे और ये एक मिशन के लिए तैयार बैठे थे इस कैप्सूल के अंदर. अब जिस कैप्सूल के अंदर थे ये, यू हैव टू इमेजिन, ये बहुत ही छोटा सा कैबिन था, बहुत ही छोटा सा, एक टाइटली फिटेड बिल्कुल. ये दोनों जिस मिशन पे जा रहे थे वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था, बना तो ठीक वरना फिर जानलेवा. ये अटेम्प्ट करने जा रहे थे वो चीज जो इनसे पहले किसी भी इंसान ने अटेम्प्ट नहीं करी, वो अपने एयरक्राफ्ट से, इट्स स्पेस शटल से मिड फ्लाइट उतरने वाले हैं और फिर स्पेस में चलने की कोशिश करेंगे. ये जो पूरा स्पेस शटल था इसका नाम था वॉस्कॉड 2, और ये मिशन था सोवियत यूनियन की तरफ से. जब सारे की सारी कंट्री स्पेस मिशन करने की रेस में भाग रही थी, सोवियत यूनियन चाहते थे कि वो अमेरिकन्स को हरा दें, और उन्होंने ऐसा करना था क्योंकि एक मर्तबा वो ऐसा कर चुके थे. उन्होंने सबसे पहला इंसान भेजा था ऑर्बिट में, और इसीलिए अब मॉस्को को चाहिए था कि फिर से अमेरिकन्स को हराया जाए, क्योंकि अमेरिकन्स दूसरी तरफ प्लान कर रहे थे कि वो जो है जून के महीने में स्पेस वॉक करने के लिए किसी को भेजेंगे, और इसलिए सोवियट्स उन्हें हराना चाहते थे. तीन महीनों से जीतना चाहते थे, और इसी चक्कर में बहुत ज्यादा खर्चा करके उन्होंने अपने दो बंदों को, एलेक्से और पेवल को, इस कैप्सूल में बिठा दिया था स्पेस वॉक के लिए. अब आपको थोड़ा सा मेरे साथ देना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज मुझे समझानी पड़ेगी. इसको बनाया कैसे गया था? ये जो कैप्सूल था, गोल सा एक बॉल समझ लीजिए, स्टील की बड़ी सी बॉल, इसके एक साइड पे इंजीनियर्स ने एक बोल्ट करके बाकायदा एक इन्फ्लेटेड कैप्सूल बनाया था. यू समझ लीजिए कि जब उसे फुलाया जाएगा तो वो एक पूरी ट्यूब बन जाएगा, और ये ट्यूब जो है ये कैप्सूल के साइड से निकलेगी बड़ी सी, और ये ट्यूब बनाई थी, ये एयरलॉक कैप्सूल इसका नाम था,
इन्फ्लेट होने वाली, ये चिपका दी थी बोल्ट करके इंजीनियर्स ने इस कैप्सूल के साथ। और उन्होंने जो मेजर की सेफ्टी सिस्टम होते हैं सेफ्टी के लिहाज से, वो हटा दिए थे। उन्होंने कहा एक्स्ट्रा वेट होगा, सब बढ़िया रहेगा, तो कैजुअली उन्होंने वो एक्स्ट्रा सिस्टम हटा दिया। अब उसके हटाने से क्या हुआ, इजेक्शन सीट्स गायब, मतलब लॉन्च एस्केप टावर जो अमूमन इन शटल्स में होता है भागने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो इंस्टॉल ही नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर खुदा ना खास्ता ये रॉकेट उड़ते उड़ते अगले 2-2.5 मिनट में अगर कुछ खराबी हो गई, एक्सप्लोड हो गया, तो ना ये लोग अबॉर्ट कर पाएंगे, मतलब मिशन से बच नहीं पाएंगे, ना इस शटल से इजेक्ट हो पाएंगे, बाहर गिर पाएंगे, मतलब इनके पास कोई सेकेंड चांस नहीं है, कोई दूसरा चांस नहीं है। अगर 2.5 मिनट के अंदर अंदर कुछ भी हुआ, जो कि होने के पूरे चांसेस हैं, सो एलेक्से और पेवेल बचने वाले नहीं है। और एलेक्से और पेवेल को, दोनों को ये अच्छे से पता था, पर स्टिल दे एक्सेप्टेड, क्योंकि उन्हें

है, बस उन्हें इसके अंदर रहना है. 150 सेकंड से 160 सेकंड या 200 सेकंड तक सब कुछ ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही वो कोई इमरजेंसी अटैम्प्ट कर सकते हैं या भागने की कोशिश कर सकते हैं. दोनों का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था. जो सेकंड्स बाय सेकंड्स जा रहे थे उनकी धड़कनें और तेज़ हो रही थी. नीचे देखने वाले भी उतने ही एंक्शियस हो रहे थे. वाइब्रेशन धड़ पूरे रॉकेट के अंदर महसूस हो रही थी. दांत पीस रहे थे दोनों, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि कब क्या हो जाएगा. ये कानों में एकदम एयर ड्रम्स उनके भरे हुए थे पूरे साउंड से, एंड दे कुड फील एवरी इंच ऑफ इट, एवरी डेसिबल. और इतना डिटेल्ड साउंड था कि बस दोनों ने आंखें बंद कर ली. 150 सेकंड्स बीत गए और फिर राहत. सब साथ खैरियत से रहा. वॉस्कॉट 2 एटमॉस्फेयर के बाहर निकल चुका था और पहुंच चुका था अर्थ के ऑर्बिट में. अब जो जी फोर्सेस होती हैं जो आपको प्रेशर देती हैं वो नॉर्मल हो चुकी थी, और अब सब कुछ इन दोनों को, एलेक्सा और पेवेल को, अपने कैप्सूल में एकदम वेटलेस लग रहा था. किसी भी चीज का कोई वजन नहीं, ग्रेविटी इज गॉन. नीचे अर्थ पे मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट थी, खुशी के आंसू थे, सब खुशी में थे, जश्न मना रहे थे. पर अंदर कैप्सूल के अब असली काम होने जा रहा था. अब ये दोनों किसी शटल में नहीं थे, अब ये दोनों महज एक कैप्सूल का हिस्सा थे. एक बड़ा सा जायंट स्टील बॉल जिसके अंदर जरा सी जगह थी इन दोनों की बैठने की, और अब करनी थी स्पेस वॉक जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया. अभी कैप्सूल जो था वो घूम रहा था अर्थ के अराउंड, ऑर्बिट कर रहा था. और फिर एलेक्से जो थे वो अटेम्प्ट करने वाले थे वो रिकॉर्ड जो दुनिया में उस वक्त किसी ने नहीं किया था, स्पेस वॉकिंग. उनके दोस्त ने, जो उनके साइड में बैठा हुआ था पेवेल, उसने कहा ऑल द बेस्ट दोस्त. और उसके बाद सारी सेफ्टी उन्हें छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसके बिना वो बाहर नहीं निकल सकते. बहुत ही हाई रिस्किंग चीज, जीरो ग्रेविटी, पर महीनों से इसकी तैयारी करी थी उन्होंने, मगर कभी असल में अटेम्प्ट नहीं किया था. इस वक्त लाखों लोग सोवियत के अपने रेडियो पर और झरझराते टीवी सिग्नल्स पर देखने की और सुनने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मिशन में क्या हो रहा है. एलेक्से, उन्होंने अपने ग्लव्स और हेलमेट को संभाला, और फिर एक थेटर्ड, एक बेसिकली देसी भाषा में समझाऊं तो एक किस्म की रस्सी, एक वायर होता है, केबल होती है जो जोड़े रखती है कॉस्मोनॉट्स को या एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेस क्राफ्ट से. तो वो उनके जुड़ी हुई थी और वो उन्होंने कनेक्ट करा वो केबल ताकि वो स्पेस क्राफ्ट से जुड़े रहें. फिर उन्होंने इशारा दिया पेवेल को, एक थम्सअप दिखाया. पेवेल ने भी उन्हें थम्सअप दिखाया. उसके बाद वो जो एयर लॉक जो मैंने शुरुआत में बताया था वो इन्फ्लेट हुआ. एक बड़े से जायंट बलून की तरह इस बड़े से स्टील बॉल में से एक पूरा एक पाइप इन्फ्लेट हुआ. जैसे प्लेन में देखते हैं पूरी ट्यूब बनती है इसके, आप जिसके अंदर आप चलते हुए जाते हैं, वो थोड़ी सी डगमगाती है, देन यू रीच द कैबिन. बिल्कुल वैसे ही वो बड़ा सा कैप्सूल तैयार हो गया जैसे कोई बलून हो. फिर एलेक्से लियोनोव इसी ट्यूब में उतरे अपने इस छोटे से कैप्सूल से. उनका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, एक एक्साइटमेंट थी. पहले वो अपने हैट से निकले, फिर एक पतला सा दरवाजे से वो इस ट्यूब में आए. इतने डेंजरस स्पेस वॉक्यूम के बीच इस वक्त इन्हें फ्लोट करना था अर्थ से 475 किलोमीटर दूर, 475 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ. चंद सेकंड्स के लिए सब कुछ बड़ा बहुत ही खूबसूरत लगा. जब ये बाहर निकल गए, उस ट्यूब के बिल्कुल बाहर थे, अभी स्पेस में थे, ऑल अलोन, पीछे बस एक केबल जुड़ा हुआ था उनका स्पेस क्राफ्ट से, सब कुछ बेहद खूबसूरत. ऐसा नजारा जो कोई और शायद ना देखे. कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इट वॉज कंप्लीट साइलेंस. उनके नीचे उन्हें अर्थ नजर आ रहा था, एंड एक सहारा डेजर्ट का बड़ा सा पैच. उन्हें अंदाजा हो रहा था कि वो अपने अर्थ से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो नीचे उन्हें पैच नजर आ रहा था एकदम गोल्ड एंडलेस. एलेक्से लियोनोव इसी को महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो बन चुके थे पहले इंसान जिसने स्पेस में वॉक किया. ये वॉक उन्होंने 12 मिनट तक की. एलेक्से लियोनोव, उनके जो पीछे वो केबल बंधी हुई थी जिसने उन्हें स्पेस क्राफ्ट से अटैच किया हुआ था,
उसका जो एंड था वो धीरे धीरे ट्विस्ट हो रहा था जैसे जैसे वो वॉक कर

0: जैसे जैसे वो स्पेस वॉकिंग कर रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे मनूवर करने की, ये जो केबल था, बाय द वे केबल कुछ मीटर के हिसाब से नहीं था, इट वॉज 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर लंबा ये केबल था जो उनको जोड़े रखे हुए था, ये ट्विस्ट होने लगा था। और वो ट्विस्ट होने की वजह से ये रोटेशन उन्हें परेशान कर रही थी। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा इस केबल की तरफ तो वो थोड़ा सा डर गए, बिकॉज सिचुएशन काफी अलार्मिंग थी। जब तक वो कुछ सोचते कुछ कर पाते, बिकॉज ये कोई इंसान गाड़ी के बाहर नहीं कि आवाज देगा और गाड़ी रुक जाएगी और उनका दोस्त अंदर देख लेगा, उनका दोस्त जो कैप्सूल के अंदर है उसे नहीं पता है पेवेल को कि बाहर अभी किस तरफ क्या चल रहा है एग्जैक्टली, बहुत बताना मुश्किल है। मगर बाहर स्पेस में, इमेजिन अर्थ, एक बिल्कुल आइसोलेटेड पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, एक बंदा फंसने वाला है और किसी को कुछ नहीं पता है। एलेक्स नियोलोव, जब उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब उनकी जो केबल उनसे जुड़ी हुई है वो ट्विस्ट हो रही है, वो इससे पहले कुछ कर पा रहे थे, उनका जो सूट था, जो उन्होंने सूट पहना हुआ था, वो बलून की तरह धीरे धीरे फूलने लगा, ब्लोट होने लगा। स्पेस में वैक्यूम होता है, राइट, उस वैक्यूम के चलते उनका सूट का जो फैब्रिक था वो फूलने लगा। उनके जो जॉइंट्स थे वो टाइट हो रहे थे, उनके फिंगर्स बेसिकली हाथ जो थे उनमें से ग्लव स्लिप हो रहे थे, पांव से जूते स्लिप हो रहे थे। वो ऐसी सिचुएशन में थे कि स्पेस में अपनी टांगे और हाथ कुछ भी बेंड नहीं कर सकते थे। उनके लिए बहुत जरूरी था कि वो जल्दी से अपने कैप्सूल के हैच की तरफ, वो जो मेन दरवाजा है उसकी तरफ जाएं, एंटर करें। वो मुड़ने की कोशिश कर रहे थे, बहुत लाख कोशिश कर, लेकिन मुड़ ही नहीं पा रहे थे। वो जैसे ही हैच की तरफ पहुंचे, अब उन्हें था कि अब मैं इसके अंदर चला जाऊंगा, वो उसमें फिट ही नहीं हो सकते थे क्योंकि इतना ब्लोट हो चुका था, इतना बड़ा हो चुका था उनका सूट। अंदर कैप्सूल के बैठे हुए पेवल बेलियायेव उनका नाम था, तो पेवल जो थे उनको आइडिया नहीं था उनका दोस्त किस सिचुएशन में है। और ऊपर एलेक्स लियोनोव, उनको ये बताया गया था जब भी हैच के अंदर वापस जाना है, स्पेस वॉक करनी है, वापस जाना है, वापस जाते हुए लेग फर्स्ट, मतलब आपको जो है सर के बल नहीं जाना है, पैरों के बल अंदर जाना है ताकि री एंटर करना आसान रहे। पर वो भी नहीं कर सकते, अभी सेफ ही नहीं है। फिर उन्होंने रिस्क ली, उन्होंने चंद मिनटों के बाद ऑक्सीजन जो बचा था, बस उन्होंने सोचा कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मारा जाऊंगा, तो उन्होंने इस कंप्लीट डार्कनेस में, क्योंकि अभी जो है अगर डार्कनेस हो गई तो ये दोनों खो जाएंगे एंड चांसेस विल बी जीरो। नीचे मिशन कंट्रोल वालों को भी कुछ नहीं पता था क्योंकि किसी ने कभी पहले अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो जब परेशानी का पता ही नहीं है तो सोल्यूशन कहां से पैदा होगा, और परेशानी इतनी नहीं है कि किसी ने कभी देखी ही नहीं है, तो सोल्यूशन आएगा कहां से। इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। एलेक्स लियोनोव के पास और कोई चारा नहीं था, उन्होंने अपने सूट पे लगे एक वॉल्व को खोलना शुरू किया धीरे धीरे, और बहुत ही धीरे धीरे, ताकि स्लोली जो अंदर हवा है वो बाहर निकले, प्रेशर गॉज को देखते हुए धीरे धीरे जो प्रेशर था वो कम होता गया, 0.4, 0.3, 0.27, वो सेफ्टी की लिमिट के भी नीचे चले गए थे हवा सूट में से निकालने के लिए। रिस्क अब उल्टा हो गया था, अब रिस्क था डीकंप्रेशन का, जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बॉडी में, क्योंकि प्रेशर जो है बिल्कुल उन्होंने कम कर दिया है, ये वाली फीलिंग है कि आपने एक बहुत बड़ा सूट पहन रखा है और अंदर आपके नीडल्स और पिंस जो हैं वो लगातार चुभाए जा रहे हैं हाथों में, छाती में, पैरों में। इट वाज दैट पेनफुल। उन्होंने दांत पीसते हुए, ही वाज ट्राइंग, बस सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि उनका सूट जब ठीक ठाक श्रिंक हो चुका है, हवा उसमें से काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी है, वो बहुत मुश्किल से इस हैच के अंदर गए, जो कैप्सूल था उसका बड़ा सा इन्फ्लेटेड, उन्होंने अपनी बॉडी को फोर्सफुली अंदर पुश किया एंड प्रोटोकॉल को हटा के, क्योंकि अगर वो हेड फर्स्ट नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने अपनी बॉडी को धकेला अंदर की तरफ एयरलॉक के, प्रोटोकॉल कहता है कि पैर पहले ले, पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे सर के बल जाना पड़ेगा। अभी अंदर होकर उन्होंने हैच में जैसी एंट्री लिया, उन्हें हैच को बंद भी करना था, उन्होंने अपनी बॉडी को जैसे तैसे तोड़ा मरोड़ा इस एयरलॉक के अंदर, और बॉडी पूरी हीट अप हो रही है क्योंकि बाहर हद से ज़्यादा स्पेस की जो ओवरहीटिंग है वो जारी है, एग्जर्शन हो रहा है, पसीना भर गया है हेलमेट में, पूरे सूट में, इतना ज्यादा कि उनकी आंखों पे जो पसीना आ रहा था वो कुछ देख भी नहीं पा रहे. इट्स अ कंप्लीट वियर्ड सिचुएशन. कोर टेम्परेचर इतना हाई कि किसी भी पल हीट स्ट्रोक हो सकता है. पर उन्होंने अपने आप को संभाला और जैसे जैसे अपने आप को फोर्स किया अंदर पहुंचे हैच की तरफ, कैप्सूल में गए. उनके दोस्त ने देखा जो ऑलरेडी कैप्सूल में था, एंड बाय द वे बहुत छोटी जगह थी. पेवेल ने उनका सूट पकड़ के उन्हें अंदर की तरफ खींचा और एलेक्से लियोनोव अंदर आए एकदम बेहोशी की हालत में. बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे अपने हेलमेट में, उनको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, ओवर हीटिंग हद से ज़्यादा हो चुकी थी, दिल इतना तेज धड़क रहा था जैसे भी सीने से बाहर आ जाएगा. बट ही मेड इट, ही वॉज अलाइव. दोनों के दोनों कॉस्मोनॉट्स ने चैन की सांस ली. हर चीज को हरा के वो दोनों इस रिकॉर्ड का हिस्सा थे. दुनिया का पहला शख्स कामयाब हुआ था स्पेस वॉक करने में. पर क्या ये कहानी का एंड हो सकता है? अर्थ पे वापस भी तो जाना है ना, तो कहानी खत्म कैसे हो सकती है? 10 मिनट के बाद ये जो स्पेसक्राफ्ट था इसका नाम था वॉस्कोट 2, इसकी तरफ आई एक बहुत बड़ी मुसीबत. एकदम से जो इनका कैप्सूल था उसके बाहर की तरफ से अंदर एक बहुत अजीब आवाज आई, बूम. और वो जो आवाज थी वो एयरलॉक सिस्टम की थी जो बाहर इन्होंने बलून से एक ट्यूब से लगाई थी. वो ट्यूब जो थी वो ओवरहीटिंग की वजह से फट के अलग हो गई कैप्सूल से, एकदम पटाखे की तरह फूटी. अब वो फूट के तो अलग हो गई लेकिन उसकी वजह से हैच जो सिस्टम था कैप्सूल का वो भी काफी इफेक्ट हुआ. अंदर के सिस्टम्स पर बहुत गहरा असर पड़ा. अंदर की जो आबो हवा थी इस कैप्सूल की वो थोड़ी सी बिगड़ गई. एक अजीब सी बू आती है ना हवा की जो थोड़ी सी खराब होती है, जो गैसियस हवाएं होती हैं, बिल्कुल वैसी अंदर से आ रही थी. उन्होंने देखा जो अंदर ऑक्सीजन का मीटर है उनके कैप्सूल के अंदर, वो ऑक्सीजन का मीटर भरता ही चला जा रहा है, सुई घूमती चली जा रही है. अब आप कहेंगे ऑक्सीजन तो अच्छी बात है, पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होना इज वेरी डेंजरस. तो पूरा एनवायरनमेंट जिस कैप्सूल के अंदर वो है, अगर वो पूरा O2 यानी ऑक्सीजन से भर गया तो जरा सा स्पार्क भी इनके एयरक्राफ्ट को फ्राई कर देगा, लिटरली आग का गोला बना देगा. और इसका तजुर्बा सोवियत को पहले भी था, क्योंकि चंद सालों पहले एक कॉस्मोनॉट जो थे जो धरती पर ट्रेनिंग ले रहे थे, उनका नाम था वैलेंटीन बोर्डारेंको, वो टेस्ट के दौरान सेम कंडीशन में थे और जान से हाथ धो बैठे थे. मगर ये दोनों इस वक्त बहुत टेंस थे, एक स्टील की बॉल में थे. कुछ नहीं किया तो फिर यही उनकी कब्र भी है. दोनों ने काम करना शुरू किया ताकि ऑक्सीजन के लेवल्स को इस स्टील की बॉल के अंदर नॉर्मल किया जा सके. उन्होंने केबिन टेम्परेचर को कम करने के लिए जितनी कोशिश कर सकते उतना किया कि थोड़ा प्रेशर कम हो. थोड़ी देर में ऑक्सीजन का जो गॉज था वो वापस काबू में आया, ऑक्सीजन लेवल्स कंट्रोल में आए. बहुत बहुत छोटे मार्जिन से ये दोनों के दोनों बचे. पर सुकून आने में अभी भी टाइम था. थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि ऑटोमेटिक री एंट्री प्रोग्राम फेल हो गया है. लेट मी एक्सप्लेन. अब एक सिस्टम होता है स्पेस शटल्स में, एयरक्राफ्ट में, जो ऑटोमेटिकली उन्हें थोड़े से सिस्टम यूज करके अर्थ की तरफ वापस लेकर आता है. ये ऑटोमेटिक सिस्टम इनका फेल हो गया और वॉक्सॉट 2 ये एयरक्राफ्ट जो था ये अभी अर्थ के बाहर था, ऑर्बिट कर रहा था, लगातार घूम रहा था. मगर अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं है इसका. ये बस इन दोनों के भरोसे एक किस्म की मैनुअल गाड़ी, कुछ भी कभी भी हो सकता है और बिना सिस्टम के ये किधर भी जा सकता है. एक ही ऑप्शन था इन दोनों के पास जो आज तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, वो ये था कि मैन्युअली इस कैप्सूल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके, जो पहले कभी इतिहास में नहीं किया गया था. आप मुश्किल समझिए कि अगर ये चंद सेकंड से भी, जरा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड से भी गलत हुए तो फिर ये दोनों के बचने के चांसेस जीरो हैं. पेवल जो कि एलेक्सा के साथ आए थे वो एक सीजनड फाइटर पायलट रहे थे. उन्होंने कहा कि मैं कंट्रोल संभालता हूं. उन्होंने अपने आप को संभाला, थोड़ी कामनेस लेके आए. वो अब तैयारी कर रहे थे वो काम करने के, जिसके बारे में वो पूरी तरह से जानते भी नहीं थे. इतना आसान नहीं था. अगर इन्हें अर्थ की तरफ वापस आना है इस बड़े से स्टील बॉल में, तो पहले इन्हें अर्थ से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा. बिल्कुल गुलेल वाला सिस्टम है, पहले दूर जाना पड़ेगा कई सौ किलोमीटर दूर, और फिर एकदम से चार्ज करके मैन्युअली अर्थ की तरफ आना होगा. पर इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, सिर्फ चार्ज करना काफ़ी नहीं है. ये कोई डार्ट फेंकने जैसा आसान नहीं है, इसमें फिजिक्स है, इसमें मैथ्स है, पूरी तरह से हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, उसके बाद निशाना. अगर निशाना चूक गया तो फिर दिक्कत होगी. पर ये दोनों जानते थे ऑफ टारगेट उतरेंगे चलेगा, पर अगर बिल्कुल ही गलत हो गए तो यहां बैठ के इंतजार नहीं कर सकते. सही टाइम पर सही निशाना लगाया पेवेल ने, उनके हिसाब से उन्होंने इग्निशन दिया, बटन दबाया बूस्टर्स के लिए, फिर 3, 2, 1 और ये कैप्सूल में एकदम से चार्ज आया उनका रेट्रो रॉकेट जो फायर हुआ पीछे से, और चंद सेकंड में इंजन इतनी जोर से दहाड़ा. उसके बाद एक और हिस्सा जो इस कैप्सूल में जुड़ा हुआ था वो इससे अलग हुआ, इससे अलग होता ना नीचे गिरते हुए, वो अलग हुआ और उनका क्राफ्ट जो था वो डिसेंड नीचे की तरफ जाने लगा, अर्थ की तरफ. फिर एकदम से अचानक से एक अजीब सा झटका आया, जैसे होता ना आप किसी चीज को खींचते हैं पर वो चीज किसी चीज से जुड़ी हुई है तो वो अटक जाएगी एकदम से, तो वो चीज एकदम से अटक गई. उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें बहुत ही खतरनाक मंजर नजर आया. वो सिस्टम, वो मॉड्यूल, वो पार्ट जो इस कैप्सूल से अलग होना था इनके नीचे गिरते हुए, वो हवा में अटक गया था बॉल के साथ, इनके कैप्सूल के साथ, क्योंकि वायर्स बीच के वो पूरी तरह से अलग नहीं हुए थे और वो एक पुल पैदा कर रहे थे. अभी ऐसा हो गया था एक टूटा हुआ डंबल हवा में तैरता हुआ. कैबिन इनका बहुत जोरों से लट्टू की तरह घूमने लगा, क्योंकि अब एक अजीब सा एक उनको वो मिल गया है पॉइंट जहां पे जैसे कोई पकड़ के घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, और इतनी तेजी से इस कैप्सूल में घूम रहे थे कि दोनों के दोनों का विजन जा रहा था. जी फोर्सेस बढ़ती ही चली जा रही थी, 5G, 7G, 10G, ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथी जो है ना वो छाती पर चल रहा हो, क्रश कर रहा हो इन्हें, ऐसी फीलिंग थी. सांस लेना तो नामुमकिन था. जितने भी कैबिन के अंदर लूज पेंसिल्स और चेकलिस्ट और कागज थे सारे के सारे एक इधर उधर टकरा रहे थे कैप्सूल के अंदर, और पेवेल जो थे जो कैप्सूल को संभालने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे थे अभी, क्योंकि अगर वो सो गए, ब्लैकआउट हो गए इस सिचुएशन में, तो फिर कभी नहीं उठेंगे. जब ये दोनों के दोनों ब्लैकआउट होने ही वाले थे एकदम से पप एक साउंड सी आई जैसे कुछ चीज अलग हुई हो, और उन्होंने देखा तो फाइनली वो केबल्स जो अटैच हुए थे, जो घुमाए जा रहे थे इनके कैप्सूल को, वो जल के स्पेस की ओवरहीटिंग की वजह से अलग हो गए थे. फिर इनके कैप्सूल से एक पैराशूट निकला और ये धीरे धीरे धीरे अर्थ की तरफ गिरने लगे इस कैप्सूल में. दोनों ने जोर की सांस ली, जी फोर्सेस वापस काबू में आ रही थी, दोनों बेहोशी की हालत में थे, ऑलमोस्ट जाने ही वाले थे पर अभी भी जिंदा थे. पैराशूट निकला हुआ था और उन्होंने नीचे देखना शुरू किया. अब उन्हें जमीन नजर आ रही थी, जमीन जो एकदम सफेद और हरी नजर आ रही थी. ये एक स्नो फॉरेस्ट था पूरा का पूरा, जहां तक इनकी नजर जा रही थी वहां तक बर्फीला जंगल, कोई शहर नहीं, कोई रिकवरी वाला नहीं, बस बर्फीला जंगल. वो मिस कर चुके थे निशाना अपना, तकरीबन 400 किलोमीटर दूर निशाना लगा था इनका, और उनका ये गलत निशाना उन्हें मॉस्को में ले आया था. अब ये गिर रहे थे माउंटेनियस एरिया में, और फिर थोड़ी देर बाद 19 मार्च 1965 ये कैप्सूल गिरा एक बर्फ की मोटी चादर पर, पेड़ों को तोड़ता हुआ, ब्रांचेस से टकराता हुआ, एक बहुत जोर के झटके के साथ ये गिरा. ये बिल्कुल झटका ऐसा जैसे ट्रेन चलती हुई टकराई हो. जैसे ही ये गिरे वो इंपैक्ट की तरफ से दोनों एकदम से आगे हुए, फिर एकदम से पीछे हुए, और फिर एकदम साइलेंस. ये दोनों स्पेस को मात दे चुके थे, आग बबूला होते होते बचे थे, री एंट्री में मरते मरते बचे थे, और अब ये दोनों गिरे थे इस जगह पे. कुछ देर तक तो दोनों बेहोश रहे, थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट रहे, और फिर कुछ देर बाद दोनों की आंखें खुली. दोनों के सर इस वक्त बहुत बहुत बहुत ज़्यादा भारी हो रहे थे,
1: मगर दोनों ने इस बात का शुक्र मनाया कि दोनों कम से कम जिंदा थे। लियोनोव और पेवल एक पीस में वापस आ गए थे जो अपने आप में कुदरत का करिश्मा था। उन्होंने अपनी जो सीट बेल्ट थी उसे अनबकल किया और उनकी नजर पड़ी कैप्सूल के हैच पे, मतलब बेसिकली उनके सर के ऊपर एरिया था जहां से वो निकल के बाहर जा सकते हैं, उस हैच पे उनकी नजर पड़ी। वो देखिए वो बहुत डर गए क्योंकि हैच जो ग्लास का था, मोटे ग्लास का, वो गिरने की वजह से फट गया था और टूट गया था, उसका एक हिस्सा हट गया था। अब बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी हल्की हल्की बर्फ के साथ, और हैच पे से उन्हें जब उन दोनों ने ऊपर देखा इस कैप्सूल में बैठे हुए, तो उन्हें नजर आ रहा था ऊपर पाइन ट्रीज और बर्फ। दोनों ने हिम्मत करी और हैच से बाहर आए निकल के, बर्फ की मोटी चादर और आसपास जंगल, सूरज जो अब बस डूबने ही वाला था, शाम होने वाली थी, उसका डूबता हुआ जो सिनारियो था उस वजह से पूरे जंगल में एक ब्लू शेडो क्रिएट हो रही थी। पूरा जंगल ऐसा लग रहा था कि ब्लू ब्लू चारों तरफ, क्योंकि वो खूबसूरत जो सनसेट होता है बर्फ पे बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। मगर दोनों जब बाहर आए तो उन्हें अंदाजा हो चुका था वो किसी भी सिविलाइजेशन से कोसों दूर हैं। कोई वेलकमिंग पार्टी नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, बस बर्फीली हवा की आवाजें। दोनों ने अपनी अपनी जाके सप्लाई जोन के पास थी इस कैप्सूल में वो लेकर आए, और बहुत छोटी सर्वाइवल किट थी, इसमें चाकू था, इसमें माचिस थी और कुछ दिन का राशन था और एक स्टैंडर्ड मैकारोव पिस्टल और गोलियां एम्यूनिशन जो कि सोवियत कॉस्मोनॉट को दी जाती थी गन, ऑफकोर्स एलियंस के लिए नहीं, ऐसी ही सिचुएशन के लिए, पर किसी ने सोचा नहीं था कि सिचुएशन सच में आ जाएगी। साइबेरियन जंगल में एक चीज है जिसके लिए हथियार बहुत जरूरी है, यहाँ के एपेक्स प्रेडेटर्स, यहाँ पर रहने वाले भारी भरकम ऊंचे भेड़िए और उनसे भी बड़े भालू। अभी टेम्परेचर गिर रहा था, सूरज डूबने के साथ साथ धीरे धीरे माइनस में जाता जा रहा था, लाइट भी कम हो रही थी और दोनों के दोनों कॉस्मोनॉट्स बुरी हालत में थे, अंदर पसीने में तर थे, मगर बाहर एकदम उल्टा मौसम था, बेहद माइनस में जाता हुआ और ऊपर से थकावट। लियोनोव, एलेक्स लियोनोव, उनकी तो हालत और भी ज्यादा बुरी थी, ऊपर वो स्पेस में द स्पेस वॉकिंग करते हुए इतना झेल चुके थे, उन्होंने बहुत कुछ झेला था। ओवर हीटिंग की वजह से इतनी बुरी हालत थी कि ओवर हीटिंग जो स्पेस में हुई उस पसीने से 6 किलो वजन उनका गिर चुका था, इस कदर उनकी हालत खराब थी। दोनों मजबूर थे, दोनों ने अपने सूट्स को खोला और एकदम उन्होंने नोटिस किया कि अब अकड़न सी महसूस हो रही है, और कैप्सूल में वापस भागे। अंदर भी फ्रॉस्टिंग थी, अंदर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे, हीटर डेड हो गया था। उन्होंने वेंटिलेटर ऑन किया, फुल ब्लास्ट में वो वेंटिलेटर ऑन हुआ, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि बेहद ठंडे फ्रिज में आप गर्म होने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल वैसा। पर उन्हें इसके अंदर रहना होगा, अभी कोई नहीं आने वाला, पर किस्मत का खेल देखिए। थोड़ी देर बाद दोनों को कैप्सूल में बैठे हुए एक एयरक्राफ्ट के इंजन की आवाज आई, दोनों फौरन बाहर आए और ऑरेंज जो क्लोथिंग उनके पास थी उसको फाड़ के टुकड़े बना के उन्होंने लहराना शुरू किया। जहाज ने उन्हें देखा पर वो जहाज बहुत करीब से निकला ये सिग्नल देते हुए कि वो उतर नहीं सकता है। मिशन कंट्रोल को पता लग चुका था कि उनके दो बंदे कहां पर हैं। चंद मिनटों के बाद इसी जहाज ने वापस आके एक सप्लाई ड्रॉप किया, एक बड़ा सा बक्सा ड्रॉप किया, उस पर ऑरेंज पैराशूट लगा हुआ था। सप्लाई को दोनों ने जल्दी से खोला, उसमें 2 वुलन कोट्स थे, एक्स्ट्रा मोजे थे, फ्लैशलाइट थी, गरम चाय का थर्मस था और रेडियो ट्रांसमीटर था। ये चीजें छोटी छोटी थी लेकिन इस वक्त के लिए बहुत जरूरी। रात में टेम्परेचर -30 के नीचे जा रहा था। अंदर दोनों वापस गए कैप्सूल के, रेडियो ऑन किया और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। स्टैटिक वास के बाद उनकी बात हुई रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर्स थे और उन्होंने बताया कि फिक्र मत कीजिए, हेल्प आएगी मगर सुबह तक, रात को हेलीकॉप्टर के लिए भी खतरा है। रेडियो बंद किया और सनराइज तक, सूरज उगने तक उन्हें अब जिंदा रहना था। मेंटली दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे मगर कोई चारा नहीं था। एलेक्स से लियोनोव ने जो मैकारोव गन थी उसे लोड करके बहुत टाइटली उसे पकड़ा। कुछ देर में ही समझ में आ गया था कि गन लोड करना कितना जरूरी है, क्योंकि बाहर भेड़ियों की हाउलिंग की आवाज आने लगी थी, कई सारे, एक पूरा भेड़ियों का पैक जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। उनकी आवाजें सुन के गर्दन के पीछे से रोंगटे खड़े हो गए थे। दोनों के दोनों एकदम कांप गए। दोनों ने बाहर थोड़ा सा देखा तो उन्हें दिखा कि पेड़ों के बीच में से चमकती हुई दो आंखें उनकी फ्लैशलाइट के सामने, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, लगातार एक पूरा पैक भेड़ियों का नजर आ रहा था। वो कैप्सूल के अंदर वापस गए मगर ये भेड़ियों का पूरा पैक इस कैप्सूल के पास आके इर्द गिर्द घूमता रहा, हाउलिंग करता हुआ, ग्राउलिंग करता हुआ। दोनों के दोनों बहुत डरे हुए थे। इनके पास तीन मैगजीन थी और इसी के सहारे इन्हें बचना था सुबह तक। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वक्त और धीरे धीरे जा रहा है। एक एक ब्रांच पेड़ की टूटने की आवाज तक सुनाई दे रही थी, भेड़ियों के सूंघने तक की आवाज, उनकी चलने की बर्फ पे आवाज, मगर कुछ नहीं कर सकते। पिस्टल रेडी रखी, हर घंटे भेड़िए बोल्ड होते चले जा रहे थे। फिर उनमें से एक भेड़िया जिसकी ग्राउलिंग बहुत बोल्ड हो रही थी जैसे वो पैक का लीडर हो, वो बिल्कुल कैप्सूल के पास आ गया। दोनों का दिल धड़क रहा था अंदर कैप्सूल के, और उसने मैक्रो रेडी रखी और पेलविल ने एक फ्लेयर रेडी रखा जस्ट इन केस, क्योंकि दोनों अभी हाइपोथर्मिया के शिकार होने वाले थे और कोशिश थी कि बस जागे रहें। एकदम से दोनों ने देखा एक परछाई बिल्कुल हैच के ऊपर जो अभी खुला हुआ है। एक भेड़िया ने, एक ग्रे बड़े से भेड़िया ने अपनी गर्दन को अंदर किया और उसकी गर्म सांसें लिट रही हुई दोनों महसूस कर सकते थे। मगर एकदम से फिर मैक्रोफ से गोली चलाई एलेक्से ने, फिर भेड़िए भागे, पूरा पैक तितर बितर हो गया। मगर वो दूर नहीं गए थे, हवा में और गोलियां चलाई गईं, फिर भी आवाजें आती रहीं। अब दोनों के मसल्स में दर्द होने लगा था। सुबह के 4 बज चुके थे ये सब करते करते और सिर्फ 3 गोलियां बची थी मैगजीन में। अब इन्हीं पर रहना है कुछ घंटे और। भेड़िया जाने के बाद फिर एक मोमेंट आया, एक अलग आवाज जैसे कुछ बड़ा सा आ रहा है, भेड़िए से भी बड़ा। ये किसी भालू की आवाज थी, क्योंकि अगर भालू आ गया तो वो इनके कैप्सूल को किसी टिन कैन की तरह खोल देगा, उधेड़ देगा। इस वक्त भेड़िए भी एकदम चुप हो चुके थे। लियोनोव ने मैक्रोफ रेडी करी पर कुछ नहीं हुआ। हाउलिंग वापस शुरू हुई। दोनों अपनी छाती पर लगातार मार रहे थे, पैर पटक रहे थे, हाथ मार रहे थे ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो चलता रहे। और फिर इनकी कोशिशें कामयाब रहीं। सूरज उगा, सनराइज जो उनकी लाइफलाइन थी। लंबी सर्द रात जा चुकी थी और फिर से आई एक ब्लू मॉर्निंग। 19th of March 1965, डेलाइट। वुल्व्स भेड़िए भाग गए थे वापस फॉरेस्ट में। लियोनोव, एलेक्स लियोनोव और पेलविल बेलियायव दोनों हंस रहे थे और खुशी के आंसू आ रहे थे। रेस्क्यू टीम की आवाजें आ रही थी जिनकी उनके नाम को लगातार ले रहे थे। बहुत से आर्म्ड सोल्जर्स थे वहां पर पहुंचे, ब्लैंकेट्स के साथ दोनों को कैप्सूल से बाहर निकाला। दोनों जिंदा थे। बॉन्डफायर जलाया गया, कैंपिंग भी की गई जैसे वापस जिंदगी इंजेक्ट कर दी गई हो। उनके सूट टंगे हुए थे उस स्पेस के जो अब धूल में थे और बर्फ में थे। ब्लड वापस बॉडी के अंदर फ्लो होना शुरू हुआ। अगले दिन दोनों के दोनों स्कीपर इन तमाम लोगों के साथ ग्लाइड करते हुए हेलीकॉप्टर तक गए और फिर खुशियों के साथ वापस अपनी जगह पर लौट गए। एक रिकॉर्ड बन चुका था, कई चीजों का रिकॉर्ड बना था, कई चीजों का, मगर जश्न सिर्फ एक ही चीज का मनाया गया और बाकी सब कुछ राज की तरह दफन कर दिया गया। 24 घंटे में 5 बार ये दोनों मरते मरते बचे। 6 साल तक किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 6 साल बाद एक रिकॉर्ड सामने आया और दोनों का एक किस्सा लोगों को पता लगा। लियोनोव चुने गए थे एज अ कमांडिंग लीडर ऑफ सोवियत लूनर मिशन जो कभी नहीं हुआ, मगर इन दोनों का यह मिशन हर किसी को याद रहेगा। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट मैन टू स्पेस वॉक। आई होप अच्छी लगी हो आपको। ये बच्चों को जरूर भेजिएगा 666-22107 पर, आपके मैसेजेस के इंतजार में। 666-22107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: 8:13, आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो। आई नो इट वॉज लॉन्गर स्टोरी एंड मुझे काफ़ी मजा आया बताते हुए, बिकॉज ये स्टोरी बहुत ज़रूरी है एंड बच्चों तक जरूर पहुँचाएगा, बिकॉज ये बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ है जो पता होनी चाहिए लोगों को। बट आपके लिए स्टोरी कैसी थी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आप तक पहुँचे, मुझे बताइएगा फीडबैक आपके 6662107 6662107। एंड मैं कॉल करना शुरू करूँगा एक गाने के बाद। 8:14 by the clock. जहाज उड़ा दुड़ाते भाई सब, स्पेस भी समझ रहे हैं, सब कवर करेंगे आप। मैं दुआ वाला कभी

0: क्या हाल है? बढ़िया. मैं ज़रा एक कॉल करने जा रहा था क्योंकि भाई ने शुरुआत में ही बोल दिया. एक सेकंड रुको, तो मैं पहले आसिफ भाई को कॉल ही कर लेता हूँ. नंबर क्या है, नंबर क्या है तुम्हारा, नंबर क्या है बसंती? एक सेकंड, बस मिल गया, बस मिल गया, बस मिल गया. ओके, बाकी आप प्लीज़ बोर्ड से बताइए. ये भाई साहब, ये स्पेस की कहानी आपको लगता है इतना देसी तोड़ मोड़ के रॉकेट को समझाना आसान है क्या? भाई आपका साइंटिस्ट हो गया, साइंटिस्ट. अस्सलाम वालेकुम.
1: अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मक्का जी, क्या हाल चाल? खैरियत
0: जी? बढ़िया के ढंग से भाई साहब. बढ़िया चल रहा मेरा.
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया चल रहा भाई.
0: हाँ भाई, कहानी कैसी लगी?
1: कबीर भाई, मैं सच बता रहा हूँ भाई तुम्हारे को.
0: हाँ भाई,
1: कहानी जिस तरीके से मैंने मूवी में देखी थी ना, ये कहानी उससे दो गुना तीन गुना ज्यादा भाई तुमने प्यार से बताई. बहुत प्यारी कहानी है ये स्टोरी. लगता लोगों ने ये मूवी देखी नहीं है भाई, ये एकदम हकीकत स्टोरी है. बहुत प्यारी स्टोरी है ये. और ये मूवी जब मैं देखा था ना भाई, उस टाइम पे मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे.
0: नहीं भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई.
1: क्योंकि मतलब ये बंदा जो मतलब उस टाइम पे जो आया था ये नीचे, जंगल का वो सीन आज तक मैं नहीं भूला हूँ.
0: हाँ वो भाई, ये उसका था ना ग्रेविटी का ही तो है ये.
1: बहुत प्यारा, बहुत प्यारी स्टोरी भाई. बहुत प्यारी लोगों को मूवी के बारे में भाई. 2017 की मूवी है ये.
0: 2017 में आई थी ग्रेविटी. 2017
1: बिल्कुल भाई, बहुत प्यारी मूवी है. और स्टोरी जो जिस तरीके से आपने बताया ना भाई, कबीर भाई
0: जी भाई,
1: नंबर वन बताया भाई आपने.
0: थैंक यू भाई. भाई वो
1: जैसे आपके मुझे सुन रहा हूँ ना भाई, जैसे मैं आपके मुझे सुन रहा हूँ, अरे मैं बोला कबीर भाई बहुत प्यारी स्टोरी बता रहे हो. और ये स्टोरी में देखा हूँ कहीं तो सुना लग रहा है. हाँ मैं बोला ये जैसी तुमने बोला वो भेड़िए आए, फिर बाद में वो दो दिन के बाद वो आए ना, मतलब ये मूवी तो देखी हुई मेरी स्पेस वॉल्क.
0: हाँ मेरे भाई, ये बहुत बहुत जबरदस्त मूवी है. इनफैक्ट ये ऐसा है, बहुत लोगों ने ग्रेविटी भी देखी भी नहीं अभी तक, तो लोगों को देखनी चाहिए.
1: हाँ भाई, और जिस बंदे लोग ने ये मूवी देखे ना भाई, वो बंदे लोग का दिल खुश हो जाएगा, बोलेंगे वाकई में क्या स्टोरी बताया भाई.
0: थैंक यू मेरे भाई, यही मुझे सुनना था क्योंकि क्या इसमें बहुत मेहनत लगी, क्योंकि स्पेस को बहुत देसी समझाना बड़ा मुश्किल काम है. कुछ चीजें ऐसी
1: बात है भाई, मतलब वो बंदा भाई, दो बंदे थे उसमें जाते बेचारे, वो और वो भी किधर के बंदे, वो रूसिया के ना.
0: हाँ, रूस के थे. हाँ,
1: जबरदस्त भाई, जबरदस्त वाला. दिल खुश हो गया भाई, मॉर्निंग बना दी भाई तुमने आज मेरी.
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई. जैसे कह रहे हैं भाई, पब्लिक जितनी सुन रही है भाई, पब्लिक देखो, ग्रेविटी इसी मूवी पे बनी है, इसी केस पे बनी है. बहुत
1: कमाल, बिल्कुल बिल्कुल
0: भाई, देखने लायक है. थैंक यू सो मच मेरे भाई,
1: लव यू भाई, लव यू,
0: लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई, बहुत सारा प्यार गया. ओके मेरा भाई, तो आसिफ भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें मूवी बनी है. फराज भाई ने भी मेंशन किया, एक मैसेज आया, कबीर साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद कलीम भाई, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया. देन मैसेज आया है, ये सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट का है. वालेकुम अस्सलाम, आई आई एम सो हैप्पी जावेद इकबाल साहब, आपके इंटरेस्ट का है, मैं जरूर भेजूंगा आपको. एक मैसेज है प्रिंस भाई का, वाह भाई वाह, क्या स्टोरी थी, मज़ा आ गया. पहले उड़ाया, फिर फंसाया, फिर जलाया, फिर गिराया, फिर ठंडा किया, फिर डराया, फिर एक लंबा इंतज़ार, घने अंधेरे में दूसरी तरफ जंगली जानवरों का डर, जीने की उम्मीद, मौत का खौफ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, कभी सस्पेंस, कभी मौत के घने साए में जिंदगी का छोटा सा चिराग. भाई क्या लिखा है आपने, टिमटिमाता हुआ. और फाइनली दे वन एंड क्रिएटेड हिस्ट्री इन द वर्ल्ड विद योर ऑसम वॉइस. भाई आपने जिस तरीके से ये लिखा, ये पैराग्राफ प्रिंस भाई, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लिख दिया आपने. मैं कहानी इसमें ज़्यादा खो गया. थैंक यू सो मच भाई, दैट इज़ सो काइंड ऑफ यू टू यूज़ इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स मेरे लिए. बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम रियली रियली हैप्पी. आई नो ये स्टोरी फॉलो करना बड़ा मुश्किल होती है जब थोड़ी लंबी हो जाती है कहानी, बट ये कहानी ऐसी है. इसमें मैंने कुछ भी अगर मिस आउट किया होता टू मेक इट शॉर्टर, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आना था. बट आई एम रियली हैप्पी कि आपको अच्छी लगी. एक मैसेज है रमेश यादव भाई का, थैंक यू सो मच रमेश भाई. वो आके भाई ने लिखा है सुपर, थैंक यू सो मच. सुनने वालों को सलाम, ये सुहेल भाई फ्रॉम मलिक, सुहेल मलिक भाई फ्रॉम पाकिस्तान, क्या बोल रहा हूँ मैं. फिर एक मैसेज आया, ग्रेट स्टोरी, थैंक यू सो मच कासिर अब्बास साहब. एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कहानी मैं बता नहीं सकता, इट हैज़ बीन इन माय माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मुझे आपके आपके मुंह से सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से आपने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, उससे ज़्यादा आसान नहीं बनाया सकता. सो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, एंड दिस इज़ बाय फार वन ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स. इन केस नोबडी सेज दिस, मुझे पहले कह लें दो. अरे थैंक यू, आई एम रियली हैप्पी कि आपको इतनी अच्छी लगी है. एंड जिन्होंने ये नहीं देखी है, इस इंसिडेंट पे जो मूवी बनी है ग्रेविटी, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए. और अगर आपने ग्रेविटी देख ली और आपको ये किस्सा नहीं पता था, तो नाउ यू नो द किस्सा एज वेल. तो अब आप रियल लाइफ भी केसेस की स्टडी कर सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग. और बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए कहानी, बिकॉज क्या होता है कई मरतबा कुछ चीज़ें होती जानने के लिए अच्छी हैं, लेकिन लोग उसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना के सुनाते हैं, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। तो उन्हें अगर कहानी की तरह सुनाई जाए तो बहुत बहुत आसानी से उन्हें समझ में आएगी। एक मैसेज आया है, वन डे यू विल बी अ मूवी राइटर। अरे अरे अरे अरे अरे अरे मूवी राइटर बनने का नहीं है मेरे को, क्या है ना भाई, पर आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य भाई। मूवी राइटर मुझे बनना नहीं है, डायरेक्शन में आपका भाई अच्छा, अगर मौका मिला इंशाल्लाह तो ज़रूर तो ज़रूर, ऑल दो आई कैन राइट अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिनेमा देख रहा हूँ, इनफैक्ट सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ में, ये किस्सा सुनने में बहुत मज़ा आया। मेरा एक बेटा है, आज उसने भी बहुत ध्यान से ये कहानी सुनी एंड ही एब्सोल्युटली लव्ड इट। थैंक यू सो मच, आपने मेरा दिन बना दिया, ये मैसेज किया अजीज़ भाई। अजीज़ भाई थैंक यू सो मच, मैं कह रहा बच्चों को अगर समझ में आ रही है, बच्चों को अच्छी लग रही है ना कहानी, तो फिर जीत है भाई, मज़ा आ गया मुझे ये सुन के कि आपके साहबजादे को भी ये अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, रियली रियली मीन्स अ लॉट। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, इनका क्या नाम है, ये आपने भाई तो लिख दिया, नाम नहीं बताया है, इनका नंबर है जी 007, जेम्स बॉन्ड साहब, क्या नाम है आपका। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या ईद मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर द स्टोरी। ईद मुबारक अभी से, ठीक है तो फिर आपको भी अभी से ईद मुबारक, क्या बोल सकते हैं। ठीक है भाई, एडवांस में क्या, नो प्रॉब्लम। एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम कबीर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज़रूर कहानी भेजें।

कि मुझे अपनी बेटी को ही कहानी सुनानी है. शी लव्स साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी. ऑफकोर्स नो प्रॉब्लम. मैं भेजूंगा फैसल भाई का मैसेज है. स्टोरी अच्छी होगी, अभी तक नहीं सुनी, बट ग्रेविटी इज़ एन अमेजिंग स्टोरी. तो अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी एंड ग्रेविटी वॉज एन अमेजिंग मूवी, देन फैसल भाई यू विल लव दिस स्टोरी एज वेल. आई होप सो. प्लीज क्या है इन एडवांस? हाँ मैं समझ गया था, मैं तो मजाक कर रहा था. मेरे को पता है एडवांस विश करें. आपको भी मुबारक हो. डी बी बाय एक मजे. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम अस्सलाम बादशाह भाई को. वालेकुम अस्सलाम मैसेज है भाई. मुबारक नहीं बोल रहा हूँ भाई, बकरा मांग रहा है. चिप्स मांग रहा है. एक मैसेज. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग ब्रो जस्ट ट्यून इन. हाउ आर यू? सेंड मी थर्सडे इन टुडे स्टोरी. आज दी स्टोरी तो मैं भेजदा जकी साहब, लेकिन स्टोरी थर्सडे वाली ये मेरे पास नहीं होगी. थर्सडे वाली मैंने भेजी. अच्छा नहीं भेजी आपको. ओके नो प्रॉब्लम. जकी भाई, जाकी भाई को मिलेगी क्या? बढ़िया. अगर ये स्टोरी एकदम तल के देंगे क्या? एक मैसेज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. ये मैसेज क्या है? नाजिश ने. ओके नाजिश जी, थैंक यू सो मच. और इनका कहना है कि अस्सलाम वालेकुम. अच्छा दो नाजिश हो गई ना, एक बहरीन से भी हैं. ओके एनीवे नाजिश लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम. कबीर आपकी स्टोरी से पहले मैंने कभी नहीं सुनी. मेरे हस्बैंड ने बोला कि सुना करो, तो मैंने आज जाके कहानी सुनी. ऑल दो मेरा पहले ध्यान नहीं जा रहा था, फिर आपने जब स्टोरी को प्रोग्रेस किया, सो 18 से 20 मिनट के बीच में मुझे आपकी कहानी अचानक से अच्छी लगने लगी और मैंने पूरी फिनिश करी. मैंने कभी आपकी कहानी इसलिए नहीं सुनी थी, मुझे लगा कि कहानी तो सब सुना ही देते हैं, मज़ा नहीं आएगा और ना मेरे पास इतना टाइम है. आप तारीफ कर रही हैं मेरी की क्या मतलब? मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस मोमेंट पे, हो क्या रहा है? तारीफ ही रहा वो लिख रही है, तारीफ ही है. थैंक यू. मैं डर गया. मैंने कहा ये जो आपने ऐसा जो गीला रुमाल मारा है घुमा के, बहुत डेंजर तारीफ करी है आपने. बट मच अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच. एक मैसेज है. गुड मॉर्निंग जूनियर साइंटिस्ट. हाँ मैं जूनियर साइंटिस्ट ही हूँ. I will surely send you. Nice story, Kabir. मैंने तो सुन लिया, मेरे दोस्तों के लिए अलग सेंड कर देना. कबीर भाई रात 9 बजे सुनना है. डन भाई नो प्रॉब्लम. क्या एक मैसेज है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है भाई के? नाजिश लिख रही है, मुझे बुरा मत मानिएगा, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कभी कभार जब आरजेस कहानी सुनाते हैं तो मज़ा नहीं आता होगा, बिकॉज सबकी एक ही टोन होती है, लेकिन पहली मरतबा मुझे कहानी सुन के अच्छा लगा. दैट इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. तो कोई आपकी बुराई नहीं है. हा हा हा. ओके थैंक यू जी. हा हा हा. आपको भी हा हा हा, क्योंकि मुझे शुरुआत में लगा कि आप जो है मुझे सुना रही हैं. पर थैंक यू सो मच. रैली मीन्स अलॉट. रैली. और अभी भी कोई कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हो कह सकता है. मैं तो जी करण ओजला चलाने जा रहा हूँ. मेरा क्या है, मेरा क्या? करण ओजला फॉर अ रीजन. 8:26 ऑन द क्लॉक. मैं दोहा वाला कबीर. हे ये गाना यार, ये गाना.

0: आठ बज गए जी 32 मिनट हो लिए मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे. गुड मॉर्निंग. देखो कहानी मिलना को शुरू हो जाएगी, बेफिक्र हो जाओ. फिलहाल मैं जरा कुछ दिन बता दूं, बड़े ही इंपॉर्टेंट किस्म के दिन चल रहे हैं जो आज मार्क्ड किए गए हैं इंटरनेशनली, तो उनके बारे में ही जरा बता दी जाए. आज है टेक्निकली आज मुझे एविएशन की स्टोरी सुनानी चाहिए थी, मगर ठीक है जी, स्पेस भी तो ठीक ठाक उसी कैटेगरी में आ गया हमें क्या. तो आज है एविएशन मेंटेनेंस डे. भाई साहब कॉल आ रही है, जहाज उड़ाने के लिए कौन है आज तैयार? अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: अरे पायलट साहब क्या हाल है? कैसे पायलट साहब?
1: ठीक ठाक है सर, भूल गया क्या कह रहा मैं आपसे.
0: बढ़िया, 30,000 फीट पर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. फाद भाई क्या हाल है?
1: मैं एकदम सर, हम जरा आज लेट थे, जरा लेट जा रहे थे, तो हमने कहा लेट ही बात कर ले.
0: नहीं नहीं कोई गल नहीं, आपके लिए हमेशा ऑन है फवाद भाई. और बताइए, कहानी सुन पाए नहीं सुन पाए? मुझे लगता नहीं सुन पाए आप
1: कहानी. की तरफ सुन पाए, जल्दी जल्दी एक मीटिंग अटेंड किया, बच्चे के स्कूल की तरफ जा रहे हैं.
0: हाँ आपकी याददाश्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
1: बहुत ही बुरी है.
0: क्या है?
1: बहुत ही बुरी है कि लोग मिल लेते हैं अभी बात नहीं आता. इसका नाम क्या था भाई?
0: ये आप वही तो नहीं जिसको कॉल करके लोग बोलते हैं पहचान पहचान पहचान? नहीं पहचाना, दोबारा कोशिश कर.
1: एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बंदे ने मुझसे इतनी अच्छी तरह मिला, पूरा हाल चाल पूछा, अब्बू अम्मी का पूछा, बच्चों का पूछा.
0: हाँ.
1: तो उसके बाद मैंने उससे कहा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लेते हैं यहाँ पे कतर में. तो मैं नंबर शेयर किया, मैंने कहा भाई पूरा नाम क्या लिखते
0: ये पता सबसे मुश्किल काम है, कोई बंदा बोले पहचानो पहचानो पहचानो, फिर आप जानबूझ के बात कर जाना और आखिर में उसका नाम पूरा जानना जरूरी है. भाई ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम.
1: तो हाँ. मुझे दूर से ही मेरी फैमिली आएगा, आपको बाबा नहीं पता लगा कि वो है कौन.
0: मुझसे ही बात करने के लिए जाते लोग बोल वगैरह, पता नहीं कौन थे, पता नहीं. तो बोले यार आप तो बड़े दिल लगा के बात कर रहे थे उनसे, क्या पता नहीं कौन थे.
1: सबसे बुरा ये हुआ था कि शादियों कितने साल हो गए ये भी याद नहीं रहा.
0: अच्छा ये आपको याद नहीं है?
1: नहीं रहता
0: ये तो मुझे
1: लगता लगाता हूँ मैं.
0: एक्सक्यूज मी, किससे अंदाजा लगाते हैं आप?
1: बेटी की एज से.
0: मुझे आपके घर में मिलना पड़ेगा आके, आप दावत कब दे रहे हैं? ये तो बातें डिस्कशन की
1: नहीं है. बता रहा हूँ आपको, बेटी की एज का अंदाजा लगाता हूँ उसके हिसाब से, शादी के एक साल बाद से. बेटे के छोटे का बस एक है कि 5 साल बाद का है, और सबसे छोटे वाले का कोविड के पास का, इसलिए उसका थोड़ा.
0: ये जो ये भाई ये इतना मैथ्स याद है आपको, इससे अच्छा एयर याद कर लेते मतलब ये कोई बात होती
1: है? यही नहीं होता.
0: अच्छा मतलब दिमाग को कॉम्प्लेक्स चीजें अच्छी लगती है, सिंपल चीजें पल्ले नहीं पड़ती हैं.
1: हाँ लेकिन किसी की अगर किसी की कोई बुराई की हो या कोई यानी कोई चीज लड़ाई के लिए याद आ रही हो तो. हाँ. वो कई दफा मुझे पूरी याद आ
0: जाती है. गॉसिप चाहिए, गॉसिप चाहिए.
1: हैं क्या लड़वाना हो.
0: समझ रहा हूँ, सब समझ में आ रहा है. वो जो कहते हैं ना वो दीवारों के भी कान होते हैं, वो दीवार आप ही हैं. मुझे ऐसा लगता है.
1: हाँ, वो दीवार में ही हो भाई, वो दीवार में ही. अभी दो ग्रुपों को लड़वा के आया हूँ आपस में.
0: अच्छा
1: उन्होंने क्या काम किया है?
0: उसके बाद फिर दूर बैठ के चिल एकदम.
1: अब मैं निकल गया हूँ ऑफिस से, मैं क्या, मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ.
0: भाई साहब थैंक यू ये वार्निंग साइन देने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके.
1: आप कैसा रहा आपका वीकेंड, आपने अच्छा गुजारा?
0: जी वाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह.
1: गेम छोड़ के?
0: गेम ही रहा, छोड़ता नहीं हूं मैं. अभी तो इवनिंग शो में तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी फ्रीक्वेंसी इस चीज की. तो यस
1: नहीं तो इवनिंग में क्यों जा रहे हैं?
0: देखिए एक कंपनी है, कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है. हम तो मामूली से
1: बोलते हैं.
0: आप क्या आर्जिंग होती है क्या घर पे? आप भी तो मुकम्मल आरजे हैं, हमारी तरह तो हैं आप भी हैं?
1: लेकिन हम लोग क्या भर्तियां नहीं हो रही आजकल.
0: हाँ बस यही तो है, हमारी भर्तियां नहीं हो रही. एचआर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप तीर छोड़ के चले जाते हैं. मैं समझ रहा हूँ. मुझे ही बचने की जरूरत है इस आदमी से. लेकिन फवाद भाई जो आज की स्टोरी जेनुअनली सुनिएगा, बाकी सुनी हो ना ये वाली जरूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है?
1: ठीक
0: है फवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई.
1: अल्लाह हाफिज़.
0: अल्लाह हाफिज़. और जी फवाद भाई के बाद बता रहा था मैं, आज एविएशन मेंटेनेंस डे है, आज टेक्नीशियन डे है, और आज एविएशन टेक्नीशियन डे है, सॉरी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, हाँ तो एविएशन मेंटेनेंस टेक्नीशियन डे, इसके बाद है भाइयों का दिन, आज है जी ब्रदर्स डे किसी को पढ़ी है, भाईचारा तो बने रहता है, भाईचारा ऑन टॉप, सो आज है ब्रदर्स डे और आज है नेशनल केटरर्स अप्रिसिएशन डे। भाई जिन लोगों को शादी ब्याह के मामले में केटरर बढ़िया मिले हैं, बर्थडे पार्टी के मामले में केटरर बढ़िया मिले हैं, आज उन्हें जाके अप्रिशिएट कर देना, उनको कॉल करके दो बार ताली बजा देना, फोन काट देना बस। एक और मैसेज है, आज एक और दिन है बहुत जरूरी, इसके बारे में जरा अलग से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: हाँ जी, आपका नाम?
2: जी मैं कमकम।
0: क्या नाम है?
2: कमकम।
0: अच्छा, ओहो कमकम भाई, जिस आदमी का सबसे यूनिक नाम में सुबह बता रहे थे, कमकम भाई बताइए, कुछ कमकम तो नहीं लगा कहानी में? अगर सुनी हो तो
2: नहीं सुनी है कहानी, लेकिन टेक्नीशियन डे है, प्लेन उड़ाने की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने कभी मस्ती भी नहीं उड़ाई, तो प्लेन कहाँ से उड़ाएंगे?
0: अरे उड़वा देंगे, जहाज का क्या है, बातों के जहाज बनाइए, बातों का जहाज उड़ाइए, क्या टेंशन है
2: सर? वैसे तो गाड़ी उड़ा रहे हैं।
0: गाड़ी मत उड़ाओ यार,
2: गाड़ी को जहाज बनाना पड़ेगा।
0: नहीं नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं गाड़ी को जहाज, गाड़ी को गाड़ी रहने दो, नाम में आपके कम कम है, जरा कम कम चलाइए, कम स्पीड से चलाइए मेरा भाई। ठीक से ठीक से, और बताइए क्या प्लान है आज के, मतलब आज से हफ्ता शुरू है, अभी तो पूरा ईद का मामला आने वाला है, क्या क्या प्रोग्राम है मेरे भाई?
2: ईद का तैयारी हो गया भाईजान, बस अभी छुट्टी का इंतजार है, मतलब छुट्टी का डेट भी हो गया, 4 दिन छुट्टी है।
0: अच्छा 4 दिन छुट्टी है,
2: प्लानिंग हो गया है दुकान बीच के लिए, बकरा लाने के लिए।
0: चले भाई, और
2: दूसरे दिन इंशाल्लाह,
0: दूसरे दिन इंशाल्लाह
2: निकलेंगे दुकान बीच के लिए।
0: अच्छा,
2: पहले दिन कुर्बानी करेंगे,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह बढ़िया जाए भाई, आपकी दावत बताइएगा,
2: सबको भी आना होगा।
0: अरे हमें काम करना है मेरे भाई, उस दिन भी काम है, ड्यूटी इज ब्यूटी। तो आप एंजॉय कीजिए,
2: तो हॉलीडे है ना, आप लोग का हॉलीडे नहीं होता है?
0: नहीं नहीं, हमारा ईद के दिन उल्टा ज्यादा काम होता है, ऑपोजिट है हमारा, समझ रहे, तो ऑपोजिट है, जानवर के साथ साथ हम भी बिजी हो जाते हैं। तो ये सिस्टम है, पर कम कम भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मेरे भाई, थैंक यू सो मच, और आप इंजॉय कीजिए अपना दिन, और ईद के बाद रिपोर्ट दी जाएगी आपसे, ठीक है?
2: ओके
0: मेरे भाई, ख्याल रखो अपना। तो इनके बाद जो है एक मैसेज जरा पढ़ दूं मैं, ये मैसेज क्या मुझे वकास भाई ने, वकास भाई कह रहे हैं कि अगर नाजिया और महविश सुबह शो करेंगी तो सरवर भाई और नाजिया का शो ख़त्म हो रहा है। हाँ जी, 1 तारीख से सरवर भाई और नाजिया का शो भी और हो जाएगा, सरवर भाई अपने टाइम पर रहेंगे, लेकिन नाजिया और महविश दोनों बहनें हमारी सुबह को हो जाएंगी, सो मॉर्निंग शो में आपको महविश और नाजिया मिलने वाली है, दैट इज़ अ फैक्ट। एंड इसके बाद मैसेज आया है, एक भाई ने मैसेज किया है, एक सेकेंड कहाँ गया जी मैसेज, किधर गया, लाओ जी मैसेज ही मिस हो गया। आरजे कबीर, आपकी आवाज़ और आपका अंदाज दिल को छू कर जाता है, सच कहूँ तो रेडियो सुनने का असली मज़ा सिर्फ आपकी होस्टिंग में आता है, प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो तेरी झुकी नज़र फ्रॉम मर्डर 3 प्ले कर दीजिएगा, आई लव यू टू बिग फ्रेंड, थैंक यू सो मच, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। द प्रॉब्लम इज़ मेरे भाई, प्रॉब्लम इज़ आसिफ भाई, गाने आसिफ भाई नहीं सॉरी संगम भाई, सुबह वाले में थोड़ा सा मुझे गानों के साथ में छेड़छाड़ कर नहीं सकता, मॉर्निंग की प्लेलिस्ट पहले तैयार होती है, बट आई विल श्योरली प्ले इन सम टाइम, थैंक यू सो मच। एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम भाई, सेंड मी द स्टोरी, वो तो मुझे बताइए, और एक ये मिट्टी वाले मुझे मैसेज मत करो, सवेर भाई ने भेजा था थर्सडे को भी, भाई मुझे पता था सबके सब मुझे भेजने वाले हैं, ये मुंह पे मिट्टी लगाने का बदला लिया है। एक मैसेज है, भाई कार को उड़ा रहा था, 500 रियाल का फाइन आ गया, फैसल भाई मुबारक हो, आप 500 की पत्ती को उड़ाइए। मैसेज है, फवाद भाई ने कहा वो लड़ने में अच्छे हैं, आपको भी लड़वाने वाले थे, हाँ इवनिंग में जाने की वजह से। सब के सब घेरा लगा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, उमर एम सलाम भाई, मैं जो हूँ भाग लेता हूँ, उससे पहले फवाद भाई आ जाए, झगड़ा कराएंगे झगड़ा। ओके सो ये गाना इसके बाद जरा लौट के 6222107 अनिरुद्ध रविचंद्र जॉन इंदिरा गांधी के पास।

सच में नहीं पता लगता भाई, लोग कहते हैं कि 3 घंटे कैसे बोल लेते हो। अरे जी ऐसे बोल लेते हैं, पता भी नहीं लगता 3 घंटे कब पूरे हो गए। अंदाजा भी हुआ आपको? सो 8:50 ऑलरेडी हो चुके हैं। FM 107 पर मैं दुहा वाला कबीर आपके साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर आइएगा हमारे, FM 107 Qatar, FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे। साथ ही साथ 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, हमारी न्यूज़ आप लाइव देख भी सकते हैं। और हम जो है काफ़ी ज़्यादा कवरेज जो करने वाले हैं आने वाले दिनों में, स्पेशली अभी ईद के हमारे स्पेशल प्रोग्राम से बहुत सारे प्रोमोज हमारे सोशल मीडिया पे आएंगे जो आपको जीतने का भी मौका देंगे। तो वेरी स्पेशल शोज आर कमिंग अप, उन पे ज़रा नज़र बना के रखिएगा। उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, सो वहाँ पे ज़रूर जुड़े रहिए। पर इसके बाद मैं कहूँगा इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सवेरे सुबह 6 बजे मिलेंगे। बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

शिकायत सामने नहीं आई। मोहम्मद हसन अल काबी का कहना है कि कतर हज मिशन की जानिब से मुकर्रर करदा तमाम जवाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि कतरी हज मुहिमात भी भरपूर तआवुन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुतलका इदारों का मुश्तरिका मकसद कतर के हुजाज को बेहतरीन खिदमात फराहम करना है। दूसरी जानिब कतर हज मिशन में कतरी वजारत सेहत के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुस्सलाम अल कहतानी ने कहा है कि कतरी हुजाज को मुकम्मल तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए गुज़िश्ता हज सीज़न के इख्तिताम ही से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि इस साल तकरीबन 36 अफराद पर मुश्तमिल तिबी अमला, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स शामिल हैं, मक्का मुकरमा और मुशायरे मुकद्दसा में मुख्तलिफ तिबी मराकिस के ज़रिए खिदमात अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम तिबी अमला लाइसेंस याफ्ता है और एमरजेंसियों मुतादी बिम अमराज से निमटने की खसूसी तरबियत रखता है, जबकि उन्हें कतर के निज़ाम सेहत तक रसाई भी हासिल है ताकि मरीज़ की तिबी हिस्ट्री फौरी तौर पर देखी जा सके और बरवक्त इलाज फराहम किया जा सके। डॉक्टर अब्दुस्सलाम अल कहतानी ने सऊदी वजारत सेहत और वजारत हज के तआवुन को सराहते हुए कहा कि हुजाज की सेहत और सलामती के लिए मरबूत अंदाज में काम जारी है। उन्होंने हुजाज कराम खसूसन दायमी अमराज में मुब्तला अफराद को हिदायत की कि वो अपनी अद्वियात साथ रखें, शदीद गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हीट स्ट्रोक और जिस्मानी थकन से महफूज रहा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि हिफ्जान सेहत के असूलों पर अमल करने, ज़ाती इस्तेमाल की अशिया अलग रखने और बीमारी की सूरत में मास्क इस्तेमाल करने से मुतादिद अमराज के फैलाव को रोका जा सकता है। डॉक्टर अब्दुस्सलाम अल कहतानी के मुताबिक कतर हज मिशन की तिब्बी यूनिट में जदीद तिब्बी सहूलियात मुतारिफ कराई गई हैं, जिनमें रवायती भारी फर्स्ट एड बैग के बजाय जदीद मेडिकल जैकेट शामिल है, जिससे बरवक्त तिब्बी इमदाद में मजीद तेज़ी और आसानी पैदा हुई है। वाज़े रहे, तिब्बी यूनिट हर साल नए हालात और चैलेंजेस के मुताबिक अपनी खिदमात को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें करती है। इसी के साथ मक्का मुकरमा में कतरी हुज्जाज की आमद का सिलसिला जारी है, जहां कतरी हज मिशन सऊदी अहलकार और मुख्तलिफ कतरी हज मुहिमात की जानिब से उनके इस्तकबाल और सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इंतजामात किए गए हैं। हज मुहिमात के जिम्मेदारान और हुज्जाज ने इंतजामात को मुनज्जम, आसान और इत्मीनान बख्श करार दिया है। हमलाल कुद्स के सरबरा हमद मोहम्मद अशहवानी ने कहा है कि कतरी हुजाज के इस्तकबाल के तमाम मराहिल नहायत आसानी और बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कतर हज मिशन और सऊदी हुकाम के साथ मुसलसल राबते और तआवुन के ज़रिए इजाज़तनामों, नुस्ख कार्ड्स और दीगर इंतज़ामी उमूर बरवक्त मुकम्मल किए गए, जबकि हुजाज की सहूलत और आराम के लिए खसूसी खिदमात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने शदीद गर्मी के पेश नज़र हुजाज को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, छतरियों के इस्तेमाल, ज़्यादा पानी पीने और धूप में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत भी की। इस मौके पर मुतादिद हुजाज ने अपने तासुरात में कहा कि हवाई अड्डे से लेकर रिहाइश तक तमाम मराहिल इंतहाई आसान रहे, जबकि हज मुहिमात और सऊदी हुकाम की जानिब से बेहतरीन तआवुन देखने में आया। दूसरी जानिब ख़वातीन की कमेटी की ज़िम्मेदार ने बताया कि ख़वातीन हुजाज के इस्तकबाल के लिए ख़सूसी इंतज़ामात किए गए, जिनमें फूल, आब जमज़म और तहाइफ के ज़रिए इस्तकबाल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हुजाज की खिदमत बाइस एजाज़ है और हर साल पहले से बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जाती है। उधर हमला तैयबा के सरबरा शेख अहमद अलमुल्ला ने कहा कि कतर हज मिशन के साथ मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और मुसलसल राबते के बाइस हुजाज को आगाज़ ही से आसान और मुनज़्ज़म खिदमात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस साल हाज बिला हकीबा सर्विस मुतारिफ़ कराई गई है, जिसके तहत हाजी एयरपोर्ट पर ही अपना सामान जमा करा देता है और सामान बराह रास्त होटल के कमरे तक पहुँचा दिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हुजाज के लिए रिहायशी सहूलियात के साथ दीनी और तरबियती प्रोग्राम्स, मनासी के हज से मुतालिक रहनुमाई और मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों का भी अहतमाम किया गया है, जबकि बाज़ कतरी मुहिमात सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में योम तरविया पर मीना रवानगी का भी अहतमाम कर रही हैं। शेख अहमद अलमुल्ला के मुताबिक इस साल शदीद गर्मी, हजूम और मुशायर के दरमियान नकलो हमल बड़े चैलेंजेस में शामिल हैं, ताकि हुजाज को मुसलसल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और सब्र तहम्मुल की तलकीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मरतबा तमाम कतरी हुजाज को मुशायर के दरमियान ट्रेन के ज़रिए मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए खसूसी

0: को एक के मुकाबले में दो गोल से शिकस्त दी। कतर की कौमी हैंडबॉल टीम ने गल्फ गेम्स 2026 के हैंडबॉल मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता। और इस साल के फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप और फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप के ग्रुप्स और मैचअप्स का ऐलान कर दिया गया है। ये ड्रॉ स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में मौजूद फीफा के हेडक्वार्टर में मुनाकिद हुआ। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में जितना ही आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइन समाप्त फरमाइए।
1: साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक टेलीफोनिक रबते के दौरान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल बिलखसूस इलाकाई और बैनुल अक्वामी सतह पर कशीदगी कम करने और अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से कल सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान दोनों बरदर मुल्क के दरमियान गहरे बरदराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से कल मुत्तहिद अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन को मजीद फरोग देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से कल ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराकची ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान अमन के क़याम इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए जारी कोशिशों पर तबादले ख्याल किया गया। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है और अब दोनों फरीकैन इसकी हतमी तफसीलात और अल्फाज को हतमी शक्ल देने के मरहले में हैं। सामेईन इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से हमारे साउंड टेक्नीशियन सारा, सोशल मीडिया टीम से युसरा और न्यूज़ रूम से इस्माइल खान, मोहम्मद अमीन और मैं फुरकान शाहिद अगली मुलाकात तक आपसे चाहते हैं इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
2: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
4: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। अमीन कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर मुझे यही दुआ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे भी रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, सब्र के साथ इनकी तरबियत करनी है, इनके साथ रहम करम का मामला करना है। वैसे अमूमी तौर पर, फितरी तौर पर माँ बाप हर कोई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और नरमी का ही मामला करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम भी कुछ ज़्यादती कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दुआ को याद रखें कि भाई हम जैसे ही मामला कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए यही दुआ करेंगे। रब्बी, ए रब, ए मेरे रब, यानी वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, पाला और नेमतें अता फरमाई, इरहमहुमा, वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। तो सामने किराम, वालिदैन के एहसानात का बदला देना तो मुमकिन नहीं, तो उनके लिए हर वक्त हमारी तरफ से सबसे बड़ी खिदमत यही हो सकती है

0: हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: ईद की महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार। ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच

0: लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े ही सिंपल पर बहुत पावरफुल थॉट पर, व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। वेल, सच ये है कि ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स एक दिन में नहीं होते, वो धीरे धीरे आती है बिल्कुल खामोशी से। हाई ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो, स्टार्टिंग में बॉडी सिर्फ हल्की सी वार्निंग देती है, थोड़ी थकान, थोड़ी इरिटेशन, कभी नींद का डिस्टर्ब होना, और हम क्या करते हैं, बड़े ही प्यार से इग्नोर। क्योंकि जब तक पेन नहीं होता, हम मानने को रेडी नहीं होते हैं कि हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। पर प्रिवेंशन का मतलब होता है प्रॉब्लम से पहले का एक्शन लेना। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेगुलर मूवमेंट, बैलेंस्ड फूड, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट काफी सारी सीरियस प्रॉब्लम्स को स्टार्ट होने से पहले ही रोक सकते हैं। मतलब अगर हम रोज थोड़ा चल रहे हैं, थोड़ा अच्छा खा रहे हैं और थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं अपने आप को, तो फ्यूचर में हैवी ट्रीटमेंट की जरूरत काफी कम हो जाती है। प्रिवेंशन का मतलब सिर्फ टेस्ट और रिपोर्ट्स नहीं होता, प्रिवेंशन होता है जब हम बॉडी के सिग्नल्स पे ध्यान देते हैं, जब हम थकान को वीकनेस नहीं समझते, जब हम नींद को लग्जरी नहीं समझते बल्कि नेसेसिटी मानते हैं और प्रॉपर अपने 7-8 आवर्स कंप्लीट करते हैं। सोचिए, एक छोटी सी हैबिट जैसे कि 10 मिनट रोज खाना खाने के बाद वॉक करना, या टाइम पर सो जाना, या ज्यादा

0: हेल्प लेना ये सब कितनी छोटी छोटी बातें हैं पर फ्यूचर के लिए यही सब चीजें एक शील्ड बन जाती है और क्योर क्योर अक्सर तब शुरू होता है जब बॉडी ऑलरेडी थक चुकी होती है मेडिसिन रेस्ट्रिक्शन स्ट्रेस सब एक साथ आ जाते हैं इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन सिर्फ बेटर नहीं इजियर भी होता है देन क्योर एक और बात जो हम भूल जाते हैं दैट इज मेंटल हेल्थ भी प्रिवेंशन मांगती है अगर हम रोज अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहे ब्रेक्स नहीं लिए अपने लिमिट्स को इग्नोर करते रहे तो बर्नआउट एक दिन जरूर आता है प्रिवेंशन का मतलब होता है अपने आज का थोड़ा सा ख्याल ताकि कल चल के मुश्किल ना बने तो आज का एक छोटा सा मशवरा जो आप अपने साथ रखिए जब बॉडी बोले स्लो डाउन तो सुन लीजिए रेस्ट रेस्ट कर लीजिए बिना गिल्ट फ्री होके क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये लेजीनेस नहीं है ये समझदारी है अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आपकी जिंदगी काफी स्मूथ चलते रहेगी एनर्जी रहेगी कॉन्फिडेंस रहेगा चेहरे पे एक अलग ही चमक रहेगी एंड दैट इज व्हाई प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti
2: Qatar ka pehla desi radio station FM 107 Dil se desi

हफीज कादार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के बुनियाद रखने वाले और पहले टेस्ट कप्तान अब्दुल हफीज कारदार। कारदार साहब का नाम पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक नए मुल्क को क्रिकेट की दुनिया में पहचान दिलाई। दैट वाज अर्ली इयर्स आफ्टर 1947 जब पाकिस्तान वाज टेकिंग बेबी स्टेप्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो अब्दुल हफीज कारदार साहब कप्तान बने एंड ही गेव अ डायरेक्शन टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। नौजवान क्रिकेटर्स और नौजवान मुल्क और उसके साथ साथ क्रिकेट टीम, जहां कई ऐसे टॉप टीम्स थे उस जमाने में, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, ये सब टीमों के अगेंस्ट में खेलना एक डिफरेंट बात होती है, डिफरेंट सोच होती है। और वो सोच की जो बदलाव उन्होंने लाया, कौन? अब्दुल हफीज कारदार साहब। जी साहब, अब्दुल हफीज कारदार 1950 के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट की क्यादत करते रहे और टीम को एक मजबूत पहचान दी। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 1954 में इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल टेस्ट जीतकर अपनी पहली और यादगार टेस्ट जीत हासिल की, जो उस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज थी। कारदार साहब एक जबरदस्त ऑलराउंडर स्पोर्ट्समैन थे, जिनका जज्बा और कॉन्फिडेंस टीम के लिए हिम्मत का जरिया बनता था। तो आप समझ सकते हैं कि अब्दुल हफीज कारदार आज भी पाकिस्तान क्रिकेट में उनको क्यों याद कर, पाकिस्तान क्रिकेट में लोग आज उनको याद करते हैं। दैट्स द रीजन बिकॉज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। कप्तान के तौर पर उनका फोकस सिर्फ मैच जीतना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों में यकीन, डिसिप्लिन और यूनिटी पैदा करना था। रिटायरमेंट के बाद भी कारदार साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट से रिश्ता कायम रखा और सेलेक्टर्स और मेंटोर के तौर पर अपना तजुर्बा नई नस्ल तक पहुंचाया। दोस्तों, अब्दुल हफीज कारदार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक शख्स नहीं, बल्कि एक सोच और एक मिशन थे। उनकी रहनुमाई और जज्बा पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियाद बने, जो आज भी हमें इंस्पायर करता है। उम्मीद है आपको आज का यह स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह।

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: कहीं बिरयानी की खुशबू तो कहीं शीर खुरमे की मिठास, कहीं दोस्तों का हल्ला गुल्ला तो कहीं बुजुर्गों की दुआएं. ईद के रंग हजार हैं, मगर हर रंग सजता है अपनों के साथ. इसलिए इस बार हमने सोचा क्यों ना ईद आपके घर चलकर मनाई जाए. पेश है खास शो घर घर ईद. आपकी फरमाइश, आपकी बातें और ईद के वो किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुना. हम बनेंगे आपकी खुशियों के साथी ताकि हर घर मुस्कुराए और हर दिल गुनगुनाए. तो हो जाइए तैयार, सुनिए घर घर ईद ए फॉर अमिता और आरजे सर्वर मिर्जा के साथ ईद के चारों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ FM 107 पर.
4: लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज, इबादत और अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह अपने आप को हवाले करने के जज्बे को उजागर करता है. इस खास पेशकश में ईमान अफरोज गुफ्तगू, दिल को जगा देने वाले रूहानी पैगाम और ऐसी याद दहानियां शामिल हैं जो कुर्बानी, मोहब्बत इलाही और इत्तेहाद के असल मायने को रोशन करती हैं. ईद उल अज़हा के इस बाबरकत मौके पर सुनिए लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा ईद के चौथे दिन दोपहर 1 बजे से सीन के साथ ओनली ऑन FM 107.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी
5: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
6: फ्रॉड अवेयरनेस.

0: कभी कभी तो आपका सबसे खास आपको फोन करता है उसी आवाज में, मम्मा मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज पहचान रही है आप, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, और फोन कट जाता है। दिल धक धक होने लगता है, ये क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। स्कैमर फेक इमरजेंसी क्रिएट करता है, रिलेटिव फ्रेंड या बॉस बन के बोलता है कि वो मुसीबत में है और तुरंत पैसा मांगता है। इमोशन इतना स्ट्रांग होता है कि वेरिफिकेशन का वक्त ही नहीं मिलता और आप जो भी पैसे मांग रहे होते वो दे देते हैं, और फिर ना तो कोई बॉस होता है ना कोई रिलेटिव होता है, सिर्फ आपके पैसे निकल जाते हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन या इमरजेंसी हो तो एक रूल याद रखें, कॉल कट करो, दूसरे नंबर से कंफर्म करो और पेमेंट जल्दबाजी में कभी मत करना। इसी डर का वो फायदा उठाते हैं, डर के मोमेंट में डिसीजन स्लो रखना।
1: सतर्क रहे, सावधान रहे, फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अच्छा, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
3: हाँ, उसके लिए तो
2: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
3: वैसे वो तो देखो,
2: इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
3: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे।
0: प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का ये खास शो कतर 101, जहां पर हम कतर के ट्रेडिशन, कतर के कल्चर और कतर के कस्टम के बारे में बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कतर में समर स्पोर्ट्स के बारे में। हम अक्सर स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं, खेलते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं खेलने के लिए। लेकिन कतर में समर स्पोर्ट्स क्या है और इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब सिर्फ पसीना बहाना है? वेल, कतर में ये एक्चुअली जो स्पोर्ट्स है ये एक लाइफ स्टाइल है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कतर में समर स्पोर्ट्स के बारे में। कतर में समर स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं, बल्कि एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो गर्मी और ह्यूमिडिटी को चैलेंज करती है। जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो स्पोर्ट्स का फॉर्मेट बिल्कुल बदल जाता है। आउटडोर एक्टिविटीज सुबह सवेरे या देर रात तक महदूद हो जाती है और पूरा शहर इंडोर वेन्यूज की तरफ रुख करता है। कतर ने दुनिया को दिखाया कि एक्सट्रीम वेदर कोई रुकावट नहीं है। यहाँ स्पोर्ट्स सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि नेशनल विजन 2030 का एक अहम पिलर है। इस शो में हम बात करेंगे कि कैसे कतर ने स्पोर्ट्स को अपनी मिट्टी में जज्ब किया है। हम फुटबॉल से लेकर पैडल तक और स्विमिंग से लेकर ई स्पोर्ट्स तक हर चीज को आज कवर करेंगे। ये शो उन लोगों के लिए है जो फिट रहना चाहते हैं और कतर की स्पोर्ट्स हिस्ट्री को गहराई से समझना चाहते हैं। सबसे पहले कतर के या कतरी स्पोर्ट्स के रूट्स को समझते हैं। दोस्तों, कतर की स्पोर्ट्स हिस्ट्री सदियों पुरानी है।

का गहरा रिश्ता यहाँ के साहिल यानी कि कोस्ट और डेजर्ट से है। मॉडर्न स्टेडियम से पहले यहाँ के लोग पर्ल डाइविंग यानी कि मोती को ढूंढने में, वो भी समंदर से, वहां पर पर्ल डाइविंग यानी कि समंदर में पर्ल डाइविंग किया करते थे, जो दरअसल एक इंतहाई मुश्किल वाटर स्पोर्ट भी है। इसमें एंड्योरेंस, लंग कैपेसिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। इसके साथ ही कैमल रेसिंग और फैल्कनरी यहाँ के बिधाऊ कल्चर का हिस्सा है। घुड़सवारी हमेशा से एक प्रेस्टीजियस स्पोर्ट्स रहा है। अरेबियन हॉर्सेस अपनी ब्यूटी और तेज रफ्तारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स आज भी कतर में जिंदा है और इनके लिए बड़े बड़े फेस्टिवल जैसे कि मार्मी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हिस्ट्री से सीखना ही कतर की असली दोस्तों पावर है। धीरे धीरे ये बड़ा जरूरी था कि कतर के स्पोर्ट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाए और ग्लोबल हब बनाया जाए। 1970s के बाद कतर ने स्पोर्ट्स को एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम का बनना 1976 में पहला बड़ा कदम था। इसके बाद 2006 के एशियन गेम्स ने कतर को ग्लोबल मैप पर एक नई पहचान देनी शुरू की। ये पहली बार था जब मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा इवेंट होस्ट किया गया था। कतर ने समझ लिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना दुनिया के साथ कनेक्ट होने का बेहतरीन रास्ता है। एस्पायर एकेडमी की बुनियाद रखना एक मास्टर स्ट्रोक था, जहां दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को लाया गया ताकि लोकल टैलेंट को नर्चर किया जा सके। और आज कतर सिर्फ इवेंट्स होस्ट नहीं करता है, बल्कि स्पोर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी लीड कर रहा है। ये सफर एक छोटे पेनिनसुला से लेकर फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने तक एक एग्जेम्पलरी सफर रहा है। दोस्तों, बात करते हैं इंडोर स्पोर्ट्स के बारे में। कतर की गर्मियों में इंडोर स्पोर्ट्स एक सेंचुरी की तरह होती है। एस्पायर डोम दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर अरीना है, जहां फुटबॉल, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। इसके अलावा पैडल का क्रेज यहां इतना ज्यादा है कि हर दूसरे कोने पर कोर्ट्स आपको नजर आ जाते हैं। पैडल दरअसल टेनिस और स्क्वॉश का मिक्स है, जो इंडोर खेलना बहुत ज्यादा आसान कर देता है। कतर बोलिंग सेंटर, ये कौन नहीं जानता है जिसको बोलिंग का शौक है। ये दोस्तों क्रिकेट के बोलिंग की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है अंडर आर्म बोलिंग की, और वो भी छोटे नहीं, फुटबॉल के साइज जितने बड़े और भारी बोलिंग के बारे में। कतर बोलिंग सेंटर और आइस स्केटिंग, ये रिंग्स जैसे विलेज मॉल में है। लोग गर्मी से बचने के लिए स्पोर्ट्स का सहारा लेते हैं। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के लिए भी अल गर्राफा और अल रयान जैसे क्लब्स में वर्ल्ड क्लास इंडोर हॉल्स मौजूद हैं। इंडोर स्पोर्ट्स ने दोहा की कम्युनिटी को साल के 12 महीने एक्टिव रहने का मौका दिया है, चाहे बाहर टेम्परेचर कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। उसके अलावा कतर ने अचीव भी अभी तक बहुत कुछ किया है। अगर हम फुटबॉल के बारे में बात करें, स्टेडियम्स के बारे में बात करें, तो कतर के पास क्या नहीं है, सब कुछ है। अगर हम चैंपियन के बारे में बात करें, तो कतर की नेशनल टीम ने एएफसी एशियन कप को लगातार बैक टू बैक दो बार जीता, 2019 और 2023 में। और उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है। कतर दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है जिसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया। ये मिडिल ईस्ट का पहला वर्ल्ड कप था। दोहा स्टेडियम, ये गल्फ रीजन का पहला ग्रास पिच स्टेडियम था 1960 में, जहां 1973 में फुटबॉल लेजेंड पेले ने भी मैच खेला था। फिर दोस्तों, जरूरी है कि हम आउटडोर स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करें। आउटडोर स्पोर्ट्स समर में खत्म नहीं होते हैं, बल्कि उनका टाइम टेबल थोड़ा सा बदल जाता है। कतर ने आउटडोर स्पोर्ट्स को मुमकिन बनाने के लिए कूलिंग टेक्नोलॉजी इजाद की है। अलविदा पार्क और ऑक्सीजन पार्क जैसी जगहों पर कूलिंग सिस्टम लगे हैं, जो जॉगिंग ट्रैक्स को ठंडा रखते हैं ताकि आपकी बॉडी ओवरहीट ना हो रनिंग करते वक्त। ज्यादातर लोग सनराइज से पहले या सनसेट के बाद आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं जब गर्मी

शदीद होती है। साइकिलिंग के लिए लुसेल साइकिलिंग ट्रैक दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक है, जो रात के वक्त लाइट्स में भी जगमगाता रहता है। बीच स्पोर्ट्स जैसे कि वॉलीबॉल फुटबॉल कटारा बीच पर देर रात तक खेले जाते हैं। कतर की क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह साबित किया है कि अगर आपके पास विजन है तो आप किसी भी मौसम में बाहर निकलकर पसीना बहा सकते हैं, और यह इनोवेशन ही कतर को दुनिया के बाकी मुल्कों से अलग बनाती है। दोस्तों, कतर का ऑब्सेशन भी है फुटबॉल से। फुटबॉल कतर का नेशनल स्पोर्ट है। हर मुल्क का अपना एक नेशनल स्पोर्ट होता है, वैसे ही कतर का फुटबॉल है। और यहां पर लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में और लोगों के पैरों पर हमेशा आपको फुटबॉल दिखेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ने इस प्यार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। लेकिन फुटबॉल सिर्फ वर्ल्ड कप तक महदूद नहीं था। यहाँ की लोकल लीग कतर स्टार्स लीग दुनिया भर के बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट करती थी। कतर नेशनल टीम का एशियन कप लगातार दो बार यानी कि 2019 और 2023 जीतना ये दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल पर काम कितना मजबूत है। समर में इंडोर फुटबॉल टूर्नामेंट और कैंप्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। क्लब जैसे कि अलसद और अल-दुहैल की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। फुटबॉल यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि एक ऐसी जबान यानी कि लैंग्वेज है जो यहाँ रहने वाले हर मुल्क के इंसान को आपस में जोड़ती है। और फिर सिर्फ फुटबॉल तक नहीं, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स को भी उतनी ही तवज्जो दी जाती है। ये अरेबियन गल्फ को इम्प्रेस करने वाली बात है। कतर तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है दोस्तों, इसलिए वाटर स्पोर्ट्स यहाँ का लाजमी हिस्सा है। समर में कायकिंग का शौक कौन नहीं रखता, और मंग्रूव्स यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको खूबसूरती काइट सर्फिंग कायकिंग ये सब कुछ दिखेगा। सुकून देने वाली एक्टिविटी यहाँ पर आपको बहुत ही बेमिसाल देखने को मिलेगी, जैसे कि काइट सर्फिंग और जेट स्कीइंग के लिए फुवैरद बीच है। कतर हर साल सेलिंग चैंपियनशिप्स भी होस्ट करता है जो ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज की जाती हैं। वाटर स्पोर्ट्स का रिश्ता कतर की पुरानी पर्ल डाइविंग कल्चर से है, इसलिए यहाँ के लोग समंदर से डर नहीं महसूस करते। स्कूबा डाइविंग ये भी बहुत पॉपुलर हो रही है क्योंकि अरेबियन गल्फ का पानी गर्मियों में भी एक्सप्लोर करने के लिए बेहतरीन होता है। कतर ने अपने कोस्ट लाइन को इतना डेवलप किया है कि हर रेसिडेंट और टूरिस्ट के लिए कोई ना कोई वाटर एक्टिविटी जरूर मौजूद है जो उन्हें गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाती हैं। मोटर स्पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो कतर और मोटर स्पोर्ट्स का रिश्ता लुसेल इंटरनेशनल सर्किट से जुड़ा है। यहाँ फॉर्मूला 1 और मोटो जीपी जैसे बड़े इवेंट्स हर साल होते हैं। समर के एंड में नाइट रेसेस का एक अलग ही माहौल होता है। कतरीज को स्पीड और इंजन से बहुत ज्यादा लगाव है। नासिर अल अतिया जो कतर के हीरो हैं, वैसे अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं वो ये कि नासिर अल अतिया मुझे फॉलो भी करते हैं और मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। एक्चुअली मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्योंकि यू नो आप जब रेस करें और वो भी ऐसी जगह रेस करें जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाती है, और उसमें चैंपियन बनना, उसके अलावा गाड़ी की देखरेख करना, 4x4 कैसे संभालनी है, कितना टर्न लेना है, ये नासिर अल अतिया से बेहतर कोई नहीं जानता। और डकार रैली के कई बार चैंपियन भी रहे हैं नासिर अल अतिया जो कतर के हीरो हैं। उन्होंने डकार रैली जीत कर दिखाया है कि कतरीज डेजर्ट रेसिंग में दुनिया के बेहतरीन ड्राइवर्स हैं। मोटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के टॉप सर्किट्स में शुमार होता है। कार्टिंग सर्किट्स जैसे कि लुसेल सर्किट स्पोर्ट्स क्लब में यंगस्टर्स को रेसिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ये स्पोर्ट यहाँ की यूथ में बहुत तेजी से फैल रहा है। स्पीड टेक्नोलॉजी और ब्रेवरी का ये कॉम्बिनेशन कतर की मॉडर्न आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और फिर नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जो कि कतर का है। एक ऐसा दिन फरवरी के दूसरे हफ्ते में जहां पर नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन पूरे ऑफिसेज यहां बंद होते हैं और सबको मोटिवेट किया जाता है, सारे रेसिडेंट्स

0: और कतरीज को मोटिवेट किया जाता है कि आप अपनी जिंदगी में एक खेल को जरूर शुमार करें। और ये दुनिया का पहला मुल्क है जिसने नेशनल स्पोर्ट्स डे को एक पब्लिक हॉलीडे के तौर पर मनाना शुरू किया। हर साल फरवरी के दूसरे ट्यूसडे को पूरा मुल्क मैदान में होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट समर तक रहता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे का मकसद है लोगों में फिटनेस की अवेयरनेस पैदा करना। इस दिन होने वाले इवेंट्स लोगों को नए स्पोर्ट्स ट्राई करने का मौका देते हैं, जो फिर वो पूरा साल फॉलो करते हैं। समर में भी लोग उन्हीं स्किल्स को इंडोर हॉल्स में प्रैक्टिस करते हैं। कतर ओलंपिक कमिटी इस दिन ढेरों प्रोग्राम्स करती है, जो बच्चों से लेकर एल्डरली यानी कि बुजुर्गों तक सबके लिए होते हैं। ये दिन दिखाता है कि कतर की हुकूमत अपने लोगों की सेहत यानी कि हेल्थ को कितनी अहमियत देती है और स्पोर्ट्स को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने में कितनी सीरियस है। दोस्तों, कतर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि एक लेगेसी है। एडुकेशन सिटी स्टेडियम हो या अलजनूब स्टेडियम, हर एक में सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन का ध्यान रखा गया है। कतर अब 2027 फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप और 2030 एशियन गेम्स की तैयारी कर रहा है। इवेंट्स के लिए कतर ने अपने एयरपोर्ट्स, रोड्स और मेट्रो सिस्टम को इतना बेहतर बनाया है कि एथलीट्स और फैंस को कभी कोई परेशानी नहीं होती। स्पोर्ट्स टूरिज्म कतर की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बनती जा रही है। कतर का अगला बड़ा गोल दुनिया के हर बड़े स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतना है और एक एक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाना भी है। स्पोर्ट्स यहाँ की प्रोग्रेस का आईना यानी कि मिरर है। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन और लोकल टैलेंट के बारे में, तो सुनते रहिए FM 107। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद इस स्पोर्ट्स की दुनिया के बारे में बात करेंगे जो कतर की है। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
0: हाँ, उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
0: वैसे वो तो देखो,
1: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
0: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। Assalamualaikum दोस्तों, FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। ये खास शो कतर 101, जहां पर हर हफ्ते हम इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं और आज का टॉपिक है कतर के स्पोर्ट्स के बारे में। क्या आपकी जिंदगी में कोई एक खेल है जो आप रेगुलर बेसिस पर खेलते हैं और आज तक बचपन से लेकर कभी छोड़ा नहीं हो? मतलब कोई भी गेम हो सकता है, वो इंडोर गेम हो सकता है, वो बैठ कर खेलने वाला हो सकता है, वो दौड़ने भागने वाला हो सकता है, वो फुटबॉल, वो क्रिकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या आपकी जिंदगी में है? अगर नहीं है तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज हम इन्हीं स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये स्पोर्ट्स एक्चुअली में हमारे दिमाग को डेवलप करने के लिए बेहद अहम रोल निभाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने बात करी कतर के स्पोर्ट्स के बारे में जो आउटडोर हैं या इंडोर हैं, जिसमें हाथ पैर चलाना पड़ता है, लेकिन हमने उंगलियां चलाने वाले या दिमाग चलाने वाले स्पोर्ट्स के बारे में नहीं बात करी। लेकिन कतर में ई स्पोर्ट्स और डिजिटल एथलीट्स भी बहुत तेजी से चल रहा है। अब क्योंकि गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली समर की शदीद गर्मी में जब बाहर निकलना मुश्किल होता है, तो कतर की एक बड़ी तादाद पॉपुलेशन डिजिटल मैदानों का रुख करती है। ई स्पोर्ट्स कतर में अब सिर्फ एक गेमिंग का हॉबी बन के नहीं रह गया है, बल्कि एक प्रोफेशनल करियर भी बनती जा रही है। कतर ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इस फील्ड में बहुत काम किया है ताकि गेमर्स को डिजिटल एथलीट्स का दर्जा मिल सके। वर्चुअल सिटी जैसे वर्ल्ड क्लास गेमिंग हब्स में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, जहां फीफा, रॉकेट लीग और काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स खेले जाते हैं। ई स्पोर्ट्स का फायदा यह है कि ये दिमाग की तेजी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को बहुत बढ़ाता है। कतर का विजन है कि डिजिटल स्पोर्ट्स के जरिए यंग जनरेशंस को टेक्नोलॉजी और कंपटीशन से जोड़ा जाए। समर में ई स्पोर्ट्स एक बेहतरीन इंडोर अल्टरनेटिव है जो कम्युनिटी को सोशलाइज करने का मौका देता है। उसके अलावा ये जरूरी नहीं कि, क्योंकि हमने आज तक यही देखा है कि स्पोर्ट्स में मेल का ही डोमिनेंस रहा है, लेकिन कतर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीमेंस भी स्पोर्ट्स में, खास तौर पे कतर के स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कतर ने हमेशा फीमेल एथलीट्स को

हर फील्ड में सपोर्ट किया है। आज की कतरी खवातीन सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं है बल्कि वो फेंसिंग, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल में इंटरनेशनल लेवल पर मेडल ला रही हैं। मरियम फरीद कतर की नेशनल विमेंस फुटबॉल टीम इसकी बेहतरीन मिसाल है। समर में लेडीज ओनली स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे एस्पायर लेडीज क्लब और प्राइवेट स्विमिंग आर्स बहुत पॉपुलर होते हैं। इन जगहों पर खवातीन को एक कंफर्टेबल और प्राइवेट एनवायरनमेंट मिलता है जहां वो फिटनेस पर ध्यान दे सकती है। कतर ओलंपिक कमेटी ने मखसूस स्पेशली प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं ताकि स्कूल लेवल से ही लड़कियों को स्पोर्ट्स में लाया जाए। स्पोर्ट्स यहाँ की खवातीन के लिए एम्पावरमेंट का एक जरिया बन चुका है जो उन्हें डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस सिखाता है। उसके अलावा जब भी आप कोई खेल खेलते हैं तो जरूरी हो जाता है हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का भी। दोस्तों, समर स्पोर्ट्स का सबसे अहम पहलू न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन है। कतर की एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी में बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत तेजी से कम होते हैं। एक एथलीट के लिए सिर्फ खेलना काफी नहीं है बल्कि सही वक्त पर सही पानी पीना जरूरी है। एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स शुरू करने से 2 घंटे पहले हाइड्रेशन शुरू कर देनी चाहिए। वाटरमेलन, क्यूकम्बर्स और लबान जैसे लोकल ड्रिंक्स समर में हाइड्रेशन के लिए बेहतरीन है। कतर के स्पोर्ट्स सेंटर में अब न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होते हैं जो डाइट प्लान करते हैं और ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। गर्मी में हैवी मील्स के बजाय लाइट और प्रोटीन रिच फूड पर जोर दिया जाता है। अगर आपकी बॉडी अंदर से फिट नहीं होगी तो बाहर की गर्मी आपको जल्दी थका देगी। इसलिए समर स्पोर्ट्स में फूड एज फ्यूल का कॉन्सेप्ट बेहद जरूरी है। उसके अलावा बात करते हैं दोहा के नए फेवरेट के बारे में। जैसे कि कुछ देर पहले हमने बात करी थी कतर में पैडल के बारे में, अगर हम कतर के समर ट्रेंड्स की बात करें तो पैडल का नाम सबसे ऊपर आता है। पिछले 2-3 सालों में पैडल ने दोहा को पूरी तरह कैप्चर कर लिया है। ये स्पोर्ट्स टेनिस से मिलता जुलता है लेकिन छोटे कोर्ट और ग्लास वॉल्स के साथ खेला जाता है। इसका क्रेज इतना है कि कतर ने वर्ल्ड पैडल चैंपियनशिप होस्ट की और दुनिया को बताया कि हम इस नए स्पोर्ट्स में भी लीड कर सकते हैं। समर में इंडोर पैडल कोर्ट की बुकिंग मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये हर एज ग्रुप के लिए मुनासिब यानी कि सूटेबल है। इस स्पोर्ट ने लोगों को एक्टिव रखने में बहुत मदद की है क्योंकि इसे सीखना आसान है और ये सोशल नेटवर्किंग का भी एक जरिया बन गया है। दोहा के मॉल्स और स्पोर्ट्स क्लब में पैडल कोर्ट्स का होना अब एक नॉर्मल बात है। दोस्तों, अब तक हमने बात करी स्पोर्ट्स के बारे में, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स के बारे में, ई गेमिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं लेगेसी के बारे में, इक्वेस्ट्रियन एक्सीलेंस के बारे में। सो दिस इज द लेगेसी ऑफ अल शकब, हॉर्सेस और कतर का रिश्ता। दोस्तों, हॉर्सेस और कतर का रिश्ता सदियों पुराना है और अरेबियन हॉर्सेस दुनिया भर में अपनी नजाकत और स्टैमिना के लिए मशहूर है। अल शकब जो कतर फाउंडेशन का हिस्सा है, दुनिया का बेहतरीन इक्वेस्ट्रियन सेंटर माना जाता है। समर में हॉर्सेस की केयर के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंडोर अरिनाज और स्विमिंग पूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। शो जंपिंग और ड्रेसेज जैसे स्पोर्ट्स कतरीज की शान यानी कि प्राइड है। बच्चे छोटी उम्र से ही घुड़सवारी सीखना शुरू करते हैं जो उन्हें सब्र और जानवरों से प्यार सिखाता है। अल शकब हर साल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होस्ट करता है जहां दुनिया के टॉप राइडर्स आते हैं। ये स्पोर्ट कतर की कल्चर और मॉडर्निटी का एक हसीन खूबसूरत मिक्स है जो कभी पुराना नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं एस्पायर एकेडमी के बारे में जहां चैंपियंस नर्चर किए जाते हैं। एस्पायर एकेडमी कतर के स्पोर्ट्स विजन का दिल है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक ऐसी फैक्ट्री है जहां फ्यूचर के चैंपियंस बनाए जाते हैं। यहाँ यंग एथलीट्स को ना सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि उनकी एडुकेशन पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। पताज बारशिम, अकरम अफीफ जैसे बड़े नाम एस्पायर की ही देन है। समर में एस्पायर इंडोर फैसिलिटीज का हब बन जाता है जहां बच्चे अलग अलग कैंप्स में हिस्सा लेते हैं। एकेडमी का स्काउट सिस्टम पूरे मुल्क से टैलेंट ढूंढ कर लाता है।

बच्चों को दुनिया के बेहतरीन कोचेज और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की निगरानी में रखा जाता है। एस्पायर ने साबित किया है कि अगर आपके पास सही रिसोर्सेज और प्लानिंग हो तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स और एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट। कतर की स्पोर्ट्स सीन सिर्फ लोकल तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले एक्सपर्ट कम्युनिटी इसका एक बड़ा हिस्सा

उसका जुनून लुसेल और इंडस्ट्रियल एरिया के ग्राउंड्स में साफ नजर आता है। बास्केटबॉल और बैडमिंटन के टूर्नामेंट एक्सपेक्ट्स के लिए सोशलाइजिंग का एक बड़ा जरिया है। कतर की गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है क्योंकि ये सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देती है। दोहा के पार्क्स और स्पोर्ट्स क्लब में हर मुल्क का इंसान एक ही मैदान में नजर आता है। ये यूनिटी और डाइवर्सिटी ही कतर को एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स नेशन बनाती है, जहां हर किसी के लिए खेलने का मौका मौजूद है। उसके अलावा बीच लाइफ एंड वाटर फ्रंट एक्टिविटीज भी यहाँ पर बहुत होती हैं, और बीच लाइफ तो यहाँ पर जबरदस्त है ही है दोस्तों। कतर एक पेनिनसुला है, इसलिए समंदर यहाँ की लाइफस्टाइल का लाजमी हिस्सा है। ऑब्वियसली समर इवनिंग्स में दोहा कॉर्निश, कटारा, लुसेल मरीना, ये लोगों से भरी होती है। वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि जेट स्कीइंग, फ्लाई बोर्डिंग और काइट सर्फिंग गर्मियों के क्लासिक एक्टिविटीज हैं। फवारित काइट बीच जैसे जगहों ने यहाँ पर लोगों को और ज्यादा अट्रैक्ट किया है। कतर हर साल ट्रेडिशनल धाव रेसिंग होस्ट करता है, जो पुराने वक्त की याद दिलाता है कि जब धाव ही ट्रांसपोर्ट का जरिया थी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में कि कतर में जब भी आप कहीं बाहर जाएं और खेल कूद के मैदानों में जाएं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है। अगर आप जिम के शौकीन हैं तो जब भी जिम जाएं तो कोशिश करें कि मॉडेस्टली आपको कपड़ा पहनना है। किसी फिटनेस सेंटर में जाएं तो भी आप जिम के प्रॉपर कपड़े पहनकर जाएं। ज्यादा रिवीलिंग कपड़े ना पहने, घुटने ढके हों, शोल्डर ढके हों। उसके अलावा जब आप मॉल्स में या पार्क्स में जाएं तो टाइट शॉर्ट या रिवीलिंग अटायर बिल्कुल ना पहने। जो मर्द हजरात हैं उनको जनरली शॉर्ट्स उनको ऐसी पहननी चाहिए जिससे कि घुटने जो हैं वो ढके रहें। वाइल विमेंस शुड इंश्योर के उनके शोल्डर्स और नीज कवर्ड रहें पब्लिक फैमिली एरियाज में। उसके अलावा प्रेयर के टाइम को इग्नोर ना करें, प्रेयर के टाइम बिल्कुल माइंडफुल रहना है। नॉइज लेवल का एहतराम करना है, आपकी आवाज तेज नहीं हो सकती किसी भी गेम को खेलते हुए जब आप मस्जिदों के पास हों। और अगर आप स्पोर्ट खेल रहे हैं, फुटबॉल या बास्केटबॉल नेबरहुड या पार्क में खेल रहे हैं, तो रिस्पेक्टफुल रहें, रुकें वक्त पर। जब भी प्रेयर का टाइम हो तो उस वक्त आपको रुकना चाहिए और आपको अजान का जवाब देना चाहिए। उसके अलावा डू यूज द राइट हैंड, बिल्कुल इस बात का भी ख्याल रखें जब भी किसी से मुलाकात करें, किसी को कोई सामान दें, या फिर स्पोर्ट्स खेलते हुए जब भी आपको अपने टीममेट से कोई एक्सेप्ट करनी हो ट्रॉफी, या फिर आप किसी अथॉरिटी से एक्सेप्ट कर रहे हो ट्रॉफी, तो राइट हैंड का इस्तेमाल करना बड़ा ही ज़रूरी है क्योंकि लेफ्ट हैंड से रिसीव करना यहाँ पर बुरा माना जाता है। उसके अलावा डू नॉट पॉइंट, यानी कि कई बार ऐसा होता है हम जब किसी को पॉइंट करते हैं तो उस पर उंगली दिखाते हैं, तो यहाँ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, सिंगल फिंगर को नहीं दिखाना चाहिए। जब भी आपको किसी को अच्छे जेस्चर दिखाने हो तो थम्स अप किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसे डायरेक्ट सामने से उंगली दिखाएं। उसके अलावा कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं यहाँ पर, सोशल एटिकेट हैं, उसमें सबसे पहले ये है जब भी आप किसी कतरी से मुलाकात करें तो कोशिश करें कि वो पहले आपको ग्रीट करे, तब आप उनके तरफ आगे बढ़ें। उसके अलावा सही तरीका ये है कि आप सलाम कर लें। कई मर्द हजरात और वुमन जो हजरात हैं वो फिजिकल कॉन्टेक्ट को अवॉइड करते हैं। उसके अलावा फोटोग्राफी की भी प्राइवेसी है, कहीं पर भी खड़े होकर किसी की भी फोटो लेना यहाँ पर अलाउड नहीं है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। उसके अलावा टिप्स हैं कुछ जो हम बात कर सकते हैं जो रेसिडेंट्स के लिए है या न्यू कमर्स के लिए है। हाइड्रेशन इज द की, 40 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, तब से आपको पानी बहुत ज्यादा पीना शुरू कर देना चाहिए, इवन 35 डिग्री सेल्सियस पर भी, और यहां पर तो माहौल कई बार 49-50 भर भी पहुंच जाता है, तो ऐसे में पानी जरूर पिए। उसके अलावा एक्सप्लोर करें लोकेशन को, जैसे कि दोहा कॉर्निश, अलविदा पार्क, ऑक्सीजन पार्क, और उसके अलावा ऐसे लोकेशन को एक्सप्लोर करिए जो कि अनटच्ड है, ज्यादा लोग नहीं गए। उसके अलावा यहां पर कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जो सिर्फ लेडीज ओनली के लिए हैं। कई बीचेस ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आप विजिट कतर में जाकर पता करेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पर लेडीज के बीचेस अलग से हैं, वहां पर भी आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का शो कतर 101, जहां पर हमने बात करी समर के स्पोर्ट्स के बारे में। बस इतना याद रखें कि कतर की गर्मी हमारे स्पोर्ट्स के जज्बे को कम नहीं कर सकती। हमने देखा कैसे पर्ल डाइविंग की पुरानी हिस्ट्री से लेकर आज के मॉडर्न एयर कंडीशन स्टेडियम तक कतर ने हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी में बदला है। चाहे आप एस्पायर जोन में जॉगिंग करें, दोस्तों के साथ पैडल खेलें, या इंडोर अरिनाज में फुटबॉल का मजा लें, हर पसीना आपकी मेहनत और

0: ग्रोथ का माइंडसेट का सबूत है। कतर ने हमें दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटीज दी हैं, मगर असली इंजन आपकी अपनी हिम्मत है। स्पोर्ट्स सिर्फ जीतने का नाम नहीं, बल्कि हर रोज बेहतर बनने का नाम है। तो आज ही अपने डर और सुस्ती को अल्लाह हाफिज करिए और मैदान में उतर जाइए। एक खेल को अपनी जिंदगी में हर हफ्ते शामिल करिए। जो भी खेल आप खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पैडल खेलते हैं, बॉलिंग खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, जो भी खेल आप खेलते हैं, हफ्ते में एक दिन आपको डिसिप्लिन तौर पर खेलना ही चाहिए। फ्राइडे खेलिए, सैटरडे खेलिए, जो वक्त आपको मिल जाए, रात को खेलिए, सुबह सुबह खेलिए, बट खेल आपका ज़रूर चलना चाहिए। और फिलहाल अब इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आज का ये शो आपको इंस्पायर करेगा और आप अपनी यू नो स्पोर्ट की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, और उसके अलावा इतनी जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कतर की तरफ से, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आपसे फिर इसी शो में जिसका नाम है कतर 101। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
0: ईद के चारों दिन सुबह होगी और भी खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद RJ महवेश खान, 7 से 9 बजे सुबह मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियाँ, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ हर ईद की सुबह मनाए खुशियाँ FM।

0: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कदर की जमीन पर दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग, उनकी कहानियाँ, उनके जज्बात और ईद की वो यादें जो घर से दूर भी दिल के करीब है। एक खास शो जहाँ आपकी मुलाकात होगी उन लोगों से जो अपने मुल्क से दूर रहकर भी ईद को अपने अंदाज में महसूस करते हैं। उनकी कहानी, उनकी मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में आंसू। आर्जेनाजिया के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम कतर से सलाम। ईद के पहले और तीसरे दिन रात 10 बजे से ओनली ऑन FM 107। कतर से सलाम, क्योंकि दूरियां फासलों की होती हैं, दिलों की नहीं।
2: ईद की महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार। ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से।

यार कमाल है, मियां बीवी का भी नहीं। सचित एंड परंपरा टंडन एक दूसरे का साथ निभाते हुए पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। वाह,

0: are listening to
1: Afternoon Express. Afternoon Express.
0: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
1: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
0: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी. Right guys, welcome back. आप सुन रहे हो आफ्टरनून एक्सप्रेस सर्वर नाजिया हम दोनों आपके साथ है और जैसे आदि के साथ ही हमने आपसे कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं मुझे लगता है कि आपको भी मजा आएगा और कहीं ना कहीं आप थोड़ी देर के लिए जो है वो सोचने पर मजबूर तो जरूर होंगे, है ना.
2: सोचने पे मजबूर करना हमारी तो पुरानी आदत रही है. ओके, तो आज भी कुछ ऐसे ही होने वाला है और बहुत ही देखिए सिंपल सी बात है. मैं इजाजत देना आती है तो मैं ही रख देता हूँ.
0: आप ही रख दीजिए, कदम रखिए आप पहला.
2: आपका क्या मानना है जिसका मैं भी बहुत शिकार होता आया हूँ एक्चुअली. आज ये बात भी है और आप भी इसको पर्सनली रिलेट कर सकेंगे मुझे ऐसा लगता है. भाई क्या मानना है, इंसान की जो समझ है या जो उसको समझने का तरीका है.
0: नहीं, इंसान को जब हम जज करते हैं
2: हाँ. आप किसी को समझते हैं तो किस तरीके से, उसके इरादों से या उसके अमाल से, उसकी इंटेंशन से कह सकते हैं, नीयत से, किस तरीके से आप उसको समझते हैं या किस तरीके से समझा जाता है या आपके साथ ऐसा होता है तो कैसे होता है और क्या आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं. तो ये है आज का गरम गरम ताजा ताजा टॉपिक आपके लिए.
0: आज हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि इंसान को अगर आप जज करते हैं तो क्या उसको उसके एक्शंस या अमाल से जज करते हैं, किस तरह के एक्शंस हैं, या फिर उसके इंटेंशंस नियत से जज करते हैं, और किस तरह से आपको लगता है कि कौन सा इंसान ज़्यादा बेहतर है, किस तरह से उसे जज किया जाना चाहिए, क्या उसके जो एक्शंस है उससे पर्टिकुलरली जज किया जाना चाहिए या फिर इंटेंशंस को भी हमें समझना ज़रूरी है. बस इसी इंटरेस्टिंग सवाल को आज हम एक्सप्लोर करने

0: वाले हैं दिस फर्स्ट आवर. आप हमारे साथ जुड़िए, हमें बताइए, आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कहने को बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और मुझे लगता है कि एक हमारे साथ कॉलर यहाँ पर कनेक्ट भी हो रहे हैं.
1: चलिए भाई, आपके लिए लाइंस जो हैं ओपन कर दी गई हैं. और यहाँ पर पहले कॉलर हमारे साथ, कॉल करने के लिए नंबर आपको पता ही है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वेरी गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग, हम अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं और कौन है हमारे साथ?
2: शबीर बोल रहा हूँ.
1: शबीर भाई,
2: शबीर लोन.
1: अहलन व सहलन शबीर भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं इंशाल्लाह,
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
1: क्या
2: टॉपिक वाज गुड, आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट कॉल.
0: Oh, that's so nice of you, actually. Glad that finally you are somewhere or the other connected. क्या कहना चाहेंगे?
2: No, मेरे को लगता है कि intentions like मैं I can actually segregate it. Like मेरे को लगता है कि corporate life में हम किसी बंदे को hire करते हैं, तो वहाँ intention का कुछ देखा नहीं जाता है, उसके actions देखे जाते हैं, उसके like you know, so बेसिकली उसका पास्ट भी बातें करके पता चलता है कि व्हाट ही हैज अचीव्ड इन द पास्ट. वहाँ एक इंटेंशन क्या देखोगे, वहाँ आपको पता चलेगा इन द बिगिनिंग जब आपके सामने वो बैठता है, तो यू गेट टू नो विद हिज एक्शंस व्हाट इज ही टॉकिंग ट्रू, इज ही टॉकिंग यू नो लाइ. सो इंटेंशन इज समथिंग लाइक, अगर आप किसी बंदे को हायर कर रहे हो तो इंटेंशन इज लाइक इट्स अ सेकेंडरी. आप कैसे पता चलेगा क्या आप यू इंटेंशन वहाँ होता है कि आप किसी को कुछ दे रहे हो तो किस इंटेंशन के साथ दे रहे हो, वो अलग चीज है. आपका इंटरनल इंटेंशन क्या है उसको देने का. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ जकात दे रहे हो या किसी को हेल्प कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या, दिखावे के लिए कर रहे हो या जस्ट अल्लाह के नाम पे दे रहे हो. और कॉर्पोरेट लाइफ में या प्राइवेट इंडस्ट्री में तो एक्शंस मैटर करते हैं, योर पर्सनालिटी मैटर करती है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. आपको पता हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव प्रोफेशनली, इन द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बेसिकली, आई वुड से.
0: बट डोंट यू थिंक लाइक एक्शंस आर क्वाइट अलाइंड विद इंटेंशंस? अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है कुछ अच्छा करने का, नियत ही नहीं है, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा आपके एक्शंस में?
2: नो, एक्शंस ही आपके अगर स्टूपिड हो, actions aapki agar aise ho, funny ho.
0: First comes intention, then comes your action, don't you think?
2: No, agar wo intention ka, if somebody is, we are hiring somebody, he is coming, obviously he is coming, his intention is to come to get the job. Uska to intention pata hi chal raha hai, job ke liye aaya hai na. Wo aise to nahi aayega. Private work, wo ghumne to nahi aayega, aise nahi dekha main, I will try it. Aap abhi you are working as a RJ. आप किस जगह जा रहे हैं, लेट मी ट्राई. आई डोंट नो, आप ऐसा तो नहीं करोगे. या यू मे गो, मेबी यू लुक फॉर अ ग्रोथ.
0: Yeah.
2: अगर इफ यू बिहेव लाइक नॉट प्रॉपरली देयर व्हाट यू आर टॉकिंग राइट नाउ, तो वो तो उसे क्या लेना है. इंटेंशन इज लाइक यू डू समथिंग. आप इतना नहीं सोचते हो लाइफ में, भी अगर कोई काम करते हो ना, आप इंटरनल इंटेंशन होता है आपका, आई एम थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे. आप क्या पहले ही सोचोगे यार ये तो नहीं होने वाला, ये काम सच में नहीं होता है वो काम. पहले अगर पॉजिटिव थिंग सोचते हो जाएगा. जो अदर पर्सन किसी को हायर कर रहा है, किसी को लेकर रहा है, उसका इंटेंशन होना चाहिए सही. यार आई एम हायरिंग दिस गाय फॉर अ राइट पर्पस, आई एम कॉलिंग दिस फ्रेंड फॉर अ मीटिंग फॉर अ राइट पर्पस, आई एम कॉलिंग दिस फैमिली फॉर अ इन्विटेशन फॉर अ फूड विद अ राइट इंटेंशन. अदर बंदे का रिलेटिव को बुला रहे खाना खाने के लिए, तो आप इंटेंशन थोड़ी ना देखो इसका क्या इंटेंशन है. वो खाना खाने के लिए आ रहा है, कबाब मांग रहा है, रिश्ता मांग रहा है, क्या मांग रहा है.
1: शबीर भाई, व्हाट आर योर इंटेंशंस बिहाइंड द कॉल?
0: नहीं, व्हाट आई फेल्ट अबाउट यू, कि जैसे आपने कहा ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटेंशन एक्शंस दे स्पीक इन टू डिफरेंट लैंग्वेज, और दूसरे सिनेरियोज और सिचुएशन में दे स्पीक इन अ डिफरेंट वे. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं तो माय मॉम यूज्ड टू स्कोल्ड मी बैडली. मेरी मम्मा या मेरे अब्बा जो है मुझे बुरी तरह से डांटते हैं, उनके एक्शंस तो बहुत बुरे नजर आ रहे हैं मुझे, बट आई नो द इंटेंशंस बिहाइंड. होता है ना कि उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे, नियत बहुत अच्छी है, वो चाहते हैं कि हमारा जो है ना वो भला हो, हम बेहतर हो, एक अच्छा वर्जन बने अपने आप में. सो इट्स लाइक बेस्ड ऑन सिचुएशन एज यू सेड, कि मे बी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट प्लेस इन अ डिफरेंट वे.
2: सिचुएशन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिचुएशन,
0: इट्स नॉट अबाउट.
2: यस, किसी को अगर ट्रैफिक पुलिस वाला किसी गाड़ी ड्राइवर को रोक रहा है, राइट, उसका इंटेंशन क्या होता है कि मैं उसे मतलब क्या चालान करूं? नहीं, उसका इंटेंशन ये नहीं होता है. मैं तो बता रहा हूँ पर्टिकुलरली हियर, उसका इंटेंशन ये होता है लेट मी चेक हिज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, क्या ये फॉलो कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस को. हाँ, इसको अगर कुछ नहीं, इंटेंशन ये हो कि नहीं यार मुझे इसको चालान फिर भी करना है, इन अदर देशों में जो होता है वो कर लेते हैं. बट डिफरेंट सिनेरियोस लाइक मेरे को नहीं लगता है कि या वो मेरा मेरा कुछ नहीं.
0: वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच एंड फाइनली यू आर कनेक्टेड और आगे भी इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़िए अगर आपको टाइम लगता है, टाइम परमिट्स.
1: पहली बार कॉल किया है.
0: नहीं, हमारे साथ होती थी बात शब्बीर जी की द मॉर्निंग शो. आई डू रिमेम्बर
2: इट इज लाइक सम टाइम्स आई गेट टू सी द एफएम ऑन लाइक बहुत सारे लोग कॉल करते भी रहते. आई थिंक आई डोंट नो आई वाज लाइक इट वाज टू मच ट्रैफिक. I kept my car side. मैंने बोला यार like suddenly.
0: So I'm glad कि finally this question ने pulled you, dragged you from your comfort zone. हाँ, at least and happy and nice talking to you. Thank you so much for that. अपना ख्याल रखिए. Enjoy your day.
1: Excellent. Thank you so much. ईद मुबारक शबीर भाई. ईद मुबारक. कब आना है घर बताइएगा. कौन से दिन आपने decide किया है मुझे बुलाने का.
0: इनकी दावतें कब से.
1: अरे निकल ली है. तो अरे फोन काटो.
0: सच में
1: भैया ईद आ रही है, दावतें भी तो लेनी है साथ साथ. टॉपिक तो बहाना है, दावत जो उड़ाना है.
0: आपकी दावतें तो ऑलरेडी सर्वर में इतनी पेंडिंग चल रही, इतनी चल रही है, आप उन्हें तो कम से कम वसूल लीजिए.
1: क्या बात है भाई नादिया जी. चलिए इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं
0: इस टॉपिक को हम डेफिनेटली बड़े दिल से एक्सप्लोर करने वाले हैं. और मेरे साथ जरूर जुड़िए दोस्तों. मुझे बताइए कि आपकी निगाह में अगर आप किसी भी पर्सन को जज करते हैं तो इमीडिएटली जो उसका एक्शन आपको दिख रहा है उसे देख के आप जज कर लेते हैं, या यू टेक सम टाइम, यू टेक अ पॉज, यू टेक अ होल्ड और फिर आप उसके इंटेंशंस को समझ.
1: जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हम जैसों के लिए, मेरे जैसे के लिए. सरवर मिर्ज़ा की पर्सनल बात करें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी
0: है. दुनिया पहली कोने की बात हो,
1: पहली मुलाकात में मुझसे लिए तो फिर तो मतलब पहली बार अगर कोई मुझसे कोई मिल रहा ना दिया
0: तो आपके एक्शन देख के मुतासिर होगा.
1: मुतासिर होगा
0: आपको जान ले.
1: ऐसा मुतासिर होगा, कहेगा भाई दूसरी तरफ से ये इधर सारे राइट, चलो ले लो लेफ्ट. मगर
0: लेकिन सरवर मिर्ज़ा जैसे ही आपको थोड़ा सा समझेगा आपके इंटेंशंस को,
1: वही अपने सारे बैंक अकाउंट बचाएगा, पॉकेट बचाएगा, पर्स बचाएगा, सारी चीजें बचाएगा. हेलो
0: सर. हेलो
1: सलाम रहमतुल्ला. कौन है.
0: अंशु जी कैसे हैं आप. वेरी गुड मॉर्निंग आपको.
3: अल्हम्दुलिल्लाह आपको.
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से हैं. और कैसा रहा, हाउ वाज योर वीकेंड, आपका अच्छा रहा.
3: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया.
0: चलिए नाइस अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज हम बात करें कि इंसान को उसके एक्शन से जज किया जाए या फिर उसके नियत इंटेंशन से.
3: आजकल के इंसान जो है फॉरवर्ड हो गए, आपके एक्शन से ही इंसान जो है समझते हैं आपको, आपकी बातों से नहीं.
0: अच्छा आप कहते हैं कि सिर्फ इंसान जो है वो अपने एक्शन से चमकता है, नियत कोई नहीं देख रहा.
3: आप जो है चिल्ला चिल्ला के कोई अच्छी भी बात बताएंगे वो इंसान को बुरी लगेगी. एक्शन मैटर करता है. आप जो है कोई भी चिल्ला चिल्ला के बात बताएंगे, अच्छी बात बताएंगे, ऐसे करे वैसे करे, मैं इंसान को वो कान में और दिमाग में लगता है कि कितना जाहिल है, झपाट है. एक्शन मैटर करता है.
0: नहीं बट अंशु जी मान लीजिए कोई एक्स वाई जी आपसे कोई अच्छी बात कह रहा है, उसके एक्शंस अच्छे नहीं है, जाहिर तौर पे आपको डांट के बोल रहा है, आपके साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा है, बट देन एट द एंड यू नो कि ये बंदा मेरे भले के लिए कह रहा है, ये मुझे सुधारना चाहता है, तो ये उसकी नियत तो अच्छी
3: होगी, अच्छा होगा ना, उसका एक्शन भी अच्छा होगा ना.
0: बट इंसान है, कभी ना कभी तो देखिए अंशु जी गुस्सा आ ही सकता है. अब आपके माँ बाप भी तो आप पे गुस्सा करते ही करते हैं, आपकी टीचर करती थी.
3: उसको तब कंटिन्यू देखना पड़ेगा ना कि उसका नेचर यही है कि वो हमेशा यही बोलता है, तो अक्सर ये बोलता है, समझ जाओ वो नेचर का सही नहीं है. क्योंकि इंसान एक दो मरतब गुस्सा हो जाएगा, एक्शन अपना गलत बोल लेगा, हर वक्त आपको देख के बोल रहा मतलब वो जो आपको कुछ समझता ही नहीं. मैटर यहाँ पे ये करेगा कि वो कितनी दफा आपको तेज आवाज में बोल रहा है.
0: देखिए फर्क है, एक कोई आपको सुधारने के लिए बोल रहा है, एक आपको नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है. हाँ. इसमें फर्क है ना. ये हम समझदार लोग हैं, हम समझ लेते हैं, जज कर लेते हैं इस तरह से.
3: एक दफा बोल दिया, एक दफा आया गुस्सा बोल दिया तो बात खत्म. दो दफा बोल दिया बात खत्म. अब वो हर वक्त बोल रहा है तो इसका मतलब वो
0: मुझे लगता है अंशु जी के सुपरवाइजर इनको डांट रहे हैं. आपके सुपरवाइजर सब खैरियत तो है अंशु जी, ऐसा तो नहीं कि कोई है वाकई आपकी लाइफ में जो वाकई आपको टफ टाइम दे रहा है.
3: नहीं नहीं ऐसा नहीं है. हम छोड़ो, जो हमसे बकवास किया छोड़ो, खत्म. दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं।
0: ये होना चाहिए,
1: यही है दुनिया बहुत बड़ी, लोग बहुत।

0: आपको शौक बहुत बहुत बहुत शुक्रिया अंशु भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए
1: बल्कि ये कहा कि जिस छोटी सी दुनिया में जो मेरी है उसमें मैं सबसे बड़ा हूँ
0: क्या
1: बड़ी दुनिया में तो मैं छोटा हूँ लेकिन अपनी छोटी दुनिया में मैं सबसे बड़ा हूँ
0: बहुत बहुत शुक्रिया अंशु भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच फॉर द कॉल अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह ताला आगे भी बात होती रहेगी एंड फॉर नाउ भाई एक ट्रैक सुनते हैं वापस आने के बाद बातचीत आज का जो टॉपिक है मुद्दा उसके हवाले से जारी रहेगी
1: और जाने से पहले मैं चाहती हूँ सर्वर एक बार आप प्लीज जो है रिपीट कर
0: भाई इंसान अपनी नियत से या एक्शन से कैसे जाना जाता है छोटी सी बात है आप बड़ी करके भी बता सकते हैं फिलहाल आपके लिए घर कब आओगे एक खूबसूरत गाना जहाँ सोनू निगम रूप कुमार राठौर और अजीत सिंह विशाल मिश्रा दिलजीत सब एक साथ ये बात कर रहे हैं रोना नहीं देखो आंखों में आंसू आए तो परेशान नहीं होना ईद आने वाली मुझे मालूम है जानबूझ के लगाया मैंने एंजॉय कीजिए

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।
3: अल्लाहु अकबर।

0: टॉप वन म्यूजिक और सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन क्योंकि आ रहा है शो जश्न ए ईद
1: ईद मुबारक
2: और होगी आपकी रिक्वेस्ट फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज
0: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब मिस मत कीजिए जश्न ईद ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: यू आर लिसनिंग टू
3: आफ्टरनून एक्सप्रेस
2: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
3: सुबह 11 बजे से दोपहर

0: के 1 बजे तक.
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
2: जी वेलकम बैक है अहलन व सहलन, खुश आमदीद, स्वागत हम. और बिल्कुल भाई, अब गर्मियां भी पूरी तरीके से शुरू हो गई हैं, तो आइए जान लेते हैं कि क्या है वेदर का हाल और क्या कह रहा है वेदर इस वक्त. बता रहा है भाई 40 डिग्री टेम्परेचर दिख रहा है मुझे यहां पर, फील्स लाइक भी 40 है, कहीं से कहीं कोई मिलावट नहीं है. हवाएं इस वक्त चल रही है बेहतरीन, और कल रात भी यार क्या हवाएं चल रही थी भाई. मुझे तो ये हुआ कि ईद पे इंशाल्लाह ताला एक बारबेक्यू भी हो जाएगा इसी बहाने. 34 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस वक्त हवाएं, ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, 23% पे है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. जब तक ह्यूमिडिटी नहीं आ रही हमारी जिंदगी में, जब तक गर्मियां भी हसीन है. फिलहाल QMD ने भी यहां पर कुछ बताया है, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी ने सैटरडे के लिए भी बताया था कि भाई हवाएं तेज रहेंगी और विजिबिलिटी में भी कमी रहेगी. कुछ वार्निंग भी दी थी, तो वो उस हिसाब से हवाएं जो एक्सपेक्टेड थी वो रही. अपनी रोजाना की वेदर रिपोर्ट में डिपार्टमेंट ने बताया है कि अब जो शाम में हवाएं हैं वो इंश्योर एरियाज में जरा सा मौसम जो है वो गर्म रहने वाला है, और ये जो गर्द गुबार है अगर हवाएं तेज रहेंगी तो वो भी रहने वाली हैं, तो इन चीजों का ख्याल कीजिए. वहीं हवाओं की बात करें तो 12 से 22 नॉट की रफ्तार में ये चलेंगी, जबकि 32 नॉट तक पहुंच सकती हैं. ऑफशोर में भी इसी तरीके का कुछ माहौल बनने वाला है, 32 नॉट तक ये कभी कभी हवाएं जा सकती हैं. वहीं समंदर की लहरें इंश्योर एरियाज में बात करें तो 3 से 5 फुट तक रहने वाली हैं, इसके इम्कान है. और ऑफशोर की बात करें तो 4 से 8 फुट तक होंगी और कभी कभी 10 फुट तक जा सकती हैं. तो भैया बहुत ज्यादा ख्याल की जरूरत है अगर वाटर एक्टिविटीज में आप मुब्तला हैं या रहने वाले हैं. इंश्योर विजिबिलिटी की बात करें तो 4 से 9 किलोमीटर बताई गई हैं, वहीं ऑफशोर विजिबिलिटी में 5 से 9 किलोमीटर. तो भाई मुल्क भर में कुछ ये जो हालात हैं रहने वाले हैं, आप एहतियात करें, जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करें, और जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको सुने, और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही या सही सोर्सेज से ही वेदर रिपोर्ट और बाकी की मालूमात भी हासिल करें.
3: सर मिर्जा आपको कितना प्राउड फील होता होगा.
2: क्यों हवाएं उड़ा नहीं पा रही इसलिए? समझ सकता हूँ आपकी बात का. आप क्या बात कब करेंगी दादी जी? मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ इस बात को,
3: इसीलिए
2: इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं इंटेंशंस पर, नियत पर. नियत या आपके आमाल, क्या चीज लोग आपको परख कर आगे बढ़ रहे हैं या आपसे छूटते जा रहे हैं.
3: तुमसे
2: मैंने तो बताया ना, मैंने तो शुरू में बताया
3: किस चीज से.
2: मुझसे तो अगर 15 मिनट की मुलाकात हो रही है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है.
3: नॉट फॉर यू.
2: अच्छा, मैं अगर किसी को कर रहा हूँ. ओह,
3: सो यू गो फॉर एक्शन और यू गो फॉर इंटेंशंस.
2: देखिए कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन समटाइम्स. अब मैं इस बात को पूरी तरह नहीं मानता, क्योंकि कम से कम 3 बार की मुलाकात जरूरी है इंसान के साथ. इसमें अगर मैं ऐड करूं अपनी तरफ से, तो मैं उसके साथ खाना खाना पसंद करूंगा उसके साथ.
3: कहीं तो खाना छोड़ देते.
2: मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपकी
3: लोग कहते थे कि सफर कर लो किसी के साथ, पर आपने खाना खा लिया.
2: खाने में भी आपको बताया जाता है कि आपके घर की क्या जो आपको
3: मैं बाहर ले गई, आपको मैं लेकर ही नहीं गई घर, आप बताइए.
2: तरबियत दी गई है. नहीं, वो आप एक सैंडविच खिलाइए किसी को, पता चल जाएगा कि क्या हालत है.
3: वैसे एक चीज मैं बताऊं, इंसान को जो है ना इनिशियली हम सब उसके एक्शन से ही जज करते हैं, जो कि दिखता है. हम किसी की नियत किसी के दिल में पेट में थोड़ी घुस के देख के आके रहे कि भाई इसका क्या नियत है या इसके ब्रेन में क्या चल रहा है, कह रहे भाई उसके एक्शन. और हम ऐसा मानते हैं कि आपकी जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं अलाइंड है आपकी नियत के साथ. अगर मेरी नियत अच्छी साफ नहीं है तो मैं चाहकर भी मैं सरवर मिर्जा साथ अच्छा पेश नहीं आ सकती. और अगर मेरी नियत है अच्छी तभी मैं एक अच्छा साफ एक शफाफ.
2: तो आप कहते हैं कहीं ना कहीं दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं,
3: इंटरलिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं. और हर बार अच्छा लोग क्या कहते हैं कि भाई जो दिखता है वही आदमी मानता है. दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि नियत साफ होती तो सब कुछ ठीक है, और कुछ लोगों का मानना है कि भाई जो नजर आता है वही हकीकत है, हमें तो यही दिख रहा है, हम तो यही.
2: तो लोग अपनी तरफ से बात कर रहे हैं एक्चुअली, जिस तरीके से दूसरों को बनाना या समझना चाहते हैं खुद ही कर रहे हैं. आज के दौर में ऐसा हो गया,
3: अपने आप भी होता है. एक चीज मैं और बताऊंगी, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्टोरी, आई डोंट नो कितने लोगों ने सुनी थी, जहां पर सिपाही ने देखा कि जो राजा है उनकी नाक पे एक मक्खी बैठ गई है, और उस मक्खी को हटाने के लिए आई डोंट नो कौन सी स्टोरी थी, उन्होंने तलवार निकाली और राजा की नाक ही काट दी. बट व्हाट वाज दैट, द इंटेंशंस वर सो कूल,
2: मक्खी उड़ानी थी,
3: मक्खी हटानी.
2: तो अब यहां देखिए बीरबल फंस गए.
3: अब ये देखिए, ये

0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बस आप लोगों ने ऐसे टॉपिक को छेड़ा है कि भाई उसके दिल के अंदर हम कैसे घुस के जानते जानेंगे उसके नियत में क्या चल रहा है, हम तो जाहिर ही जान पाएंगे, बात ही नहीं तो भाई छुपी हुई है क्या सामने वाला हमारे बारे में क्या। हाँ भाई उसका जो हाँ कुछ मतलब आंखों से उसके चेहरे से कुछ
1: अब बचाएंगे रईस जी
0: कुछ अंदाजा लग जाता है भाई उसके जो चेहरे का जो ये होता है। हाँ
2: ये जो होता है हाँ यही तो है मसला असली जो चेहरे का ये है
1: और ये नहीं पता चल रहा है
2: ये नहीं पता चल पा रहा है क्या
0: उसका जिस तरफ बंदे का अगर वो गुस्से में है तो आंखों से बहुत बहुत कुछ अंदाजा मिल जाता है हालात तकरीबन, लेकिन पूरी बातें तो हम नहीं पढ़ सकते कि अंदर भाई बंदे के क्या चल रहा है, जो सामने उसकी एक्टिविटी होती है उसी से जाहिर होता कि मतलब
2: कुछ चीजें इसमें बहुत महारत भी हासिल लगते हैं, जैसे मैं आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे मैं कब नाराज हो गया कब मैं परेशान हो गया या कब मैं खुश हूँ।
0: चेहरे की जो ये होती है ना रंगत वो तकरीबन बता देती है, आंखें बता देती है, तकरीबन अंदाजा बंदे को लग जाता है उसका किस मोड में है, फ्लाइट मोड में है कि नेटवर्क मोड में है किस मोड में है।
2: अच्छा है रईस भाई अच्छा है
0: अंदाजा लग जाता जरूर है, लेकिन तकरीबन सारी चीजें मतलब परखना ये थोड़ा सा
2: मुश्किल है
0: उसके बाहर है, लेकिन तकरीबन अंदाजा लग जाता है कि बस बंदा
2: तो इसका मतलब ये रईस भाई कह रहे हैं कि एक्शंस से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला कितने पानी में है और कितना डूब के निकलने वाला है, ऐसे ही है रईस भाई?
0: जी जी जी तकरीबन ये थोड़ा सा ये इल्मे गैब के उससे आप लोग करीब पहुंचा रहे हैं तो ज्यादा की दिलों के अंदर के उतनी तो पहुंच नहीं है क्योंकि वो तो अल्लाह को पता है सारी चीजें, बंदे के अंदर से किसी के अंदर वो महारत है नहीं।
2: नहीं मगर हम अपनी तरफ से भी तो सोचते हैं किसी के लिए भी लेके हाँ। बात को के भाई ऐसा ही है ये तो, अब वो कितना भी अच्छा कर रहा बेचारा वो तो ऐसे ही है।
1: नहीं एक चीज जो है वो इंसान एक्चुअल में जो भी कुछ करता है उसकी नियत और एक्शन दोनों मिलकर ही होती है वो चीज।
0: बिल्कुल
1: अगर मैं कोई एक्शन में बुरा कर रही हूँ तो मेरी नियत भी है कि मैं हर्ट करूँ इसे, है ना, कहीं ना कहीं वो चीजें नजर आती है।
0: सही एक बात और एक पॉइंट मैं कहूंगा कि बंदे के अंदर मैं आपके लिए सोच रहा हूँ यार आप बड़े बड़े मतलब अच्छे दिल के अंदर सोच रहा हूँ और फिर मेरी जाहिरी जो है वो मैं आपके साथ मतलब थोड़ा सा बदअखलाकी के उस पे रह रहा हूँ, ये फिर हमारी एक्शन के ऊपर रिएक्ट किया जाएगा क्योंकि भाई तुम जिस तरीके से मतलब रिएक्ट कर रहे हो उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा ना सामने वाला बंदा, क्योंकि हमारे अंदर में पता नहीं क्या चल रहा है, हम आप कितना भी अच्छा समझ रहे हैं नहीं यार हम तो आपको अच्छा समझ रहे थे लेकिन हमने जाहिरी उस पर आपको बुरा कहा तो भाई जाहिरी पकड़ी जाएगी ना, बस यही है।
1: मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी नियत अच्छी है और कोई बात अच्छी नियत से कह रहे हैं तो एक्शन भी सुधार के होना चाहिए, मतलब प्रॉपर होना चाहिए जो लोगों को लगे कि ये आपके प्रो है।
0: अब अगर हम बड़े नरम दिल बन के रहे अपने आप को और जबान जो हमारी है
2: चल रही है चका चक चका चक चका चक काटती जा रही है दिल और कपड़े और गुर्दे और सब कुछ,
0: सख्त रवैया रहे तो वो उससे हमारे मतलब वो बंदा सामने वाला रहे यार ये बंदा अच्छा नहीं इसकी बात की इसकी जो
2: है काट दिया दिल
0: मतलब बिल्कुल ये है यार ये इससे बात करने के लायक नहीं है अरे बंदा वो अपने अंदर बहुत से
1: बात करने के लायक नहीं।
0: हाँ तकरीबन बंदे बचते हैं उससे यार ये बड़ा मतलब
1: खतरनाक है सही बात है, वही चीज है कि आपके भले ही आप कितने सच बोलने वाले हैं कितने ही अच्छे हैं लेकिन आपके एक्शन से वो अच्छाई और सच्चाई नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है अच्छे तरीके से तो फिर कोई भी आपको नहीं
0: मानेगा। उस हिसाब से सामने वाला आपको मतलब अच्छा बुरा का ये फील करेगा उस हिसाब से।
2: रईस भाई बहुत अच्छी बातचीत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
1: थैंक यू
2: रईस भाई थैंक यू सो मच
1: शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।
2: तो भाई ये थे रईस भाई यहाँ पर और अब हम कुछ मैसेजेस शामिल करते हैं, कहते हैं अच्छा यहाँ से नहीं कहते हैं यहाँ से कहते हैं अमर क्या नाम बताया
1: अकबर एंथनी
2: अमृत पाल साहब हमारे साथ जुड़े और

0: उन्होंने बड़ा ही अच्छा वॉइस नोट भी भेजा, अपनी बातों का इजहार भी किया और हमारी खैरियत भी पूछी। अमृतपाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।
1: थैंक यू जी, इन्होंने हमें वॉइस नोट भेजा था,
0: वॉइस नोट भेजा था बिल्कुल। आमिर जफर साहब हमारे साथ हैं, कहते हैं लव योर केमिस्ट्री और यहाँ पर हमें कुछ इमोजीज भी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जफर साहब। शहजादा सलीम हमारे साथ जुड़ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम, हम आपके साथ FM 107 कहते हैं। सलीम रिजवान भाई हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरा नाम अब नहीं मिला, मेरा इनाम अभी नहीं मिला।
1: भाई मिलेगा आपको।
0: रिजवान भाई का इनाम क्यों नहीं मिला, वो इसलिए कि आ रहा है इंशाल्लाह रास्ते में।
1: नहीं, सबको दिया जा रहा है लेकिन थोड़े थोड़ा स्लॉट किया है, उस हिसाब से कुछ लोगों को एक स्लॉट किया है, 2, 3, 4 इस तरह सेग्रीगेट करके बुलाया जा रहा है।
0: ऑलराइट देन, अस्सलाम वालेकुम सरोर भाई एंड नाजिया मैडम। सरोर भाई आपने तो कबीर भाई की बोलती ही बंद कर दी। अजी हाँ, अजी हाँ, ये कब हुआ यार ऐसा? मकसूद भाई कुछ अच्छा है तो मुझे बताइएगा जरूर क्या हुआ, ताकि मैं खुश हो
1: सकूं। थर्सडे में बोला था,
0: नहीं हुआ क्या वारदात तो पता चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग नाजिया जी और सरोर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल। आफ्टरनून एक्सप्रेस यूसुफ भाई हमारे साथ, संडे मॉर्निंग सबको विश करते हैं, कहते हैं कैसा रहा आप दोनों का वीकेंड? होप गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। मुझे लगता है इंसान उसके एक्शन से पहचाना जाता है, इंटेंशन तो दिल में होती है जो कि एक्सप्रेस नहीं हो पाती, यूसुफ भाई का ऐसा कहना है। ओके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, सर ईद कब है, ईद के बारे में कुछ बताएं और कतर में ईद कैसी होती है। सर मेरा फर्स्ट ईद है कतर में और 2 दिन से अपना ही थी तो सारा मूड खराब हो गया है। 2 दिन से अपना ही थी, ये क्या था? और सर आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं और आपको एडवांस में ईद मुबारक। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये पहली ईद तो जो आपकी हो रही है ना खान साहब, ये आप देखिए कितनी ईदों में इंशाल्लाह ताला बदलने वाली है और बड़ी खूबसूरत ईदों में बदलने वाली है। आप कतर में आ गए हैं, अब इंशाल्लाह ताला आप यहाँ की ईद इंजॉय भी करेंगे। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। FM 107 की बात करें तो हम आप लोगों के लिए ढेर, मतलब कहते हैं ना, टोकरी भर भर के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला।
1: प्लस आपके पास जीतने का मौका है, गिफ्ट्स भी।
0: एग्जैक्टली, आपको वाउचर वगैरह गिफ्ट्स वगैरह आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, आप जीत सकते हैं जो लाइव शोज होंगे। उससे पहले अरफा के दिन से इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। मॉर्निंग में मैं हूंगा आपके साथ इंशाल्लाह ताला, दोपहर में आपके साथ सैफुर रहमान साहब हमारे गेस्ट होंगे हमारे साथ इंशाल्लाह, और वहीं फिर ईद के दिनों में चारों दिन आप लोगों के लिए लाइव शोज रखे गए हैं, सुबह दोपहर शाम रात, जहां पर आप लोगों को जैसे नाजिया ने बताया कि गिफ्ट वाउचर्स वगैरह भी मिलने वाले हैं। मजीद जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर जुड़े, अगर जुड़े हैं और नहीं देखा है तो जरूर चेक करें, और अगर नहीं जुड़े हैं तो चेक करने के लिए जुड़ जाइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स पे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107, तो फौरन जाके जुड़ जाइए और आपको मजीद ईद के शोज के बारे में और गिफ्ट वाउचर्स वगैरह के बारे में भी मालूमात मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। जसविंदर सिंह यहां पर कहते हैं सरवर जी कल को पार्टी होने वाली है, कल को 2 बड़ी हस्तियों का बर्थडे।
1: अच्छा,
0: नाजिया जी का तो नहीं है कल, आज क्या है? अच्छा आप कौन है फिर? हमें 4-4-3, 4-4-3-7-7 पर, जहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं आपकी नियत के हवाले से, एक्शन के हवाले से। भाई जो भी नहीं है तो जो भी एक्शन हो दिल में तो हम तुम्हें बसाई और छुपाई लेंगे, यही उदित नारायण और श्रिया घोषाल भी कह रहे हैं और ये बात सरवा नाजिया भी कह रहे हैं। एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल ट्रैक आफ्टरनून एक्सप्रेस में, सरवा नाजिया आपके साथ FM 107 दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बज गए 12 और 12 बजने के साथ साथ यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन सा ट्रैक

आपका मूड बनाने के लिए अरिजीत आ गए यहाँ पर, और आप सुनून एक्सप्रेस पे तो सरवन नाजी आपके साथ हैं ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए नंबर आपको पता ही है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

0: Right guys, welcome back. A very good afternoon. आप सुन रहे हैं Afternoon Express. सरवर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं 12:07 on the clock. और आज जिस मुद्दे पे बात हो रही है वो है actions और intentions. आप किसी भी इंसान को अगर जज करते हैं तो आपका क्या criteria रहता है? क्या आप उसको जज करते हैं particularly on the basis of the actions जो आपको नजर आ रहे होते हैं, या फिर आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं, थोड़ा पॉज करते हैं और उस इंसान की नीयत यानी उसके इंटेंशंस को भी जानने की कोशिश करते हैं, फिर किसी तरह की कोई राय कायम करते हैं? तो हमें जरूर बताइए 666-222-107 पर, या फिर आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर.
1: बिल्कुल सही. और अब हम लोग कुछ अपडेट भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं.
0: हाँ जी बिल्कुल, जस्ट एक छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि अमीरी दीवान जो है उन्होंने ऑफिशियली हॉलिडे का जो स्केड्यूल है ईद उल अधा के दौरान उसे अनाउंस कर दिया है. एंड यस, मिनिस्ट्री जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं या जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इस दौरान ईद के दौरान उनकी छुट्टियां जो है वो स्टार्ट हो रही हैं ट्यूसडे यानी May 26 से, और ये लास्ट करेंगी Saturday 30 May तक. वहीं पर इम्प्लॉयज जो है वो वापस आएंगे काम पे Sunday यानी 31 May को. तो चलिए अब ये
1: अच्छा माहौल, छुट्टी छुट्टी बिल्कुल. और यहाँ पर आइए बात करते हैं, छुट्टी की आवाज सुनते ही यहाँ पे हमारे साथ कोई ज्वाइन भी हो गया, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो सलाम वालेकुम.
2: हेलो
1: वालेकुम. कौन है हमारे साथ?
0: कौन है हमारे साथ?
2: कौन है हमारे साथ?
1: तलहा भाई, क्या बात है भाई. तलहा भाई, इधर छुट्टियों का ऐलान हुआ और इधर आपकी तशरीफ आई.
2: बस भाई छुट्टी वाले अल्हम्दुलिल्लाह.
1: आवाज कुछ कट रही है, फंस रही है, क्या बात हो गई?
0: मेरा तो खैर अपना सिस्टम ही खराब चल रहा है.
2: मैं यही कह रहा हूँ, आप लोगों के पास मसला चल रहा है, हम बिल्कुल ओके की रिपोर्ट पर हैं.
1: अच्छा,
0: ओके की रिपोर्ट पे आप ये यहीं पे मसले चल रहे हैं, कान में हड़ताल चल रही है.
1: क्या बात है भाई. तला भाई, क्या नहीं ताजे, कैसा रहा वीकेंड, कैसी गुजरी सुबह और दोपहर तक आते आते क्या किया? सारे जवाब एक साथ.
2: बेहतरीन, ऑल गुड.
1: यार ये तो छोटा सा जवाब हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी.
2: सरोवर भाई आपके ऐसे साइज का सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे यार दो दिन देखोगे लगाए इसमें वीकेंड में, है ना, और जुमेरात भी थी हमारे से छूटने के बाद. कहाँ गए, क्या क्या किया, बताने वाला है तो बता दो.
2: होला वाला कुवत छूटने के बाद क्या मतलब है भाई, अल्लाह रहम करे.
1: वही तो कह रहा था मैं तला भाई.
0: अब देखा, अब आप इनके जो एक्शन है उससे इन्हें आप जज कर सकते हैं.
1: टेंशन
0: भले ही इनके बहुत अच्छे हो.
2: कर चुका मतलब सरोवर भाई को तो जज करने की जरूरत ही नहीं है, इनकी रिपोर्ट पक्की वाली मिलती है.
0: ऑलरेडी जज्ड है,
1: इनकी रिपोर्ट पक्की वाली मिलती है, कहीं से रिपोर्ट भी मिल रही है.
2: खाना खाना खिलाओगे तो बात करेंगे, खाना नहीं खिलाओगे तो अल्लाह हाफिज़.
1: नहीं अब तो खिलाना पड़ेगा यार, क्या रिपोर्ट मिल रही, कहाँ से मिल रही है ये तो अब
0: ये बताने के लिए.
2: नहीं ये आपकी आपकी जजमेंट है ना सरोवर भाई. भाई बात करनी है, खाना खिलाओगे तो बात करेंगे.
1: ओ, अच्छा ये तो हमारी तरफ की बात हो रही
0: है. मतलब उसमें जज करने में भी लोगों के ये खाने, ये हर जगह हाथ धो के खाना लेके आ जाते.
1: मगर तलबा रिपोर्ट मिल रही है, टेंशन ना.
2: खाने से जो पेट से ताल्लुक है ना, हर जगह का ताल्लुक पेट से.
1: हाँ नहीं, हर जगह का ताल्लुक पेट से ही है, ये बात तो सही है. हाँ ये बात भी है.
2: बाकी है कि माशाल्लाह वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा, अल्लाह करम है. तो बेटे मतलब मेरा वीकेंड थोड़ा सा मुझे लग रहा था बर्बाद ही होगा, लेकिन बर्बाद नहीं हुआ,
1: बच गया.
2: सैटरडे को हाँ बेटे के स्कूल से वहाँ से इन्विटेशन था, अलहमदुल्ला भाई को
1: अच्छा माशाल्लाह
2: एकेडमिक अचीवर अवार्ड मिला उसको.
1: अरे मबरूक,
0: माशाल्लाह
1: यार वेरी नाइस,
0: वेरी नाइस,
1: कांग्रेचुलेशंस भाई, मबरूक अल्फ मबरूक.
2: मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है मेरा बेटा है. भाई क्या कर रहा भाई तू, ये तो मतलब
1: हल्का हाथ रखो. क्या नाम है उनका?
2: मतलब मेरे मोहम्मद हमदान सिद्दीकी.
1: माशाल्लाह हमदान सिद्दीकी को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद भाई.
0: कि मैं आपका बेटा हूँ, अब्बा साथ में अम्मा का भी बेटा हूँ,
1: समझ रहे
2: हैं. वो माशाल्लाह उसके लिए देखे बच्चे के लिए.
1: अब देखिए अब आप ये नियत सामने आ रही है यहाँ पर नाजिया जी की, क्या कहना चाहती है वो, समझ रहे हैं आप?
0: नहीं मैंने कहा हो सकता है,
2: मैं समझ रहा हूँ जो नाजिया चाह रही है ना, मैंने पहले क्लियर कर दिया.
1: तो भाई मजाक का पार्ट, तला साहब आपको और हमदान को आप पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, बच्चे ने कुछ अचीव किया और माशाल्लाह अच्छी बात है, ये तो
0: आपको होना चाहिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह मुबारक करे, आगे भी कामयाब करे. तो थला भाई क्या ऐड करना चाहते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, कुछ नियत या कहना चाहिए अमल?
2: क्या करो भाई, देखे अमल? मैं जो हूँ ना, मैं अपनी बात करूँ, दूसरों की नहीं करता, मैं अपनी बात करूँ ना, तो पहली बात तो ना, मैं जो ना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक इंसानों से ना तवक्को नहीं रखता किसी भी लिहाज से ना, तो वो वहाँ पे जजमेंट वाली जो कंडीशन है ना वो एक्सक्लूड हो जाती है,
1: अपने आप जीरो पे आ जाती है। सही,
0: बहुत सही।
2: हाँ, वो एक्सक्लूड हो जाती है ना, क्योंकि बात सारी है कि ना, देखो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हर किसी की रिक्वायरमेंट में फुलफिल उतरूँ 100%, मैं पॉसिबिलिटी नहीं। तो जब मैं अपने लिए नहीं कर सकता ये काम दूसरे के लिए है, तो फिर मैं दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट करूँ?
1: वाह वाह,
2: तो ये चीज हम समझ लेना थोड़ा सा, तो काम कर
1: जाएंगे।
2: दूसरे के लिए नहीं है ये,
1: सही सही सही,
2: अपने लिए आसानी है।
1: बहुत अच्छी बात,
2: क्योंकि मैं ये बात मैं क्लियर करता हूँ बेगम को, मैं देखो मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखता।
0: ऐसा ये बड़ा अच्छा तरीका है, जब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं लगाता है, नहीं रखता है, और फिर वो कर दे,
1: गर्मी करें
0: और फिर वो कर दे, तो फिर कितना अच्छा लगता
1: है। अपना आदमी तो घर में ही खरीदे रहा है।
0: तो मतलब ही इज ऑनेस्ट, देखो सच्चा है बंदा, ऐसा नहीं कि यहाँ मैं ऐसा हूँ वहाँ वैसा
1: नहीं, मगर ये तो मसला हो जाएगा, ये तो मतलब मसला ही दूसरा हो जाएगा भाई।
0: मुझे नहीं लगता वो इनकी वाइफ समझ गई होंगी कि ही सच्चा
2: भाई। बात बताऊं क्या है,
0: हाँ।
2: देखो ऐसा हो रहा है, हमारी शादी ना 10 साल हो गए अलहमदुल्ला, 11वां साल चल रहा है शादी को, और शादी आपको बताओ मजे की बात कौन सी डेट को हुई है, आप गैस करें, मेरी तबीयत के मुताबिक 1 अप्रैल को। ठीक है, तो वो 1 अप्रैल ही था जुम्मे का बरकत दिन था, जुम्मे को रख ली, बाद में पता चला 1 अप्रैल आ रहा है। तो वो तो मैं देखो बेगम, शादी अपनी पहली अप्रैल को हुई है, 1 अप्रैल को, तो मुझसे क्या उम्मीद रखोगी?
1: अब तो जिंदगी भर गायबाना ही गुजरेगा हर दिन।
2: मैंने जो होगी अल्लाह की करनी, जो नहीं हुआ वो तो बस छोड़ दो, क्या कर।
1: अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी फैमिली को खुश रखे। बड़े ही प्यारे तला भाई, बड़ी प्यारी इनकी बातें भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया तला हमारे साथ जुड़ने के लिए, ख्याल रखिए सर, थैंक यू सो मच, अहलन वसहलन, आप भी याद रखिए, अल्लाह हाफिज। तो भाई तला भाई यहाँ पर हमारे साथ, और यहाँ पर एक मैसेज, कुछ मैसेज वो भी शामिल कर लेते हैं।
0: सबसे इम्पोर्टेंट बताइए कि आपकी नियत इंसान के दिल का हाल होती है। कभी कभी कोई भी इंसान भला करना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ठीक ना हो। मतलब मिसाल के तौर पे, अगर मेरा कोई अच्छा सच्चा दोस्त है और मैं उसको सच बताना इसलिए चाहती हूँ कि उसका सुधार हो, उसका भला हो, लेकिन मेरा स्टाइल बोलने का जो है वो अच्छा नहीं है।
1: वही जैसे आपने वालदेन का,
0: लेकिन
1: वही जैसे आपने वालदेन का बताया कि भाई बच्चे अभी नहीं समझेंगे, मगर
0: इसीलिए लोग आपको बुरा जज करेंगे। आपकी नियत कितनी भी कुछ भी हो, इनिशियली लोग जो है ना आपको आपके एक्शन से ही जज करते हैं। कोई भी नियत या इंटेंशंस नहीं देखता, ये तो बहुत बाद में आते हैं, और खास करके उनके साथ जिनसे आप बहुत ज्यादा यू नो फेमिलियर हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा उठना बैठना, दे यू ना
1: दस घर वाले भाई, सबसे पहले घर वाले, भाई बहन ही
0: करीबी है, कोई दोस्त है ऐसा बहुत करीबी जो आपको जानता ही जानता है फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग, तो वो तो समझेगा कि हाँ नहीं ये बोल रहा है ऐसे, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपके एक्शंस कैसे हैं, अच्छी नियत के साथ एक्शंस भी अच्छे तरीके से अलाइंड होने चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि आपके एक्शंस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं,
1: सही,
0: या मतलब एक्शंस भी ऐसे हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नियत रिफ्लेक्ट हो रही है। दिखा के तो आप बहुत हंस के या बड़ी हम्बली लोगों को ग्रीट भी कर रहे हैं, और आप उनको दिखा ये रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर आपके दिल में ये चल रहा है कि जल्दी से ये सारे के सारे यहाँ से भागे। मतलब कुछ भी, तो वो भी कभी ना, वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे दिख जाएगी। वो होता है आपके, देखो आप दिखा तो बहुत ही हम्बल,
1: बस करो चले जाओ, आज की दावत हो गई।
0: एग्जांपल ये हुई, और भी चीजें हो सकती है कि आपके एक्शन तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, बट आपकी नियत बहुत ही खराब है।
1: कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर भाई एंड मैम नाजिया, एडवांस में ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, दिस इज हमजा। आज का टॉपिक बेस्ट है भाई, मैं लोगों को असल में दोनों चीजों से जज करता हूँ, बातों से भी और काम से भी। बातें बताती हैं कि इंसान क्या सोचता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, और वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है। काम दिखाता है कि वो वाकई कैसा है, जिम्मेदार है, ईमानदार है, मेहनती है, या सिर्फ बातूनी या बातों का तेज है. अक्सर लोग पहले इंप्रेशन बातों से बनाते हैं, लेकिन लंबी मुद्दत में इज्जत और ट्रस्ट काम से बनता है. इसलिए कहते हैं बातें असर रखती हैं लेकिन काम सच दिखाता है. क्या बात है यार हमजा भाई, बहुत ही अच्छे और बड़ी ही प्यारी बात करी आपने, दिल को छू गई. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और मैडम, आपका क्या हाल है? मोहम्मद कलीम, मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को सलाम. तो वालेकुम अस्सलाम. यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ, फिर मैसेजेस जारी रखेंगे. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا, كيسے ہیں جے بی جاوید بھائی ہمارے ساتھ جڑ گئے.
3: اتنا لمبا جو پاؤس لیا نا, میں بس آ رہا تھا اسٹوڈیو بھی.
1: السلام
3: علیکم آپ کو.
0: وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے امید کر رہے ہیں. اچھے سے ویکینڈ آپ نے اسپینڈ کیا ہوگا اپنا.
3: اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, بہت اچھا ویکینڈ ایز یوزول اسپینڈ کیا, ہر وقت شکر اور ہر وقت اچھا. اور میں آج کا جو ٹاپک ہے بڑا خوبصورت ٹاپک ہے, مجھے نہیں لگتا تھا کہ آج نازیہ جی آپ کوئی کال اٹینڈ کرتے یا کوئی میسیجز سرور بھائی پڑھتے, کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے معصوم بھائی سرور بھائی پہ.
1: یہ آنسو کون دیکھتا ہے, یہی تو بات ہو رہی ہے یہاں پہ. یار جی بھی آپ نے بالکل صحیح بات رکھ دی, اس وقت ایک دم موقع واردات پہ پہنچی ہے سی آئی ڈی اور صحیح وقت پہ آئے آپ بھی.
3: ایک سیکنڈ, اس کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ اچھا بول لیتا ہوں.
1: اچھا بھائی جاوید بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, ان شاء اللہ کل بات ہوگی. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. ویسے جاوید بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے صحیح معنوں میں؟
3: اچھا بیسیکلی میں نے آپ کا ٹاپک جو ابھی جو آپ میسیجز کچھ پڑھ رہے تھے وہاں سے میں نے اس کو اٹھایا ہے.
1: نہیں بالکل یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نیت سے یا کہنا چاہیے اپنے عمل سے کس طریقے سے اس کے
0: کسی بھی شخص کو
1: کیسے ناپتے ہیں.
3: دیکھیں سرور بھائی اور ناظر جی, نیت تو جانچنے والا اور دیکھنے والا اور پڑھنے والا اور سمجھنے والا وہ رب کی ذات ہے, لیکن جو انسان کا عمل ہے وہی دکھتا ہے, اسی کو دکھنا چاہیے. باتیں بھی بہت اچھے طریقے سے لوگ کر لیتے ہیں, ادا بھی کرتے ہیں, لفظوں کا چناؤ بھی ہے سب کچھ, لیکن عملاً جب تک عمل آپ کا خود کہتا ہے, عمل کی اپنی ایک زبان ہے جو دکھتا بھی اور بکتا بھی اور بولتا بھی ہے اس کے لیے. باقی لیکن کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے انسان نیت کرتا ہے کہ یار میری نیت یہ ہے, وہ بھی ضروری ہے, نیت بھی مسٹ ہے, اس کے بغیر عمل نہیں ہوتا.
0: ہو گئی نہیں, تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں پہلے نیت کرتے ہیں نا
3: ہر چیز میں. ہر دیکھیں خالی نماز تو مطلب اس میں تو ضروری ہے, فار ایگزامپل اگر ہم نے کہیں جانا ہے تو وہ سوچ اور نیت ہے کہ یار میری نیت میں وہاں پر جاؤں, میں وزٹ کروں, میں اس کے گھر جاؤں, یہ نیت کر رہے ہیں آپ.
1: صحیح.
3: تو باقی مطلب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ راستے میں ہوں, لیکن یہ ہے کہ آج کا ٹاپک جو ہے نا, پھر ایک دفعہ میں پتہ نہیں چھوڑ کہنے لگوں یہ سچ کہوں گا

0: सरोवर भाई, आप दोनों को वैसे ना आज मैसेजेस नहीं पढ़ने चाहिए थे।
1: अच्छा,
0: सब कुछ
1: अपनी आप भी थी, आप भी थी है, सुना देनी चाहिए थी।
0: खुश रहिए
1: यार। अरे जावेद भाई, कुछ गुनगुनाते जाइए।
0: गुनगुनाओ यार, गुनगुनाना क्या है, मैंने माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी आवाजें हैं। और मैं नाजिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपकी काविश और मेहनत फेसबुक पे भी देख रहा हूँ, और सरोवर भाई आपके भी माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
0: और दो रहने यही हैं, ना मर के भी बिछड़ेंगे हम दोस्तों, ना मर के भी बिछड़ेंगे हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे

0: भाई नाजी जी वहाँ लिखा हुआ है,
1: लिखा अरे
0: ये देखिए
1: ये तो लिखा तो नहीं हो सकता।
0: अरे क्या बात कर रही है आप, ये देखिए लियो मैसेज ही गायब हो गया।
1: अल्लाह तेरा शुक्र है, देखा नियत देखिए।
0: नहीं नहीं नहीं, मैं ढूंढ के बताता हूँ। बेहतरीन निजाम साहब कह रहे हैं मैं रुका रहा हूँ,
2: बहुत बहुत प्यारा मतलब आवाज है उनकी, मतलब गाना भी अच्छा गाया।
0: अच्छा वो जेबी की बात कर रहे हैं?
1: अच्छा हाँ,
0: जावेद साहब की भी
1: बहुत प्यारी आवाज।
0: तो क्या कहते हैं जुनैद निजाम साहब, आदमी अपनी इंटेंशन से पहचाना जाता है या अपनी हरकतों से?
2: देखिए साहब, मैं जैसे सुन रहा हूँ, बहुत पहले तो मैं आप लोग जो टॉपिक चुने उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, हर एक की डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा है। क्या नाम करिए आप मुझे वो कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि साहब, एक पुरानी कहावत है हमारे लैंग्वेज अपने कल्चर में, आदमी के साथ रहकर देखो और जो गोल्ड होता है उसको घस कर देखो।
0: वाह,
2: सिंपल है, एक मार दो टुकड़े, मतलब आप जब तक किसी के साथ नहीं रहेंगे।
0: अच्छा ये मेरे साथ इन्होंने ऐसे कर दिया नादिया ने, ये गोल्ड के साथ रह रही है और मुझे घिस दिया इन्होंने।
2: आपको घसने के लिए भी तो एफर्ट लगेगी।
0: हाँ तो वही तो इसलिए चारों तरफ से घिसा गया है थोड़ा थोड़ा।
2: वो मामूली बात थोड़ी है इनको घिसना है
0: निजाम साहब, थोड़ा थोड़ा हर जगह से घिसा गया है, यही तो बता रहा हूँ।
1: नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा से घिसा गया है, थोड़ी बात बाकी है।
0: अच्छी बात है, अच्छी बात है यार।
2: आदमी में रहने, जब तक आप किसी साथ क्लोज नहीं रहोगे आप नहीं जान पाओगे। मतलब निया हम नहीं, मतलब अल्लाह ही जान सकता है नियत हमारी और सामने वाले की। मगर एक चीज है, आप थोड़े सिम्टम्स है, जैसे बहुत से कॉलर्स पिक कर रहे थे कि किसी की आंखें किसी के, मतलब मगर मैं तो देख लिया साहब, ये बाल थोड़े बहुत जो सफेद हुए हैं धूप में नहीं हुए। आपको जब तक किसी के साथ नहीं रहे, इत्तेफाक नहीं हुआ, आप नहीं जान पाओगे कि उसका इंटेंशन क्या है।
0: वक्त गुजारना जरूरी है, सही।
2: और भी है शायद कहीं कोई हदीस है कि आप ट्रैवल करके देखिए साहब,
0: बिल्कुल
2: मेरा सफर मैं तो आजमाया हूँ। ट्रैवल करिए, आपको रियल पिक्चर मिलेगा किसी ना किसी का कि ये वाकई ये।
0: चलिए तो फिर एक काम ये करते हैं निजाम साहब, दो टिकट करवा लीजिए, जरा मेरे बारे में भी आपको कुछ पता चल जाएगा और आपके बारे में मुझे पता चल जाएगा।
1: नहीं वो कह रहे हैं मुझे सब कुछ पता है, अब ज्यादा चल गया तो कुछ रह नहीं पाएगा।
2: तो अब इतना पता चल गया कि अब टिकट तो छोड़िए
0: सलाम तक न पहुंचे।
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप बहुत शख्सियत है सरोवर भाई और नाजिया जी, नाजिया बाजी आप भी बहुत माशाल्लाह, जिस तरीके से आप लोग शो कैरी करते हो ना, रियली
1: थैंक यू जी, बहुत
0: शुक्रिया, मोहब्बत मोहब्बत नवाजिश निजाम भाई।
2: बहुत कम शोज में कॉल करता हूँ मगर आप लोग की जुगलबंदी के चक्कर में मुझे कॉल करना
1: पड़ता
0: है। मोहब्बत से नवाजते रहिए और अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए निजाम भाई।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक इंशाल्लाह। तो ये थे निजाम भाई, ये बड़ी प्यारी दुआएं देते हुए, प्यारी प्यारी बातें करते हुए यहाँ पर।
1: सरवर भाई, मैंने आपके लिए सरवर मिर्जा भी कुछ, मैंने सोचा था कि मैं आज
0: कहूंगी
1: इस मौके पे आपको भी कुछ कहूंगी। और ये नहीं, आपके लिए नहीं, चलिए अच्छा। ये बहुत ही अच्छी लाइन है और इसे इसी तरह से कंक्लूड भी किया जा सकता है।
0: मुझे लगता है नादिया भी हमें रुकना चाहिए क्योंकि बहुत लोग आज के टॉपिक से हमारे साथ जुड़ना भी चाह रहे हैं, कॉल पे भी हैं, तो हम गेम भी अवॉइड कर सकते हैं जब इतनी बात हो रही है किसी टॉपिक पे। हम यूजुअली करते आए तो देखते हैं, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मैसेजेस लेंगे, कॉल मजीद लेंगे, क्योंकि लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, ये बात भी सही है, ये आदत मेरी, ये देखिए अभी सुधरी।
1: इनकी ज़बान बीच में ऐसे डालने की जो आदत है, बात दूसरे की, मैं भूल जाऊंगी क्या कहना है।
0: फिलहाल एंजॉय कीजिए सुनने का मीट ब्रॉस और अनजान के साथ एक प्यारा सा मिक्स। FM 107 पे इस वक्त नाजी और सरवर आपके साथ हैं। दिल से।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज इबादत और अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह अपने आप को हवाले करने के जज्बे को उजागर करता है।
1: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
2: इस खास पेशकश में ईमान अफरोज गुफ्तगू, दिल को जगा देने वाले रूहानी पैगाम और ऐसी याद दहानियां शामिल हैं जो कुर्बानी, मोहब्बत इलाही और इत्तेहाद के असल मायने को रोशन करती हैं। ईद उल अज़हा के इस बाबरकत मौके पर सुनिए लब्बैक की सदा,
3: लब्बैक की सदा
2: ईद के चौथे दिन दोपहर 1 बजे से सीम के साथ ओनली ऑन FM 107
4: कहीं बिरयानी की खुशबू तो कहीं शीर खुरमे की मिठास कहीं दोस्तों का हल्ला गुल्ला तो कहीं बुजुर्गों की दुआएं ईद के रंग हजार हैं मगर हर रंग सजता है अपनों के साथ इसलिए इस बार हमने सोचा क्यों ना ईद आपके घर चलकर मनाई जाए पेश है खास शो घर घर ईद आपकी फरमाइश आपकी बातें और ईद के वो किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुना हम बनेंगे आपकी खुशियों के साथी ताकि हर घर मुस्कुराए और हर दिल गुनगुनाए तो हो जाइए तैयार सुनिए घर घर ईद ए फॉर अमिता और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ईद के चारों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ FM 107 पर
5: It's the afternoon express
6: हाँ जी वेलकम बैक अहलन वसहलन और चलिए भैया मैसेजेस से शुरू कर लेते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर खूब सारे मैसेजेस भी हैं अस्सलाम वालेकुम सर मुझे लोगों ने चेहरे से ही मुझे लोगों के चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये किस टाइप का आदमी है जैसे मैं उस पर नजर जैसे मेरी उस पर नजर पड़ती है मुझे पता चल जाता है कि एक किस टाइप का आदमी है ओए ओए ओए और सर परवरिश परवरिश होती है जिससे मेरे मतलब तरह का आदमी है उस तरह ही यार मैं समझ नहीं पा रहा इसको मुझे जरा से जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ना यार बात भाई ए, क्या कहना चाह रहे हैं और सर्वर परवरिश होती है जैसे मेरे शहन में होता है अच्छा शहर या जहन कहना चाहते हैं कि इस तरह का आदमी है उसे उसी तरह फिर निकाल देता हूँ जहन में से निकाल देती है मेरे ख्याल में अगर ऐसा है ये कहना चाहते हैं अरबाज भाई ओए होए होए होए होए होए होए रमेश भाई हमारे साथ जुड़ गए गुड आफ्टरनून कहते हैं नाजी जी और सरव भाई रमेश भाई कैसे हैं कैसा रहा वीकेंड उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहा होगा सरव भाई अल्लाह का करम है बिरयानी गर्म है कब तक आ रहे हो मुदस्सिर भाई है शायद मेरे साथ
7: अल्लाह
6: कौन है मकसूद भाई है मकसूद भाई हमारे साथ
7: ऐसे भी कह सकते हैं अल्लाह का करम है दिमाग हमारा गर्म
6: भाई ठंडा ठंडा रखने के लिए उसको पानी पिलाइए गर्मी बहुत हो रही है नादिया की हालत देख रहे हैं आप अस्सलाम वालेकुम बहन जी एंड भाई साहब बेस्ट प्रोग्राम एवर एडवांस में ईद मुबारक
7: आपको
6: नादिया बहन जी टू गुड कहते हैं यहाँ पर आपकी तारीफ करते हुए नाजिया जी स्पेशल रफत भाई हमारे साथ
7: ओह थैंक यू
6: लीजिए नाजिया आपकी बात सुन ली गई पूछिए कैसे
7: कैसे
6: मुबीन बुखारी बददादी
7: अच्छा फाइनली पूछिए आप इनसे कि थे कहाँ भाई
6: यार एमबीबी कहाँ थे हमने इतनी फिकर हुई हमें और हमने इतना आपको याद भी किया और यहाँ तक कि हमने आपका फोन मिलाना चाहा मगर मिला नहीं पाए कोई बात नहीं हमने सोचा तो आगे मिलाएंगे ऑब्वियसली हमें टाइम नहीं मिला होगा कॉल मतलब टाइम से मेरा मतलब माजरत चाहता हूँ हमें वो फ्रेम नहीं मिला होगा या वो वक्त क्या कहना चाहता हूँ मैं मतलब मिला नहीं पाए यार किसी तरीके से दूसरों की आमद थी माशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे यहाँ पर आपने अपनी बात की शुरुआती मैसेजेस से नहीं करी वीडियोस से करी है और मुझे लगता है कि अपने घर के कुछ प्यारे प्यारे फैमिली के वीडियोस जो है हमारे साथ शेयर करें तो हम जरूर देखें क्या आप छुट्टी पे हैं और क्या आप वहीं से हमें मैसेज शेयर कुछ तो बताइए एमबीबी कहाँ हैं आप आखिर ओके कहते हैं जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही इनको पता चल जाता है कि इंसान के जहन में क्या है आदमी कैसा है और फिर वैसे ही होता है क्या बात है यार ये तो अरबाज भाई बहुत खतरनाक आदमी होते जा रहे हैं दिन ब दिन अस्सलाम वालेकुम सर भाई कैसे हैं आप नाजिया को भी सलाम आपका ईद के दिन कौन से शो है कौन से शो है
7: कौन सा दिन है आपका
6: कौन से शो
7: टाइम है
6: नादी जी बताइए कौन से?
7: अच्छा मेरा पूछ रहे हैं
6: मतलब दोनों
7: अच्छा मेरा तो देखिए भाई रात में है 8 बजे से 10 बजे तक मैं और फजील
6: और
7: जरूर जुड़िएगा वहाँ पर जो है 1000 कतरी रियाल के आपको जो है वो गिफ्ट्स मिलने वाले हैं
6: इंशाल्लाह ताला दूसरे प्रोग्राम्स में भी तशरीफ लाइए ना दी ऐसा ना करें आप हमारे लिए मतलब, हमारी भी कहिए कि सर्वर के प्रोग्राम में भी जुड़ना
7: हाँ।
6: अच्छा तो आप समझ रहे हैं कि आपको सारे प्रोग्राम में जुड़ना है और मेरा प्रोग्राम कितने बजे से मुझे याद ही नहीं आ रहा इतनी देर से जानने की सोचने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे ख्याल में 10 से 12 है हाँ इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा 10 से 12 है मेरा और अमिता है मेरे साथ हाँ अमिता ही है ना हाँ अमिता ही है माशाल्लाह इतने बड़े बड़े कलाकार हैं और वो भी लेडीज कलाकार हैं मेरे साथ नादिया जी के
7: तो
6: साथ
7: नहीं है, नहीं है, अल्लाह
6: अब मैं अमिता जी के साथ हूँगा
7: तो मतलब आप कह रहे हैं आपका दिमागी तवाजुन जो है
6: अमिता जी के साथ मैं सफा जी के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा आप देख रहे हैं मतलब आप सोच आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि माशाल्लाह माशाल्लाह भाई
7: कभी हुरूर आपने
6: बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिल रहा है और मुझे तीनों मिलके बहुत कुछ सिखा भी रही हैं आपको तो ये पता ही है
7: अभी तो मैं ही मिला
6: कोई अखलाक सिखा रहा है कोई चुप रहना सिखा रहा है कोई जायजी तौर पे जीना सिखा रहा है कोई दूसरी चीजें सिखा रहा है तो सीखता ही रहूं मैं तो जिंदगी में मैं सीखने के लिए ही पैदा हुआ हूं

0: माशाल्लाह। अच्छी बात पता है क्या, हर कोई आपको
1: गुरूर नहीं किया, दूसरे को पलट दिया, ये बात दिया यार।
0: आपने गुरूर की जरूरत नहीं, कभी गौर ही नहीं किया।
1: अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का शुक्र है जो आया मेरे रंग में रंग गया। समझाने आए थे, उस्ताद भी थे, बहुत सारी टीचरें भी थी, घर वाले भी थे, मगर आफ्टरनून
0: एक्सप्रेस। अब एक चीज जो है ना, एक चीज वो कहते हैं कि जैसा नजरिया होता है ना, लोग आपको वैसा ही समझते हैं,
1: वैसे ही समझने लगते
0: हैं। अंदर से खूबसूरत लोग आपको खूबसूरत समझते हैं,
1: वाह,
0: जो खराब होंगे वो आपको खराब ही समझते
1: हैं, वो कहेंगे कि ये खराब है।
0: जैसे वो कहते हैं ना, नेक लोगों में नेक समझा जाता है मुझे, और जो गुनहगार है गुनहगार समझता है मुझे। ये भी बड़ी बात है कि जैसा इंसान है वैसा ही, अगर वो झूठा है तो आप भले ही सच बोल रहे होंगे, उसके लगेगा ये झूठ बोल रहे हैं।
1: क्या कहने भाई नादिया जी, क्या बात है आपकी नादिया जी,
0: आज मैंने आपको सिखाया है।
1: अरे मैं तो मैं कह ही रहा हूँ ये बात। तो भाई यहाँ पर खूब सारे मैसेजेस के साथ साथ आपकी कॉल भी आज हमने ली। मजीद आप आगे भी हमें कॉल कर सकते हैं, अभी हमारे पास एक 10-12 मिनट का टाइम मौजूद है, एक ट्रैक भी सुनेंगे और वापस आने के बाद, बल्कि हम पहले ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं और वापस आने के बाद आप लोगों के मैसेजेस भी शामिल करेंगे और मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या जानना है, क्या समझना है कि इंसान अपने जो भी अखलाक उसको मिले हैं, तरबियत मिली है, उसको मद्देनजर रखते हुए जब वो आगे बढ़ता है तो दूसरे लोग उसको किस तरीके से जज करते हैं, उसकी इंटेंशन से, उसकी आदतों से या उसकी हरकतों से।
0: बिल्कुल।
1: 666-22-107 पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं और वहीं कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77-443-77। फिलहाल एंजॉय कीजिए शर्ट द बटन, नादिया सरवर आपके साथ दिल से।

क्या क्या खूबसूरत अंदाज है भाई अपनी अपनी बात रखने के लिए। दादी जी क्या कहती हैं आप इस गाने के बारे में, क्या कहना? सोनू निगम ने इतने प्यारे से ये गाना गाया, जबकि ये गाना कैलाश खेर ने भी अपनी आवाज में गाया है। किस कदर कुर्बानी दे रहा है एक शख्स है, क्लिप भी बन जा रहा है बेचारा, बटन भी बन जा रहा है, नेकलेस भी बन जा रहा है, क्या क्या करेगा।

0: यहाँ से, यहाँ पे आगे सारी बातें जो गिरती हैं,
1: आपने इतनी बातें
0: कदर ही नहीं जानते,
1: आप कदर ही नहीं जानी अपने कॉलर की। अच्छा। बेचारे वेट करते
0: निकल लिए, क्या बात है
1: भाई। अगर आप सुन रहे हैं ना तो वापस से कॉल कर लीजिए।
0: बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है कि हम आपकी कॉल ले सकते हैं। 443-443 पे बल के साथ साथ भी आगे मिला लीजिएगा, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर है ही लाइन पे, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो सलाम वालेकुम।
2: हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसे बहन जी एंड सरवर भाई साहब?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। एडवांस ईद मुबारक आप लोगों को।
0: अरे एडवांस ईद तो मुबारक आपको भी मेरे भाई,
1: एडवांस में मत हमें दीजिए, उस दिन भी हमारे साथ
0: उस दिन। हाँ मतलब अभी तो दे ही रहे हैं आप, ठीक है, मगर उस दिन भी जरूर तशरीफ लाइएगा इंशाल्लाह। तो कौन है हमारे साथ, नाम तो बताया नहीं आपने।
2: रिफत, रिफत।
0: रिफत भाई जाते जाते क्या बात है, आते आते आएगा।
2: उस जमाने में चैंपियन रहा था।
0: ओहो
1: ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई।
2: वो जो तेज़तर्रार
0: अच्छा टक ट्विस्टर जो हम लोग खेलते थे, उसका रिफत भाई ने
1: कल यही टक ट्विस्टर।
2: मैंने कोशिश किया बहुत दफा कॉल करने की, लेकिन आप लोगों के मसरूफियत इतना था कि मेरे को नहीं मिला।
0: अच्छा चलिए,
2: मैं तो सोचा अभी फोन लगेगा तो 500-500 मिलेगा, इसीलिए इतना आदमी लोग फोन करता है।
0: मतलब आप समझ नहीं नाथी जी क्या कहना चाह रहे हैं रिफत भाई के, एक नॉर्मल से प्रोग्राम में कॉल्स की आमद इतनी थी कि उनको ये लग रहा था कि 500-500 रियाल यहाँ पर बट रहे हैं। यार ये तो तारीफ का एक बहुत ही प्यारा अंदाज है।
2: सच में मैं कोशिश किया कितनी दफा।
0: अच्छा
2: तो आज मैं बोला ट्राई करता हूँ, शायद लग जाए।
0: चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है रिफत भाई, आप तशरीफ भी लाए। कुछ कहना चाहते हैं रिफत भाई आज के मुद्दे के हमारे हवाले से, कि आदमी अपनी नियत से जाना जाता है या अपनी हरकतों से? हरकतों पे आ गया वो सीधे सीधे। अरे दोनों से जाना जाता है,
2: दोनों से ही ना।
0: आपके दोस्त अहबाब आपके साथ कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है,
0: अच्छे हैं। और आप उनके साथ कैसे हैं?
2: ठीक ठाक
0: मतलब वो ज्यादा अच्छे हैं आप ही कहते हैं?
2: जी जी।
0: और आप उनके साथ कम अच्छे हैं, तो क्यों ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? क्यों कहा आपने ऐसा? क्या है ऐसा जहन में? कहाँ आपको लगता है कि आप लैक कर रहे हैं? कहाँ आपको लगता है कि कमी रह जाती है, या सिर्फ वो भरोसा ही दिलाने में कमी रह जाती है? एक्चुअली करा आप पूरी तरीके से सारी चीजें, ऐसा है क्या?

0: नहीं तो बिल्कुल ना जाते हैं, जब वो आदमी जानते जाना जानते
1: बिल्कुल सही
0: है। ये मैं जवाब
1: बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहलन वसहलन,
2: अल्लाह हाफिज़।
1: तो भाई ये थे हमारे आखिरी कॉलर और अब हम इजाजत भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, नादिया मैम कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा खुश रखे, हर हाल में खुश रखे। और मेरी तरफ से एफएम 107 की सारी टीम को एडवांस में ईद मुबारक। मुमताज अहमद कहते हैं भाई प्लीज मुझे भी कॉल पे ले लो। आसिफ भाई बहुत माजरत, क्योंकि अब वक्त हो गया कि हम आज के लिए आपसे इजाजत ले लें,
2: बट इंशाल्लाह कल कल जरूर
1: इंशाल्लाह ताला जरूर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे नादिया को याद रखिए। और सबसे जरूरी काम क्या करना है नादिया?
2: देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। अमीन कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर मुझे यही दुआ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे भी रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, सब्र के साथ इनकी तरबियत करनी है, इनके साथ रहम व करम का मामला करना है। वैसे अमूमी तौर पर, फितरी तौर पर माँ बाप हर कोई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और नरमी का ही मामला करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम भी कुछ ज़्यादती कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दुआ को याद रखें कि भाई हम जैसे ही मामला कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए यही दुआ करेंगे। रब्बी, ए रब, ए मेरे रब, यानी वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, पाला और नेमतें अता फरमाई, इरहमहुमा, वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। तो सामने कराम, वालिदैन के एहसानात का बदला देना तो मुमकिन नहीं, तो उनके लिए हर वक्त हमारी तरफ से सबसे बड़ी खिदमत यही हो सकती है कि उनके लिए हम रहमत व मग़फ़रत की दुआ करते रहें, सेहत व आफ़ियत की दुआ करें और मग़फ़रत के हवाले से वालिदैन के लिए काफ़ी सारी ऐसी दुआएं आई हैं क़ुरान में जहां मुख्तलिफ़ क़िस्सों में मुख्तलिफ़ तरीक़े से वालिदैन के लिए बिलख़ुसूस दुआ का ज़िक्र है। तो सामने किराम, इस दुआ का जो तरबियती पहलू है, इस पर मैंने पहले भी कहा कि यहाँ कुरान ने इंसान को उसकी तफूलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था, वालिदैन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की, तो यहाँ हर एक के लिए बचपन की याद दहानी है ताकि हम अपने बड़ों के साथ सही मामला करें। जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाए, उनकी तबीयत में कमज़ोरी या चिड़चिड़ापन आ जाए, तो भी उनके साथ शफ़क़त, एहतराम और सब्र का मामला करना ज़रूरी है, ख़ुसूसन उनके बुढ़ापे के ज़माने में इसकी अहमियत तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, हुस्न सलूक करना, तो ये दुआ हमें कई कीमती सबक देते हैं। इसमें वालिदैन की खिदमत की बात आई है, कुरान ने बराह रास्त दुआ के ज़रिए उनकी अजमत को उजागर किया। इसी तरह औलाद के फ़र्ज़ के हवाले से भी यहाँ बताया गया कि वालिदैन ने जैसे बचपन में कुर्बानियाँ दी, ऐसे ही बुढ़ापे में औलाद को उनकी खिदमत और दिलजोई करनी चाहिए। इसी तरह रहमत की दुआ, ये सबसे बड़ी खिदमत है। वालिदैन के हुकूक सिर्फ दुनिया में नहीं, मरने के बाद भी उनके लिए दुआ करना और ये उनका हक है, लाजमी तौर पर हम उनके लिए दुआ करें, और रहमत की दुआ ये तो सबसे बड़ी खिदमत हम इसे कह सकते हैं। مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے، چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے۔ مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارا ملے گا۔ اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
3: دوستوں، روڈ مارکنگز یعنی سڑک پہ جو نشانات ہوتے ہیں وہ سڑک کی زبان ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا ٹریفک کی حفاظت کو بڑھاتا ہے اور لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ٹریفک سائنز اور مارکنگز پر عمل کیجئے۔ یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ہم سب مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور ہاں، ٹریفک کے قانون کی تعمیل کرنے سے ہم اپنی اور روڈ پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 प्रेजेंट योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति।
3: कभी सुबह घर से निकलते वक्त ऐसा हुआ है कि फोन वॉलेट की सब याद रहता है बट ब्रेकफास्ट रह जाता है और हम बोल देते हैं कोई बात नहीं लंच में कवर हो जाएगा। पर आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट के बारे में और ये सच है कि ब्रेकफास्ट हम जो स्किप करते हैं ये बॉडी के साथ अनफेयर हो जाता है। रात भर सोने के बाद बॉडी फास्टिंग मोड में जाती है, एनर्जी लेवल्स लो होते हैं और ब्रेन को फ्यूल की जरूरत होती है। ब्रेकफास्ट का काम होता है बॉडी को मैसेज देना, गुड मॉर्निंग, अब काम शुरू हो सकता है। जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते तो हमारी बॉडी इमरजेंसी मोड में चले जाती है, शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करने लगते हैं, फोकस कम हो जाता है और थोड़ी देर बाद एक्सट्रीम भूख लगने लगती है। वेल, इसका रिजल्ट क्या होता है? लंच के टाइम ओवर ईटिंग या फिर जंक की क्रेविंग। आपने नोटिस किया होगा जिस दिन ब्रेकफास्ट मिस होता है उस दिन पेशेंस थोड़ा कम होता है, छोटी बातें ज्यादा इरिटेटिंग लगती है। वेल, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है क्लियर थिंकिंग के लिए। ब्रेकफास्ट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, ये मूड सेट होता है, दिन भर का आपका मूड सेट करता है। और ब्रेकफास्ट का मतलब हैवी पराठा बटर ये सब नहीं होता है, बड़ा सिंपल सा भी ब्रेकफास्ट आपको हो सकता है। जैसे आपने फ्रूट्स और नट्स ले लिए, दही फ्रूट्स ले लिए, एग्स खा लिए, पोहा, उपमा, ओट्स, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। एक प्लेट ब्रेकफास्ट आपका पूरा दिन भर का मूड सेट कर देता है। वेल, इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप खा रहे हो। ब्रेकफास्ट मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, एनर्जी लेवल स्टेबल रहते हैं और दिन भर फूड चॉइसेस भी बेटर होते हैं। तो जो लोग रेगुलरली ब्रेकफास्ट करते हैं वो दिन भर ज्यादा बैलेंस्ड फील करते हैं, उनकी एनर्जी क्रैश कम होती है। और एक और अच्छी बात, ब्रेकफास्ट की जो हैबिट है वो बॉडी को रूटीन सिखाती है। बॉडी को पता होता है कि कब फ्यूल मिलने वाला है तो उसे ज्यादा एफिशिएंटली काम करना है। अगर आप बोलते हो टाइम ही नहीं मिला तो अपने ब्रेकफास्ट को कॉम्प्लिकेट मत बनाइए। कभी कभी अगर आपने सिर्फ एक एप्पल खा लिया या ब्रेड पे पीनट बटर लगा के खा लिया या हैंडफुल ऑफ नट्स खा लिए, पानी पी लिया, इतना भी काफी होता है फॉर अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट। ज्यादा कुकिंग की जरूरत ही नहीं है, घर पे बनाना रख लीजिए, कोई फ्रूट रख लीजिए, ब्रेड बटर एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। और अगर आपने उसमें एग ऐड कर लिया तो नथिंग लाइक इट, ये बन जाता है आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट। तो कल सुबह जब अलार्म बजे फोन चेक करने से पहले बॉडी को थोड़ा फ्यूल दीजिए, क्योंकि जब आप सुबह अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो तो बॉडी पूरा दिन आपका साथ देती है, एनर्जी के साथ, फोकस के साथ, अच्छे फ्लो के साथ। इसलिए याद रखिए, ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए, अपनी हेल्थ को गुड मॉर्निंग कहना है तो वो ब्रेकफास्ट के साथ करिए, क्योंकि तभी आपकी मॉर्निंग रियल में गुडी गुडी होंगी। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, योर हेल्थ Matter.
2: FM 107 presents Your Health Matter, Your Health Matter with RJ Shruti.
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

पाकिस्तान के ऑल टाइम लेजेंडरी क्रिकेटर अब्दुल हफीज बरदार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के बुनियाद रखने वाले और पहले टेस्ट कप्तान अब्दुल हफीज करदार। करदार साहब का नाम पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक नए मुल्क को क्रिकेट की दुनिया में पहचान दिलाई। दैट वाज अर्ली इयर्स आफ्टर 1947 जब पाकिस्तान वाज टेकिंग बेबी स्टेप्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो अब्दुल हफीज करदार साहब कप्तान बने एंड ही गेव अ डायरेक्शन टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। नौजवान क्रिकेटर्स और नौजवान मुल्क और उसके साथ साथ क्रिकेट टीम, जहां कई ऐसे टॉप टीम्स थे उस जमाने में, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, ये सब टीमों के अगेंस्ट में खेलना एक डिफरेंट बात होती है, डिफरेंट सोच होती है। और वो सोच की जो बदलाव उन्होंने लाया, कौन? अब्दुल हफीज करदार साहब। जी साहब, अब्दुल हफीज करदार 1950 के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट की क्यादत करते रहे और टीम को एक मजबूत पहचान दी। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 1954 में इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल टेस्ट जीतकर अपनी पहली और यादगार टेस्ट जीत हासिल की, जो उस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज थी। करदार साहब एक जबरदस्त ऑलराउंडर स्पोर्ट्समैन थे, जिनका जज्बा और कॉन्फिडेंस टीम के लिए हिम्मत का जरिया बनता था। तो आप समझ सकते हैं कि अब्दुल हफीज करदार आज भी पाकिस्तान क्रिकेट में उनको क्यों याद कर, पाकिस्तान क्रिकेट में लोग आज उनको याद करते हैं। दैट्स द रीजन बिकॉज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। कप्तान के तौर पर उनका फोकस सिर्फ मैच जीतना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों में यकीन, डिसिप्लिन और यूनिटी पैदा करना था। रिटायरमेंट के बाद भी करदार साहिब ने पाकिस्तान क्रिकेट से रिश्ता कायम रखा और सेलेक्टर्स और मेंटोर के तौर पर अपना तजुर्बा नई नस्ल तक पहुंचाया। दोस्तों, अब्दुल हफीज करदार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक शख्स नहीं, बल्कि एक सोच और एक मिशन थे। उनकी रहनुमाई और जज्बा पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियाद बने, जो आज भी हमें इंस्पायर करता है। उम्मीद है आपको आज का यह स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: वैल्यूज आर वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आर वैल्यूज। दोस्तों

आज मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करूंगी कि खुद को वक्त के साथ चेंज करते रहना क्यों जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा सुना भी जाता है कि लोग कहते हैं कि जी चेंज करना यानी अपने वैल्यूज अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। लेकिन आज का दौर तो डिमांड करता है कि हम और आप चेंज को एम्ब्रेस करें। देखिए आज के एरा में सब कुछ बहुत तेजी से बदल भी रहा है। टेक्नोलॉजी चाहे लाइफस्टाइल, चाहे करियर्स, चाहे चॉइसेस, चाहे सोचने का तरीका, ऐसे में अगर इंसान खुद को वक्त के साथ नहीं बदलेगा तो शायद वो एक फोन की कंपनी थी, आई डोंट नो मुझे उसका नाम लेना चाहिए कि नहीं, उस कंपनी की तरह मार्केट से धक्के देके निकाल दिया जाए। वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद को बदलेंगे नहीं तो लोग आपको ही उस जगह से बदल देंगे, आपको मतलब रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर इंसान खुद को वक्त के साथ चेंज नहीं करता तो वो पीछे रह जाता है या तो हटा दिया जाता है। चेंज आज के दौर में सिर्फ एक कांस्टेंट चीज है, एक ऐसा ऑप्शन है जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी बन चुका है। सबसे पहली बात तो ये कि चेंज ग्रोथ का जरिया है। इस माइंडसेट के साथ हमें चेंज को एम्ब्रेस करना है। जब हम नए आइडियाज एक्सेप्ट करते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और अपनी थिंकिंग को अपडेट करते हैं तब जाके हम कहीं बेहतर से बेहतरीन बनते हैं। अगर कोई इंसान एक ही जगह पर रुक जाए, नए ट्रेंड्स को इग्नोर करता रहे तो वो लिमिटेड और शायद ऑब्सलीट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं हुए उन्हें आज के डिजिटल वर्ल्ड में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। या सही साफ लफ्जों में कहूँ कि उनकी आज के इस दौर में, इस डिजिटल वर्ल्ड में जरूरत ही नहीं रही। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, इसलिए अडैप्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। हर फील्ड में कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, मीडिया हो या फिर जॉब मार्केट्स। जब लोग फ्लेक्सिबल होते हैं और चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। देखिए चेंज का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आइडेंटिटी को ही खो दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने स्ट्रेंथ को नए तरीके से यूज करें। लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न जो सामने निकल के आता है वो ये कि क्या चेंज के चक्कर में मैं अपने वैल्यूज अपने प्रिंसिपल्स छोड़ दूं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। चेंज और कॉम्प्रोमाइज दो अलग चीजें हैं। आप अपनी हैबिट्स, अपनी स्टाइल, अपनी सोच, अपने अप्रोच चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो कोर वैल्यूज हैं, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, ये वो चीजें हैं जिन्हें आपको डिफाइन करते ही रहना है, इन्हें कभी नहीं बदलना है। असल में कामयाब लोग वो होते हैं जो आउटर चेंज को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन इनर वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है मार्केट के हिसाब से, लेकिन अगर वो अपनी ऑनेस्टी और अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है तो उसकी सक्सेस सस्टेन करती है। ये भी समझना जरूरी है कि हर चेंज अच्छा नहीं होता, ब्लाइंडली हर न्यू ट्रेंड को फॉलो करना भी गलत है। देखिए स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप इवैल्यूएट करें कि कौन सा चेंज आपके लिए फायदेमंद है और कौन सा नहीं। हर नई चीज को अडॉप्ट करना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ वो चेंजेस लेना जरूरी है जो आपकी ग्रोथ और आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वैल्यूज टाइम के साथ इवॉल्व हो सकती हैं, लेकिन टूटनी नहीं चाहिए। जैसे पहले लोग सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करते थे, आज लोग वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ये भी तो एक तरह का चेंज है ना। ये शिफ्ट हमें और आपको क्या ये सिखाता है कि अपने वैल्यूज अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करो? ये चेंज है, बट ये प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं है, ये उन्हें बेहतर बना रहा है। देखिए आज के दौर में स्पेशली यंग जनरेशन के लिए ये समझना भी जरूरी है कि चेंज का मतलब अपने आप को अपग्रेड करना है, डिग्रेड करना नहीं। और प्रिंसिपल्स का मतलब अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, आइडेंटिटी के खिलाफ खड़े होना नहीं। जब आप दोनों का बैलेंस होते हैं और गुड बैलेंस क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, तभी आप एक्चुअल में कामयाब होते हैं। तो बस दोस्तों, जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि वक्त के साथ चेंज जरूरी है, क्योंकि दुनिया रुकती नहीं है। लेकिन ये चेंज तभी मीनिंगफुल होता है जब आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ

कॉम्प्रोमाइज ना करे। स्मार्ट इंसान वही है जो नए जमाने के साथ चलना भी जानता है और अपनी पहचान भी बनाए रखता है। इसीलिए याद रखिए, अपने आप को अपडेट करें लेकिन अपने वैल्यूज को प्रोटेक्ट करें। बल आज के लिए इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 Time check.
3: चेक क्या हाल है भाई। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 1:31, यानी इट्स टाइम फॉर
4: आप सुन रहे हैं
5: द सुपर किड्स।

यस हमारे सुपर किड्स, क्या हाल चाल है? Well, देखो वीकेंड खत्म हुआ और अब हमारी बारी आ चुकी है कि भाई देखो स्कूल में हम जाएं और कुछ दो तीन दिन अपनी पढ़ाई लिखाई करें और फिर उसके बाद ईद हॉलीडेज लग जाए, है कि नहीं? तो अभी क्या चल रहा है? अभी आज स्कूल से लौट रहे हो, स्कूल जा रहे हो, क्या फील क्या है, हो क्या रहा है, हाँ वीकेंड कैसे मनाया, ये सारी बातें आपको मुझसे शेयर करनी है 4434377 पर 4434377, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6622107 पर 6622107। तो बच्चा पार्टी, अक्सर हम बहुत सारी मज़े मज़े की बातें करते हैं हमारे सुपर के शो पे, और हमने कुछ टाइम पहले बातें की थी कि भाई देखो गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमको कंट्रोल करना चाहिए, सिचुएशन को संभालना चाहिए, लेकिन अगर अगर अगर हमें गुस्सा आ जाए, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, चाहे सिबलिंग्स के साथ हमारी फाइट हो जाए, या फिर स्कूल में कुछ कहा सुनी हो जाए, या फिर किसी बड़े ने हमें कुछ कह दिया, तो ये जो हमारे मूड स्विंग्स हो गए, हमने ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट्स में हम इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद क्या, उसके बाद व्हाट डू यू थिंक क्या किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशंस हैं, या फिर उस फाइट को यूं ही छोड़ना चाहिए, या फिर बात नहीं करना चाहिए, क्या सोचते क्या हो, ये सारी बातें ना आपको हमसे शेयर करनी है, ठीक है? तो नंबर मैं आपको बताती हूँ 4434377 4434377। डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं और हम अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले अभी मुझे कुछ लिसनर्स के मैसेजेस आए हैं कि अरे अमिता हमारी सुपर सफ़ा किधर है, तो सुपर सफ़ा भाई छुट्टियों में चले गई हैं एंड डेफिनेटली अभी आप मेरे साथ सुपर के शो पर रहने वाले हैं, तो आ जाओ, नंबर आपको पता ही है, ठीक है? तो एक बार फिर से दोहरा देती हूँ 4434377। और आज हम वो कहते हैं ना कि माइंड ब्रेकर्स नहीं होंगे, आज हम ब्रिज बिल्डर्स बनेंगे और हर एक जो आर्ग्यूमेंट है उसका सोल्यूशन लाएंगे और मज़े की बातें करेंगे, ठीक है? एंड यहाँ पर आपके लिए ब्रेन क्विज भी है, सो What do you have to do? बस कॉल करना है 4434377 पर। अभी के लिए अमिता जा रही छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक से आने के बाद आपकी हमारी बातों को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

So yes, हमारे सुपर किड्स कहाँ गुम है? Welcome once again, FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी फरमीता और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हो रहे हैं दोपहर के 1:40. एंड सच में मतलब वीकेंड के बाद ना ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो, लेकिन वो एकदम से दो दिन की छुट्टी के बाद जो एकदम हमें ऐसा लगता है ना कि उफ अब तो काम करना है, अब तो स्कूल जाना है, अब तो सारी चीज़ें, वो सुबह से लेकर अब तक वो मूड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ना मतलब 2-3 कप मेरी करक की हो चुकी है बच्चा पार्टी पता है. एंड स्टिल नाउ आई एम फीलिंग लाइक कि थोड़ा सा बस मुझे एक आराम का कोना मिल जाए. ऐसा कुछ आपके साथ होता है क्या? जो भी है शेयर करना तो बनता है. 4434377 इज आर नंबर, आप उस पर फोन लगा सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज करें 6622107 पर. आज हम बेसिकली बातें कर रहे हैं कि हमको ना जब आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं या किसी से हमारी झगड़े हो गए, चाहे हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारे दोस्त यार हो, या वो सिचुएशंस होती हैं कि हम कभी कभी ना उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्या करना है? मुंह फुला के नहीं रखना है. लड़ाई करने के बाद ऐसा भी नहीं करना है कि बस अब हमें बात ही नहीं करना, यू नो, वो ब्रिज बिल्डर्स का आज हमको काम करना है. वैसे देखो, हम सभी जानते हैं कि साइंस भी कहता है कि जब हम नाराज़ होते हैं ना तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल अलार्म क्लॉक बजा देता है कि भाई डेंजर है, डेंजर है, डेंजर है. और फिर उसके बाद क्या होता है, हम एकदम पीक पे जाके या तो झगड़ रहे होते हैं या तो और भी चीज़ें कर रहे होते हैं और हमारा जो पूरी बॉडी होती है ना वो एक अलार्म सिस्टम की तरह बजने लगती है, तो हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते. सो दिस व्हाट आई एम आस्किंग कि भाई आप बताओ कि क्या सोचते क्या हो कि जब ऐसी सिचुएशन आती है लाइक किसी भी तरह की, सपोज़ किसी ने आपकी ड्राइंग ख़राब कर दी, सपोज़ आपको किसी बड़े ने चिल्ला दिया, या फिर आप गलत नहीं हैं तो भी आपको टीचर ने कहा कि देखो आप गलत हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो होती है ना ये डे टू डे लाइफ में हो जाती हैं. तो बच्चा पार्टी, सुपर किड्स, हाउ यू डील इट, ये आपको मुझसे शेयर करना है. सो ईदर यू कॉल 4434377 पर या फिर आप सीधा हमें मैसेज करो 6622107 पर एंड आप हमसे शेयर कर सकते हो. वेल, मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं ऑलरेडी, आइए जरा उनकी तरफ बढ़ लेते हैं. तो मुझे खालिद का मैसेज आया है जो कहते हैं कि देखो अमिता, मेरे साथ ये होता है ना कि मेरा छोटा भाई है, उससे मेरी अक्सर लड़ाई होती है, अक्सर बहस हो जाती है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ एंड आफ्टर 5 मिनट्स मैं कहता हूँ कि हाँ भाई बता क्या है, फिर बात करता हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो मेरा रिलेशन है कि और मेरा छोटा भाई है, रियली रियली लव हिम, सो आई डोंट वांट टू मिस दैट पार्ट. दैट्स रियली नाइस खालिद. एंड मुझे लगता है कि हम सबको ना कहीं इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो गुस्सा है ना ये हमको ले डूबता है. ये जो गुस्सा है ना कभी कभी हमारा ब्लड इतना बॉयल कर लेता है कि हमको समझ नहीं आता हम क्या करें. इनफैक्ट मेरा भाई जब गुस्सा होता था ना बच्चा पार्टी, तो वो क्या करता था, घर की ना कुछ चीज़ें तोड़ देता था. मतलब ब्यूटीफुल कोई वास है या कोई चीज़ है, फिर बड़ी मुश्किल से उसको शांत करके उससे बात की जाती थी. तो इसीलिए गुस्से हमेशा ना थोड़े से ना गलत काम करा देते हैं. वेल, अभी मुझे इब्राहिम का मैसेज है एंड वो अपना ना गुस्सा शिफ्ट करते हैं कहीं और, मतलब वो एकदम मोमेंट को शिफ्ट कर देते हैं. एंड ही सेज कि अमिता, जब मेरे साथ ऐसी चीज़ होती है ना, खास तौर से मेरे स्कूल में मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे मेरे पंगे होते रहते हैं. सो व्हाट आई डू, जब भी मेरी लड़ाई हो जाती है तो उसको सॉरी कहने से पहले आई ईट पिज्जा. ये बड़ी बड़ी सही चीज़ है कि फूड पर फोकस जाता है. वो कहते हैं ना कि फूड इज ऑल अबाउट मूड एंड मूड इज ऑल अबाउट फूड. तो जब ये वाली चीज़ होती है तो मैं शांत हो जाता हूँ एंड देन उससे मेरी बात हो जाती है. सो यस, हमारे बच्चा पार्टी, हमारे सुपर किड्स, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू टेक्स्ट मी एंड टेल मी कि भाई देखो ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम ये करते हैं. आप क्या करते हैं? अगर आप हमें सुन रहे हैं देन 6622107 इज आर नंबर, 6622107 इस पर आप मैसेजेस कर दो या फिर सीधा फ़ोन में ला लो 4434377. भाई ये सारी दोनों लाइनें हमारी खुली हुई हैं और आज बातें हो रही हैं कि हमको अपना ब्रिज बिल्डर बनना है, ना कि वॉल बिल्डर्स बनना है. क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे आप रोक नहीं सकते, है कि नहीं?

पर अक्सर होता है ना कि आप दोस्तों से लड़ाइयाँ कर लेते हो और जब आपकी लड़ाई होती है तो यू ट्राई टू इग्नोर कि भाई मेरे को बात ही नहीं करनी, मतलब नफरत सी हो गई, अब तो बात ही नहीं करनी क्योंकि इसने आपका कोई सीक्रेट किसी को बता दिया या आपके कहने पर कुछ सुना नहीं. तो ये जब सिचुएशन आती है ना, व्हाट यू हैव टू डू, यू रियली नीड टू गेट चिल पिल, यानी आपको थोड़ा सा कूल होना है और उसके बाद अपने दोस्त से ना बात करनी है, उसको बताना है कि आपको नाराज़गी क्यों हुई है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ की जो करना बहुत ज़रूरी है. वैसे बच्चा पार्टी वीकेंड तो गया है, तैयारियां अभी ईद की चल रही हैं और अभी ये जो 2-3 दिन का टाइम है जो आप स्कूल के लिए निकले हो, स्कूल से वापस जा रहे हो या फिर स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, यू कैन शेयर विद अस. 666-22-107 इज़ आर नंबर, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल करें 443-443-77 पर. और आगे कुछ और भी मज़े की बातें हैं जिसका हम जिक्र करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ये ना, अगर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं तो कैसे मैनेज करें और अगर गुस्सा आता है तो क्या करें, दिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देश.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए

0: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी फरमीता एंड सुपर के शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। अभी हमारे साथ कोई जुड़ चुका है, आइए जरा उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। ओ माय गॉड, ये क्या हमारी अमायरा आई है? ओहो अमायरा, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूं।
0: पूरे एक हफ्ते के बाद आपसे अच्छा, मैं एक्चुअली बुक फेयर में गई थी, जो बुक फेयर चल रहा था ना अभी दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर DCC में, तो वहाँ पर मैं वहाँ से लाइव शो कर रही थी, इसीलिए मैं ना किड्स शो में नहीं आ पा रही थी। क्या बात है, आपको क्यों नहीं बुलाया? ओहो, एक्चुअली हम सब ने बोला था, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हमारी अमायरा थोड़ी बिजी होगी तो अमायरा, ये काफ़ी पॉपुलर बुक शो था और सारे बच्चों को, सारे बड़ों को, सबको बोला गया था, तो आपको वैसे किताबें बहुत पसंद है ना? हाँ, तो अभी कोई नहीं, अभी तो फिलहाल ये बुक शो गया, अभी नेक्स्ट टाइम कोई बुक शो आएगा ना तो मैं आपको एडवांस में बता दूंगी। देखो मैं जा रही हूँ, आप आ जाना, ठीक है? हाँ जी,
1: हाँ।
0: अच्छा ये तो बता दो कि वीकेंड में क्या किया आपने, क्या कुछ स्पेशल खाया, कितना सोया, क्या किया?
1: मेरे ना समर वेकेशन शुरू है।
0: ओह माय गॉड, ये तो मैंने मिस कर दिया। तो कब से शुरू हुए आपके समर वेकेशंस?
1: फ्राइडे से।
0: ओह भाई साहब, क्या बात है। तो समर वेकेशन शुरू हुए तो आप थोड़ा सा लेजी लेजी फील कर रही हो कि बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल के लिए तैयार होके ऑनलाइन अपनी क्लासेस करती थी वही कर रही हो? होमवर्क बहुत सारा मिला हुआ है।
1: हाँ।
0: अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, अभी होमवर्क तो आपका धीरे धीरे, आई एम वेरी सर्टेन कि अमायरा कर लेगी। तो अच्छा, मैं बुक्स की बात कर रही थी, कोई ऐसी बुक है जो अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज या कोर्स मटेरियल के अलावा आप पढ़ना पसंद करती हैं? कोई स्टोरी बुक वगैरह? अच्छा ओके, थोड़ा बताओ उसके बारे में।
1: एक तो सैम्स बर्थडे गिफ्ट का एक ही है।
0: हाँ हाँ।
1: और एक तो एक पपी की बोन वाली।
0: ओह, तो स्टोरीज पसंद है हमारी अमायरा को। हाँ
1: जी,
0: क्या बात है अमायरा। वैसे अमायरा, आज हमने ना टॉपिक लिया है अपना स्पेशली जब गुस्सा

0: हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, तो फिर कैसे मैनेज करें. वैसे तो हम पहले बात कर चुके हैं कि यू नो वी हैव टू कंट्रोल आर एंगर. तो मुझे बताएं, कभी आपके किसी से लड़ाई हुई है आज तक? अच्छा, किससे हुई है?
1: भाइयों से.
0: भाइयों से? अरे बाप रे. अच्छा, कोई ऐसी वजह कि उन्होंने, मतलब आपको गुस्सा आया उन पर बहुत, कि अरे इन्होंने मेरी ड्राइंग खराब कर दी, या फिर मेरी बात नहीं सुन रहे? क्यों गुस्सा आया, क्यों लड़ाई हुई आपकी?
1: एक बार
0: हाँ,
1: मैं भाई
0: जी,
1: तो मेरे कजन का बर्थडे था, तो उन लोगों ने क्या किया था, कॉल पे मुझे नहीं ऐड किया.
0: अच्छा, ये कॉल पे ऐड नहीं किया? अच्छा, फिर आपने क्या किया? रोने लगे आप? हाँ, फिर
1: कॉल किया.
0: हाँ जी,
1: फिर
0: तो आपने उनसे सॉरी बुलवा लिया. दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ क्यूट वे, कि मतलब मैं हर्ट हो गई तो मैंने चलो अपना रो के थोड़ा सा अपना दिल हल्का किया, एंड देन पूरे हक से आपने उस गुस्से को थोड़ा सा सॉल्व किया कि सॉरी बोला, है ना? अच्छा अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अमायरा, कि जब कभी भाई या बहन की लड़ाई हो जाए तो क्या उनको एक दूसरे से बात करनी चाहिए या फिर कुछ दिन बात नहीं करनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? अमायरा? हाँ, अच्छा ये बताओ, जैसे कि अगर आपके भाई से लड़ाई हो गई, ठीक है, अच्छा चलो ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरी भाई से, मेरे खुद के भाई से लड़ाई हो गई, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसको सॉरी बोल के मना लेना चाहिए या फिर कुछ दिन बात नहीं करनी चाहिए? That's a sweet one. तो देखा, हमारे सारे सुपर किड्स, हमारा feels it कि it's very very important कि relationship को हमेशा save करके चले. And if you're angry, तो क्या करना है? देखो, sorry कहने से ना कोई भी छोटा नहीं होता, right Amaira? हाँ, तो sorry बोलो और आगे बढ़ो और दोस्ती यारी अपनी एकदम पक्की करो, अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा थोड़ा मैनेज करो. वैसे पता है Amaira, मेरी ना, मेरी फूफो है, उनकी जो बेटी है ना, वो जब अपनी सिस्टर से फाइट कर लेती है, दो दिन तक बात नहीं करती है. हाँ जी, दो दिन तक बात नहीं करती है. तो उसको आप कुछ कहना चाहोगे, उसके लिए कोई मैसेज दोगे कि देखो लड़ाई नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई मैसेज दोगे? Amaira?
1: एक बार मेरे साथ सेम कुछ तो हुआ था.
0: हाँ, फिर
1: मैं भाई के फ्रेंड को मुझे लगा क्योंकि वो गर्लफ्रेंड है, पर दो दिन तक बात नहीं.
0: आपने बात नहीं की?
1: नहीं.
0: और फिर क्या किया दो दिन के बाद? बात की,
1: बाद दो दिन तक फिर वापस नॉर्मल हो गए.
0: आई हाय, दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट. यही सारे सुपर किड्स की ना खास बात है कि ज़्यादा दिन गुस्सा भी नहीं रह पाते हैं और अपना प्यार दिखाई देते हैं. सो Amaira, यू आर रियली अडोरेबल एज यूजुअल. अच्छा Amaira, हम यहाँ पे ना ब्रेन क्विज लेकर आए हैं जहाँ पर पजल्स होंगी. सो आर यू रेडी टू प्ले?
1: Yeah, what to do?
0: Okay, so I will ask a question, ठीक है, I'll give you options. You have to choose the option. Right option, okay? Okay, so we will start your timer now. 1 minute. Yeah. 1 minute, okay? All right. So, I am full of holes, but I can still hold lots of water. What am I? Aapke options hai, a sieve, a sponge, a net.
1: Pond.
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए Amaira. आई हैव मैनी कीज बट आई कांट ओपन अ सिंगल डोर. वॉट एम आई? अ कंप्यूटर, अ की चेन, अ पियानो. नो, नॉट कंप्यूटर, कम ऑन, थिंक अगेन. यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गो अप व्हेन द रेन कम्स डाउन. वॉट एम आई?

0: बलून, अम्ब्रेला और काइट?
1: अम्ब्रेला।
0: बहुत बढ़िया भाई साहब, आपने 3 का स्कोर कर लिया है। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। वैसे पता है मायरा, ये जो अम्ब्रेला है, आपको आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बारिश के लिए बनाया गया था? नहीं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब अम्ब्रेला को ओरिजिनली इन्वेंट किया गया था ना, तो उसको बारिश के लिए नहीं बनाया गया था, उसको बनाया गया था कि सन से बच सके, जो सन की, यस, राइट राइट, तो उसके लिए बनाया गया था। पर अभी बताओ जरा, काफी लोगों को लगता है कि अम्ब्रेला बारिश के लिए बनाया गया है, है कि नहीं? अच्छा मायरा, सो अभी बता दो, जाने से पहले क्या मैसेज दोगी आज, क्या खास बोलना चाहोगी?
1: Be safe and healthy.
0: That's a beautiful message. And I think अगर हर कोई इस पे ध्यान देगा तो डॉक्टर के चक्कर कम लगेंगे, है ना मायरा?
1: जी।
0: Okay, my dear. So thank you आज हमसे जुड़ने के लिए, फिर कल मुलाकात करते हैं, okay? अल्लाह हाफिज। That is really sweet. And Amira, uff, मज़ा आ जाता है उनसे बात करके हमेशा, क्या कहते हैं? वेल, अभी हमारे साथ कोई और भी जुड़ रहा है, आइए जरा इनसे बात कर ली जाए। कौन हमारे साथ जुड़ गया है? सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: ओहो, ये आवाज किसकी है?
2: मरियम।
0: मरियम जुड़ चुकी है, हाउ आर यू मरियम? क्या चल रहा है, स्कूल से घर आ रही है?
2: जी।
0: तो कैसा गुजरा आज का दिन?
2: अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अरे वाह, दैट्स नाइस। तो अभी अच्छे में क्या खास था, ये तो थोड़ा बताना पड़ेगा डिटेल में।
2: जी,
0: अच्छे में क्या खास था स्कूल में?
2: आज।
0: हाँ जी,
2: आज हमने वालसी के लिए प्रिपरेशन की थी।
0: ओके ओके, एंड देन इसके अलावा
2: बस
0: इतना ही किया? वेरी गुड। तो फिर अभी मरियम घर की तरफ रुख कर रही है, ये बताएं कि अभी ईद भी काफी क्लोज है, कुछ तैयारियां वगैरह हुई, शॉपिंग वगैरह हुई?
2: जी।
0: क्या क्या किया?
2: मैंने कपड़े लिए थे, जूती ली थी।
0: ओके, सो अभी अभी ये लास्ट मोमेंट वाला सीन नहीं रहेगा, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। हाँ
2: जी।
0: यार मरियम, मुझे थोड़ा सा ना आइडिया दे दो, कहाँ से जाके ना सूट सलवार लेनी है, मेरी तो अभी तक नहीं हुई तैयारी। तभी अभी आप बताओ मरियम, शॉपिंग कहाँ से करती हो?
2: मैं ऑनलाइन करती हूँ।
0: अच्छा, ऑनलाइन आप करते हो, ये ऑनलाइन वाला बच्चा है। मैं हमेशा स्टोर्स पे जाके करते आई हूँ, मतलब अब तक, स्पेशली जब ट्रेडिशनल ड्रेसेस की बात आती है ना, बाकी फिर मैंने तो ली हुई है काफी सारी चीजें ऑनलाइन, और अब मैं बस दिन गिन रही हूँ कि ईद को बस हम सिर्फ 3 दिन रह गए, 3-4 दिन। सो इवन मेरी भी तैयारियां अभी होल्ड पर हैं, सो आई हैव टू गो एंड चेक इट। अच्छा मरियम, ये तो बता दो, हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा ना अपने माइंड को कंट्रोल करने की, हालांकि गुस्से से रिलेटेड हमने पहले बात की है, बट गुस्से को जब हम ट्विस्ट करें कि जब हमारी किसी से लड़ाई हो गई है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गई है, उसके बाद क्या करना चाहिए? सो व्हाट डू यू डू जब ऐसा कुछ होता है तो?
2: उसको सॉरी कह देती हूँ।
0: सॉरी कह देती है और सॉल्व हो जाती है सारी चीज़ें?
2: जी।
0: तो किसके साथ ज्यादा आपके पंगे हुए हैं?
2: दोस्त के साथ।
0: दोस्त के साथ? तो अच्छा ये बताओ, जब दोस्त रहते हैं, दोस्त के साथ लड़ाई कैसे हो जाती है यार? हाँ, अच्छा किस बात पे हो गई थी मरियम, ये तो बता दो। हेलो हेलो मरियम, है लाइन पे?
2: जी
0: हाँ मरियम, किस बात पे लड़ाई हो गई थी आपकी फ्रेंड से?
2: हेलो, छोटी बातों पे हो जाती है।
0: अच्छा, सोच रहे थे आप छोटी छोटी बातों पे हो जाती है और फिर आप सॉरी बोल के उसको मना लेते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी लड़ाई करी और उसके बाद आपको लगा कि मुझे इससे बात नहीं करनी, ऐसा कभी ख्याल आता है?
2: नहीं।
0: दैट इज वेरी गुड, इसलिए आप सुपर किड हो, पता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा, मैंने थोड़ी देर पहले अभी अमायरा से बात करी थी ना, आई वॉज लाइक जस्ट शेयरिंग कि मेरी जो पप्पो है ना, उनकी जो दो बेटियां हैं, वो आपस में लड़ लेती हैं, 2 दिन बात नहीं करती हैं। तो बट ये चीज़ है कि जब आप मान जाते हो और एक दूसरे के साथ रहते हो, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो जब बताओ सॉरी कौन बोलता है, आप पहले बोलते हो कि आपकी फ्रेंड पहले बोलती है?
2: कभी मैं बोल देती

0: कभी वो पहले से.
1: एंड फिर अपन वापस से सब मस्ती करने लगते हैं, गॉसिप करने लगते हैं. अच्छा मरियम, दैट्स रियली स्वीट एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू नो कि हमारे शो पर कि हमारी जो बच्चा पार्टी है वो एंगर मैनेजमेंट कैसे करती है. सो यू रियली सेड वेरी वेल, सॉरी बोलो, आगे बढ़ो. अच्छा अब मुझे बताओ कि अभी यहाँ पर हम एक ब्रेन क्विज खेलने वाले हैं जहाँ पर 1 मिनट का आपको टाइम रहेगा. सो कैन यू टेल मी मरियम व्हाट्स योर एज?
0: 11.
1: माशाल्लाह 11 ईयर्स के आप हैं. चले तो मैं आपके लिए ना एक सवालों की एक पूरी गुत्थी निकालती हूँ. आई विल आस्क सम पजल्स, ठीक है? हाई स्कोर तो अभी अमायरा का है, उन्होंने 3 का स्कोर किया है क्योंकि 1 मिनट में आप जितने भी क्वेश्चन के सही जवाब दे पाओ. ठीक है? ओके, सो लेट मी चेक एंड लेट मी स्टार्ट द टाइम. ओके एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. I have a head and a tail but no body. What am I? Snake, spoon, a coin.
0: Options फिर से बोलना.
1: Snake, spoon, a coin.
0: A coin.
1: Very good, very good. Okay, second question for you. I have many teeth but I cannot bite. I help keep your hair neat. Okay, so your options are comb, saw, shark. Very good. Another question. I follow you all day long, but you can't ever catch me. Okay? And your options are... What?
0: Footsteps?
1: No. Aapke options hai shadow, reflection, best friend.
0: Shadow?
1: Aha, bilkul sahi. And the last question, I guess. Time bilkul bhagta ja raha hai. What begins with T, ends with T, and has T inside it? Your options, toast, teapot, ticket. Mariam, come on.
0: Teapot?
1: Absolutely right. And you have 4 ka score kiya hai. So congratulations, congratulations. Dekho, abhi tak ki highest scorer aap ho. Theek hai Mariam?
0: जी.
1: And you really did a good job. So Mariam, before you leave, कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे सारे लिसनर्स को जो आपको सुन रहे हैं?
0: Never give up.
1: Very good. और never give up करेंगे तो लाइफ हमेशा स्मूथ रहेगी. All right, Mariam, thank you so much हमसे जुड़ने के लिए. अल्लाह हाफिज.
0: हाफिज.
1: क्या बात है, यही बात होती है हमारे सुपर किड्स से जब हम इस तरह के सवाल पूछते हैं ना, और जब हम खुद जवाब मिलते हैं तो हमें समझ में आता है कि ज़िंदगी एक्चुअली जीना आसान भी है, और अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो फिर समस्याएं और परेशानियां बढ़ते जाएंगी. जैसे कि एक सॉरी बोलना कितना सिंपल होता है, मतलब देखा जाए तो हम नेचर से भी ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं. जो बैम्बू होता है, जो बाँस होती है, अगर हम बात करें, वो इतने बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं बैम्बूज़ के, आप जब देखें कि तेज जब हवा के झोंके आ रहे होते हैं, एक्चुअली जब तूफान आ रहा होता है, स्टॉर्म हो रहा होता है, तो ये जो बैम्बूज होते हैं ना, ये टूटते नहीं हैं, ये झुक जाते हैं. ठीक है, तो इमेजिन करो कि जब आप किसी को सॉरी बोलते हो ना, तो आप ईजी कर रहे हो, वो वे ईजी कर रहे हो, सामने वाले को कम्फर्ट दे रहे हो, और आप टूट नहीं रहे हो बल्कि उस टूटे हुए चीज़ को जोड़ रहे हो. सो ऑलवेज रिमेंबर किड्स कि जब भी किसी से भी लड़ाई हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, और आपको लगे कि नहीं हमको सॉल्व करना है, जस्ट गो एंड से सॉरी. ठीक है, लेकिन सॉरी के साथ साथ एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है कि भाई गुस्सा क्यों आया था. ऑलराइट, वेल ऑन दिस नोट मैं कहूंगी कि हमारी जो बच्चा पार्टी हमें सुन रही है, दे कैन कॉल अस ऑन 4434377 4434377 एंड लेट अस नो कि भाई ये जो गुस्सा है जब आ जाता है, थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो उसके बाद क्या करते हो, कैसे मैनेज करते हो सिचुएशन को. यू कैन शेयर विद अस, और आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 6662107 पर 6662107. और अभी के लिए आपकी ये फरमीता एक छोटा सा ब्रेक लेगी और वापस आके फिर अपनी बातों कंटिन्यू करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी.

0: सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि एफएम 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ द स्टूडेंट्स गाइड एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर्स से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए, सब कुछ एक ही शो में। तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से, हर मंडे 3 बजे से विद आरजे फजील, ओनली ऑन एफ।

0: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी फरमीता और हमारे सुपर के शो पर अभी कोई सुपर किड जुड़ गया है. आइए उनसे बात करें. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: हाय हाय, ये मीठी सी खनखनाती हुई आवाज किस प्यारी सी बच्ची की है. Who is this princess? देखो शफक, मैं कितने प्यार से तुम्हारा नाम सुनना चाहती थी. पहले मैंने कहा कि अगर मैंने कहा इज इट शफक और अगर कोई और निकला तो शफक हमारी नाराज हो जाएगी. हाउ आर यू शफक टुडे? फाइन. फाइन वाला फाइन या बहुत फाइन वाला फाइन?
1: बहुत फाइन वाला फाइन.
0: दैट इज सो स्वीट. ये बताओ कि आपकी ईद की छुट्टियां कब से लग रही हैं? माशाल्लाह, तभी मैं सोचूं. वैसे 26th onwards कहा गया है हर जगह अकेडमिकली छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन आप तो कल से ही छुट्टी बना रहे हो. क्या प्लान्स हैं छुट्टी के?
1: मस्ती करूंगी.
0: हाँ, और क्या करोगी?
1: मीट खाऊंगी.
0: ओ भाई साहब. और इसके अलावा कुछ अपने सिबलिंग्स वगैरह के साथ गेम खेलना, फिर टीवी देखना, कुछ ऐसे भी प्लान्स हैं? कहाँ जाओगे? अरे भाई साहब, सी लाइन इज द बेस्ट ऑप्शन. मुझे भी बहुत पसंद है सी लाइन बीचेस ना. अच्छा, तो कहाँ आप सी लाइन रिसोर्ट्स वगैरह साइड जाते हो या जो सी लाइन के जो टेंट्स वगैरह हैं उस साइड जाते हो?
1: रिजॉर्ट्स वगैरह.
0: रिजॉर्ट्स वगैरह, वेरी नाइस वेरी नाइस. चले मतलब फुल ऑन एंजॉय करना. ईद की प्रिपरेशन एकदम मतलब पीक पर चल रही है. तो शफक ये तो बता दो, शॉपिंग वगैरह हो गई? अगर कर ली तो क्या क्या खरीदा है?
1: अभी नहीं है शायद आज या कल या परसों कर लूं.
0: अच्छा, और कोई कोई ड्रेसिंग की टिप देना चाहेगी शफक अमिता को? हाँ बताओ बताओ.
1: मैंने लिए.
0: क्या करना है?
1: मैंने दो शीप्स लिए.
0: ओह माशाल्लाह, दैट इज सो नाइस. अच्छा, लेकिन अभी मैं ये बोल रही थी ड्रेसिंग की ना, कोई टिप देना चाहोगी मुझे कि हाँ अमिता ये कर लेना आप इस ईद में?
1: शलवार कमीज.
0: ठीक है, मैं शलवार कमीज अपनी ढूंढ के पहनती हूँ. ठीक है, अभी मुझे अगर यहाँ पर कुछ नया मिल जाता है तो मैं शॉप करूँगी, वरना मेरे पास जो है मैं वो पहनूंगी और फिर मैं अपने सोशल मीडिया पे पिक्चर डालूंगी. तो शफक फिर तुम देख के बताना कि ठीक है कि नहीं. क्या बोलती हो?
1: ओके.
0: अच्छा शफक, देखो हम ना गुस्से के ऊपर बात कर रहे हैं. हमने पहले भी बात की हुई है कि गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए, फॉर एग्जांपल किसी से लड़ाई हो गई या अपने भाई बहनों से हो गई या दोस्तों से हो गई या किसी ने कुछ कह दिया, तो फिर उसके बाद आपने जब लड़ाई कर ली तो कैसे मैनेज करती हो? फिर क्या करती हो?
1: उसको सॉरी करती हूँ और उसके साथ फिर से दोस्त बन जाती हूँ.
0: दैट इज सो स्वीट. मतलब इसमें गलती अगर सामने वाले की है तब क्या करोगी? उससे सॉरी बुलवाओगी?
1: नहीं, मैं जाके टीचर को बोलूंगी.
0: हाय, ये हमारा शेर बच्चा सीधा जाके टीचर को ही बताएगा सॉल्व करो. तो ऐसे अभी अच्छे बताओ, सबसे ज्यादा आपके ना पंगे किसके साथ हुए हैं जहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम आया कि चलो यार बात नहीं हो रही है, लड़ाई हो गई, घर पे या स्कूल में?
1: स्कूल

0: बार हाँ. बहुत जोरों से लड़ाई हुई थी.
1: ओहो अच्छा, तो किसके साथ हो गई थी?
0: मैं मॉनिटर थी.
1: हाँ.
0: मेरा सेक्शन ये था ना.
1: हाँ जी.
0: तो मेरे साथ पश्चिमा से मेरे दोस्त आए थे, वो फिर यहाँ आके मेरे दुश्मन बन गए और मुझे चिढ़ाते थे. वन जे की दुश्मन नहीं, वन जे की मॉनिटर, वन जे की मॉनिटर.
1: ओके.
0: जब मैं टू में हो गई तो फिर ये लोग बोले थे टू जे की मॉनिटर नहीं बन पाई. फिर मुझे बहुत गुस्सा आया. मैंने उसका गला दबाना स्टार्ट कर दिया. लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे पीछे कर दिया कि मत कर, ब्रेक भी ओवर हो गया. उस टाइम हमारी ब्रेक बाहर होती थी ना.
1: जी जी.
0: तो ये बोल रही थी कि मत करो, ब्रेक भी ओवर हो गई है, टीचर अभी बाहर आ जाएगी कि अभी तक क्यों नहीं आए, पर पंगा बन जाएगा, जल्दी क्लास में चलो.
1: हाँ, तो ये हिसाब हुआ आपका. हाँ, मतलब काफी लड़ाई हो गई.
0: यस.
1: ओहो बाप रे बाप. लेकिन आपकी फ्रेंड ने समझा दिया आपको, ठीक कर दिया, तो सब सॉल्व हो गया. हाँ. मुझे हाँ अच्छा, दोस्त आपकी दुश्मन बन गई, ये बोल रही हो?
0: नहीं.
1: हाँ.
0: वो जिसके साथ मैंने लड़ाई की थी ना.
1: हाँ जी.
0: अभी तक मेरी दुश्मन है.
1: आय हाय. तो आपने उनसे जाके बात करने की कोशिश नहीं की?
0: नो
1: नो. अरे बाप रे. और उन्होंने भी ट्राई नहीं किया आपसे बात करने का?
0: नहीं, उनकी गलती थी, वो मुझे चढ़ाते थे.
1: समझ गई. बल यहाँ पर तो मैं कहूंगी कि देखो, जहां पर रिलेशन आपको लगे कि नहीं तोड़ना है या छोड़ना है, देन तो इट्स गुड कि आप उसको पैचअप कर लो, सॉरी बोल के कर लो. बट आपने चलो एक चीज़ अच्छी बताई कि जब आपकी लड़ाई एकदम एक्सट्रीम पीक पर चढ़ गई थी तो आपकी एक फ्रेंड ने आपको रोका, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ड्यूटी जो कि एक अच्छे दोस्त को करनी चाहिए थी. एंड जो आपकी दोस्त आप कह रही हो कि ना दुश्मन बन गई है और मेरे को चिढ़ा रही है, आई थिंक इट्स लेट इट बी, लेट हर गो, है ना. और अगर उन्होंने सॉरी नहीं बोला तो फिर तो कोई भी नहीं. तो आप रिग्रेट तो नहीं करते हो कि आपको उनसे बात करनी है? ऐसी फीलिंग तो नहीं आती कि बात करनी है?
0: नो.
1: फिर तो कोई मसला नहीं है. सो यू हैंडल वेल. पर अभी गुस्से पे कंट्रोल थोड़ा हो रहा है शफक की? अभी भी गुस्सा आ रहा है?
0: अभी भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है.
1: हाय, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है. अच्छा बताओ, शफक को आइसक्रीम पसंद है?
0: यस.
1: कौन सी वाली ज्यादा पसंद है?
0: वनीला वाली.
1: वनीला वाली. तो वनीला वाली मुझे भी पसंद है. अब वनीला चॉकलेट, वनीला स्ट्रॉबेरी, कुछ इस तरह का मिक्स करके जब खाओगी ना तो थोड़ा और अच्छा लगेगा और फिर गुस्सा धीरे धीरे और गायब हो जाएगा. ट्राई करोगी क्या?
0: मुझे सिर्फ
1: वनीला पसंद है. प्योर वनीला फ्लेवर पसंद है. हाँ.
0: एक दिन वनीला और स्ट्रॉबेरी मिक्स ले लिया.
1: हाँ.
0: गंदा टेस्ट था मुझे.
1: अरे बाप रे.
0: हाँ. उसको फेंक दिया.
1: हाँ, फिर तो सिर्फ वनीला ही खाते हो आप? और वनीला चॉकलेट ट्राई किया कभी?
0: वनीला चॉकलेट. हाँ.
1: कोई नहीं. अभी अपना जो फेवरेट फ्लेवर है वो खाना, गुस्सा बिल्कुल ठंडा करना. और अभी तो ईद शुरू होने वाली है तो ईद की तैयारियों में खो जाना. अच्छा ये बताओ कि ईद में आपको सबसे मजे की चीज करना क्या लगता है?
0: कुर्बानी करना.
1: अरे वाह माशाल्लाह. चलो कोई नहीं, अच्छी बात है. और ये मतलब मटन बिरयानी पसंद है या मटन की जो तरी बनती है वो पसंद है, क्या ज्यादा अच्छा लगता है?
0: बारबेक्यू
1: वाला बच्चा है भाई साहब. बढ़िया बढ़िया. मुझे पता है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे, मैं मीट सब खाती थी. ओके. जैसे मैंने अक्सर बोला है कि अभी मैंने नहीं खाना, काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ है. तो मुझे ना वो जो मटन की ग्रेवी बनती थी ना एंड जीरा राइस, उफ, मतलब बता रही हूँ मैं आपको शफक, अगर मुझे मिल जाए तो मैं छोड़ती ही नहीं थी, खाती ही रहती थी, पता है. इतना पसंद था. अच्छा शफक, यहाँ पर ब्रेन को इस खेलोगी जल्दी से?
0: यस.
1: ओके. सो अभी तक का हाई स्कोर 4 हो चुका है और अब यहाँ पर देखते हैं कि आप कितने सवालों के सही जवाब देते हो. ऑलराइट.
0: ओके.
1: ओके एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. व्हाट हैज एन आई बट कैन नॉट सी? योर ऑप्शंस आर पोटैटो, नीडल या फिर फिंगर.
0: रिपीट द क्वेश्चन अगेन.
1: ओके, व्हाट हैज एन आई बट कैन नॉट सी, नीडल, पोटैटो या फिर फिंगर? कम ऑन शफक,
0: नीडल.
1: You are right, even potato भी. तो जब भी कोई आपसे सवाल पूछे, you know both the answers are right, okay? Now, next question for you. I have cities but no houses, mountains but no trees, water but no fish. What am I? Painting, globe or map? Come on!
0: Painting.
1: No, it's a map and your time is also up. All right. So, Shafak, yeah, aap achha khele, lekin thoda sa lagta apne ko time lag gaya samajhne mein, ha?
0: Yeah.
1: Yeah. So, phir, kya khayal hai? Kal se chuttiyan shuru hai, right?
0: Yes.
1: To aaj kya hone wala, aaj kya dhoom karne wali hai, Shafak?
0: जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, दिमाग बचाऊंगी, टीवी देखूंगी, और कल फिर वैसे भी छुट्टी है.
1: हाँ जी,
0: मजे से सोऊंगी और शॉपिंग करने
1: जाऊंगी. अरे हाउ स्वीट इज दैट. मैं दुआ करूंगी कि आपके सारे प्लान सक्सेसफुल हो, आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे. हाँ जी,
0: हमने तो शीट्स ले ली हैं लेकिन वो घर पर नहीं है कल.
1: हाँ,
0: चीज़ लेकर आऊंगी घर.
1: अच्छा ठीक है, उनको जरूर लेकर आना, उनके साथ भी कुछ मोमेंट्स इंजॉय करना, ठीक है? और अभी के लिए जाने से पहले कोई मैसेज दोगी शफक?
0: डोंट गिव अप.
1: ओके, आई विल नॉट गिव अप, ठीक है? ऑल राइट शफक, थैंक यू सो मच एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू. अल्लाह हाफिज.
0: और ये मत भूलना कि हमारे घर बारबेक्यू खाने आ जाना.
1: अरे वाह, थैंक यू शफक, इतने प्यार से आपने इनवाइट किया है. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आऊं, ठीक है?
0: ओके
1: ओके डार्लिंग, अल्लाह हाफिज.
0: अल्लाह हाफिज.
1: क्या बात है, जो हमारे प्यारे सुपरस्टार्स, ये सुपर किड्स जो हमें इनवाइट करते हैं ना, तो लिटरली ऐसी फीलिंग आती है, हाय मतलब क्या किया जाए. चले, सारे बच्चा पार्टी को मैं कहूँगी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं 666-22107 पर, 666-22107. बेशक आप हमें मैसेज करें, बताएं कैसे गुस्से पर काबू करते हैं, कैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई तू तो मैं में हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गई, तो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रिलेशनशिप को बचाते हैं, कैसे उस सिचुएशन को संभालते हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं. इफ यू वांट टू कॉल देन 443-443-77 इज आवर नंबर. और अभी के लिए क्या करना है, आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी.

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए फलाह अशरफुल समान के साथ और आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। रोजाना 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की।

करें, अपनों के साथ आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि देखो गुस्से के बारे में हम सभी को पता है, हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है बिकॉज आजकल एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से चाहे छोटा हो या बड़ा उसे गुस्सा आ ही जाता है कि नहीं। और सुपर किड्स देखो गुस्से से रिलेटेड ना कुछ बड़े मज़े के फैक्ट्स हैं जिनको अगर आपने जान लिया तो डेफिनेटली आप इस इमोशन को ना कंट्रोल कर पाओगे। वैसे कहा जाता है कि 90 सेकेंड रूल होता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप 90 सेकेंड अपने आप को रोक लो, कोशिश करो, गिनती कर लो, सांस ले लो, जगह बदल लो, यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू, बस ट्राई करो। 90 सेकेंड अगर आपने रोक लिया तो ये जो गुस्से का केमिकल है अपने आप फ्लश हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ है कि अगर गुस्सा आपको तेज़ आ गया और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हो ना, मैं आपको बताऊं आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो पहली चीज़ तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, इससे आपका इम्यून सिस्टम ड्रॉप होने लगता है, हार्ट भी ओवरड्राइव करने लगता है और आपके जो साइड विजन्स है ना वो थोड़े से ब्लैंक होने लगते हैं, मतलब और धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं, यू कैन नॉट सी साइड वेज, मेमोरी गैप हो सकता है। तो ये जब गुस्सा है ना जस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कि भाई ये होने से ना ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो मतलब मुझे अपने ऊपर ना कंट्रोल करना ही करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम पर जब मैं खुद छोटी थी तो मुझे भी ना हमेशा नाक पे गुस्सा आता था, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने मेरी ड्रॉइंग पर बात कर दी, किसी ने मेरी डॉल ले ली, उफ पूछिए मत। लेकिन अब धीरे धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख लिया है। वेल, हमें कुछ मैसेजेस आए हैं, आइए जरा जानते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो कैसे मैनेज करते हैं अपने गुस्से को। तो जायद का मैसेज है अलरियान से, उनका कहना है कि अमिता मुझे ज़्यादातर गुस्सा आता है, मेरे फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो जाती है, ऐसी बस हो जाती है, और उनका कहना है कि जब ऐसा होता है तो आई जस्ट ट्राई टू इग्नोर हिम कुछ टाइम के लिए, अच्छे से जाके कुछ खाता पीता हूँ, थोड़ा घूम फिर लेता हूँ और उसके बाद मैं उससे बात करता हूँ। दैट्स ऑल्सो गुड, थोड़ी सी अपनी जगह बदलने से, अपना मूड चेंज करने से ये गुस्से का जो वो कहते हैं ना कीड़ा, ये गायब होने लगता है। अच्छा, हमद इस टेक्स्टिंग की मैं बात करना बंद कर देता हूँ। ओके, और कितनी देर के लिए? कहते हैं कि मैं एटलीस्ट एक दिन लेता हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए, अगर बहुत मेजर पंगा हो गया है किसी से भी हो, चाहे घर पर हो बाहर हो, एटलीस्ट एक दिन के लिए मैं अपने आप को शांत करता हूँ और उसके बाद फिर मैं वापस से बातें शुरू करता हूँ। दैट्स गुड, एक्चुअली हर किसी का अपना तरीका है, मैं ये बस कहना चाहती हूँ कोई तरीका गलत नहीं है, लेकिन हाँ रिश्ते को बचाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आपने बात नहीं की, आप नाराज़ हो गए एंड देन द थिंग्स कंटिन्यूड। ओके, कोशिश करो कि जल्द से जल्द इस गैप को ख़त्म करो। यहाँ पर मुझे रीम का मैसेज है, कहती हैं कि अमिता मेरे साथ यही एक प्रॉब्लम है कि जब मुझे गुस्सा आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं मेक श्योर करती हूँ कि पहले थोड़ा मैं शांत हूँ एंड देन उसके बाद अपनी फेवरेट चॉकलेट खा लेती हूँ, या तो चॉकलेट का शेक पी लेती हूँ, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं चॉकलेट ट्रीट दूँ अपने आप को ताकि ये जो गुस्सा है वो शांत हो। दैट्स वेरी नाइस। यू नो मुझे एक टाइम पर जब काफ़ी मैं अपसेट होती थी तो चॉकलेट ब्राउनी विथ वेनिला आइसक्रीम इज़ समथिंग अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर मी, और न जाने मैंने कितने बार इसको खाया है, हालांकि अब नहीं खाती हूँ मतलब क्योंकि डाइट कैन ऑल दैट, बट यू नो बच्चा पार्टी दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो आपको एकदम से लो डाउन करती है, काम करती है एंड देन यू फील गुड। अच्छा, मुस्तफ़ा इज़ सेइंग कि मैं जब नाराज़ होता हूँ ना तो मैं उन्हें कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि चल जो हुआ सो हुआ, अब फुटबॉल खेलते हैं। ओके, ये बच्चा जो है ये जल्दी सबको मनाने वालों में से है, सो ही डजंट फील लाइक कि गुस्से को कंटिन्यू करना चाहिए। दैट्स वेरी नाइस। यूसुफ कहते हैं कि मैं तो भाई प्ले स्टेशन खेलता हूँ तो मेरा तो जो भी गुस्सा वगैरह है वो सब निकल जाता है द मोमेंट आई स्टार्ट प्लेइंग इट। यूसुफ, लेकिन हर किसी के पास प्ले स्टेशन नहीं हो सकता। हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता, बट दिस व्हाट यूसुफ इज टेलिंग कि भाई देखो मेरा तो प्ले स्टेशन है जिससे मैं अपना गुस्सा शांत करता हूँ, आपके लिए क्या वो चीज़ है ढूंढिए ढूंढिए सोचिए। देन नासिर का मैसेज है कि वो अक्सर एक वॉक पे जाते हैं एंड बोलते मेरे घर में गार्डन है तो जब भी मैं अपसेट होता हूँ आई विल मेक श्योर कि मैं एक 5 मिनट की वॉक कर लूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा अमिता आपके साथ क्या होता था, अरे बाप रे क्या पूछ लिया। ओके, आई विल टेल यू समथिंग, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे चॉकलेट ब्राउनी और आइसक्रीम पसंद है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैं क्या करती थी, मेरी एक फेवरेट डॉल थी, ठीक है अब ये बिल्कुल मत सोचना कि वो अमिता डॉल से प्ले करती। सो मेरी एक फेवरेट डॉल थी
और उसके बहुत सारे क्लोथ्स हुआ करते थे, पूरे सेटिंग थी, मतलब मम्मी ने बहुत प्यार से बनाया।

बनाया था पूरा क्राफ्ट वगैरह यूज करके. तो मैं हमेशा उस डॉल हाउस में जाती थी एंड आई यूज टू यू नो चेंज थिंग्स, उसके कपड़े बदलना या जो छोटे मोटे खिलौने हैं उनकी जगह बदलते रहना. मतलब आई यूज टू मेक श्योर कि मेरा माइंड कहीं ना कहीं एक्टिविटी करे एंड देन मैं नॉर्मल होती थी. एंड आपको पता होगा लस्सी इट्स लाइक दही और दूध और मलाई से बनती है, तो वो अक्सर हमारे घरों में बनती थी. तो वो उसका एक ग्लास पीना इट्स लाइक पूरी ठंडक देता है एंड देन यू एक्चुअली फील एनर्जेटिक. सो ये गुस्सा वगैरह सब छू हो जाता था. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर काजिम का मैसेज है, कहते हैं कि मुझे जब गुस्सा आता है तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग, जब मैं ड्राइंग कर सकूँ तो मैं ड्राइंग करता हूँ एंड कुछ भी कलर यू नो चलाने लगता हूँ तो मैं शांत हो जाता हूँ. वेल काजिम, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग. सो मोटा मोटा आज हमने एक चीज़ समझी कि देखिए आर्ग्यूमेंट्स तो किसी से भी हो सकती है. ऑब्वियसली गुस्से पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन अगर हो जाए तो क्या करें, उसे सॉल्व करें, सॉरी बोलें, बात करें, कॉल करें, और अगर लग रहा है कि अभी बात करने से प्रॉब्लम हो रही है तो वो सारी चीज़ें ट्राई करें जो हमारे छोटे छोटे सुपर किड्स ने अभी बताई है कि देखो हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, चॉकलेट खा लो, बाहर घूमने चले जाओ, सांसें लंबी गहरी ले लो, मतलब कुछ ना कुछ तो करो भाई. है कि नहीं? तो क्या कहना है जनाब, समझ तो गए होगे कि आज अमिता क्या कहना चाहती है. वैसे एक चीज़ है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है कि जब आप नाराज़ होते हो ना तो आप अपने आप को ना अकेला कर लेते हो, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब नाराज़गी हो किसी भी चीज़ से ना तो अपने आसपास वॉल क्रिएट मत करो, लेकिन ब्रिज बनाओ, वो दोस्ती का ब्रिज बनाओ जो हर एक रिलेशनशिप को बेहतर कर सके और हर चीज़ को शॉर्ट कर सके. है कि नहीं बच्चा पार्टी? और वैसे भी आप तो सुपर किड्स हो, तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना है. एंड ऑन दिस नोट मैं कहूँगी कि भाई अभी जाने का वक्त हो गया, मुझे जाना होगा ताकि कल आपकी मेरी मुलाकात फिर हो सके. और अगर आप छुट्टियों में हैं तो बताएगी फिर क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या करने वाले हैं, ईद स्पेशल में क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ मुझसे ज़रूर शेयर करें. 666-22-107 इज़ आ नंबर, और कॉलर नंबर भी ध्यान से लिख लें, 4434-77. एंड FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी आरजेमी तक को भी वहाँ ढूंढ सकते हैं. तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना खूब सारा ख्याल रखें, कल ठीक 1:30 बजे आपकी मेरी मुलाकात होगी द सुपर किड्स शो पर. तब तक के लिए स्टे ट्यून टू FM 107, दिल से देसी.

0: है ना, तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, जितने भी साइंटिस्ट मुझे सुन रहे हैं, टाइम फॉर सम एक्सपेरिमेंट। ये इंट्रो मैंने बहुत देर से तैयार किया, उतना भारी बना नहीं लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट कौन से भारी हैं, बड़े आसान है, घर पे बैठे बैठे आराम से हो सकते हैं। वेलकम टू जूनियर साइंटिस्ट, मैं हूं दोहा वाला कबीर आपके साथ ओनली ऑन FM 107। इस एपिसोड को करते करते मेरे ख्याल में हम 16 एपिसोड तक आ चुके हैं अभी तक, और अब एक्सपेरिमेंट जितने भी आपने किए हैं वो तो रवा हो गए होंगे, आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे, कुछ समझ में भी आ गया होगा। आज वाला भाई साहब बड़ा ही मिस्टीरियस है, बहुत ही मिस्टीरियस है, क्योंकि आज जिस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो चीजें इन्वॉल्व हैं, वो बड़ी कमाल की, कुछ अलग ही है। और ये फिर भी इन सब के बावजूद घर में आराम से हो सकता है। तो जितने भी जूनियर साइंटिस्ट मुझे सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जूनियर्स, क्या हाल है? और जितने बड़े सुन रहे हैं जो साथ देंगे, अस्सलाम वालेकुम सीनियर्स, क्या हाल है? बढ़िया, सब बड़े सलाह है, बच्चों का साथ देना है आपको। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जिसके जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बड़ी कमाल की हैं। आज का टाइटल मिस्टीरियस एल्यूमिनियम प्रॉपर्टीज। आज हम ये जानने वाले हैं कि एक सिंपल सी एल्यूमिनियम फॉइल कभी डूबती क्यों नहीं है भाई, क्या चक्कर, क्या प्रॉब्लम क्या एल्यूमिनियम फॉइल के साथ, और कभी तैरती भी नहीं है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ही मटेरियल है, दो अलग तरीकों से बिहेव कर सकता है। ये मैंने नहीं सोचा था, मैं सही बता रहा हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर बावजूद उसके जब मैंने पढ़ा इस बारे में तो मुझे बड़ा ही फैसिनेटिंग लगा। मैंने कहा भाई ये वाला एक्सपेरिमेंट है, ये लाएगा आग। तो आज जो एक्सपेरिमेंट है वो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज को लेकर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक ही मटेरियल दो अलग तरीकों से बिहेव कर सकता है। क्या शेप किसी चीज को डुबाता या तैरने में मदद कर सकता है? Is it possible? आज एक्सपेरिमेंट इतना इजी है कि आप घर पे आराम से ट्राई कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। पर सबसे पहले सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर, इस नाम से हर जगह मौजूद है, एज यू नो, ये तो आपको रट जाना चाहिए अभी तक। इसके अलावा आप शो के बारे में, मतलब मेन शोज में भी बात कर सकते हैं, मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो, बट डू लेट मी नो। एंड ऑल्सो नंबर उसका ले लीजिए, 666-22-107, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आपको लगे एक्सपेरिमेंट करके भाई मुझे जरा शो ऑफ करना है, तो जूनियर्स प्लीज टैग करवा दे माँ बाप से, क्या अम्मा टैग कर दो दोहा वाले कबीर को या FM107 को, FM107 कतर इस नाम से हमारा जो पेज है उसको टैग कर दीजिएगा जब आप एक्सपेरिमेंट पूरा मुकम्मल कर लें, ठीक है? जरा गोता लगाएं आप इस एक्सपेरिमेंट में, लेट्स डाइव इन। ओके, तो सबसे पहले एक फन गेसिंग गेम से शुरू करेंगे। अगर मैं पानी में एक पत्थर डालूं, एक लकड़ी डालूं, एक स्टील का स्पून डालूं, तो क्या होगा? सोचिए आराम से, कोई ऐसी जल्दी नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं आपको गैस करने देता हूं। काउंटडाउन शुरू करूं, 4, 3, 2, 1। तो पत्थर जब पानी में मैं फेंकूंगा तो पत्थर डूब जाएगा, गुड़। और लकड़ी अगर मैं फेंक दूंगा तो लकड़ी तैरने लग जाएगी पानी में। अगर मैं स्टील स्पून फेंकूंगा तो स्टील स्पून भी गुड़ुप नहीं, गुड़ुप आवाज भी नहीं आएगी, पर डूब जाएगा नीचे, वो पत्थर की आवाज है, कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको। मगर मैं अगर कहूं कि स्टील की बड़ी शिप तैर सकती है, अजीब लगता है ना, बोलेंगे स्पून तो भाई डूब गया, ये स्टील की शिप कैसे तैर रही है? इसी मिस्ट्री को आज हम सॉल्व करने वाले हैं कि एक ही मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे शो कर लेता है। तो बच्चों एल्यूमिनियम फॉइल आपके किचन में मौजूद है, जरूर देखा होगा आपने, और मम्मी एतराज भी नहीं जताएंगी, भरपेट आप यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, नो प्रॉब्लम। उसमें आपने देखा होगा वही है एल्यूमिनियम फॉइल, इसमें फॉइल क्यों बोल रहा हूँ बार बार मैं, फॉइल एल्यूमिनियम फॉइल। तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है उसमें सैंडविचेस रैप किए जाते हैं, खाने को कवर किया जाता है, लोग उसे बिरयानी डिलीवर करते हैं इधर से उधर, और बेकिंग भी की जाती है एल्यूमिनियम फॉइल के साथ। लेकिन आज वही फॉइल साइंस मैजिशियन बनने वाली है, एंड दैट इज वेयर द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। तो आपको क्या चाहिए? आप तो समझ गए होंगे, एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए, एक पानी का बोल चाहिए, और आपके हाथ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कमाल की चीज अल्लाह ताला ने दी है हमें, हाथ, ठीक है? तो यही तीन चीजें चाहिए। तो कोई एक्सपेंसिव लैब में जाने की कोई लोड नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए आपकी क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा, एक चाहत तलाशने की कि ऐसा क्यों होता है, एंड व्हाई वी डू ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। उसके पीछे मकसद ये नहीं है कि सिर्फ शो करना है, तो चलो बच्चों को बता दिया कि किस बहाने साइंस तो सीखेंगे, नहीं नहीं नहीं हम

कौन उसे सिखाने वाले? सीख तो आप जाते ही हैं, मगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं इन योर हेड, बट उसका जवाब देने वाला कोई नहीं होता, है ना। आप बड़ों से पूछिए जरा कि अंकल ये बताइए, ये स्पून जो है वो एल्यूमिनियम का डूब जाता है, लेकिन इतना बड़ा जहाज जो है एल्यूमिनियम का वो क्यों तैर रहा है? तो वो सोच में पड़ जाएंगे, है ना। तो उनको भी तो जवाब की जरूरत है ना। तो बिना रोके टोके जरा एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। एक फ्लैट एल्यूमिनियम फॉइल शीट आपके सामने आप रख लीजिए। अब इसे आहिस्ता से पानी के ऊपर, बिल्कुल आहिस्ता से, चिल्ले एकदम। आप क्या सोचते हैं, फ्लोट करेगी या सिंक करेगी? पहले बताओ, फ्लोट या सिंक? 3, 2, 1, डूब गई। ऐसा क्यों हुआ? एक्सप्लेनेशन इसकी बहुत आसान है। फ्लैट फॉइल के अंदर हवा नहीं होती है, उसका वेट पानी सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो डूब जाती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। कॉइन डूब जाता है, राइट, स्पून डूब जाता है, मेटल की डूब जाती है, जगह ही नहीं है भाई, है ना। चलो एक क्विक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ करते हैं। क्या हर मेटल डूबता है? आंसर देने के लिए आप मेरे साथ साथ रहिएगा। आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स पे FM 107 कतर पे। बड़े भी पार्टिसिपेट करें, प्लीज प्लीज प्लीज पार्टिसिपेट, कोई पीछे ना रहने पाए। तो पहला सवाल ये कि क्या हर मेटल डूबता है? क्या शेप मैटर करता है डूबने या तैरने में? क्या हवा किसी चीज को तैरा सकती है? सोचो, जवाब आपको आगे मिल जाएगा जब तक आप इस गेसिंग गेम खेलिए। और कोई इंटरनेट नहीं भाई, नो चीटिंग, नोबडी विल यूज इंटरनेट, प्लीज अपने जीबी बचा के रखिए भाई। अब एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब फॉइल को जो आपने देखा तैरते हुए, जो सिंपल शीट ली थी, अब फॉइल को दूसरा पीस लीजिए फॉइल का। इस बार इसे हल्का सा क्रश कर दीजिए, है ना, गुचुड़ मुचुड़ कर दो। मेरा फेवरेट वर्ड वो करता था ये, गुचुड़ मुचुड़ कर दो उसको, एकदम क्रश कर दो उसे। ज्यादा टाइट मत कीजिएगा, बस गुचुड़ मुचुड़ कर दो। अब अंदर हवा रहनी चाहिए, अब पानी में ड्रॉप करो उसे। अब क्या हुआ, अब ये तैर रहा है, डूबा नहीं है। इसी मैजिक का नाम है बॉयंसी। पहले एपिसोड में बात कर दिया था, पहले बिल्कुल पहले एपिसोड में, इसे बॉयंसी कहते हैं, यानी पानी की पुशअप फोर्स। पानी किस तरीके से नीचे से ऊपर धकेलता है किसी चीज को। जब किसी चीज के अंदर हवा होती है तो उसकी ओवरऑल डेंसिटी वो कम हो जाती है, क्योंकि स्पेस है ना, अंदर हवा टहल रही है। तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि बात का वजन, चीज का वजन कम कर दिया। डेंसिटी का सिंपल मतलब यही है, कितना वेट कितनी जगह में है, दैट्स ऑल मैटर्स। व्हेन द वेट इज डिवाइडेड और बीच में हवा के तैरने का अच्छा खासा प्लॉट बना हुआ है, तो हवा तैरती है और डेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉटन का बड़ा पिलो हल्का लगता है ना, लेकिन छोटा पत्थर हैवी लगता है। क्यों? डेंसिटी दोनों की अलग है ना, यही तो डेंसिटी का खेल है। अब जरा जहाज पर जाते हैं, है ना। स्टील की शिप्स तैरती है, क्यों तैरती है? क्योंकि उनका जो शेप है वो ऐसा होता है कि अंदर बहुत ज्यादा हवा होती है, जिस वजह से आसानी से जहाज जो है वो पानी के ऊपर तैर जाता है। मैं तो पहली मरतब पढ़ा था, मुझे डर लग गया, मैंने कहा ये जहाज तो कभी भी डूब सकता है। बट देन जब आप बॉयंसी को अच्छे से रीड आउट करते हैं और समझते हैं, देन यू रियलाइज के कितनी कमाल की साइंस। सोचिए पहली मरतबा किसी साइंटिस्ट ने इस चीज को डिस्कवर किया होगा, उसे दुनिया को बताया होगा, कितना उसे प्राउड फील हुआ होगा और दुनिया को समझ में आई होगी। ये जरा जरा सी बातें हैं, आपको लगे है नॉर्मल सी तो बातें, पर आपने कभी सोचा इस बारे में? कोई बच्चा अगर आपसे पूछ ले, जूनियर स्टेट यूनिना, मैं बड़ों से बात कर रहा हूँ, अगर आपसे आके कोई बच्चा पूछ ले कि अंकल ये बताइए, जहाज तो तैर रहा है, ये तो एल्यूमिनियम का है, ये चम्मच क्यों डूब गया, तो आप क्या बता पाएंगे? हर कोई नहीं बता पाएगा। आप साइंटिस्ट इंजीनियर है, बात दूसरे भाई, हम तो ना बता पाते। तो दिस इज द ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन कि जहाज जो है उसका शेप ऐसा होता है कि अंदर हवा बहुत हो जाती है, तो वो हवा जब एयर उसके अंदर फ्लो करने लग जाती है तो डेंसिटी जो है वो नीचे गिर जाती है। अब लाइफ जैकेट्स का एग्जांपल लीजिए, सबसे ईजिएस्ट एंड अंडरस्टैंडेबल कॉम्प्रिहेंसिबल एग्जांपल है ये। लाइफ जैकेट्स में हवा ट्रैप होती है ना, इसलिए इंसान पानी में तैरता रहता है, अंदर ट्रैप्ड है हवा, वो कह रही है कि भाई मैं तो नहीं डूबने दूंगी तुझे, उसने हाथ थाम लिया। अब आ जाते हैं आइसबर्ग्स पे, आइस भी पानी पर तैरती है, एग्जांपल है ना हमारे पास, इसकी तो कोई फिक्शनल बात भी नहीं, क्योंकि फ्रोजन वाटर की डेंसिटी कम होती है। ये हमने पहले एक्सपेरिमेंट को एकदम से यूं समझ लीजिए कि रवा कर लिया है। अब एक हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लीजिए और मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये मैं हमारे जो शहबाज साउंड इंजीनियर वो समझ गए मेरी बात को, पर आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। एल्यूमिनियम फॉइल किस वजह से फ्लोट करता है? देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, पहला शेप, दूसरा एयर पॉकेट्स, तीसरी बॉयंसी, ये सब कुछ या फिर इनमें से एक।

लेट मी रिपीट माई ऑप्शन. एल्यूमिनियम फॉइल किस वजह से फ्लोट करता है? शेप, एयर पॉकेट्स, बॉयंसी या फिर ये सब. 3, 2, 1. ओके, आंसर इज सब का सब भाई. ये सारे reasons, the शेप, the pockets, the buoyancy, इन सब की वजह से वो फ्लोट करता है पानी में. अब आ जाते हैं शिप के बारे में. शिप किस वजह से तैरती है? इंजन बहुत बढ़िया है इसलिए तैर रही है. स्टील है इसलिए तैर रही है. मैंने पिछली बार एल्यूमिनियम का जहाज बोल दिया तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, स्टील का जहाज. लोग सोच रहे होंगे हैं एल्यूमिनियम का जहाज भी होता है. नहीं, स्टील का जहाज. वो मैं जज्बाती हो गया था. एनीवे, तो इंजन की वजह से, स्टील की वजह से, शिप की वजह से. करेक्ट आंसर है शिप, और ट्रैप्ड एयर जो अंदर है उसके, उस वजह से वो तैर पाता है. तो शेप बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज शेप के अलग अलग होने की वजह से एयर उसके अंदर इजिली फ्लो हो पाती है. अब इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम थोड़ा सा एडवांस्ड कर दें, लेट्स टेक इट अप नॉच, ठीक है. मगर उससे पहले जस्ट अ रिमाइंडर, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, और से आप शो को जब भी सुनते हुए जा रहे हैं आप ना, आपको लग रहा है कि भाई कबीर को बता देना चाहिए कि मैं सुन रहा हूँ, तो प्लीज लेट मी नो. और आपके साथ में अगर बच्चे भी हैं घर के तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा. व्हाट्सएप तो 666-22-107 है, पर हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो है FM107 Qatar. ओके, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को एडवांस करने जा रहे हैं. टाइट बॉल और लूज बॉल के बीच में होगा एक तगड़ा कॉम्पिटिशन. फॉइल को बहुत टाइट क्रश कीजिए, बहुत टाइट क्रश. अब ड्रॉप करो. अब क्या हुआ, शायद डूब गया ना बेचारा. क्या किया आपने? क्यों डूबा वो? बिकॉज अचानक से जो उसके अंदर हवा फ्लो हो रही थी वो कम हो गई. अब एक्सपेरिमेंट टू लेते हैं. एक फॉइल की बोट बना लीजिए, वैसे बहुत मुश्किल काम है, अगर बना पाए तो बना लीजिए. अब फॉइल से छोटी बोट बनाइए, बना के देखिए. घर में किसी ना किसी को बोट बनानी आती होगी, उसमें जरा कॉइन्स डाल दीजिए आप. यूँ समझ लीजिए ये जहाज का खजाना है. अब देखो कितने कॉइन्स हैं कि वो बोट होल्ड कर सकती है. बोट का जो शेप है ना, वो शेप वेट को इवनली स्प्रेड आउट करता है, जिस वजह से इट इज इजियर फॉर द बोट टू नॉट सिंक एंड फ्लोट. वो आसानी से सिंक नहीं होती है और फ्लोट करती रहती है अनटिल अनलेस इट्स अ टाइटैनिक. वो बात दूसरी है. कभी और उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर देंगे हम. अब इंटरैक्टिव इमेजिनेशन सेगमेंट है, तो जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए, आप एक इंजीनियर हैं, अब्बा की तरह होंगे या फिर कोई जानने वाला. आप एक इंजीनियर हैं, आपको दुनिया की सबसे बड़ी शिप डिजाइन करनी है, बहुत बड़ा समुद्री जहाज. आप क्या शेप बनाएंगे उसका? सोचिए, जहाज आपके माइंड में अलग अलग शेप्स का आएगा. मैं ऑप्शन दे देता हूं, राउंड होगा वो जहाज, फ्लैट होगा वो जहाज, या डीप उसका जो है स्ट्रक्चर होगा. साइंस क्योंकि सिर्फ बुक्स में नहीं है, साइंस हमारी इमेजिनेशन में भी है. क्यों लगता है आपको ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो इतने कामयाब हुए, दुनिया को बता पाए? क्योंकि पहले उनका इमेजिनेशन आगे बढ़ा ना. इमेजिनेशन के बाद थ्योरी आती है, और थ्योरी के बाद जो है मेन एक्सपेरिमेंट आता है, जिसके बाद एक मुकम्मल प्रैक्टिकल अप्रोच मिलती है किसी भी चीज को. अब एक वक्त था जब लोग समझते थे कि दिस इज हैवी, चीजें कभी नहीं तैर सकती, ये कैसे होगा. फिर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, जैसे आप अभी कर रहे हैं, यूर इमेजिनिंग स्टफ. तो उन्होंने पहले लकड़ी तैरती देखी, लकड़ी तैरती है, कोकोनट तैरता है, और जहाज भी तैर सकता है. ये उन्होंने इमेजिनेशन के बाद फिर एक्सपेरिमेंट किए, और फिर हमारे पास आज की तारीख में जो जहाज है जो इतना एडवांस है, वो इसलिए आराम से तैर पा रहा है. एकदम से नहीं हुआ ये, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड ऑब्जर्वेशन. साइंस ऐसी ही चीज है. साइंस जो है सिर्फ रट्टा मारने से नहीं आती, साइंस को जितना आसानी से समझेंगे आप, क्योंकि साइंस हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर है, और आपके लिए उतनी ही आसानी होगी साइंस को समझने में जब आप ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें. यू नो द ब्यूटी ऑफ साइंस, सबसे खूबसूरत बात है कि साइंस को समझने के लिए आपको मोटी मोटी किताबों की जगह और कोई छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बताए, क्योंकि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही बड़ी बड़ी चीजें टिकी होती हैं. तो ये अगर समझ में आ गया तो साइंस आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, एंड दैट इज वॉट साइंस इज ऑल अबाउट. अब साइंटिस्ट जो है उन्होंने शेप और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कवर कर लिया. इसी डिस्कवरी ने शिप्स, सबमरीन तो पानी के अंदर जाती है ना, तो उसका कैसा शेप है ना, शिप का शेप कैसा जहन में आ रहा है आपके. फिर होती है लाइफ बोट्स, है ना, और फिर आते हैं फ्लोटिंग ब्रिजेस. पहले एक जमाने में अगर आप किसी से बोलते कि भाई एकदम एक बढ़िया सा ब्रिज होगा जो फ्लोट करेगा, कोई मानेगा आपकी बात को? आप आज की तारीख में भी अगर आप साइंस से बिल्कुल दूरी बना के रखे हुए हैं, तो आपको फ्लोटिंग जो ब्रिजेस नजर आते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा.

जब तक आप साइंस को नहीं समझ सकते. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साइंस किन किन किन कॉन्सेप्ट्स पे अप्रोच रखती है, तभी आप जो है इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं. अब आपके लिए कुछ चैलेंजेस हैं. सबसे पहले सबसे स्टेबल फॉइल बोट बनाइए आप, एंड इजिली बन जाएगी आप बोट. ये ट्यूटोरियल आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, एंड सेम एक्सपेरिमेंट वहां से निकाला गया, तो वहां पे भी ये आपको नजर आ जाएगा. तो जब आप एक स्टेबल बोट बना लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ऐसी फॉइल शेप की बनानी है आपको, सबसे ज्यादा कॉइन्स वो होल्ड कर सकते. देखते हैं आप कितनी बढ़िया शिप बनाते हैं, आपका जहाज टाइटैनिक होता है या फिर तैरता है. ये आज आपको बनाना है. अब टाइट और लूज फॉइल कंपेयर करना है, बोल में वापस बनाकर स्टेबिलिटी चेक कीजिए. अब आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ. अगर आपने ज्यादा ही टाइटली उसको बनाया है तो वो डूबना ही डूबना है, देयर इज नो चांस कि वो उस पे फ्लोट कर सके. पर अगर आपने बहुत लाइटली बनाया है, ज्यादा क्रश नहीं किया है, एंड यू मेड द शिप एज इफ कि उसके अंदर एयर पॉकेट्स हो, वो फ्लो कर सके, तो आपके जहाज में वो कॉइंस डाल लीजिए, वो नहीं डूबेगा. डो नॉट वरी, बट यू हैव टू चेक कि कितने कॉइंस में आपका जहाज जो है वो डूब जाता है. सो बी अ सेलर. ये सही टाइम है जिन लोगों को कभी फ्यूचर में जाके नेवी में जाना है या सेलर बनना है. तो बड़े लोग जो सुन रहे हैं मुझे, अपने बच्चों से एक्सपेरिमेंट कराएं. आई थिंक उनकी जिज्ञासा, उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो इस चीज़ को लेके और भी ज़्यादा बढ़ सकती है. एंड ये बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट्स हैं, ईजी टू डू एट होम. पर ये इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा फॉइल खर्च होगा. तो जितनी भी हमारी बहनें हैं, बहन प्लीज़ बच्चे को छोड़ दो आज, दे दो उसको फॉइल, दूसरा आ जाएगा, क्या टेंशन है. और बच्चे एकदम फ्रीली से यूज़ कर पाएं, बस ये चाहता हूँ. क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट ट्रायल्स एंड एरर्स. हो सकता है पहली मर्तबा में जहाज अच्छा ना बने, कोई गल नहीं, मैं तो बना भी नहीं सकता, आप तो फिर भी बना सकते हैं, आप इमेजिनेटिव हैं और आपका माइंड जो है माशाल्लाह बहुत तेज है. तो जो लोग बना सकते हैं जहाज को बनाएं, वरना बनवा लें. जैसे मैंने कहा इसके ट्यूटोरियल यूट्यूब पर है, यू विल अंडरस्टैंड. तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा है कि इम्पॉर्टेंट क्या है. बहुत सारी चीजें मटेरियल के अलावा उसकी प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट है, शेप भी. शेप जो है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है. जैसे हमने सीखा एल्यूमिनियम फॉइल, अगर आप उसे ज्यादा ही क्रश कर देंगे तो मामला खराब हो सकता है ना. वो हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा तो उसकी वो पानी बोलेगा आओ बेटा नीचे आओ, और पानी उसे खींच लेगा और वो डूब जाएगा. बट देन अगर उसका शेप थोड़ा डिफरेंट है, आपने ज्यादा क्रश नहीं किया है और एयर पॉकेट उसे ब्रीदर दिया है, तो फिर वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इट. ऑफकोर्स बॉयंसी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बट इसमें आपको ये बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि शेप ऑल्सो मैटर्स. शेप कैसा है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है. अब एक ही एल्यूमिनियम फ्लैट हो तो सिंक हो रहा है आपकी नजरों के सामने, और अगर क्रम्पल्ड कर दिया जाए तो वो फ्लोट भी हो सकता है. ये है खूबसूरती. साइंस हमें सिखाती है कि समटाइम्स अरेंजमेंट चेंजेस एवरीथिंग, एवरीथिंग. वो पता है ना आपको बटरफ्लाई इफेक्ट, हालांकि मैं कोई दूसरी बात कर रहा हूँ मगर इससे थोड़ी सी जुड़ी हुई है. बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है, आपने जरा सी चीज कोई इधर उधर हिंडर करी और उससे सब कुछ बदल गया. आपको सब कुछ नहीं बदलना होता, आपको बस छोटी छोटी चीजों को बदलना पड़ता है. अब इस एक्सपेरिमेंट में अगर मैं कहूँ कि बड़ा सा फॉइल लीजिए, आपने बड़ा सा फॉइल लिया, बड़ा सा जहाज बनाया, तो ऑब्वियसली अब आपने क्या किया, आपने उस जहाज को बड़ा बनाया, ज्यादा मटेरियल यूज किया. वो जहाज क्योंकि बड़ा है, उसका साइज बड़ा है, उसके एयर पॉकेट्स बड़े हैं, तो जब आप उस पर कॉइन रखेंगे तो वो ज्यादा कॉइन्स होल्ड कर पाएगा, एंड उसकी जो बॉयंसी है वो अलग लेवल पे होगी. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ जो वाटर बॉडीज पे तैरते हैं जहाज बड़े बड़े वो काम करते हैं. सबमरीन के साथ उल्टा है. सबमरीन में देखा है पॉकेट्स इतने ज्यादा नहीं होते, पर सबमरीन कैन ऑल्सो फ्लोट. देखा आपने सबमरीन को, जब ऐसे तो नहीं है कि स्टार्ट से पहले वो सीधा ऊपर से गिरती है आसमान से पानी के अंदर चली जाती है, नहीं, सबमरीन का एक स्टार्ट होता है, वो पानी में स्टार्ट होती है, उसके बाद वो पानी के अंदर जाती है. तो उसका शेप, उसका डिजाइन बहुत बड़े रोल अदा करते हैं, क्योंकि उसके बलबूते पे ही सबमरीन अंदर जा पाती है और बहुत गहराई तक जा पाती है, और उसके बाद वो बाहर भी आ पाती है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. अब हमने आज क्या सीखा, आज हमने वर्ड सीखा है डेंसिटी, जो हमने पहले एपिसोड में सीखा था, और पहले एपिसोड में भी हमने सीखा था बॉयंसी, और आज बॉयंसी के बारे में समझ पाया. एंड समझ में आया एयर पॉकेट्स, जो कि शेप्स एंड साइजेस पे डिपेंड करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर मेकिंग एंड हाउ बिग और स्मॉल यू आर मेकिंग, वो एयर पॉकेट्स पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. एयर पॉकेट्स पे फर्क पड़ेगा तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी. तो इसलिए हर मटेरियल अलग अलग शेप और साइजेस में एक ही तरह से मूव नहीं करेगा, उसकी एक ही तरह की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी. अ लॉट ऑफ मटेरियल्स हैव मल्टीपल पर्सनैलिटीज, और ये बहुत बहुत कमाल की बात है जो साइंस आपको सिखा सकती है आसपास की. अब फ्लोटिंग और सिंकिंग आज हमने सीखी, और शेप्स का इफेक्ट हमने सीखा, ये सब कुछ किचन में हो जाएगा.

अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक्सपेरिमेंट करके प्लीज हमें बताइएगा 666-22-107 पर, या फिर जैसे मैंने कहा हमें टैग कर सकते हैं FM 107 Qatar पे, और आपको सब कुछ मिलेगा, रिपोस्ट भी मिलेगा, हो सकता है आपके पास कोई साइंस एक्सपेरिमेंट जो आप शेयर करना चाहें तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल है सेम चीज के जो मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है कोकोनट का। जब कोकोनट आप पानी में डालते हैं, देखा है कभी डाल के आपने, आई एम प्रीटी श्योर लोगों ने ट्राई भी नहीं किया होगा, जिन्होंने ट्राई किया वो जानते हैं, पर जिन्होंने नहीं किया है उन्हें बता दो, जब आप कोकोनट को पानी में रखते हैं, पानी में डालते हैं, नारियल तैरता है, है ना, है तो बाहर से बड़ा पत्थर जैसा पर वो तैरता है क्योंकि उसके अंदर जो है और फाइबर है ना, यानी उसकी ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है। एक और एग्जांपल अगर हम लें एम्प्टी बॉटल और भरी हुई बॉटल का, तो ये भी आपको बहुत कुछ समझा देगा। एक सिंपल प्लास्टिक बॉटल में पानी जो है वो तैरता है ना, लेकिन अगर उस बॉटल को पूरा पानी से भर दो तो वो डूब जाएगा क्योंकि आपने जगह नहीं छोड़ी सांस लेने की, सांस खींच रही थी बॉटल लंबी लेकिन आपने सांस लेने दी और उसके अंदर पूरा का पूरा पानी भर दिया, डेंसिटी ज्यादा हुई और फिर वो डूब जाएगी। तो हवा की जगह आपने पानी ज्यादा भर दिया एंड इट विल इवेंचुअली ड्रॉप। जितने भी लोग आज व्हाइट शर्ट पहन के आए उनके लिए भी पैगाम है, भाई प्लीज सॉस वॉस की बॉटल या कुछ ऐसा मत गिराना, मुझे भी याद आया क्योंकि मैं व्हाइट पहन के आया हूँ, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत जरूरी है। अब एक और एक्सपेरिमेंट जो कि मेरा फेवरेट है वो है बलून के साथ। बलून हवा में क्यों तैरते हैं? अगर बड़ा ही सिंपल सवाल है आप पूछ के देखिए किसी से, अगर आपको जवाब मिले तो क्यों तैरते हैं? बताने का टाइम दूं आपको, ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। अब बताइए बलून क्यों तैरते हैं? क्योंकि उसके अंदर की जो गैस है वो आसपास की हवा से क्या होती है, हल्की होती है, वेरी लाइट। तो वो क्या करता है कि जब उसे आप उड़ाते हैं तो आराम से तैर लेता है, वो आसमान में डूब नहीं जाता, नीचे गिर नहीं जाता, एंड इट हेल्प्स बलून्स टू बी फेयरली एट अ गुड ऑल्टीट्यूड। और उसके बाद जो देखा जाएगा, किसी ने उड़ता हुआ बलून देखने के बाद गिरता हुआ बलून तो नहीं देखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। अगर ऐसा हुआ है तो भाई ये बहुत कमाल का इत्तफाक हो जाएगा, बट यू गॉट माई पॉइंट राइट। अब एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने कहा सबमरीन्स कभी पानी के ऊपर आती हैं और कभी नीचे चली जाती हैं। अगर साइंटिफिकली मैं बात करूं इस बारे में तो उसके अंदर स्पेशल टैंक्स होते हैं, हवा भरोगे सबमरीन ऊपर, हवा निकाल दी सबमरीन नीचे। आई थिंक अब ज्यादा क्लियरली समझ में आया होगा क्योंकि सबमरीन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को समझना कि सबमरीन कैसे चल रही है, यार ये चलती कैसे, इसके तो पंख भी अलग किस्म के हैं, ये क्या है, ये कैसा मटेरियल है। तो भाई साहब ये वाला एक्सपेरिमेंट इतना सिंपल है कि आपको समझ में आ जाएगा कितना कुछ टाइम बचाएंगे और कितना कुछ जो है आप अपने एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ सकते हैं बॉयंसी को लेकर, एंड दिस इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स। तो अब एक और मटेरियल लेते हैं, अगर आपको एक्सपेरिमेंट अपने भाई बहनों के साथ भी करना है तो एक ऑरेंज को पानी में डाल दीजिएगा। अब क्या होगा जब आप पील के साथ, मतलब पील्स हैं उस पर आपने पीलिंग नहीं करी है तो तैरता है वो, है ना, पील अगर उतार देंगे तो वो तैरने लग जाएगा, ओ सॉरी डूब जाएगा, है ना, उतार दोगे तो डूब जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? पील में टाइनी एयर पॉकेट्स है ना बाबा, क्योंकि टाइनी एयर पॉकेट्स हैं तो उसको मदद मिल रही है तैरने में, एंड दैट्स हाउ इट इज डन। एक एक्स्ट्रा फन एक्सपेरिमेंट बोनस आप सुनेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे यार, पहले आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा 666-22-107 पर एंड FM 107 कतर पे भी। एंड बाय द वे जितने एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं ये हमारी जो वेबसाइट है urdureadio.qa उस पर भी जाके आप देख सकते हैं, उस पर कई सारे शोज के एपिसोड्स भी हैं जो अपलोड हो रहे हैं डेली बेसिस पे, सो प्लीज फोकस ऑन दैट एज वेल। FM 107 कतर इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज प्लीज प्लीज फोकस। एंड अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको टेंस बनाते हैं। तो अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो है एक पेपर क्लिप का। अगर केयरफुली टिश्यू पेपर के साथ पानी पर रख दोगे उसे तो कुछ देर में फ्लोट कर सकती है। हाँ, इसे क्या कहते हैं? ये एक अलग नाम है, इसको बॉयंसी नहीं कहते, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। अब फॉइल बोर्ड कंपटीशन पे वापस आते हैं, घर हो या स्कूल हो कंपटीशन रखिए आप, सबसे ज्यादा कॉइंस कौन सी शिप होल्ड कर सकती है ये कंपटीशन आपके घर में होना चाहिए, बहुत इजीली ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा एंड नथिंग टू रियली वरी अबाउट। कंपटीशन बड़ा ही सिंपल रखना है आपने, अपने भाई बहनों के साथ या फिर बड़ों के साथ भी कंपटीशन कर सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप बड़ों को हरा देंगे बिकॉज बड़ों से नहीं बनता जहाज बेटा या बेटी, सुनिए मेरी बात। तो आपने एल्यूमिनियम फॉइल को जहाज बनाना है और आप इसका ट्यूटोरियल देख के रखिए और मम्मी पापा से

भाई बहनों से कंपटीशन रखिए। जिसके जहाज में सबसे ज्यादा कॉइन्स होल्ड करने की ताकत होगी वो विजेता, वो जीत जाएगा। वेरी सिंपल है ना। अब एक्सपेरिमेंट जो है बिग वर्सेस स्मॉल फॉइल का है ये। एक बड़ा फॉइल उसको निकालें, उसकी शीट लें, एक छोटे फॉइल की शीट कंपेयर करें, कौन सी बेटर फ्लोट करेगी। अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा, मैं क्यों दूं, मैं नहीं बताऊंगा, तो ऐसा ये आप बताएंगे मुझे। इसके अलावा है सॉल्ट वाटर और नॉर्मल वाटर का जो फ्लो है वो हमने बहुत बार हर एक्सपेरिमेंट में शेयर किया, क्योंकि इससे बेहतर समझाने का तरीका नहीं है। तो फॉइल को नॉर्मल पानी में टेस्ट कीजिए, फिर नमक वाले पानी में टेस्ट कीजिए। सॉल्ट वाटर ज्यादा सपोर्ट देता है, इसलिए डेड सी में लोग आसानी से तैरते हैं, नो मैटर वॉट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साइंस ने आपको एक एक्सेप्शन दे दिया। थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट व्हेन डेल्ट विद मोर डिफरेंट स्टफ। तो यूजुअल कंडीशन में हमने सिंपल ये सीखा कि बॉयंसी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर ज़्यादा आपने एल्यूमिनियम फॉल को टाइट नहीं किया है, नॉर्मल क्रश किया है, तो आपने एयर पॉकेट दे दिए, वो सील कर। पर अगर आपने उसे पूरी तरह से क्रश कर दिया तो पानी में डूब जाएगा। बट सिमिलरली अगर आप डेड सी देखें तो एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से मिला, पानी में हमने मिला दिया सॉल्ट, हमने क्या मिला दिया, समुद्र में पहले ही सही है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, आप उस पर तैर पा रहे हैं, बिकॉज दैट इज द डेड सी है ना। उसके अंदर नमक की मात्रा जो क्वांटिटी है वो बहुत बहुत ज्यादा है। अब ये एक आपने ये सुना होगा और कई लोग इस बारे में बात करते हैं कि कौन सा ज्यादा भारी होगा। मैं ऑप्शन दूं आपको, ऑप्शन है एक सूटकेस है, ठीक है, उसमें फेदर्स ही फेदर्स है, लेट्स से पीकॉक के फेदर्स हैं या किसी के भी फेदर्स से भरा हुआ है, और एक छोटा सा बैग है जो पत्थरों से भरा हुआ है, पत्थर ही पत्थर है उसमें, कौन ज्यादा हैवी होगा। पत्थर वाला ऑफकोर्स, ये ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे डेंसिटी काम कर रही है ना, क्योंकि पत्थरों में सांस लेने की जगह ही नहीं है, एयर को कहां से किधर से निकलेगी। अब जब आप स्विमिंग पूल में उतरते हैं होते हैं तो बॉडी हल्की फील होती है, राइट, क्यों, पानी आपको ऊपर पुश कर रहा होता है लगातार, ये बॉयंसी का खेल है, वो आपको नीचे एकदम से डूबने नहीं देता है, आपको पहले ऊपर की तरफ पुश करता है। तो स्विमिंग पूल में जब आप जाएंगे तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, एंड ये एक्सपेरिमेंट उससे बहुत जुड़ा हुआ है, एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स टू टेल यू। अब डेली लाइफ का जो कनेक्शन है, आपने देखा होगा यहाँ पर कतर में लोग फिशिंग करने के लिए जाते हैं, तो फिशिंग बोट्स होती हैं, फिशिंग बोट्स के बॉटम में, बॉटम वाइड ओपन होता है। देखा आपने फिशिंग बोट्स, देखिए भाई घर वालों बच्चों को दिखा के लाएगा, फिशिंग बोट्स अगर नहीं देखिए, उसका बॉटम काफी चौड़ा होता है, वाइड होता है, राइट। इससे क्या मिल रहा है बोट को, क्यों अपने डिजाइन में ऐसा ये चौड़ापन लेके आया, ये विड्थ क्यों बढ़ा दी, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी मिलती है। अब क्या फैक्टर आ गया, अब वापस आ गया शेप और साइज वाला मामला है ना। अब उन्होंने मेक श्योर क्या किया कि स्टेबिलिटी रहे जब फिशिंग की जाए, दैट्स व्हाई शेप्स एंड साइजेस चेंज करते हैं साइंस की इस थ्योरी को। अब क्रूज शिप का क्या हाल है, बहुत बड़ी क्रूज शिप भी फ्लोट करती है, वो तो बहुत बड़ी है, उसे तो डूब जाना चाहिए, लेकिन शार्पनेस और स्मार्टनेस है शेप में, अंदर बहुत हवा भरी है भाई, कोई कमी नहीं है, और इसलिए जो है वो इजीली फ्लोट कर रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पे कतर में बहुत सारी जगह है जहां पर ना वो एक कॉम्पिटिशन होता है, मैं भी गया था एक जगह गेमिंग करने के लिए पर्ल में, तो वहां पर रबर की डक होती है, टब में मस्त तैर रही होती है, उस पर वो कहते हैं छल्ले डालो इस पर, और फिर उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, वो आपने खेला है आपने, पर खेल लेना, पर साइंस का ये भी मैटर समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो रबर की डक है वो क्यों तैर रही है, क्योंकि लाइट मटेरियल है ना। अब लाइट मटेरियल हो गया तो क्या हो रहा है, लाइट मटेरियल में इवेंचुअली हवा ज्यादा अच्छे से तैर पा रही है। अब आपको लगाना दिमाग, अगर कोई बोट में होल हो जाए तो क्या होगा, क्लुप क्लुप क्लुप क्लुप क्लुप, अगर हवा निकल जाए तो क्या होगा, अगर हम फॉइल को और वाइड बना दें तो इसकी साउंड इफेक्ट की आवाज नहीं मेरे पास तो अगर हम फॉइल को और थोड़ा चौड़ा कर दें तो क्या होगा, क्या प्लास्टिक स्पून जो है वो तैरेगा या डूब जाएगा एल्यूमिनियम चम्मच की तरह, या लकड़ी का, चलो लेते हैं लकड़ी का जो स्पून होगा वो तैरेगा कि फ्लोट करेगा, चलो एक ही करके बात करते हैं, फन फैक्ट पर जाते हैं, ये आप डिसाइड करके मुझे जवाब दीजिएगा। फन फैक्ट है कि टाइटैनिक एक जायंट स्टील शिप थी, वो भी बॉयंसी की वजह से तैरती थी, राइट। पेंगुइन्स की बात करें तो पेंगुइन्स जो होते हैं वो और उनके साथ साथ उनके जो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स हैं पोलर बियर्स, पानी में फ्लोट और स्विम करने के लिए बॉडी का फैट यूज करते हैं, नोटिस किया कभी, अभी जाके वीडियोस देखिएगा आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड फन फैक्ट नंबर 3,
जो मच्छियां होती हैं, मच्छियों के पास

0: स्विमिंग ब्लैडर होता है, ऐसे थोड़ी आपने सुना हो गिल्स के बारे में, पर बच्चों के पास एक स्विमिंग ब्लैडर होता है जो हवा को कंट्रोल करके रखता है, एंड दैट्स व्हाई कुदरती नहीं होता सुखा। देख रहे हैं अल्लाह ताला ने कितने हर मखलूक पे कुछ ना कुछ एक अलग एडवांसमेंट दी है जो साइंस के बिल्कुल परे हो जाती है, पर अगर आप साइंस लगाएं तो समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहती है एट द सेम टाइम। अब जैसे एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, इन एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हर एक्सपेरिमेंट का पहला आपको गैस करना होगा, फ्लोट करेगा सिंक करेगा, फ्लोट करेगा सिंक करेगा, फिर आप आराम से हर एक चीज़ को टेस्ट कीजिए। घर में इतनी सारी चीज़ें, एक बोल पानी भर के उसमें सब कुछ डाल सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को छोड़ के, पापा का मोबाइल फ़ोन में डाल देना उसमें बेटा, नहीं तो हो गया काम फिर। अब ड्रीम बोट आपने ड्रॉ कीजिए, आपकी ड्रीम बोट कैसी हो सकती है, थोड़ी चौड़ी, थोड़ी लंबी या राउंड, और बताओ मुझे कि वो क्यों फ्लोट करेगी। यू शुड हैव अ वेरी वेरी गुड रीजन फॉर इट, है ना। तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि चीज कितनी हैवी है, बॉयंसी का मतलब क्या हुआ पानी का ऊपर की तरफ मटेरियल को पुश करना, फ्लोट करने का क्या हुआ फ्लोट मतलब तैरना, वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंक मतलब डूबना, और पॉकेट मतलब अंदर फंसी हुई जो हवा है वो, फ्लोट या सिंक डिसाइड कर लीजिए। पर मैंने आज एक्सपेरिमेंट ये इसलिए करवाया आपसे ताकि समझ पाएं कि जो सिंकनेस है या फिर फ्लोटिंग है वो सब कुछ डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स है, उनमें से एक बहुत ही एस्टोनिशिंग जो है वो है उसका साइज। तो भाई ऐसा है, साइंस बोरिंग नहीं होती है, साइंस हर किचन, हर बाथरूम, हर स्विमिंग पूल और हर खिलौने में छुपी होती है, बस सही नजर से देखने वाला होना चाहिए, है ना। और आपके पास कोई भी सवाल है, कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट जो आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कीजिएगा, मैं आपके इंतजार में रहूँगा। ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से भी हम हर जगह मौजूद हैं। एंड जूनियर साइंटिस्ट अपने इख्तिताम पे पहुँचने वाला है, सूनर और लेटर विल हैव द फाइनल एपिसोड, मगर इतने सारे एपिसोड करने के बाद आई थिंक विल रीच 17th एपिसोड नाउ जो लास्ट होगा। तो प्लीज़ बताइएगा कि आपके ये शो काम आया है नहीं आया है, बिकॉज बड़ी दिल से खुशी होती है, कुछ बच्चे बात करते हैं, कुछ बच्चे टैग करवाते हैं घर वालों से, बड़ा अच्छा लगता है, इट फील्स रियली रियली नाइस एंड प्राउड। तो मेरी तो ये दुआ है कि जितने भी बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनको आप साइंस की तरफ ला पाएं यही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते करते जो हमने आज तक किए हैं, और भी बहुत सारे हैं, पर कीप प्रैक्टिसिंग। जब तक आपका फ्लो चलता रहेगा तब तक मीटर चालू रहेगा और आप साइंस के लिए और भी एक्सपेरिमेंट करते चले जाएंगे, एंड इवेंचुअली होगा ये कि आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स इतने अच्छे लगेंगे कि आप इन्हें पास ऑन करना शुरू कर देंगे। हमारी प्रॉब्लम ये होती है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं वी डोंट शेयर, तो अपने फेलियर्स, अपने जो सक्सेसफुल हुए हैं वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आप शेयर जरूर किया करें, किसी से नहीं करना तो मुझसे जरूर करें, क्योंकि कई सारे एक्सपेरिमेंट आई अंडरस्टैंड कि वो पूरी तरह से हिट नहीं होंगे, जैसा सोचा था शायद वैसा ना हो, पर इवेंचुअली हो जाएगा। एंड अगेन, साइंस कोई बोरिंग नहीं है भाई, सारा का सारा खेल जो है वो है ऑब्जर्वेशन, साइंस क्योंकि हर जगह छुपी हुई है। तो यस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपके हिसाब से करते हैं, जो आप बताएंगे वो हम कर लेंगे। 666-22107 नंबर है, 666-22107 इस नाम से हर जगह मौजूद है, एंड ऑल्सो हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है 666-22107, ये मैंने बताया कि अभी भी anyway, FM107 का दर दोनों बता चुका हूँ। व्हाट्सएप पे आइए, सोशल मीडिया पे आइए, कहीं पर भी आइए, पर प्लीज़ जुड़िएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मिलूंगा मैं आखिरी एपिसोड में इस इंफोटेनमेंट के, इस ज़बरदस्त शो के बिल्कुल लास्ट में। यही कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी तलाश लीजिएगा सोशल मीडिया हैंडल्स पे। दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है।
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: FM 107. Time check. Time check.
1: And good evening. आप सुन रहे हैं FM 107 शो है ये डियर फैमिली और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मावेश। चार बज के तकरीबन दो मिनट मेरा आपका साथ रहना है पांच बजे तक और हैप्पी संडे आप सब लोगों को। उम्मीद है भाई कि आपकी दो दिन की एक दिन की या फिर जिसको कुडो भी नहीं मिली कम से कम दिन तो अच्छे ही गुजरे होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज का क्या सीन है ये मैं आपको बताती हूँ कि आज हम किस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं टेलीफोन नंबर्स की तरफ। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, और अगर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो उसके लिए नंबर है हमारा 6622107। हम बात करेंगे इस हवाले से कि वक्त के साथ साथ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मजबूत होते हैं, और होता यह है कि बाज़ औक़ात किसी से पहले इतनी नहीं बन रही होती, या पहले बाज़ औक़ात जो है ना वो कोई शख्स बुरा लग रहा होता है लेकिन वक्त के साथ साथ उसके बारे में नज़रिया बदल जाता है, ख्यालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि वक्त के साथ कोई रिलेशनशिप आपका मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता चला गया हो। और एक कॉल आ गई है फ़ौरन से, मुझे लगता है इनका रिश्ता हो गया किसी से मजबूत, तो बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
1: जी क्या हाल चाल है समद भाई?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अचानक से आवाज डबल डबल क्यों हो गई?
2: नहीं थोड़ा सा वॉल्यूम कर लेता
1: कर। अच्छा अच्छा सही सही। क्या हाल चाल है, आपकी छुट्टी कैसी गुजरी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी
1: गुजरी। जबरदस्त जबरदस्त ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह।
2: मैंने सोचा कि भाई अफेयर खरीब ही है, इससे पहले के कॉल कोई और लगा दो।
1: नहीं सही किया, बिल्कुल सही किया आपने। अच्छा होता है क्योंकि शुरू में जब कॉल आ जाती है ना तो जरा बात हो भी जरा आराम से जाती है, आखिर वालों से तो जरा जल्दी जल्दी होती है।
2: वैसे मैं तो काफी लंबा ही बात करता।
1: जी समझ। तो फिर आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे, कोई ऐसा रिश्ता जो आपका वक्त के साथ मजबूत हुआ हो?
2: हाँ ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से मतलब करीबी रिश्तों में तो ऐसी कुछ ऐसा खास नहीं है। पठान जैसा कि कॉलेज में हुआ या फिर ऑफिशियल लाइफ में हो गया या फिर अड़ोस पड़ोस में हो गया, तो ऐसे रिश्ते जो है अक्सर थोड़ा सा मतलब मेल जोल नहीं होता है, जीलिंग नहीं बन पाती है बेसिकली कि उनको हमारी कुछ चीजें, कुछ कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कभी कभी कि भाई उनको देखने से मन नहीं करता कि इनसे बात ही ना करें। ऐसे मतलब अलग ही एक वाइब्स आती है उनके पास से कि भाई देखते भी है तो पता ही नहीं चलता कि ये इससे तो मैं बात ही नहीं करना है मुझे। ऐसा होता है, पता नहीं इतना केमिकल होता है लेकिन है तो सही।
1: हाँ कुछ है ऐसा।
2: तो बट हाँ वो कहते हैं ना कि जिन रिश्तों की शुरुआत कड़वाहट से होती है वो आगे जाके जो है कहीं ठीक हो जाते हैं, तो ये सच बात है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है कि कुछ रिश्ते जो है शुरू शुरू में थोड़ा सा वो होते हैं लेकिन वो आगे जाके सब ठीक हो जाता है।
1: ऐसा है अक्सर ऐसा,
2: तो ये तो मैं मानता हूँ कि मेरे मेरे मेरे मेरे लाइफ में हुआ है ऐसा। ऑफिशियल लाइफ में भी कुछ लोगों से जो है क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली, और जिनको थोड़ा सा डीलिंग होने के लिए मुश्किल होता है, कोई कोई तो मतलब बहुत लंबा अरसा हो जाता है लेकिन उसके बाद में ऐसी डीलिंग हो जाती है कि वो बोलते हैं कि नहीं अब ये इसी के साथ डील करेंगे बाकी और कोई नहीं चाहिए हमें। ऐसा भी होता है कि मतलब कभी कभी तो बिजनेस के ऊपर में तक बात आ जाती है कि भाई अगर ये बंदा नहीं रहेगा आपके पास में तो हम इससे किसी और से डील नहीं करेंगे, हम ये जाना जाएगा उसके पास में बिजनेस लेकर चले जाएंगे। ये भी होता है।
1: हाँ,
2: तो ये बड़ा असरदार चीज है। ये आपने जो टॉपिक छेड़ी है ये जो है मतलब एक पॉजिटिव नोट पर अगर हम फीलिंग बना लेते हैं तो फिर कोई नहीं अलग कर सकता है उसे, वो खुद चाहे तो अलग हो सकते हैं लेकिन बाकी तीसरा आदमी तो नहीं अलग कर सकता है। ये मैंने आजमाया है।
1: गुड वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं समद कि आपने ये बात की ना तो इसमें आपको क्या लगता है कि किसी मतलब कभी जैसे अगर आपके साथ ये हो रहा हो कि लोग आपसे शुरू में जरा अच्छी तरीके से ना मिल रहे हो फिर उसके बाद में एकदम से वो आप ही के साथ बैठ रहे हैं, आप ही से मिल रहे हैं, आप ही से बातें कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है वो कौन सा गुण होता है जो अगर इंसान में हो तो लोग उसकी तरफ खींचते हैं?
2: देखिए ये यहाँ पर दो सिनेरियो है, एक तो ये कि सबसे पहले वो आदमी कैसा है आपको, मतलब वक्त के हिसाब से तजुर्बा इंसान परखने का हो ही जाता है हर इंसान को. तो यहाँ पर दो चीजें पता चलती है कि वो मतलब से आ रहा है या फिर सच में उसको कोई चीज चाहिए आपके पास से. मतलब एक आउट ऑफ द ब्लू होकर, मतलब एक कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक एक मतलब कि कुछ सीखना है या फिर कुछ बात करना है. तो ये एक सिनेरियोस होते हैं. या फिर कोई और कुछ ऐसे भी होते हैं कि चलो टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम पास करते हैं. वैसा वाला भी. तो ये चीज हमको आइडेंटिफाई करनी होती है. उस हिसाब से हम उनको जवाब देंगे कि भाई क्या जिसको जितना बात करना है उससे उतनी बात करते हैं. वही आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर
1: मिल. मतलब ये आपने प्रोफेशनली जवाब दिया है कि प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह से मामला रखना चाहिए.
2: नहीं ये मतलब घरेलू जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही है. मतलब ये ना कि रिश्तेदार अब जैसा कि होते हैं कि ग्रुप्स बने होते हैं हमारे यहाँ में कि खाला के, मतलब जो अब जैसा कि हमारी चार खाला हैं उसमें से तीन खाला का ग्रुप अलग बना होता है, एक को अलग पीटते हैं डाल के पूरे मिलके.
1: सही.
2: और मतलब पुप्पों का अलग ही वाइब्स चलते रहता है और चाचा लोग का अपना अलग. तो ये सब अपने अपने उसमें रहते हैं समझे. तो ये आप कितना भी कर लो ये कोई कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे. ये वैसा वाला सीन है. ये समुन्द्र की वो लहरें हैं जो कभी मतलब किनारे पर लगेंगी मगर किनारे पर रहेंगी नहीं. वैसा वाला है सीन.
1: सही सही. तो मतलब जितना जितना है उससे उतना ही रखना चाहिए आपके हिसाब से. ही बात है.
2: बस मेरा ये मानना है कि एक बाउंड्रीज बनाकर रखो.
1: हाँ, exactly.
2: और क्या कहते हैं कि एक लिमिट्स देकर रखो कि भाई मैं आपकी लाइफ में जो भी है एक्स वाई जेड मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा और आपको मेरी लाइफ में ये एरियाज में इंटरफेयर नहीं करना है. बाकी आपके पास में सारी एक्सेस है, आप जो चाहे वो कर सकते हो. जैसा कि हम घर पर जब मेहमान आते हैं तो हम उनको एक्सेस देते हैं ड्रॉइंग रूम का, और प्लस अगर कोई ज्यादा क्लोज होते हैं तो हम उनको देते हैं हॉल का. अब उसके बाद में हम कोई भी कितना भी क्लोज क्यों ना रहो, अपार्ट फ्रॉम अवर पेरेंट्स एंड इमीडिएट फैमिली हम बेडरूम का एक्सेस नहीं देते. राइट और रॉन्ग?
1: बिल्कुल सही.
2: तो मतलब एक बता रहा हूँ कि भाई वो खास लोग ही हमारे रूम में जा सकते हैं, बाकी सबके लिए एक्सेस नहीं है. तो उसी तरीके से मेरा भी ये मानना है कि लिमिटेड एक्सेस दो. इससे क्या होगा कि आपको भी ज्यादा टेंशन नहीं आएगी और किसी और को भी नहीं आएगी.
1: बिल्कुल सही.
2: अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा फ्री भी होते हैं हाँ एकदम से, मतलब पहली मुलाकात में ही एकदम इतना ज्यादा फ्री हो जाते हैं कि लगता है कि भाई यही क्या है, समझ नहीं आ रहा है क्या. वो कहते ना एकदम जो चिपकू वाला टाइप या समझ लो या फिर कुछ भी. अब मेरा एक आदत है कि मैं जो है थोड़ा बीसी करता हूँ. वो अलग बात है.
1: क्या करते हैं? थोड़ा
2: बीसी मतलब बातचीत करता हूँ.
1: अच्छा अच्छा अच्छा. ओके ओके. सही सही ठीक है. तो आप थोड़ा बातचीत करते हैं.

0: तो ये जो है सिलसिला आपका यूं है कि आप मतलब थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन एकदम से कोई मतलब अगर फौरन से कंबल होना चाहेगा तो उसको नहीं आप अलाउ करते, राइट?
1: हाँ, ये थोड़ा मैं ये एक बैरियर डाल के रखता हूँ कि हाँ, नहीं भाई, मतलब कि वो कहते हैं ना कि पुराना दुश्मन और नए दोस्त से हमेशा बच के रहना चाहिए,
0: बिल्कुल सही।
1: तो ऐसा वाला सीन होता है कि कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो लिहाजा हम जो है थोड़ा सा एहतियात रहना है, मोहतात रहना है। ज्यादा नुकसान तो नहीं, बट नुकसान नुकसान ही होता है, चाहे छोटा रहो या बड़ा रहो।
0: राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले जी, गुड, जबरदस्त, आपने अच्छी शुरुआत कर दी है समा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, ख्याल रखिएगा आप भी। राइट, ओके जी, एक भाई आ गया, उन्होंने मेरा ख्याल है बहुत ही तेज रेडियो ऑन किया हुआ, तो पहले अपना रेडियो वॉल्यूम कम कर लीजिए या बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर आपकी कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे
2: हैं?
0: फिर से बोलिएगा।
2: रईस, रईस,
0: अच्छा, रईस बात कर रहे हैं। आपकी आवाज़ जो है ना, वो ही गुनगुनाती भी कुछ आ रही है, गूंजती भी।
2: अच्छा, अभी अभी आवाज़ सही हुआ, मैं थोड़ा स्पीकर पे कर दिया था।
0: हाँ, अब सही है ना?
2: अभी सही है,
0: अब सही है, बिल्कुल ठीक है।
2: असल में आप ऐसे ऐसे मतलब टॉपिक को लेके आती है कि उसमें आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कि अब हम इस पे किसी की तारीफ करें या मतलब असल में मैम, मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी जो एक बैरियर जो मतलब आपने फरमाया, तो वो अगर उस हिसाब से करके रखेंगे, बहुत ज्यादा किसी को एक्सेस दे देंगे, तो आपके लिए आपके लाइफ में मसला बन जाते हैं। मैं एक मतलब अपना एक प्राइवेसी जो होता है ना, पर्सनल जो ये होता है, वो हर चीज में आप एक्सेस अगर ना दो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत खास लोग भी मैंने देखा है कि बहुत खास लोग भी आपके उस पे अक्सर हसद से, हसद बहुत बहुत बुरी बला आ चुकी है आज के। हम किसे अपना कहें, किसे गैर कहें,
0: सही। अच्छा,
2: हम यहाँ पे रईस भाई, हम बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। मैम, हाँ जी जी, फरमाएं।
0: हमारा टॉपिक जो है ना, वो ये है कि ऐसा कोई रिश्ता जो वक्त के साथ साथ गहरा हुआ हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बात उसी पे उसी टॉपिक पे आ रहा था।
0: हाँ,
2: तो गहरा, मैं इसी बात पे मैं कंफ्यूज हूँ कि कभी कभी बहुत गहरे जो होते हैं वो भी धोखा देके दूर हो जाते हैं, और जो बहुत दूर होते हैं वो कभी कभी बड़े गहरे हो जाते हैं, कि मतलब वो जब हमें उनके साथ में चलना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, या कोई उनसे कोई कोई भी मसला होता है, तो फिर वहां पे अंदाजा मिलता है कि ये बंदा हमारे कितने मतलब उसके लायक है। क्योंकि आपका जब तक दिन अच्छा होता है, सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप किसी का ही, अगर आपका दिन अच्छा है, बेहतर है, आपका सारी चीजें, तो आपको ज्यादा मतलब ये देते हैं अपॉर्चुनिटी, मतलब हर चीज के उसमें। लेकिन अगर आपका दिन अच्छा नहीं है, अगर आपके घरेलू मामलात, फाइनेंशियल जो जो भी चीजें हैं, तो आपसे मतलब तकरीबन दूरी बना के रखते हैं। और आजकल मतलब के ऊपर ज्यादा दुनिया का फोकस हो चुका है मेरे ख्याल से, और अगर आप ज्यादा तरक्की कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी लोगों के अंदर हसद, सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, मैं देख रहा हूँ कि सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, जब मिलते हैं कभी न कभार तो अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ अंदर से लोगों के अंदर अभी के जो हाल का ये 5-10 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वो जो करीब के रिश्ते थे वो बहुत ज्यादा उनके अंदर तब्दीली तकरीबन आ चुका है। हालांकि सारे ऐसे नहीं है, मैं सारों को नहीं बीच में मतलब ये करूंगा, तो मेरे ख्याल से कि रिश्तों का मैं इस मामले में देख रहा हूँ कि जो अपने नए नए शादी होते हैं, लड़की का या लड़का का, तो वहां पे रिश्ता पहले से जो नए नए, तो उसमें थोड़ा सा दूरी बनता कुछ वक्त के लिए, बाद में जब लोग एक दूसरे को अच्छे से पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो तकरीबन मेरे ख्याल से वहां पे नजदीकी का जरिया बन जाता है कि मतलब नहीं यार, अब हर बंदा एक बैग फौरी तौर पे लड़की या लड़का को अपने ही हिसाब से अपने ही माहौल में ढालना चाहे तो नहीं हो पाता है। तो वो वहाँ का माहौल जब समझ जाते हैं और ये कर जाते हैं कि हाँ, बंदे की मतलब किस तरफ ज्यादा ये है, तो उस हिसाब से अगर वो ढल गए तो तकरीबन मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ जाता है। और फिर अगर ज्यादा ये किए उल्टा उसका, तो समझ लो कि वो रिश्ता खराबी की तरफ मतलब पलट जाता है, अक्सर मैं देखा हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपना हिसाब किताब अगर सिस्टम सही रखोगे, तो हर रिश्ते में तकरीबन आपके उसमें बहुत ज्यादा मतलब किसी को ये ना मुदाखलत करने का मौका ना दो, आप अपने हिसाब से, अपने सिस्टम से, अपने उससे ये रहो, तो शायद वो बहुत से जो दूर हो जाते हैं।

0: हाँ मतलब करीब, मतलब करीबी बहुत ज्यादा ताल्लुकात है, वो सोच समझ कर ही बनाए, है ना?
1: जी जी जी, बहुत ज्यादा एकदम आंख बंद करके यकीन ना करें हर बात पे कि मैं, क्योंकि मैंने बहुत धोखा खाया, मैं इतना बयान नहीं कर सकता कि मैंने बहुत से अपने जो करीब के रिश्तेदार थे उनको पैसे के मामले में या और कोई चीज के मामले में मैंने बहुत आंख बंद करके यकीन किया, और थोड़ी दिन के बाद में मुझे पता चला कि यार मैं तो इनको अपने एक सगे एकदम भाई या जो भी मतलब रिश्ते ऐसा समझा था, और इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा मतलब फ्रॉड कर दिया। तो बाद में फिर कह भी नहीं मिलता है कि यार चार लोगों के बीच में कहें तो बोलेंगे अरे तुम तो बड़े मतलब ये बन के बैठे थे, तुम तो बहुत ज्यादा तारीफें करते बैठते थे और अभी क्या हुआ तुम्हें, अभी मजा आया ना? तो फिर वो कह भी नहीं मिलता है कि यार अभी कहें तो किससे कहें। तो मेरा ये कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा आंख बंद करके ये ना करो, बस उतना उतना ही रखो जितना कि मतलब दुआ सलाम, हाँ अगर कोई आपके लायक है तो अपने तरफ से या तो कुर्बानी दे दो, तो फिर उसके तरफ ये ना करो कि नहीं उससे तवक्को रखो कि वो सामने वाला भी मेरे लिए कुर्बानी देगा। अपने तरफ से हमारा ये फर्ज है, हम एक मुसलमान हैं, तो हमें ये नहीं मतलब किसी के ऊपर एहसान करने से पहले ये नहीं तवक्को करके रखना कि हाँ वो भी मेरे ऊपर बदले में एहसान करे, तभी मैं उसके ऊपर एहसान करूँ अपने हिसाब से। उसके ऊपर अगर कोई कोई भी चीज के ऊपर हो, मैं तो तकरीबन ऐसे करता हूँ कि वो मेरे साथ बहुत से लोग बुरा भी कर कर जाते हैं लेकिन मैं भूल जाता हूँ, वो वक्त कुछ थोड़ी देर के लिए तकलीफ होता है लेकिन जब उनका कुछ वक्त आता है और मुझसे दुआ सलाम बातचीत तो उसमें आ जाते हैं, तो यार फौरन मैं ये हो जाता हूँ कि यार छोड़ो जाने दो यार बंदा, वो अपने आप को हो सकता शर्मिंदा हुए अंदर से, तो कोई चीज का कहता जो मेरे लायक रहता तकरीबन मैं उनके मतलब ज्यादा करीब होके, और ये हक भी है हमारा, हमारे दीनी लिहाज से ये हक भी बनता है कि हम बदला ना लें उनसे, मतलब उनके जो लायक है। करीब रिश्ते को तोड़ने आप भी बहुत बड़ा जुर्म है दीन हमारे दीन में कि रिश्ते को तोड़ो मत, चाहे ये तो ना रखो कि वो अगर सामने वाला हमने आपके साथ में एहसान किया वो भी हमारे साथ एहसान करेगा तब तो ये तो उदला बदली हो गया। अगर सामने वाला हमारे साथ में अगर कोई तकलीफ दे काम बात किया या कोई काम किया तो हम अगर उसके साथ में फिर भी नरमी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इसमें इस आपके लिए मतलब अज्र का ज्यादा ये बनेगा मेरे ख्याल से,
0: सही हो गया।
1: और ये हमारे दीन के में का भी मतलब ये बताया गया है कि भाई आप उससे ये उम्मीद करके ना किसी के ऊपर एहसान करो कि वो भी बदले में मेरे साथ करेगा। तो मेरे ख्याल से मैम अपने हिसाब से ज्यादा ये ना करके अपने हिसाब से होशियार रह के सामने वाले को इतना दें कि मतलब बाद में अगर कोई चीज का आपको ये भी हुए तो इतना तकलीफ ना पहुंचे सामने वाले को, सब्र से मतलब काम ले और रिश्ता वो कायम रहे, रिश्ते को ना तोड़ो
0: जी जी,
1: मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है।
0: चलें भाई चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके,
1: थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना जी। तो हमारे साथ है रईस भाई और उनका कहना है कि भाई उतना करो, किसी को इतना गरीब ना आने दो कि फिर बाद में दुख हो, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ, वापस आते हैं, उसके बाद फिर लेंगे आपकी कॉल्स भी और आपके मैसेजेस भी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: हज के दिन 9 दुल्हिज्जा सन 1447 हिजरी के मुताबिक 26 मई को FM 107 पर सुबह 8 बजे से 11 बजे आरजी सरवर मिर्जा के साथ होंगे एक मौज्जत मेहमान हज की खुसूसी प्रोग्राम के लिए और दोपहर 12 बजे सैफ और रहमान अपने मेहमान के साथ FM 107 के स्टूडियो में होंगे और सपहर 3 बजे तक हज का खुसूसी प्रोग्राम होस्ट करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक दिन की नेमतों का हकदार बनाए।
3: क्रिकेट हो
4: एंड ही इज हुक दैट अवे दैट्स फोर रन
3: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन हम लाते हैं आप तक हर एंगल हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में
5: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से
3: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM
5: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की
2: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: राइट वेलकम बैक आप सुन रहे हैं 107 एफएम डियर फैमिली और आज हम बात करें कि वो रिश्ते जो वक्त के साथ साथ गहरे होते चले गए ठीक है तो उनकी थोड़ी सी निशानदेही भी करनी है मतलब ये तो मैं पूछ रही हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ लेकिन साथ में ये भी कि हुआ तो भाई कौन था वो ये भी बताइए ठीक है अच्छा जी मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गुड इवनिंग मावशी कैसे हैं आप होप वेल वेलकम टू द शो डियर फैमिली और हैप्पी संडे इवनिंग आपने कहा और कहते हैं कि कैसा रहा आपका वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा आपने आपका कैसा रहा आप बताएं क्या किया इस दफ़ा आपने और इसके साथ हैं शहजादा सलीम और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हम हैं आपके साथ FM 107 ज़बरदस्त शहजादा सलीम और इसके साथ ही मोहम्मद नहीं सिर्फ तौफीक का मैसेज है और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तौफीक फ्रॉम अलवकरा क्या हाल चाल हैं तौफीक आपके ठीक ठाक हैं सब सही चल रहा है और इसके साथ ही जी हैं हमारे पास मैसेज जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू MBB ओके मैम मावश मैम बाय बाय और अब तक के लिए इतना ही है मेरा कल सोने की तैयारी कर ली है मोहम्मद ये मुबीन बुखारी ने क्योंकि जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ाया उससे मेरा ख्याल है 5 मिनट पहले नहीं 3 मिनट पहले ये बाय कह के चल भी दिए पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे आप हमें कॉल कर सकते हैं कॉल करने के लिए नंबर आपको पता ही है फिर मैं रिपीट कर देती हूँ 4434377 पे कॉल कीजिए और साथ ही 6662107 पे हमें मैसेज लिख के भेज दीजिए बात हम कर रहे हैं कि वो रिश्ते जो कि वक्त के साथ गहरे हो गए अच्छा ऐसे बहुत से रिश्ते वाकई होते हैं मतलब बहन भाई में भी ऐसा होता है कि जिन बहन भाइयों के साथ आप बचपन में बाज़ औक़ात लड़ते झगड़ते रहते हैं उनके साथ आपकी बड़े होने के बाद ज़्यादा बनती है मतलब देखने में क्या आया है कि शुरू में बड़ी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे होते हर वक्त लड़ाई झगड़ा ये यहाँ पे बैठेगा तो मैं नहीं बैठूंगी ये वाली जो चीज़ें ना चल रही होती हैं लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हीं में ज़रा ज़्यादा मतलब एक नज़र आ रहा होता है कि अंडरस्टैंडिंग है और ये सब कुछ है इसी तरीके से बाकी जैसे रईस भाई बोल रहे थे कि रिश्ते जैसे वो अगर हम बात करें शादी वादी के तो उसमें तो यूजली ऐसा हो ही जाता है और चूंकि हमारी यहाँ होती हैं थोड़ी सी ज़रा अरेंज मैरिजेज ज़्यादा तो बेचारे तो एक दूसरे को पहले जानते ही नहीं है तो वक्त के साथ साथ वो रिश्ता तो गहरा होता ही चला जाता है जबकि पहले उनको पता भी नहीं होता कि वो कौन है अच्छा जी देखते हैं कि कौन है हमारे साथ हेलो अस्सलाम वालेकुम
6: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू
1: जी सुल्तान साहब क्या हाल चाल हैं आपके
6: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अभी जो भाई की मैं बात सुन रहा था उसमें मैं काफ़ी चीज़ों से मुत्तफिक हूँ लेकिन इस बात के ऊपर के ऐसे बंदे जो जिसको कहते हैं ना टॉक्सिक रिलेटिव्स उनको खुला छोड़ दिया जाए और उनके ऊपर कोई रिस्पांस भी ना दिया जाए और अल्लाह और फरिश्ते आके उनको ठीक करें नहीं ऐसा नहीं है ना आप अपने हाथ से रोकने का हैंडल करने का तरीका और जब खास तौर पर तो मौजूद था कि जहाँ नई रिश्तेदारियाँ हों या उस यंग एज में बाजूगा तो आपकी इतनी वो कहते हैं ना पहचानने की नज़र नहीं होती है तो उसमें आपके जो बड़े हैं ये मुझे उनके एक्सपीरियंसेस। अच्छा, आप वक्त के साथ साथ आप भी देखते रहे ना, तो आप भी कई लोगों को, यानी जज करना नहीं कहते, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ रखा है कि आप उनको देख के पहचान जाते हैं। बल्कि आप देखें, पहले थी लोग, बच्चे पैदा होते थे ना तो उनको देख के पेशेंगुइयां करते थे और अच्छी खासी। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वो रखा है, इल्म रखा है, बाकी आप इसको अच्छा यूज़ करें या बुरा यूज़ करें। तो रिश्ते नातों में वही बात है, वैसे आप आजकल रिश्तों के पीछे पड़ी हुई हैं हाथ धो के।
1: मैं क्या करूँ, शो ही मेरा ऐसा चल रहा है, लोग सोच रहे हैं इनको बड़ी दिलचस्पी है। अच्छा पता है क्या मेरा क्या मामला है कि मैं ना ये बड़े आराम से कह सकती हूँ कि मैंने रिश्तों में कोई अपने आप कोई धोखे नहीं खाए। मतलब अपनी बात करूँ ना मैं, मतलब अपने घर वालों को हटा कर, तो मैंने अपने आप कोई धोखे नहीं खाए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब ना मैंने सोचा हो कि हाय दिल टूट गया मेरा, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, ये वाला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। वजह उसकी पता है क्या है, जैसे भी आपने कहा एक्सपीरियंसेस, तो मैं अपने घर वालों को देख के ही सीख गई थी कि मुझे ये वाली गलतियाँ नहीं करनी, तो इसकी वजह से मैं बच गई।
6: हाँ, उसके अलावा कुछ किसी वक्त में आपकी किसी से तवक्कुआत हो जाती हैं, आप मुश्किल हालात में हैं या और कोई ऐसे मामलात हैं जिसमें किसी का, वो कहते हैं ना डूबते को कश्ती का सहारा, कि मामूली सा आपको वो करें तो वो हो जाता है। तो उस इंसान को ना उस वक्त उस चीज़ का रंज रहता है कि ये मामूली सी चीज़, लेकिन इसीलिए कि वो रिश्तों में कि यार ये हमसे आगे ना बढ़ जाए, ये हमसे बेहतर ना हो जाए, ये जो हसद है। लेकिन ये मैं देखता हूँ हमारे माशरे में ये कहाँ से, इसको कहते हैं इंड्यूस कर गया या अंदर आ गया, जबकि हमारे दीन में इन चीज़ों की रिश्तों से हटके भी बड़ी वो है। और उसके बाद फिर अगर आप जरा बेहतर हो जाएं तो उसमें भी इसी सिचुएशन में। और सबसे बड़ी चीज, जैसे उन्होंने बड़े दुख से कहा ना कि कोई इस तरह करके, तो बाद में आप कहें ना कि मुझे तवक्को नहीं थी, तो फिर वो कहते हैं कि भाई आप बच्चे तो नहीं थे, आप अंधे तो नहीं थे।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है।
6: दैट्स हर्ट। हाँ, ये बहुत हर्ट करता है कि उसमें उसमें आप जब खुलूस से किसी का कर रहे होते हैं ना, तो फिर इन चीजों को सोचते ही नहीं है। कि आपके जहन में ही नहीं होती आप इस तरह कर रहे होते हैं। यकीनन अच्छाई का बदला अल्लाह ताला ने वो रखा है, अच्छाई जिसके साथ की जाए। अच्छा, मैं हैरान होता था इस बात पे कि आप जिससे अच्छाई करें उसके शर से मां उसके शर से। तो वाकई इस बात ने भी प्रूफ किया है। तो बाकी अच्छाई करते रहना चाहिए, ऐसी तरह ही है। अच्छा, आपके साथ बाजुकात ना लोग अपने रिश्तेदारों से उसका लेने का या करने को झिझकते हैं, पता नहीं इसमें तानेबाजी या उस एहसान का कि हमारे मिलेंगे या करेंगे, इसकी ना इसकी अखलाकियात हमारे यहाँ। अच्छा, आपने एक पंजाबी में अक्सर सुना होगा, यानी वो करते हैं कि ये जो करीबी रिश्तेदार हैं इनके मुतलिक कि ये जो है ना यही हमारे सबसे बड़े जो है ना नाकिद हैं, या इनके इन्हीं से किया जाए, हालांकि ये तो प्यार के रिश्ते हैं। और उसमें आते कौन हैं, चचा खाला मामू, नहीं ये तो उनके रिश्ते हैं। तो इन रिश्तों को निभा के रखें, रिश्तों को मिला के रखें। और फिर वही बात है कि पहले लोग कबीले और रिश्तों में थे तो मजबूत थे, अब ये जो बॉन्डिंग टूट गई है ना, इससे बड़ी बुराइयां और बुराइयां क्या, अनसिक्योरिटी भी बढ़ गई है। आप सबके साथ हैं, मिल के हैं, तो किसी के अच्छे बुरे बीमारी में थोड़ा सा उसका आप सपोर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए वो मामला कितना आसान हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो ज़कात और ये जो है इसी तरह ही। तो इन चीजों पे तो बाकी ठीक है, गौर करना चाहिए। और एक चीज है, वैसे तो मुझे इतना अरसर है कि आपके मिजाज का काफी हद तक पता भी चल गया है। पहला गाना तो अच्छा था, दूसरा गाना तो अगर तो ये था कि आप ये चलाने, फिर तो सही है।
1: नहीं, मैंने नहीं लगाया वो प्लेलिस्ट में था।
6: सही है, सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
1: पहला वाला मैंने लगाया था, दूसरा वाला जो प्लेलिस्ट में था।
6: तो मैंने कहा कि भाई ये आपने चलाना है तो बस फिर ठीक है। मेरी
1: मुझे सच्ची जो बात है ना, इस वक्त की मुझे कोई गाने पता ही नहीं है कि कौन से गाने हैं। तो अमूमन जो मैं लगाती हूँ, आपने सुना होगा, पुराने गाने होते हैं यूजुअली।
6: पुराने हैं, नए भी हैं, बड़े मीनिंगफुल या इसमें अच्छे हैं। अच्छा, बाद गाने ऐसे हैं बस आप उनकी वीडियो ना देखें तो ऑडियो में बड़े मजे के हैं, बस वीडियो ना देखें।
1: हाँ, उसकी ऐसे देखें, अभी के जो अच्छे गाने हैं ना वो कोक स्टूडियो या ओएसटीज जो हैं जो मैं लगा रही होती हूं, तो ये वाले कुछ मेरा वाला मिजाज है। बाकी ये कि मुझे बहुत हल्ला गुल्ला और बहुत वो इस तरह की चीजें नहीं पसंद है, तो वो बस जो होती हैं वो मैं चला देती हूं। अभी देखिए मॉर्निंग में क्या चलेगा, क्योंकि मॉर्निंग की डिमांड है कि वो ही वाले चलने चाहिए ना, हल्ले गुल्ले वाले, तो चलाने पड़ेंगे। खैर,
6: यानी लोग जाग जाएं सोते हुए की आंखें खुल जाएं।
1: एग्जैक्टली।
6: और मुझे वो अबरारुल हक के गाने याद आए जिसमें वो कहते हैं शरीकों की शरीक, और शरीक मतलब यू आर क्लोज रिलेटिव,
1: शरीकों वो ऐसे कुछ करके गाना है ना।
6: हाँ, तो इसका मतलब है कि ये गलत चीजें राइज कर दी गई हैं। ये देयर इज नो कॉम्पिटिशन भाई,
1: पता है इसमें आज... बात क्या है ना, आपने बड़ी सही बात बोली है। इससे पहले जो भी जो हमारे एक भाई आए थे, बात ये है कि जो मैंने जो चीजें सीखी ना, मतलब जब मैं अपने घर में थोड़ा सा ये सुन रही होती थी कि ये हुआ या वो हुआ, ये मैं देख रही होती थी रवैये, क्योंकि हम लोग रहते थे कुवैत में, वही वो जो एक होता ना, वो उस वक्त की जनरेशन जो थी ना हमारे पप्पा वाली, वो थी कि जब नए नए लोग जा रहे थे ना कुवैत और मतलब इन जगहों पे बाहर निकल रहे थे, अक्सरियत नहीं जाती थी, तो वो एक अलग ही माहौल होता था उस वक्त, बेचारों को बिल्कुल अक्ल भी नहीं थी, सब कुछ था, वो वाले मामला थे। तो उनसे मैंने ये सीखा था, ये नहीं सीखा था कि आगे से किसी के साथ अच्छा ही नहीं करना, बल्कि मैंने सीखा था कि भाई अच्छा करो तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करो कि आपके साथ अच्छा होगा, ये सोच के करो कि आप अपने दिल की खुशी के लिए कर रहे हो, और वहां पे एक्सपेक्टेशन सब रखो ही नहीं। दूसरी चीज क्या है कि एक जो चीज हमारा मजहब सिखाता है हमें, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर नहीं करते, आपकी जो नियमतें हैं, आपको क्या अल्लाह ताला ने दिया है, क्या क्या मिल रहा है, उसका गैर जरूरी तस्करा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है कि या तो हसद पैदा होता है या आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो वो जैसे हमारे भाई ने बोला ना पहले समझ रहे कि आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए, तो बाउंड्री में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
6: मैं वो पहली कॉल तो नहीं सुनी, सिर्फ एक लास्ट लाइन, बाहर वालों के लिए ना रवैये बड़े सख्त हैं, वो कहते हैं एक तो इनके पास पैसे आते ही रहेंगे, हाँ। ना इन्होंने बूढ़ा होना है, ना इनकी जॉब जा सकती है, ना बीमार होंगे, हाँ। ना बच्चों के लिए, हाँ। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये रवैया आपका ना एयरपोर्ट से शुरू हो जाता है।
1: एग्जैक्टली ऐसा ही,
6: तो फिर वहां से जब शुरू हो जाता है नहीं रखे हैं, बाज़ूकात वो भरम कायम रखने के लिए भी किस तरह चल रहे होते हैं। और अगर इन ऑनेस्टली हमारे मुल्क वालों की भी 80% तो ब्लू कॉलर जॉब है, जितनी मेहनत यहाँ कर रहे होते हैं ना वहां जाके भरम कायम रखते हैं, इतने पैसे नहीं होते लोगों के पास। ओके जी, अल्लाह
1: साहब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। रई जी, तो हमारे साथ थे हमारे कॉलर, हर किसी का अपना अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन मुझे वाकई मतलब जो मैं ये समझती हूँ, मैं इस मामले में बड़ी मतलब जो ना मुझे कभी भी इस बात पे वो नहीं होता, अफसोस नहीं होता कि मैंने ये क्यों कर दिया था, ये वाली बात क्यों हो गई थी, क्योंकि वही है कि एक तो आप अपने बड़ों की ना गलतियों से आपको सीखना चाहिए, ये एक ज़रूरी चीज़ है। आप ये समझो भी एक तो कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, कोई चीज़ ऐसे नहीं वैसी होनी चाहिए थी, तो वो चीज़ें आपको लर्न करनी चाहिए। मतलब अभी मैं कहीं सुन रही थी, किसी ने बोला कि तीन तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो कि दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, उनको अकलमंद कहा जाता है, तो मतलब मैं अपने आप को कह रही हूँ, आप कह सकते हैं मियां मिट्टू, और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि खुद चोट खाते हैं और उसके बाद फिर सीखते हैं, और तीसरी वो कैटेगरी होती है कि जिनके ऊपर किसी भी तरह के हालात आ जाए, एक्सपीरियंसेस हों दूसरों के, अपने आप उन्होंने धक्के खाए हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सीखते ही नहीं है, वो पूरी जिंदगी अपनी ऐसे ही गुजारते हैं। मतलब अभी धोखा दिया किसी ने, फिर कहते हैं आओ भाई फिर धोखा दे दो, हम तैयार बैठे हुए हैं, हम तो तैयार हैं ही इसी के लिए, तो नहीं होना चाहिए। एक हमारे यहाँ एक हदीस है आई थिंक ना, कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं अपने आप को डसवाता, तो ये थोड़ी सी चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें मुझे लगता है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। कोई भी नेकी करे, ताल्लुक आपने नहीं तोड़ना, लेकिन ये समझकर ताल्लुक नहीं निभाएं कभी भी कि आपको जहाँ पे आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वहाँ पे आगे से भी आपको मोहब्बत मिल जाएगी, क्योंकि अमूमन दिल आपका वहीं पे टूटता है जहाँ पे आप दिल लगाते हैं, तो दिल ऐसा लगाए ही नहीं भाई, मतलब कि जहाँ पे दिल टूटे। मतलब शायद मेरा मामला क्या है ना कि हुआ ये था कि मैं बहुत छोटी थी, मुझे अभी तक याद है, मेरी एक दोस्त बनी थी शुरू में, बिल्कुल मतलब वो जो बचपन वाली नहीं होती एक कि हाँ बस दोस्ती हो गई, और वो एकदम सबको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि यार मतलब बहुत ही दोस्ती हो गई हमारी, तो वो लोग बराबर से फिर कहीं और शिफ्ट हो गए थे, और मैं मुझे बाकायदा फीवर हो गया था, लेकिन वो पहला और आखिरी था कि जिससे मैंने कभी ना मतलब इतना ज़्यादा हुआ हो। फिर वो अच्छा बाद में वो इस बात के ऊपर शो ऑफ करती रहती थी खातून कि मेरी मुझे मतलब बुखार हो गया था उनकी वजह से, उनको कोई लेना

0: ना देना नहीं था, तो मुझे वहां पे समझ में आ गया था कि भाई दूसरों के लिए अपने आप को ना घुलाने का कोई फायदा नहीं है. तो ये होती है चीज, एक दफा हमें समझ जाओ भाई कि अगला बंदा वो डिजर्व नहीं करता. चलें जी हम पर एक हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, एक सेकंड का ब्रेक है, सेकंड का तो नहीं 18 सेकंड का ब्रेक है, फिर वापस आते हैं.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: आईडी राइट और कोई कॉलर हमारे साथ. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
0: जी अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं अनिका, क्या हाल चाल है, कैसी हैं?
1: अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं भी?
0: अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक. अल्लाह का शुक्र.
1: अच्छा गुजार क्या?
0: अलहमदुल्ला अच्छा गुजरा माशाल्लाह.
1: और घर में सब खैरियत है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह.
1: तीन वाली बात है ना.
0: खाने में क्या पकाया, ये नहीं पूछा आपने?
1: खाने में क्या पकाया? बच्चे बच्चे ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह.
1: हाँ, पड़ोसियों ने कोई तंग नहीं किया?
0: नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. जी
1: तो बात आ गई, पड़ोसी नहीं तो रिश्तेदारी सही.
0: कुछ तो जी, तो मैं तो कोई ऐसी बदनाम हो गई ना. पता है मैंने आखिरी जो एपिसोड है ना संडे वाली जो होगी, तो मैंने अली रजा जो हमारे कॉलर हैं उनके कहने के मुताबिक मैंने उस एपिसोड का टाइटल ही रखा है कहानी घर घर की. मैंने कहा ये होना चाहिए क्योंकि वाकई मतलब मेरे ऊपर तो इस दफा ना वही लग गया है, इल्ज़ाम लग गया है कि मुझे लोगों की बड़ी फिक्रें होती हैं.
1: तो फिर वो भी रख लेना, सास भी कभी बहू थी.
0: बस उसी में वो भी ले आइएगा.
1: घर घर की अच्छा टॉपिक है,
0: लास्ट में वो ही लेकर आ रही हूँ. संडे को होगा नेक्स्ट संडे.
1: हाँ जी, आपने अभी बात हो रही थी कि रिश्ते कौन से सिंसियर होते हैं, आई थिंक सो, जहाँ से मैंने सुना ऐसा ही कुछ है टॉपिक.
0: हाँ नहीं नहीं, बेसिकली टॉपिक हमारा है कि वक्त के साथ रिश्ते जो गहरे होते चले गए, टॉपिक ये है.
1: अच्छा सॉरी, गहरे होते.
0: जी जी जी.
1: तो मुझे लगता है कि रिश्ते वही गहरे होते जाते हैं जो आपके साथ सिंसियर होते हैं, बाकी कोई
0: छट जाते हैं ना,
1: चाहे हाँ कोई भी हो, उनकी जो असलियत होती है ना वो आपके सामने आ जाती है वक्त के साथ साथ, मैं ये समझती हूँ.
0: ऐसे ही
1: तो जो सिंसियर होते हैं वो दोस्त भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं. माँ बाप मुझे लगता है कि शायद नहीं बदलते, या पता नहीं शायद
0: अभी
1: मैं बात करूंगी. हाँ. फिर कुछ क्योंकि दो दिन पहले ही कुछ हम
0: एग्जैक्टली मुझे भी मेरी बहन ने बताया कल. मेरा ख्याल है आप उसी के बारे में बात करी, वो बेसिकली कोई न्यूज ऐसी मशहूर हुई, मुझे लगा शायद आप उसी के बारे में कहना चाह रही हैं.
1: नहीं न्यूज नहीं, यहाँ मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं.
0: अच्छा अच्छा,
1: दोस्त थे कह सकती हूँ. तो उनके यार भाई की डेथ हुई, मुझे इतना अफसोस हो रहा है. तो उनकी जो फैमिली है उन्होंने उनकी वाइफ और उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है. अब हंसू के रोऊं के क्या, उस पर हंसने की तो बात नहीं है, लेकिन एक दुख अंदर से जो होता है ना कि किस तरह के रिश्ते हैं, यानी कि आप उसकी बीवी और बच्चे वो कहाँ जाएंगे, उनको आप लेकर आए. एक बीवी जो अपना, अब मैं बात करूंगी फिर बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं विश ये हकीकत है, और हम इस हकीकत से कब तक आंखें चुराते रहेंगे यार. चलो माँ बाप नहीं बदलते, जो ननदें होती हैं, जो रिश्ते होते हैं वो तो बदल जाते हैं शायद. आप एक बार सोचें कि उसके बच्चों के सर से आप छत छीन लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे.
0: Exactly.
1: तो ऐसे रिश्ते वक्त के साथ साथ गहरे हो सकते हैं. उन बच्चों के दिलों पर क्या गुजरेगी कि जो उनकी पुप्पो थी, जो उनके दादा दादी थे, उन्होंने उनको घर से निकाल दिया.
0: ऐसे ही
1: तो ये बहुत बड़ा जो है ना एक हकीकत है, इनफैक्ट है कि हम लोग इस चीज से जितनी भी नसरें चुराएं, ठीक है माँ बाप हमें पालते पूछते हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि कभी भी औलाद को ना अपनी जागीर नहीं समझना चाहिए. तो बाकी हर रिश्ता मैं यही समझती हूँ, जो रिश्ता आपके साथ बिल्कुल सिंसियर, उसमें माँ बाप भी हो सकते हैं, उसमें बहन भाई भी हो सकते हैं, उसमें दोस्त, कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी मियाँ बीवी का भी, जो आपके साथ सिंसियर है वो वक्त के साथ साथ जो है और गहरा होता जाता है. बाकी हर रिश्ता सिर्फ अपनी असल शक्ल दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता.
0: Exactly,
1: आप चाहे उसके साथ कितने भी अच्छे हो जाएंगे, अभी जो भाई बात कर रहे थे कि फिर तो आप बेवकूफ बन रहे होते हैं, बहुत से लोग बनते हैं महविश, नहीं पता चलता उन्हें. देखें ये दुनिया है. मैंने भी अपने एक्सपीरियंस जो है उनसे, मतलब जो जो एक्सपीरियंस किया और उनसे बहुत कुछ मैंने मतलब सीखा है. आपको दुनिया, मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था कि उस्ताद तो हमें सिखाता है फिर इम्तिहान लेता है ना, और जिंदगी इम्तिहान लेके हमें सिखाती है. तो यही चीज मैंने भी वक्त से बहुत कुछ सीखा है. तो यही चीज है कि समटाइम इंसान ना इतना किसी के साथ सिंसियर होता है कि आपको पता नहीं चलता कि वो आपके साथ कैसा है. तो नहीं आप समझ सकते लोगों को, एक वक्त तक तो मैं समझती हूँ. कुछ रिश्ते होते हैं जो आपको समझ लग जाते हैं, लेकिन बहुत से रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्होंने चेहरों पर निकाब चढ़ाए हुए होते हैं, वो नहीं आप समझ सकते.
0: सही.
1: बस जो आपके साथ सिंसियर होंगे सिर्फ वही वक्त के साथ साथ गहरे होंगे, और कोई गहरा नहीं होता रिश्ता.
0: यही है
1: सब अपने
0: ऐसे ही है. ऐसे ही है. बिल्कुल सही बात है. अच्छा मैं समझी कि अभी वो कोई मुझे मेरी बहन ने बताई थी न्यूज़, वो खैर बहुत ही कुछ अनफॉर्चुनेट है, वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगी ऑन एयर, मेरा ख्याल है बताऊंगी तो लोगों को मतलब बहुत अजीब ही लगेगा तो इसलिए रहने ही देते हैं। मैं समझी शायद उसकी तरफ, हाँ वही मतलब वही चीज है कि हम जिन रिश्तों के बारे में सोच ही नहीं सकते ना कि मतलब माँ या कोई कभी इस तरह से किसी के साथ, वो भी छोटे बच्चों के साथ कोई इस तरह से कर सकती है, तो वो भी चीजें सामने आ जाती हैं कि जो कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, तो वाकई हर किसी के नहीं होती, कुछ मतलब कुछ बहुत अजीब अजीब लोग भी होते हैं इस दुनिया में जिनका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन होता
1: है। बात सही है, लेकिन अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला आजमाइश में ना डाले, ये भी आजमाइश होती है अल्लाह ताला की तरफ से माँ बाप के लिए भी, मैं समझती हूँ
0: बिल्कुल,
1: कितने किसी के साथ सिंसियर हो कितने नहीं हो, अल्लाह ताला अगर औलाद देता है ना तो वो भी एक आजमाइश है, इम्तिहान है हमारे लिए कि हम उसके साथ कैसे उसको किस तरह से पालते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने आपकी आपके हवाले की एक जिम्मेदारी, आपको कुछ समझा है कि आप वो जिम्मेदारी पूरी कर सकते हो, तो अब आपके ऊपर फ़र्ज बनता है कि आप उस जिम्मेदारी को निभाओ अच्छे तरीके से, जितना मतलब जो कुछ कर सकते हो ना, हराम की तरफ ना जाओ, लेकिन ये कि जायज़ तरीके से हलाल तरीके से आप अपनी औलाद के लिए सब कुछ, उनकी तरबियत के लिए उनके लिए सब कुछ करो, अब उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए। जी जी बिल्कुल
1: बिल्कुल, चले मैं भी शुक्रिया यार, मेरा गला ना थोड़ा सा खराब है
0: कोई मसला नहीं यार, ख्याल रखिए अपना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह बात होती है, ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।

0: exactly right. Welcome back. और कुछ messages हैं आपकी call है. Hello, अस्सलाम वालेकुम. हेलो
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, क्या हालचाल है आपके करीम भाई? ठीक ठाक हैं,
1: अल्लाह से राजी हैं. बस मौका मिला, मैंने कहा शायद बहन से बात हो जाए. क्या मौजू है आज?
0: आज का हमारा टॉपिक है रिश्ते.
1: आजकल
0: हाँ, जो रिश्ते वक्त के साथ गहरे हो गए हों, कोई ऐसा रिश्ता.
1: कोई ऐसा रिश्ता जो वक्त के साथ गहरे हो गए. बस रिश्ता तो यही है, माँ बाप के साथ है ज्यादातर. ऐसा कोई नहीं है लाइफ में, क्योंकि एक माँ जब आपको बेअदबी माँ 9 महीने पेट में पालती है, फिर इस दुनिया में 2 साल पाल पोस के फिर मंदा भरा हो जाता है, तो यही वो एक रिश्ता है. इसके अलावा जैसे बहन भाइयों का सबसे ज्यादा माँ बहन का है, लेकिन हकीकत में ये है कि ये सारे रिश्ते जितने इसके अंदर मोहब्बत है, खलूस, इतना दर्द भी है, इतनी तकलीफ भी है इसमें. इसके 2 पहले होते हैं ना, अगर आप इसको 100% बना देंगे तो 50 खुशी है, 50 गम है, 50 दर्द है, 50 मतलब तकलीफ है, 50 बस. ये कहते हैं ना, वो दुनिया में जब आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर हो तो पीना ही पड़ेगा. ये चीजें हम बदल नहीं सकते. बस हमें यही अल्लाह ने कहा है कि आप इज्तिमाई कोशिश करें, यानी सिर्फ खुद की नहीं, कोशिश करो खुद को तो बदल लो. साथ में जो लोग हैं, चाहे वो बहन भाई की शक्ल में हो, माँ बहन की शक्ल में हो, दोस्तों की शक्ल में हो, या साथ में जैसे दोस्त है, तो यही कोशिश करनी चाहिए. बाकी जो चीजें हैं अल्लाह ही बदल सकते हैं. तो एक बंदा जब किसी के साथ ज्यादती कर रहा है तो वो अल्लाह ही बेहतर समझता है. तो ये सारे वो चीजें हैं कि एक तो वो एक वर्ल्ड वो अपने एक लीडर ने कहा था ना कि ये तो एक ऊपर से तो लिखे पड़े नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं कर रहे हैं. तो कोशिश वो चीज है कि इंसान

0: को बदल देता है कहीं से, तब बहुत कुछ कर सकता है इंसान अगर कोशिश करे। ये चीज हम आप लोग से सीख भी रहे हैं। तो बाकी हमारा कोशिश यही है कि हम खुद को भी बचाएं ऐसे चीजों से जो अगले का दिल ना दुखे, चाहे वो शख्स किसी भी शक्ल में क्यों ना हो। ये नहीं कि वो सिर्फ माँ बहन भाई बीवी बैठा हो, कोई भी इंसान हमारे तकलीफ ना पहुंचे उसको, सबसे पहले हमें सबको यही कोशिश करनी चाहिए। बाकी कोशिश हम करेंगे, चेंजिंग अल्लाह ताला लाएगा, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। बस यहाँ पर लोग आते हैं ना, कुछ लोग यहाँ पर रेडियो पे आके ना वो अपने दिल के बड़ास निकालते हैं, कोई लोग किसी को वो कहानी सुना के ताकि कोई उसे फायदा उठाए। तो वाकई यहाँ से हम मुख्तलिफ लोग आते हैं, हम उनको बातों से पता चल जाता है कि इसको क्या तकलीफ है और ये क्यों ये कहना चाहता है। और ऐसी तो काफी सारी चीजें हैं, बस मेरा तो एक ही पैगाम है, मैं खुद ये चीज करता हूँ कि मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मुझसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे किसी भी चीज में।
1: जबरदस्त। चलें जी, हमारे पास करीम भाई टाइम बड़ा कम रह गया, कुछ मैसेजेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपकी कॉल का। थैंक यू जी, आपको भी अल्लाह बहुत खुश रखे। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो हमारे साथ बस लास्ट कॉलर, जल्दी से मैं मैसेजेस पढ़ दूं। अमजद इकबाल साहब का था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कतर, सबको सलाम, आपको भी सलाम, क्या हाल चाल है आपके। इसके साथ सईद भाई आए थे शादी में जी, तौफीक मुझे पता है बिल्कुल, उन्होंने बताया भी था। और इसके साथ ही अदाब तस्लीमात खुश आमदीद। और टॉपिक के हवाले से कुछ यूं अर्ज है कि खानदान के अफराद के दरमियान रिश्ते वक्त तवज्जो और एहसास जिम्मेदारी से मजबूत होते हैं। एक दूसरे के साथ मियारी गुजारना, खुले दिल से बातचीत करना, दुख सुख में साथ निभाना और छोटी छोटी नाराजगी पर दरगुजर से काम लेना रिश्तों को मजबूत बनाता है। एक दूसरों के फैसलों का एहतराम करना और अच्छे कामों पर एक दूसरे की हौसला अफजाई करना रिश्तों में मिठास पैदा करता है। रिश्तों की नजाकत को कुछ यूं निभा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। क्या बात है। सलमान फारूकी कराची पाकिस्तान से, और मिसेस अली की मिस कॉल्स मैंने अभी देखी, सॉरी लेकिन बस वही है, बैक टू बैक कॉल्स आ रही थी और मैसेजेस भी मैंने अभी देखे हैं। मिस अली, मैं आपको कल कॉल मिलाती हूँ, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, हमारी टी नाइस टॉपिक, कॉल कर सकती हैं अब, मैं कल करूंगी, आप इस पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, नमस्कार। ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब, और बहन भाई का रिश्ता हमेशा और सबसे ज्यादा मजबूत होता है, राइट, गुड। और मुमताज अहमद कहते हैं अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप, गुड इवनिंग, अल्लाह पाक हमेशा सबको खुशहाल रखे। और मैं आपका प्रोग्राम डेली सुनता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हो मुमताज अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और असमत आफरीदी का मैसेज है, कहते हैं अस्सलामुअलैकुम सिस्टर, वेरी नाइस टॉपिक माशाल्लाह, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और रिश्तों में अच्छे अच्छे बुरे लोग भी आपको मिलेंगे। अगर अच्छे लोग मिलेंगे तो फिर तो ब्लेसिंग है, और अगर कुछ ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में आए तो उतने अच्छे नहीं होते, फिर अपने आप अपने अखलाक और किरदार से उनको अच्छा बनाएं, ओके मतलब टीचर बन जाएं। अशफाक अहमद कहते हैं कि ज़िंदगी में अच्छे लोगों की कमी है, अगर कोई ना मिले तो खुद बन जाएं ताकि किसी की तलाश ख़त्म हो जाए। हाँ, हमें तो खुद बनना चाहिए, खुद अपने तौर पर अच्छा बनना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे को अच्छा बनाना जो है ना, ये एक दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और ये नहीं हो सकता मुमकिन। आप लोगों को नहीं बदल सकते, दिलों को बदलने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और अगर ज़रूरी नहीं कि जब एक बुरा एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर सभी बुरे होते हैं। मेरा मत लिखती हैं कि कोई शख्स अपनी बंद मुट्ठियों में धूल लेकर आता है और आपकी आंखों में धूल फेंक के चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स की बंद मुट्ठी में धूल ही होगी, जिससे बचने के लिए आपको अपनी आँखें बंद करना पड़े। अच्छा, मेरे साथ इस तरह का मामला है, मैं इसी तरह का किरदार मेरा है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, किसी ने हर्ट करना है तो इससे पहले कि कोई मुझे हर्ट करे तो मैं उससे ज़्यादा ना उम्मीद लगाऊँ ना ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ाऊँ। मेरा पता नहीं क्या मतलब, मुझे शायद डर लगता है इस चीज़ से, ये भी कह सकते हैं फेयर ऑफ लॉस होता है ना, तो कुछ इस तरह का मामला मुझे लगता है अपने बारे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से मैं बची हुई हूँ तो मुझे कोई इतना गिला नहीं है इस बात से। चले रही आलमगीर की आवाज़, इंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक। अभी आलमगीर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने, तो मैंने सोचा कि इनका गाना तो बनता है, इंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम, टाइम फॉर द टाइम चेक। FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में 5:02।

0: क्या हाल चाल? उम्मीद है कि बढ़िया होगा और वीकेंड के बाद की वीकेंड की प्लानिंग चल रही होगी। 26 तारीख से छुट्टी आ गई है परसों से, है कितना बढ़िया होता है। ये दो दिन भी अगर साथ में मिल जाता छुट्टी का तो कितना मस्त हो जाता। नहीं, आप संडे और मंडे भी छुट्टी लेकर फिर ट्यूसडे से जो लंबा वीकेंड होता, मैं तो प्लान कर चुका था भाई, यू नो कहीं जाएंगे दुबई, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं यार, आपका तो काम होता है आपकी मजदूरी कहाँ कम होगी तो अपन जो है यहीं पर रहेंगे। और वैसे भी मेरा ऐसा कोई खास वो वाला हिसाब नहीं है कि लंबा प्लान करें, मेरे से वो नहीं हो पाता कि अरे 6 दिन छुट्टी, अरे 4 दिन छुट्टी, चलो दुबई चले। मेरे कई दोस्त हैं वो 3 दिन 4 दिन की छुट्टी में दुबई निकल ले जा रहे, मेरे साथ नहीं हो पाता। मेरा ये कि यार कम से कम 10 दिन होना चाहिए। खैर अलग अलग होता है हिसाब लोगों का, कुछ लोग होते हैं 3-4 दिन में एंजॉय कर लेते हैं, कुछ लोग होता है नहीं, उनको 10 से 15 दिन एटलीस्ट चाहिए होता है। 2 दिन आराम करेंगे, 2 दिन घूमेंगे, 2 दिन फिर से आराम करेंगे, फिर 2 दिन कहीं निकल जाएंगे, ड्राइविंग भी तो करनी है। ये सारी चीज़ें लोगों की होती है। वैसे इस्तकबाल आप सभी का, उम्मीद है कि आपने वीकेंड अच्छा सा प्लान किया होगा। 26 तारीख यानी कि परसों से ऐलान हो गया है कि वीकेंड आपका लंबा होने वाला है, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30 यानी कि 5 दिन छुट्टी है और 31 तारीख से आप जो है काम वापस से ज्वाइन करेंगे। पहले इन सब के बीच सबसे जो मजेदार चीज है वो ये कि एक तो ये लॉन्ग वीकेंड, ऊपर से बकरीद, और फिर आप जो है प्लान कर सकते हैं लंबा जो यू नो आपकी छुट्टी है, लंबा जो वेकेशन है या वीकेंड जो है वो प्लान कर सकते हैं अलग अलग मुल्क में। आसपास सब कुछ है भाई, और कई बार तो ऐसा होता है यार, छोटा सा मुल्क है, आप कहीं पर भी पहुंच जाए हैं। 6 घंटे की ड्राइव में आप देखें, दिल्ली पहुंचना हो आपके अपने उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके से 8 से 9 घंटे लगते हैं। यहाँ कदर में आप 2 घंटा लगातार ड्राइविंग करें तो आप कहीं और पहुँच जाते हैं, दूसरे मुल्क, है ना, कितना अच्छा है। तो ये भी बढ़िया है। उसके अलावा आप लोगों का क्या प्लान है बताइए 666-22107 पे। और मेरा तो प्लान ये है कि मेरी अम्मी जान जो है वो आ रही हैं और करेंगे इस्तकबाल, 27 तारीख को आना है। हाँ 27 परसों से जो है काम पे ज़्यादा लग जाएंगे, उसके बड़े नुकसान भी हैं देखिए, है ना। कई बार होता है आपकी फैमिली जो आती है आपको अलग तरीके से रहने, जो आज़ादी आप अपने घर में जी रहे होते हैं वो आज़ादी फिर आपको नहीं मिलती। आप कहीं पर भी घूमने निकल गए, कुछ भी कर लिया, फिर उसके बाद जो है टोकन टोकाई जो है वो चलती रहती है, लेकिन अम्मी जान अब हम खुद कमा रहे हैं, ठीक है इतना ना टोकना प्लीज। बाकी 5:05 हमारे स्टूडियो की घड़ी में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दुनिया भर की जो बातें हैं वो हम करेंगे, लेकिन आज आज जो है अमिता हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ेंगी। ये तो ऐसी बात हो गई कि अरे कहाँ गई, अरे मतलब ऑब्वियसली बुक फेयर जो है वो खत्म हो गया, मुकम्मल हो गया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बताएंगे कि बुक फेयर नहीं है तो क्या हुआ, कल से एक और बेहतरीन इवेंट शुरू हुआ है FM 107 पे, ट्यून इन रहिए कुछ ही देर में वापस दिल से देसी।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

हाल है हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5:17 स्टूडियो की घड़ी में, और है क्या हाल चाल। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो बता दें, वैसे ही अपडेट अब तक तो आपको पता चल गई होगी, और अपडेट ये है कि अब 26 तारीख से छुट्टी है, ठीक है, मजे करिए। और उसके अलावा एक और अपडेट है, 3 दिन का फुली पेड हॉलीडे फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज फॉर द अपकमिंग ईद उल अदहा, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, तो ये एक और अच्छी बात हो गई। उसके अलावा QCB ने या कतर सेंट्रल बैंक ने ईदिया ATMs 10 की लोकेशंस पे लगा दिया है, इंक्लूडिंग मॉल ऑफ कतर, प्लेस वेंदोम, और उसके अलावा दोहा फेस्टिवल सिटी, जहां पर 5 रियाल से लेकर 200 कतरी रियाल के डिनोमिनेशंस जो हैं वो आप निकाल सकते हैं, यानी कि नोट जो है वो आप निकाल सकते हैं, और ये एकदम कड़क नए बैंक नोट्स होंगे। तो इन मशीन में अच्छा एक और चीज़ है, लास्ट टाइम जब मैं निकालने गया था थोड़ा सा वक्त लगा था, तो वक्त लेकर जाइएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यू नो 5 मिनट में निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। वैसे तो ATM से 5 ही मिनट में निकल जाएगा, इवन शायद 1 मिनट लगे, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह बहुत लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, तो कभी कभार लाइन लग जाती है, तो धीरे धीरे, लेकिन सिस्टम से होता है, ये अच्छी बात है। और मेल की अलग लाइन होती है, फीमेल्स की अलग लाइन होती है, इसका भी मैंने आपको सिंपल बता दिया है। तो कभी कभार ऐसा हो कि आप पहुँच गए और फिर लगे अरे यार अपने बेगम को ले आते, है ना, या अपने बच्ची को ले आते हो, वो थोड़ी फीमेल वाली लाइन क्योंकि छोटी

0: होती है ना पहले से हैक बता दे रहा हूं मैं, ये आपके लिए अच्छा है ना। तो उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप वीकेंड पे या फिर आप ये सोच रहे हैं कि 26, 27, 28 आप लोग जो है या फिर आपकी फैमिली जाएंगे सी के करीब या बीच में जाएंगे अगर, तो ऐसे में रफ सी वार्निंग भी है समंदर में नहाने वाले या मरीन एक्टिविटीज़ वाले, है ना, मरीन वार्निंग दिया है कतर मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, और वो है एक्सटेंडेड मरीन वार्निंग, और रेसिडेंट्स के लिए है स्ट्रिक्टली अवॉइड करें बीच और मरीन एक्टिविटीज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हाई ऑफशोर वेव्स, जो कि कभी कभी 9 feet ऊंची भी हो जाएगी। तो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि 4-6 दोस्तों को लेकर धाव में बैठ के या फिर वो जो तेज जेट वाली स्की जेट स्की होती है उसमें या फिर नॉर्मल वाले में बैठ के अगर हम दूर घूम के आए तो मज़ा नहीं आएगा, अल सल्फिया आइलैंड चलते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा होशियार रहें। आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त पे जाए जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं ना चल रही हो। कल रात मैं बाहर था तो अच्छी खासी हवाएं चल रही थी वेस्ट बे की तरफ, तो मैंने सोचा कि अगर ये खुले में अगर होता हो और तेज़ हवाएं जो है वहां पर चल रही होती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये कुछ अपडेट थी MOI की, और ख़ास तौर पर बाकी जो न्यूज़ है जो हमारे रेसिडेंट्स वालों के लिए दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वेदर की अपडेट भी ले लेते हैं, और वो है कि आज का टेम्परेचर बाकी दिन के मुकाबले थोड़ा सा कम था, 33-34 डिग्री सेल्सियस, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोपहर जब पीक पर पहुंची थी तब ये 37 डिग्री सेल्सियस तकरीबन। लेकिन 37 वाली भी अपने को कहाँ फील होती है, अपने लिए तो यह ठंडक है, चल जाएगा, इतनी तो झेल ही लेंगे। उसके अलावा ह्यूमिडिटी है 35% पे, 15 मीटर पर आर की रफ्तार हवा की अभी है, और शाम होते होते ये रफ्तार बढ़ जाएगी, तकरीबन 21 मीटर पर आर की हो जाएगी। उसके अलावा कल थोड़ी हवा ये कम होगी और धीरे धीरे और कम होती जाएगी, लेकिन इवेंचुअली 30 मई को ये और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऑफशोर ज़्यादा है, तेज़ हवाएं ज़्यादा हैं, खुले एरिया में हवाएं और ज़्यादा हैं, और कल के दिन टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, 38 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचने के चांसेस हैं। बारिश वारिश के बारे में तो अब भूल ही जाते हैं, बस ये है कि अगर तेज़ हवाएं चल रही हैं तो डस्ट का भी मसला होता है, तो ऐसे में एहतियात बरतने की पूरी आपको ज़रूरत है। तो ये कुछ ख़ास अपडेट FM 107 पे, और अब ज़रा बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ, कि आज का सवाल एक्चुअली मेरा क्या है।
1: यू

FM 107 पे वाइब ट्रू। और आज का सवाल ये है कि आप जब किसी से दोस्ती करते हैं तो कुछ तो क्वालिटी देखते होंगे, तो वो क्वालिटी क्या है? बड़ा सिंपल सा मैंने रखा कि यू नो लाइट वेट रखते हैं, और ये सीज़न भी यार दोस्ती यारी वाला है क्योंकि बकरीद आ रही है। ऐसे में लोगों से दोस्ती करना, लोगों से मिलना, फैमिली मेंबर से मिलना, अलग अलग फैमिलीज से मिलना, ये तो आम हो जाता है। और इसी में आपकी दोस्ती गहरी हो जाती है जब आप साथ में बैठकर खाते हैं, है ना, साथ में बैठकर बिरयानी और रोटी खाते हैं। और कई यहाँ पर मैंने देखा है पश्तो भाइयों में ख़ास तौर पे कि एक जो है सीनी जो है वो लगती है, सीनी हमारे तरफ कहते हैं, बड़ी सी प्लेट जिसमें बिरयानी और लैम्ब और चॉप्स ये सारी चीज़ें रखी होती हैं, साथ में खा रहे होते हैं, जो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे दोस्ती यारी आपकी बढ़ती है। तो ये जो मौका है जो परसों से शुरू हो रहा है, ईद उल अधा जो शुरू हो रहा है, इसमें आप बहुत लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, ऐसे में दोस्ती आपकी बढ़ जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद आप कितना भी खाएं पिएं तो ये तो मैटर करता ही है कि सामने वाले का मिजाज कैसा है। बिल्कुल, उसको अपनी तरह का मिजाज रखने की इजाज़त है, हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वैसे ही ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि एक क्वालिटी होनी चाहिए ना। अगर आपका कोई दोस्त बनना चाहे तो एक क्वालिटी होती है, उसके अंदर क्या क्वालिटी होगी, आपके अंदर क्या क्वालिटी होगी, ये हम दोनों देखने की कोशिश करते हैं। तो एक क्वालिटी क्या आप देखते हैं उस शख्स में जिसको आप दोस्त बनाना चाहते हैं, क्या लाजमी है, ये बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107 666-22-107। एक क्वालिटी जो आप देखते हैं किसी में जब उससे दोस्त बनाना चाहते हैं वो क्या है, क्योंकि

0: ये जो पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आजकल दोस्त तो बहुत है, क्वांटिटी बहुत है ना, अलग अलग सोशल मीडिया पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, बट एक क्वालिटी तो होनी चाहिए। वो क्वालिटी आप क्या सीख करते हैं बताइए। 6662 2107 बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यूसुफ भाई का आ जाता मैसेज सबसे पहले। सलाम वालेकुम, हैप्पी संडे इवनिंग, कैसा रहा आपका वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह, घर पे बैठे बैठे मैंने सोफे में गड्ढा बनाया है और कोई ख़ास मैंने इस वीकेंड काम नहीं किया। माशाल्लाह, मी आ रही 27 को यानी ईद के दिन, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ईद के दिन हमारा सलाम बोलिएगा, बिल्कुल दुआ करने के लिए भी। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। उसके अलावा जो भाई कॉल कर रहे हैं, आप कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 443-443-77 443-443-77 बाकी एक और भाई का मैसेज है, ये मैसेज है खान साहब का। सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं कि ईद में आपका शो किस टाइम है, वरना हमारी ड्यूटी है तो फिर ख़राब हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे, 8 से 10 आप हमें सुन सकते हैं, नाजिया और फजील आपके साथ रहेंगे 27 तारीख से, लेकिन ठीक है। ईद में आपका शो किस टाइम है, ठीक है। कहते हैं गाड़ी चलाते हैं सर, तो अगर आप नहीं है तो फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। नहीं, ये मक्खन लगाने का जो तरीका है मुझे पसंद आया। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया आई गेस। हाँ हाँ, टाइम ले लिए, कोई मसला नहीं, कॉल कट गया, कोई बात नहीं। ओके, कभी कभार ऐसा हो जाता है बड़े बड़े शहरों में, ऐसी छोटी छोटी बातें। दोबारा आप कॉल कर सकते हैं अगर आप हमें सुन रहे हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल कर लिया, हो सकता है इसी सवाल पे जवाब देना चाह रहे थे कि एक क्वालिटी आप क्या देखते हैं उसमें जिससे आप दोस्ती करना चाहते हैं या आपसे कोई दोस्ती करना चाहता है, तो एक क्वालिटी किसी में क्या होनी चाहिए। नंबर है 6662 2107 और उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 443-443-77 फिलहाल एक और कोई कॉलर है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: ये आपका भी दूर से ही कनेक्ट हुआ है।
1: अरे भैया अभी,
0: लेकिन फिर भी बेहतर है। हाँ बेहतर क्वालिटी है, क्वालिटी बेहतर है आवाज की। बताएं नाम बताइए क्या है।
1: रईस, रईस बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, मेरे ससुर का नाम है रईस।
1: अरे नाम में क्या रखा है,
0: नाम में क्या रखा, नहीं नहीं नाम में भी बहुत कुछ रखा रहता। हम वो शेक्सपियर कह के चले गए हैं, ये डायलॉग के लिए अच्छा है, नाम में बहुत कुछ रखा। कभी कभार ना आप अपने नाम के हिसाब से ही बिहेव करते हैं, है ना। अब सोचो नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने तो कह दिया, अब किसी का नाम किलविश थोड़ी रख सकते हैं। बताइए,
1: ये तो फिल्मों का डायलॉग है, आपने उसको ये कर दिया, बस थोड़ा सा जो जो सपाटा था, और बाकी नाम से भी फर्क पड़ता है आदमी की पर्सनालिटी पे, पर्सनालिटी पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है,
0: फर्क पड़ता है। क्या बात है, बिल्कुल सही,
1: ऐसा बात नहीं है।
0: तो अब बताइए फिर, मैं जान तो लूं।
1: दोस्ती की क्वालिटी पूछना चाहते हैं।
0: हाँ,
1: और हम तो यही कहते हैं कि भाई जहाँ हम बुलाएं फौरन हाजिर हो जाएं, जहाँ जो मांगे फौरन अता कर दें।
0: हाँ,
1: और ईमानदारी है।
0: क्या बात है, ये मैंने कहीं सुना भी था कि दोस्तों के अंदर ना अच्छी दोस्ती के लिए चलेबिलिटी बहुत जरूरी है होना। चलेबिलिटी बोले तो जहाँ बोले वहाँ चल लो बस। है ना, कि अरे कहाँ हो।
1: हाँ, उनसे बस आ रहे।
0: हाँ तो अगर ये अरे वो सुनो तुम्हारे घर के नीचे हैं, आओ चले। अच्छा ठीक है, आ रहे। ये नहीं कहाँ चले, कब चले, क्या काम है, ये सब नहीं।
1: टाइम था, एक टाइम था भाई,
0: सही।
1: जब अनमैरिड थे घर पे, जब जो लफंगई वाली टाइम थी ना, उस टाइम यही था। किधर है तू, मतलब ये करके फोन, टेलीफोन का तो इतना रास्ता नहीं था। तो बस वो पहले से टाइम बच के रखते थे, इतने बजे आप मतलब फला जगह पे मिलना, मैं इतने बजे फारिग हो जाऊंगा, फला जगह मूवी देखने जाएंगे या फला जगह जाएंगे या खेल, ये खेल खेलने जाना है, ये सब बातें हैं।
0: वो वाला वक्त याद है जब मोबाइल नहीं होता था और डायरेक्ट किसी के घर पहुंच जाते थे, वो वहां पर होता नहीं था, तो पता होता था ये 2-3 जगह हो सकता है, या फिर वो नदी पे होगा, या फिर वो एक छोटू हमारा दोस्त था, छोटू घर वहां पर कोई पड़ा रहता था, या फिर किसी एक और, तो 2-3 जगह होती थी जहां मिलते थे वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि उनकी पर वो लोग क्या क्या मतलब चीजें करते हैं, हैंडल करते हैं ना, तो वो दोस्तों को तो पता रहता है ना। ये बंदा कहाँ पे मिलेगा,
0: सही।
1: या तो फला जगह पे मिलेगा, या तो फला जगह पे, तो उस जगह पे जाके कोई ना कोई मतलब जजमेंट आपको मतलब काम आ जाता था, और तकरीबन वही मिल जाता था।
0: हमारा तो मोहल्ला था, हमारा मोहल्ला था, एक दो घर थे जहाँ पर दोस्त मिल जाते थे, कभी उधर पड़े हुए हैं, कभी उधर, क्या कहते हैं, कोई गेम खेल रहे हैं किसी दूसरे घर, आज अम्मी नहीं है।

0: तो दूसरे वाले होता है ना, दूसरे के घर अम्मी कहीं चली गई तो उसके घर चले जाते थे।
1: कुछ मजा कुछ अलग था यार खेलने का, इतने खेल हम लोग मतलब बता रहे हैं कि खेलते थे जो अपने पढ़ाई के टाइम पे।
0: हाँ।
1: कि वो आजकल लोग बिल्कुल बस आजकल इतने मजनू बन बन के बैठे हैं बस वही क्रिकेट आईपीएल और ये। और जबकि देखो मैं देख रहा हूँ इन जनरेशन को कि देखो अभी पेपर लीक हुआ और ये सब हुआ, इस पे किसी ने कोई कम्प्लीमेंट कोई भी ये नहीं किया भाई।
0: नहीं, ये वाली बात पे स्किप मार देते हैं। आपने देखा है कि वो चैनल पे जब वीडियो आती है स्किप का बटन दबा देते हैं, ये वाला स्किप मार दो भाई।
1: नहीं, बिल्कुल मैं तो थोड़ा सा मतलब उस पे चला गया था, देखो ये पॉलिटिक्स।
0: हाँ, मैं आपके दिल का दर्द मैं समझ गया, लेकिन स्किप बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है, मैं थोड़ा सा मैंने ये किया, लेकिन वो मतलब इसके खिलाफ है बिल्कुल। मैं तकरीबन ये 14-15 साल से सुनते आ रहा हूँ, तो इस रेडियो के उस पे इस चीज को
0: करना बिल्कुल। हम वो बात करते हैं जहाँ से लोग ना और लोगों को जो दुख है वो और उभर के ना आए, वो बात करते हैं जो दुख को दबा दे और चेहरे पे मुस्कान लेकर।
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके।
1: जी बिल्कुल और दोस्तों को ले ले, चलो ठीक है भाई यहीं पे अपना उसको सारी बातों को स्किप कर देते हैं।
0: नहीं कोई मसला नहीं यार, कोई मसला, आप कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल
1: नहीं, मतलब दोस्ती का मेरे कहने का मतलब है कि आदमी के अंदर फेयर होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, ये चीजें बहुत जरूरी है। हाँ। लॉयल होना चाहिए,
0: चलेबिलिटी होना चाहिए, जहाँ कहें चुपचाप चल लो, बहसबाजी नहीं।
1: वादा करें तो वादा खिलाफी ना करें।
0: ओ, क्या बात है।
1: और अगर कोई सामने वाला बात ये कर रहे हो तो उसको फिर सामने वाले को ये ना चले कि यार उस दिन तूने ये कह के फिर मेरे साथ ऐसा किया। वो चीजें कायम रखो ताकि वो लोग वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सके कि मतलब हाँ यार आंख बंद करके उसने ये बात जबान दिया है तो बिल्कुल वो इस बात को हैंडल करेगा। ये ना कि मतलब आप कह रहे हो कुछ और सामने उस दिन आया तो फिर तुम इधर उधर एक दिन टर्क पढ़ा लोगे, दो दिन फिर सामने वाले ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेगा।
0: सही बात है, सही है, तो बिल्कुल। तो ईमानदारी हो और धोखेबाजी ना हो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा भाई। सलाम अलैकुम भाई, क्या बात गई है। चलेबिलिटी तो देखो मेरे लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बात। मैं ये वाले तो एंगल से सोच भी नहीं रहा था भाई ने जो बात कही। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या बुलंद आवाज है। अब आपने डिस्कनेक्ट करके देखी, कभी कभार ऐसा होता ना टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट करो ना तो इंसान के दिल के करीब आवाज आ जाती है एकदम।
2: जी जी बिल्कुल ऐसा ही है।
0: क्या नाम है भाई आपका? फिर आपकी आवाज जा रही है।
2: उमेर
0: जी, उमेर साहब आपने सवाल सुना आज का?
2: जी जी मैंने सुना सवाल।
0: तो उमेर साहब क्या कहना चाहेंगे कि एक दोस्त में एक अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए?
2: मेरे अकॉर्डिंग तो जो दोस्त है उसको सिंसियर होना चाहिए।
0: सिंसियर, ओके। यानी कि मतलब कोई अच्छा कोर्स वोर्स करके आया ऐसा वाला?
2: नहीं मतलब यानी आपका जिस तरह आपका एक भाई के साथ बॉन्डिंग होती है ना, मतलब इस तरह का होना चाहिए।
0: हाँ सही। और क्या क्वालिटी आप चाहते हैं? एक तो देखिए सिंसियर तो चले ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों में ना सिर्फ सिंसियरिटी हो तो वो दोस्ती थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है। एक ऐसी कोई बात जिसके वजह से शायद अगर ना हो अगर वो चीज़ तो आप दोस्ती करेंगे ही नहीं। सिंसियरिटी तो एक लेवल पे आकर रुक भी जाती है ना, उसके बाद तो ज़रूरी है भी नहीं वो। तो आप उसके अलावा क्या चाहते हैं?
2: असल में जिस तरह मुझे जो ज्यादा फील करती है ना वो यही है कि वो आपके साथ कितना सिंसियर है, लॉयल कितना है आपके साथ। यानी आप जितना उसको एज अ फैमिली ट्रीट करो, जब आपको ट्रस्ट डेवलप हो जाए तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट बंदा वही है, जब उसको भी ट्रस्ट हो जाए आप में और आपको भी ट्रस्ट हो जाए।
0: ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ पर ट्रस्ट जरूरी है कि आप बगैर ट्रस्ट के तो आपकी दोस्ती चलेगी नहीं, और ट्रस्ट का कोई लेवल भी नहीं है। कई बार आप अपनी ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं दोस्तों को कि जो एक्चुअली में बगैर ट्रस्ट के चल ही नहीं सकती है ना। आप अपनी बहुत करीब की बातें ऐसी बातें जो अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी फैमिली से नहीं शेयर करते, बट आप अपने दोस्त से शेयर कर देते क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट होता है।
2: जी जी ऐसा ही है बिल्कुल। तो मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि अगर कोई दोस्त हो। जी बिल्कुल।
0: ओके मेरा भाई, थैंक यू।
2: जी वेलकम,
0: थैंक यू। हाँ देखो यार ये वाला तो मुझे लगता है सिंसियर क्या एक लेवल पर आकर रुक जाता है कि हर वक्त बैठे सिंसियरिटी वाली बात हो रही है तो वहाँ पर इंसान ये होता है कि थोड़ा बोरिंग हो जाता है। सिंसियर ऑब्वियसली बगैर सिंसियरिटी के तो इंसान ही नहीं है फिर वो, लेकिन ट्रस्ट एक ऐसी है चीज़ जो बगैर ट्रस्ट के आपकी दोस्ती चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी, बट लंबी नहीं चलेगी। है ना, फिर एक वक्त बाद आपका ट्रस्ट जो है वो टूटने लगता है, और आप ना एक बार मौका देते हैं, दो बार मौका देते हैं जब आपका ट्रस्ट टूटता है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स मौका नहीं दे पाते हैं आप, आपका एक होता

0: आता है कि अब हो गया मेरा, है ना, एक लफ्ज आता है कि अब हो गया मेरा भाई इससे, तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो यही वाली लाइन आएगी कि अब हो गया मेरा इससे। फिलहाल एक और कॉलर जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं
0: माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है।
0: तैयारी हो गई
1: ईद के प्रोग्रामों में आ रहे हैं पैसे बांटने, पुराने वाले तो दिए नहीं, अब नए बांटने आ रहे हैं?
0: नहीं नहीं, पुराने वाले भी हो गए भाई, क्या बात कर रहे हैं।
1: हाँ अभी तक तो पहुंचे नहीं, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने पूछा नहीं।
0: कौन से वाले, आप कौन से वाले इंतजार कर रहे हैं?
1: रमजान वाले।
0: रमजान, हाँ तो हमें लगा अंडर 17 वाले, रमजान तो अभी गुजरा है भाई, अंडर 17 वालों को तो अब जाके मिला। तो उसमें होता क्या है कि हमारा प्रोसेस लंबा है, ये तो आपसे ज्यादा बेहतर कौन ही जानता होगा।
1: नहीं मैं वसूल कर चुका हूँ, पर इतना लंबा नहीं है। मैं एक दफ़ा, ये तो खैर मेरी मिसिस का है, मैं खुद पर्सनली भी वसूल कर चुका हूँ, तो एक महीने में ही कंप्लीट हो गया था, दूसरी तक नौबत नहीं आई थी।
0: अच्छा। अभी हम, अभी देखो इतने एक्सक्यूज देने के बाद भी अच्छा एक आदमी होता है कि वो एक एक्सक्यूज दे दिया मैंने, तो अगला आदमी बहस नहीं, आप क्योंकि भाई अपने इनको पता है कैसे रन कर रहा है, तो इनको दूसरा एक्सक्यूज है मेरे पास है भाई जुल्कर साहब, हमारे पास दूसरा एक्सक्यूज है, हमारा एडमिन का ऑफिस ना अभी चेंज हुआ है।
1: तो सारे डॉक्यूमेंट और सारा रिकॉर्ड तो धर्म भरम नहीं हो गया?
0: नहीं नहीं वो नहीं हुआ होगा, थोड़ा उधर जाने में टाइम लग रहा है, तो हमारा दूसरा जो ऑफिस है वहां पर से काम चल रहा है, तो ये ठीक है। अब इसके बाद कोई एक्सक्यूज, इसके बाद मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है।
1: नहीं नहीं बस
0: ये वाला एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है,
1: एक्सेप्टेड मजबूरी है। तो दोस्त की बात चल रही थी। अच्छा आप कह रहे हैं ना कि जी आपने चूज किया दोस्त है, पहले उसको भी पूछें कि भाई आप भी हमें दोस्त मान रहे हैं कि नहीं। हाँ उसका भी ऑप्शन है। और बचपन में, अच्छा एक और चीज़ भी है कि अगर आप, हम जैसे जॉब वाले खास तौर पे बंदे, चलो बिजनेस वालों का तो है, जैसे आप पड़ोसी और आपकी कोलीग्स हैं, या तो आप दोस्त हैं या दुश्मन हैं, तो फिर दोस्ती में ही आफियत है, नंबर टू। उसके अलावा अगर आप स्कूल में या कॉलेजेस में देखें ना, तो तब आप दोस्त बनाते हैं, या ज़रा बदमाश टाइप का बंदा, या ज़रा बड़ा अच्छा पढ़ने लिखने वाला, तो वही हम लोग उस ग्रुप में शामिल हो जाएं, ज़रा फ़ख्र का इजहार करें कि ये वाला जो बंदा है ना, हम भी इसी के साथ हैं। तो देयर इज सम रीज़न। और बाकी सिंसियर होना, वो कि भाई उसको बोलना हमसे कर्ज ना मांगे, हम उधार नहीं देंगे, तो इस तरह नहीं, इस तरह नहीं।
0: तो नियम कानून नहीं ले सकते।
1: हाँ उधार जो है ना मोहब्बत की कैंची है। तो ये तो सिचुएशन आपकी रहती है, अगर आपका इतना अच्छा दोस्त है या आप उसको वो देखें, तो आप मदद किए बिना नहीं रह सकते, फिर आप ये नहीं देखते फिर ऐसे बाकी, फिर टाइम अगर लॉन्ग टाइम पे हो तो फिर ये खुद ब खुद फिल्टर भी हो जाते हैं, आपको पता भी चल जाता है। तो बाहर आपके, बाहर आके आपको नए सिरे से बनाने पड़ते हैं, बाहर आप जब आते हैं तो यहाँ आपके पास कोई बचपन का दोस्त नहीं, स्कूल का दोस्त नहीं। अब आप मेरे दोस्त बने हैं, अब आपने ईद पे वो बड़ी सीनियाँ बिछा के बुलाना है, तो आप दोस्त बन जाएंगे हम लोग फिर से।
0: देख रहे हैं हल्के हाथ से दावत का प्लानिंग। बातों बातों में
1: जी हाँ, तो इसलिए हमने का फायदा उठाएं, आप भी बातों से फायदा उठाते हैं, आपसे ही सीख रहे हैं ना, लर्निंग फ्रॉम यू।
0: अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, आपसे तो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आप हमारे साथ बैठे थे एक दिन, हम लोग साथ में शो कर रहे थे, तो उससे तो एक्सपीरियंस हम ले रहे थे। लेकिन आप अगर अपने मुल्क, क्योंकि अब मुल्क का भी अलग अलग होता है ना, आप मुल्क के हिसाब से थोड़ा सा चेंज ले लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने मुल्क में अगर किसी में दोस्ती देखता हूं, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि उसका ह्यूमर कैसा है। तो आप ऐसा करते हैं क्या कि अपने मुल्क में किसी के दोस्ती तय कर रहे हैं तो ह्यूमर अलग है? यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि ह्यूमर के साथ साथ बात करने की भी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में बात कर ली और क्वालिटी नहीं है तो नुकसानात बहुत है, क्योंकि फिर क्योंकि आप अपने मुल्क में तो 100 ऐसे ढूंढ सकते हैं, बट यहाँ पर इस तरह से नहीं ढूंढ सकते ना। अच्छा, यहाँ पर तो टकरा गए
1: आपकी, आप अपीयरेंस से भी बहुत मुतासिर होते हैं। समटाइम आप देखते हैं उसकी अपीयरेंस बड़ी हार्ड लग रही है, लेकिन जब आपका वास्ता पड़ता है तो बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे इंसान मिल जाते हैं आपको। और ये जैसे अब इस एज में आके या प्रोफेशनल में आप सडनली दोस्त नहीं बना सकते, ग्रेजुअली आपका ना एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो फिर आप इस सर्कल में आते हैं। यानी मेरा अक्रॉस द कंट्रीज, और मुझे बड़ा कहने में कोई आर नहीं है कि मेरे इंडिया से कुछ इतने अच्छे दोस्त हैं کہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور وہ دوست میرے یہاں نہیں بنے, میرے ایمریٹ سے بنے اور یہاں پر بھی آ گئے اور فیملی ٹرمز ہیں. سو دے آر دا بہت کائنڈ پرسن, بہت اچھی ہماری فیملی کے ساتھ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ گیدرنگ ہے. تو یہ وقت نے ثابت کیا, اور اس طرح پھر آپ خود جج کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا مخلص ہے, صاف دل کا ہے. اور اب کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ہارڈ ٹرم ہوتا ہے آپ کو کس طرح اس مصیبت سے نکالتے. دیکھیں آپ یہاں باہر آئے ہیں کام کر رہے ہیں, کمپنی آپ کو اتنی فیور نہیں دیتی, لیکن جو آپ کے کولیگ ہیں ساتھ والے ہیں نا, وہ اگر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نا تو پھر آپ نکل جاتے ہیں اس میں سے. باقی وہ والی بات نہیں ہے کہ وہ بچہ گھر میں سو رہا ہے تو گھر میں فون کیا فضیل کو, وہ کدھر ہے, ہاں ابھی میرے پاس.
0: یہ والا تو ہے, یہ والا نہیں چلتا یہاں پہ,
1: یہ والا نہیں چلتا. تو یہ چیزیں پھر میٹر کرتی ہیں. تو پھر آپ بھی کسی وقت میں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں, مشکل میں یا کام میں پھنس جاتا ہے, تو ایسے آپ کے کولیگز ہونا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے.
0: کیا بات ہے. اوکے بھائی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو زلکر صاحب, اچھا لگا بات کر کے, تھینک یو. مزہ آتا ہے ایسے ایسے جواب میں بھی, مزہ آتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ چلیبلٹی تو سب سے اوپر ہے. باقی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, 5:39 ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں, کئی لوگوں کو 39 کا نہیں پتا, 39 ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں. ایک چھوٹا سا بریک, دل سے دیسی
2: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر, جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص, اطاعت اور قربانی کے جذبے کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی, جو صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ہمدردی, خوشیاں بانٹنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا خوبصورت پیغام بن جاتی ہے. طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجیے عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام قربانی اور رحمت, عید کے دوسرے اور چوتھے دن رات کے ٹھیک 10 بجے, صرف اور صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر, دل سے دیسی.
2: ایف ایم 107 پیش کرتے ہیں عید اسپیشل شو عید کی دھن, اور اس موسیقی بھری محفل کی میزبانی کر رہی ہیں آپ کی اپنی اے فور امیتا. سپر ہٹ نغمے ہوں یا عید کی دلچسپ اور انوکھی باتیں, اے فور امیتا بنائیں گی آپ کی عید کو اور بھی یادگار. تو رستے کے ٹریفک میں ہو یا گھر پر دوستوں کے ساتھ, عید کی دھن سے ہم بدل دیں گے آپ کا موڈ. تو سنیے عید کی دھن, عید کے چاروں دن اے فور امیتا کے ساتھ شام 4 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر, دل سے دیسی.
4: اس عید دنیا کے رنگ, روایت اور

दोपहर 3 बजे, जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर। एक उम्मत और ईद में मोहब्बत।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: FM107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल सफा के साथ, एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से, तो सुनना मत भूलिएगा और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर, किड्स कार्निवल पर, RJ सफा के साथ, दिल से देसी।
2: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए, सब कुछ एक ही शो में। तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से, विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। कतर की जमीन पर दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग, उनकी कहानियाँ, उनके जज्बात और ईद की वो यादें जो घर से दूर भी दिल के करीब है। एक खास शो जहाँ आपकी मुलाकात होगी उन लोगों से जो अपने मुल्क से दूर रहकर भी ईद को अपने अंदाज में महसूस करते हैं। उनकी कहानी, उनकी मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में आंसू। आरजे नाजिया के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम कतर से सलाम। ईद के पहले और तीसरे दिन रात 10 बजे से ओनली ऑन FM 107। कतर से सलाम, क्योंकि दूरियां फासलों की होती हैं, दिलों की नहीं।

हाल है हबीबी, 5:44 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और समय है कि आप लोगों के मैसेज भी लिए जाएं। लेकिन उससे पहले यार एक सवाल ये पूछना है आप लोगों से, कोई इधर मतलब कुछ 5 से 4 दिनों के बीच में बीच गया है, इन 4-5 दिनों में क्या माहौल है, बीच पे जाने वाला है माहौल? क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा था यार, बहुत दिन हो गए बीच नहीं है, तो वहां पर बहुत ज्यादा वाली उमस वाली गर्मी तो नहीं हो रही? मुझे लगता है कि अच्छी मौसम अच्छा होगा, अच्छी ठंडी हवा चल रही होगी। फिर कल रात में ओके ओके माहौल था बाहर, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ ना कि कार से बाहर निकले तो बगैर एसी के जब बैठो तो समझ में आता है कि हाँ नहीं माहौल तो ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो जाता है कि नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, जब गर्मी होती है तो इंसान कार के अंदर ठुसा रहता है। तो कल मुझे मौसम सही लगा। तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ यार बीच पे जाने का मौसम है तो बताना यार, मैं तो प्लान कर रहा हूँ, बाकी आपका क्या है ये भी। फिलहाल एक मैसेज है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और ये मैसेज भाई ने दिखा था, नाम तो इनका नहीं दिख रहा है, खैर नाम नहीं है लेकिन सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी अम्मी आ रही हैं उनको हमारी तरफ से सलाम बोलना, दुआ में याद रखें सब परदेसी लोगों को। बिल्कुल इंशाल्लाह, नाम है अब्दुल, प्रोफाइल पे तो है अब्दुल समद। ओके समद साहब, इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी एक मैसेज है, हाय का मैसेज है, नाम नहीं लिखा है, हिशाम भाई ने सलाम किया है इमोजी के साथ। हाँ उसके अलावा ये कौन मैसेज है कि वाईफाई की तरह हो, दूर जाए तो भी कनेक्ट रहे। ओ दोस्ती में ये क्वालिटी चाहिए, अरे डिमांड देख रहे हैं भाई साहब कि वाईफाई की तरह होना चाहिए, दूर जाए तो कनेक्ट रहे, चार्जर की तरह हो, लो फील हो तो एनर्जी दे। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, गूगल की तरह हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले, कैमरे की तरह हो, साथ हो तो हर मोमेंट यादगार लगे। आए हाय, बाकी मैगी की तरह हो, 2 मिनट में मूड फ्रेश कर दे। आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप ये सब मेड वाली नहीं रिक्वायरमेंट आपने डाली हाँ नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा तो है, जैसे कि मैगी की तरह हो 2 मिनट में तैयार करते खाना आपके लिए आए, बैंक बैलेंस की तरह हो, कम हो लेकिन भरोसेमंद हो। भाई साहब बहुत ज्यादा हो रहा है, सीक्रेट को लॉकर की तरह चुप, लाउड स्पीकर की तरह ना फैले। अच्छा सीक्रेट को, क्या बात है फैजल साहब, मुझे लग रहा है आपने तो उठा के चेप ही दिया है भाई खान साहब आपका मैसेज पढ़ दिया गया है, आपने डॉट लिखकर भेजा है। फिर ये मैसेज है अरबाज खान का, यस लिखा है, यानी कि हर बात पे यस करने वाला हो। कहते हैं पानी बहुत गर्म है बीच पे पानी बहुत गर्म है, नहीं जाना क्या हम पानी में, कौन सा पानी में छलांग लगाने वाले आदमी है यार, अपन तो वैसे भी बाहर चल जाएगा मेरा, कोई मसला नहीं है। फिर ये मैसेज है, नाम नहीं लिखा, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, अगर आप FM 107 के सुनने वालों को काकी की ईदी में मिल जाए तो, अरे मेरा भाई हर बात पे जो है इनको काकी याद आ रही, क्या मोहब्बत है इनकी, बहुत करीब से काकी को जानना चाहते हैं, आपसे मुलाकात ही हो जाएगी मुझे लग रहा है किसी दिन। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है, तो कायनात जिस दिन जुड़ गई आपको मिलाने, काकी आपको जुड़ जाएंगी भाई इंशाल्लाह। अहमद साहब आपको, आपकी जिसके आप शुभचिंतक हैं वो मिल जाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, कैसे हो आप, ईस्ट और वेस्ट, फजील भाई इज़ द बेस्ट। अरे क्या बात है रिफत साहब, आज इनको

0: माहौल अच्छा है, जाया जा सकता है, प्लानिंग किया जा सकता है। वेल, आते हैं सवाल की तरफ। सवाल ये है कि आप क्या क्वालिटी ढूंढते हैं जब आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं? एक कोई क्वालिटी, अगर आपसे कोई दोस्ती करना चाहता है उसके अंदर एक क्वालिटी लाजमी होनी चाहिए, वो क्या है? आप हमें बता सकते हैं 666-22-107, 666-22-107। उसके अलावा ये मैसेज है शेख साहब का, कहते हैं आपकी तरह मुझे, अच्छा आपकी तरह मुझे भी ह्यूमर चाहिए। मुझे लगा कहने वाले थे मेरी बेइज्जती हो गई भाई। मुझे लगा कहने वाले आपकी तरह दोस्त चाहिए। देख रहे हैं बीच वाली लाइन मैंने पढ़ी, कभी कभार मैं पूरा पढ़ता नहीं, जानबूझ के एक लफ्ज जो है वो मिस करता रहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कुछ और निकल के आ जाए। भाई ईद का क्या प्लान है एंड शो टाइम? भाई ईद का प्लान, हाँ ये लोगों को बताना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईद की जो टाइमिंग है यानी कि 27 तारीख से 30 तारीख तक, 27, 28, 29 और 30 तारीख को हम रात को 8 से 10 आपको मिलेंगे, रात को 8 से लेकर 10 बजे तक नाजिया के साथ, है ना। और आपको वाउचर भी जीतने का मौका है, 1000 कतरी रियाल का ये वाउचर होगा। कौन सा कैसा ये तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। आज 24 तारीख हो गई, 25 और 26 और आपको रुकना है, फिर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी है सच बोलने वाला, मुझे सच्चा इंसान पसंद है, ये लिखा है किस भाई ने, नाम तो नहीं है, जिन्होंने लिखा था पानी गरम है उन्होंने ये बात लिखी। भाईजान ऊपर ऊपर तक नाम नहीं लिखा आपने। फिर एक कॉल आ रही है भाईजान, देखिए एक और कॉल जो है आप जो कर रहे हैं जो भी है 066 वाले, अब हमें कॉल कर सकते हैं हमारे लैंडलाइन वाले नंबर पे। ये जो आप जिस पर कॉल कर रहे हैं ये हमारा व्हाट्सअप का है, 443-443-77 ये वाले नंबर पे आपको, एक काम करता हूँ ना मैं ही आपको कॉल कर लेता हूँ मैं ही, वैसे भी हमारा कौन सी जेब से जा रही है। ये वाला तो पॉइंट मैं आज सोच रहा हूँ कि हमारे जेब से जब जा नहीं रहा है, कंपनी जब कह रही है कि देखो रिंग गई। रिंग गई, उससे पहले भाई उठाए किसी और ने उठा लिया, किसी और ने कॉल कर दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है भाई?
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, मोहम्मद तजम्मल बात कर रहा हूँ कतर से।
0: कैसे हैं तजम्मल साहब?
1: कैसे सर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रोज आपका शो सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया
0: जी, वही मैं कह रहा हूँ तजम्मुल नाम मैंने पहले सुना है, ताइजुल मैंने सुना है, ताइजुल हमारे बांग्लादेश के अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: तो हाँ हाँ, और आपके इंडिया के लोग हमें ताजमहल भी बोलते हैं कभी कभी।
0: ताजमहल?
1: हाँ, क्या ताजमहल भी बोलते हैं वो?
0: क्या आप, क्या आपके आसपास या साथ में कोई मुमताज भी है? तो
1: सर अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम तजम्मल मुमताज ही है।
0: ले भाई। तो ताजमहल तो चलता है भाई, मैं हमें लगता
1: आप ठीक पहुंचे आप हमें
0: तो
1: बड़े अच्छे लोग हो, बड़ी अच्छी फैमिली है आप कतर वाली हमारी, आपकी FM 107 वाली
0: माशाल्लाह। तो आप कहाँ से हैं भाई?
1: मैं पाकिस्तान से हूँ, रावलपिंडी से।
0: अरे वाह क्या बात है। तो रावलपिंडी वाले भाई क्या सोचते हैं जब भी किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, तो एक क्या क्वालिटी सीख करते हैं?
1: क्वालिटी यही करते हैं कि अगला बस वो मंदी शंदी खिलाने वाला हो या पैसे खिलाने वाला हो, अच्छा हो और क्या।
0: ओहो पैसे वाला होना चाहिए। जो खर्च करे दिल
1: को। पैसे वाला नहीं, नहीं पैसे वाला नहीं, लॉयल्टी, लॉयल्टी होनी चाहिए। हाँ। अगला बंदा साथ चलने वाला हो।
0: हाँ मंदी हो तब भी मंदी खिलाने वाला होना चाहिए। मेरा एक दोस्त
1: था, अगले की क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना, अगला किस कैटेगरी तक हमारे साथ जाता है।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे याद आता है जब आपने ये बात बोली ना मंदी खिलाने वाला, मेरा एक दोस्त था उसके पास सिर्फ 2 से 3 रुपए होते थे और उस वक्त 2 या 3 रुपए में 2 समोसे मिलते थे, मेरे शायद 9th या 8th क्लास की बात है, और वो 2-3 रुपए भी खर्चा करता था और हम लोग के पास तो 1 रुपए भी नहीं होता था। तो मंदी उसकी भी है,
1: वो भी उस टाइम का गोल्ड है, वो भी उस वक्त का गोल्ड है भाई, आप गोल्ड ही समझो उस वक्त।
0: सही मेरा भाई, क्या बात है। तो आपको यहाँ पर कोई ऐसा दोस्त मिला जो मंदी खिलाता हो?
1: अरे यार ना पूछो, बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग हैं इंडिया के, मेरे काफी दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं यार, बड़े मतलब के नाइस टाइप भाइयों वाला जोड़ है मेरा उनके साथ। हाँ। बड़ी दफा बुलाते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत है उनके साथ।
0: करेक्ट करेक्ट, हम सब में है प्यार मोहब्बत, हम सब करते हैं भाई।
1: जी,
0: और
1: जी,
0: ये क्वालिटी होनी भी चाहिए, ये क्वालिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि हर शख्स ना बहुत ज्यादा बचाने में लगा हुआ है और इस वजह से दोस्ती नहीं हो पा रही है। क्योंकि दोस्ती का पहला नियम यह है कि दिल खोलो, और दिल खोलने का भी जो सबसे पहला

0: स्टेप है वो ये है कि खाओ पियो साथ में बैठो उठो और साथ में घूमो, तो ये सब जो है पैसे खर्च करने से ही आता है और लोग जो है बचाने में बहुत लगे हुए हैं।
1: अगले के घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या इश्यू चल रहा है अगला बताता नहीं है, फिर बेचारे थके भी रहते हैं लोग, लेकिन कुछ नहीं साथ चलने वाले
0: हैं। सही है,
1: अच्छे लोग हैं,
0: बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू।
1: और हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंकफुल। हम मल्टीपल मतलब कि सिचुएशंस में स्टक होते हैं, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए होते हैं, आप लोगों का शो सुनते हैं, आप लोगों की वजह से हमारे मुंह पे हंसी आ जाती है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपने ये बात कही। मैं ये वाली बात रिकॉर्ड करके अपने ऑफिस में सुना दूंगा, हो सकता कुछ बढ़ जाए सैलरी।
1: इंशाल्लाह होगा होगा, मोशन लाभ भी शायद मिल जाए।
0: फिर मैं मंदी आपको खिलाऊंगा।
1: ये आपके पास कभी टाइम हो, आप हमारे पास हो, हम खिलाते हैं आपको मंदी अपने हाथों से बना के।
0: नहीं नहीं मेरा भाई, ये तो हमारा हक बनता है कि जब भी मुलाकात हो तो ये पहली दावत मेरी तरफ से इंशाल्लाह।
1: थैंक यू
0: मेरा भाई, थैंक यू,
1: ख्याल रखिएगा अपना, सलाम अलैकुम सुनने
0: वालों को। ओके मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस देखा, हमारा दिन यहीं पर बन जाता है। और आरजे होने का सबसे अच्छा, नहीं नहीं आरजे नहीं, दोस्त होने का, एफएम 107 के माइक से दोस्त बनाने का सबसे अच्छा जो या सबसे खूबसूरत जो वक्त है वो यही होता है कि जब आप यारी दोस्ती बना पाएं, लोगों से बात करके अपनी बात कह पाएं, लोग अपनी बात अब हमसे कह पाएं, है ना, यही तो सबसे बेस्ट पार्ट है। फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, मेरा नाम मकसूद आलम है।
0: मकसूद साहब, कैसे हैं मकसूद भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
0: मैं बस, आपकी दुआ है मेरा भाई, एकदम चकाचक। तो आज सवाल किया है कि क्वालिटी क्या आप ढूंढते हैं अपने दोस्तों में?
2: देखिए, दोस्ती के लिए सबसे बड़ी फैक्टर वफादार होना चाहिए।
0: वफादार होना चाहिए, आए हाय क्या,
2: ये जरूरी है। वफादार होगा ना,
0: हाँ,
2: तो वो हर तरह से अच्छा होगा। अगर वफादारी नहीं है तो फिर वो दोस्ती के लायक नहीं हो सकता है।
0: हाँ, अच्छा, लेकिन वफादारी में भी एक तो वो वफादारी है कि यू नो, जिसमें आप चाहते हैं आपकी जो बात बताई है ना, उस कुछ लोगों का मैं कहता हूँ, मैं एक बार क्लीन कर देना चाहता हूँ इस बात को। कुछ लोग होते हैं कि वफादारी, जो हमने बात बताई, हमारे सीक्रेट, हमारी बात कहीं और नहीं बताए, एक ये वफादारी कि हमसे ही दोस्ती रखना। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि हमसे ही दोस्ती रखना, फिर और कहीं जाके दोस्ती ना करना, उनको लगता है कि ये भी वफादारी। ये वफादारी नहीं है कि हमसे हमारे अलावा कोई और दोस्त नहीं होना चाहिए।
2: नहीं, ये तो गलत है ना।
0: हाँ,
2: अरे वो कहीं दोस्त रखे उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके साथ वफादार होना चाहिए, आप उसके साथ वफादार रहे।
0: क्या बात है, सही है, बहुत ही उम्दा।
2: दोस्ती कहीं हो उससे मतलब नहीं है।
0: हाँ,
2: कोई इंसान वफादार आपके साथ होना चाहिए, आप उसके साथ हो, उसमें मफाद परस्ती नहीं होना चाहिए।
0: आई वाह, क्या बात बताया, मौका परस्ती, क्या लफ्ज है, ये बहुत अच्छा है, लफ्ज बहुत करेक्ट पकड़ा कि मौका परस्त। कुछ लोग होते हैं कि जब मौका आता है तब वो अपना काम आपसे निकलवा लेते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो आपके काम नहीं आते। तो ऐसे मौका परस्त लोगों से दूर रहना चाहिए, क्या लफ्ज है, बहुत उम्दा,
2: ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: सही है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा हुआ कॉल किया। और मुझे लगता है कि शायद आपने भी पहली बार कॉल की।
2: जी सर, पहली बार किया।
0: चले भाई,
2: आपका भी शुक्रिया, कम से कम कॉल लग गया।
0: सही है, सही
2: लग,
0: सही
2: लगता नहीं है।
0: नहीं, नहीं,
2: बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू,
2: आपने रिसीव किया, आपसे बात हुई। ओके,
0: क्यों नहीं, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मेरा भाई। देखो, इन सब चीजों में क्या जरूरी था, मौका परस्त। एक लाइन ऐसी हो जिसको यू नो, सुनने के बाद दिल खुश हो जाए। मौका पर, मेरे जिंदगी में ऐसे मौका परस्त आए, 5-5 रुपए का चूना लगा के गए, लेकिन देखो 1 रुपए का भी चूना लगा कर जाओ तो मुझे गुस्सा लगती है। और कई बार तो मौका परस्ती सिर्फ पैसों का नहीं होता है, आपके इमोशन का भी मौका परस्ती होती है भाई, तो वहां पर खून जो है वो उबल जाता है। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। ये भाई हैं तारिक नवाज, और इन्होंने कहा है, सच बोलने वाला मुझे सच्चा इंसान पसंद है। क्या बात है, दोस्ती ऐसे ही होती है। मोमिन भाई का मैसेज है, और सर फजील जी कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाए कैसे हैं। पिंडी एक्सप्रेस, लेकिन आजकल मंदी चल रही है। ठीक है, एक्सेप्टेड। इरफान साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद खैर आफियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग, दुआ है मेरी। अम्मी आ रही हैं, सलाम अर्ज करिएगा, परदेसी को दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल, त्यौहार में बहुत बुरा लगता है परदेस। हाँ यार, कई बार एहसास जो है वो बड़ा होता है कि अगर आप, अभी मेरे घर में ना एक शादी पड़ी थी, तो मैं यही सोच रहा था कि बस अपने मुल्क में होते हैं ये होता है कि बस

मुंह उठाओ चल दो, एक दो घंटा चार घंटा छह घंटे की दूरी पे भी हो ना, आप जा सकते हैं, अटेंड करके आ सकते हैं। ये वाले मामले में नहीं होती, भले आप यहां से डायरेक्ट फ्लाइट करेंगे तो चार घंटे में पहुंच जाएंगे, अपने मुल्क में सात या दस घंटे भी दूर रहो तो आप प्लान कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मसूद भाई, मुन्ना भाई वाले बस रुलाएंगे क्या? अच्छा नहीं यार। खादिम हुसैन साहब ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, दोस्त मेरे जैसा सीधा साधा बंदा हो। मुझे एक बार किसी ने एक लाइन बोली थी, मुझे यहाँ पर बोलने का मन कर रहा है, खादिम साहब ने जब अपनी बात ये कही है कि मेरे जैसा सीधा साधा, अब मुँह मियाँ मिट्टू ये किसी ने बोला था मुँह मियाँ मिट्टू, तो मेरी अम्मी शायद बोलती, कई बार मैं अपनी तारीफ कर देता था तब, क्योंकि मेरे घर में मेरी तारीफ करने वाला कोई था ही नहीं। तौफीक साहब का सलाम, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, बाकी लोगों के मैसेज कुछ ही देर में, सवाल एक बार रिपीट कर देते हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा है, सवाल ये कि आप अपने दोस्तों में क्या क्वालिटी ढूंढते हैं? जब भी आप किसी से दोस्ती करते हैं तो एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए जो लोगों में होनी ही चाहिए अगर आपसे वो दोस्ती करना चाहते हैं, बताइए 666-22-107 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।

0: FM 107. Time check.
1: Time check. टाइम चेक कर लो। वैसे अच्छा वाला टाइम तो दो दिन बाद आएगा। फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:02, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ देर में वापस दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अब हम हिदायत की दुआ की तरफ रुख करते हैं। वो हिदायत जो इंसान के दिल को संवार दे, जबान को पाक कर दे, किरदार को रोशन करे, घर को सुकून दे और रिश्तों में मोहब्बत भर दे। अल्लाह जिसे तू हिदायत दे वही सच्चा हिदायत याफ्ता है, और जिसे तू छोड़ दे उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। यानी असल रहनुमाई किताबों, अकलों या तजुर्बे से मुकम्मल नहीं होती। असल हिदायत तो अल्लाह की अता है, इसे अल्लाह रास्ता दिखा दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। बंदा हमेशा अल्लाह का मोहताज है, उसे हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह हमें अपने हाल पर न छोड़ना। अब या अल्लाह, हम इस बात की गवाही तो देते हैं कि जिसे तू हिदायत दे वही सच्चा हिदायत याफ्ता है, और जिसे तू छोड़ दे उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। तो अल्लाह, अब तू हमें अपनी हिदायत की तरफ चला दे।

सही फैसला, सही नियत, सही रास्ता, सही अंजाम तक पहुंचा दे। एहदिना लि अहसनिल अखलाक, बेहतरीन अखलाक नसीब फरमा। नरमी, सच्चाई, सब्र, बर्दाश्त, माफी, आजिजी, ये अखलाक हमें नसीब फरमा। इसी तरह अहसनुल अक्वाल भी नसीब फरमा, अच्छी बातें, नरम गुफ्तगु, सच बात, दिल जोई, खैर की नसीहत, ये सब बेहतरीन अक्वाल है। फिर अक्वाल के साथ आ जाती है अमाल की बात, क्योंकि कौल व अमल ये दो बुनियादें हैं। तो अब अमाल की तौफीक भी अल्लाह से मांगी जा रही है कि सिर्फ नीयत तो काफ़ी नहीं, अमल भी चाहिए। नमाज, वालिदैन की खिदमत, हलाल रोज़ी, सदका, लोगों की मदद, फिर नेक अहवाल, हालात भी अच्छे करने की तलब है। क्योंकि बाज़ लोग अच्छे तो होते हैं मगर मुख्तलिफ आजमाइशों से घेरे होते हैं, हालात मुश्किल होते हैं। तो इस दुआ में हम ये मांग रहे हैं कि दिल का हाल भी अच्छा हो, घर का माहौल अच्छा हो, रिज्क अच्छा हो, वक्त अच्छा गुजरे। इसी तरह फिर हर किस्म की गुमराही से पनाह मांगी गई, नऊज़ु बिका मिन कुल्ली अनवाउ दलाल। चूँकि गुमराही ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में हो सकती है, गलत दोस्त, गलत सोच, गलत रास्ता, नफ्स की पैरवी, इसलिए हर किस्म की गुमराही से पनाह मांगो। अल्लाह हमारी बीवियों, औलाद और अजीज़ों को भी हिदायत दे। चूँकि मोमिन सिर्फ अपने लिए फिक्र नहीं करता, अपने लिए नहीं मांगता, अपनों के लिए भी मांगता है, और ये उसकी जिम्मेदारी है। कई नख्तलिफ वला नख्तलिफ, ताकि हम आपस में जुड़ जाएं, बिखरे नहीं, इख्तिलाफ कम हो, घर आबाद हो। इसका मतलब ये है कि इत्तेहाद ये हिदायत से आता है। और इख्तिलाफ बाज़ औक़ात काबिले तारीफ होता तो ज़रूर है, लेकिन आज के दौर में हम ये देखते हैं कि अक्सर इख्तिलाफात दलालत और गुमराही की वजह से ही होते हैं। तो असल हिदायत अल्लाह से ही मांगनी है और हमें अच्छा अखलाक भी मांगना है, चूँकि सबसे बड़ी दौलत किसे कह सकते हैं हम इसे। इसी तरह घर वालों के लिए भी दुआ करें, इत्तेहाद के लिए दुआ करें, इख्तिलाफ से बचे रहने की कोशिश करें। इन्हीं पैगामात के साथ प्रोग्राम आज की दुआ के इस हल्के से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तरह अशरफ़ ज़मान को दीजिए इजाज़त। मा सलामा।

अभी भी 6:07 स्टूडियो की घड़ी में अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आपको बता दें कि 27, 28, 29 और 30 तारीख और 26 तारीख 26, 27, 28, 29 पांच दिन छुट्टी है, तो ये लॉन्ग वीकेंड है, आप प्लान कर सकते हैं और कल शाम को निकल जाओ। अब चाहे सऊदी जाना है, दुबई जाना है या कतर में कहीं पर एंजॉय करना है, शामियाना लगाना है, ये सब आप कर सकते हैं। पांच दिन की छुट्टी है, मजे करिए, एंजॉय करिए और इस बकरीद को अपने दोस्तों अपने यारों के साथ मनाइए। और जब दोस्त यार साथ में होंगे तो एक सवाल बनता है, सवाल ये कि आप जब भी दोस्ती करते हैं तो एक बेहतरीन क्वालिटी क्या देखते हैं किसी भी शख्स में, ये जरूर बताएं। नंबर 6662217 और ये मैसेज है अमित साहब का, कहते हैं तोल मोल के यारी नहीं होती, बस वाइब मिलनी चाहिए। देखा, मैं क्यों कह रहा था आपसे कुछ देर पहले कि मैं थोड़ा रुक रुक के और एक एक गैप दे के पढ़ता हूँ, ऐसा लफ्ज लिखा है इन्होंने, अगर मैं वो बोल दूं तो बेचारी अभी नाजिया को अकेले शो करना पड़ता, मैं बता रहा हूँ कल तो शायद हो जाता लेकिन उसके बाद मैं ना हो पाता ओके चाहे वो हो यार, बस मिलके दिल दिल जो है वो अच्छा हो जाए, दिल भर जाए। अमित साहब, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करें जो सोसाइटी में, समाज में सिंसियर लोगों के सामने बैठकर बोला जा सके ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना करें जिससे हमारी और आपकी दोनों की नौकरी पर आ जाए मैं बच गया, आपकी प्लानिंग नाकाम हुई, सलाम अलैकुम उसके अलावा लिखा है कि एक इस भाई ने मैसेज किया है, फजल भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गुलरेज, कहते हैं ट्रू फ्रेंड इज हु हैज क्वालिटी ऑफ कंसिस्टेंटली सपोर्ट लॉयल्टी, ही इनकरेजेस यू व्हेन इट इज नीडेड, ही शुड बी रिलायबल जब कभी कोई हो हेल्दी कन्फ्लिक्ट हो, हाई इमोशनल सपोर्ट चाहिए। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है।

इस जब बात को पढ़ रहे थे गुलरेज वाली बात को, तो मुझे एक बहुत बेहतरीन बात याद आई। मेरा एक दोस्त है और मेरे साथ पहली बार हुआ, सुयश नाम है उसका। तो जब वो नाराज होता है ना, वो जगह छोड़कर चला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती टूट गई। और मैंने उससे पहली बार ये सीखा, मेरे हिसाब से ये था, जब झगड़ा हुआ और अगर मैं वहां से कल्टी मार लिया, आइंदा से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा भाई। लेकिन उसके साथ आने के बाद, उससे दोस्ती करने के बाद, मुझे यह एहसास हुआ कि अगर झगड़ा हुआ तो उस जगह से उस वक्त निकल जाओ, बाद में भले कितनी दिल में खटास हो गई हो, बाद में जब मुलाकात करो, हाय हेलो सलाम, सब नॉर्मल हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी आपकी लड़ाई हुई तो दोस्ती नहीं खत्म होती है, कुछ देर बाद वहाँ एक तो हट जाओ वहाँ से, और कुछ देर बाद जब भी मिलो या दो चार दिन महीने भर बाद मिलो, ऐसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसी दोस्ती बड़ी ज़रूरी है, और सच्ची दोस्ती कंसिस्टेंट सपोर्ट, लॉयल्टी और इंकरेजमेंट से चलती है, जैसा कि गुलरेज भाई ने कहा। क्या बात है, बहुत उम्दा, दिल खुश हो गया। फिर ये मैसेज है, और इतने मैसेज हैं कि मुझे एक ज़माना लग जाएगा। खान साहब ने क्या लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ऐसा दोस्त चाहिए जो मेरे साथ सेम टू सेम खड़ा हो। अच्छा, हाइट बराबर चाहिए लेकिन ऐसा दोस्त मुझे नहीं मिल सकता। सर तो मैंने हर किसी के साथ दोस्ती की है, मैंने दिल से निभाई है, उसके हर काम किया है, उसके साथ हर साथ हर लम्हा खड़ा हुआ हूँ मैं उसके साथ। मुझे कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला कि मेरे साथ खड़ा रहे, अल्लाह से एक सही दोस्त मांग रहा हूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल आपको मिलेगा मेरा भाई। कभी कभार ऐसा होता है कि आप हर शख्स के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं होता है। मुझे बचपन से ही एक अच्छा दोस्त चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं मिला, और सब कुछ मिला है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे लगता है कि कोई ना कोई दोस्त होगा आपका, बस कई बार हम उसे नहीं मान पाते। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें उस तरह से दोस्त माने लोग, कई बार हम खुद नहीं मान रहे होते। हो सकता है आपको कोई ऐसा मानता हो, बहुत करीब आपको रखता हो अपने दिल के। नो एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपेक्टेशंस इन फ्रेंडशिप, ओनली सिंसियरिटी, ये लिखा है फराज अहमद ने। हाँ यार, जब दोस्त को बताना पड़ जाए, एक्सप्लेन करना पड़ जाए, तो वो दोस्ती कैसी। अब यार चौक चलना है तो चौक चलना है भाई, ये दुनियादारी क्या, किस काम के लिए जाना है, काहे के लिए जाना, अरे जाना है तो जाना है। अरे ठीक है, मैं बाइक लेकर आया हूँ, तुमने देख लिया गेहूं लदा हुआ है, तो क्या मतलब है तुमको बुला रहे, तो तुमको हम गेहूं लदवाएंगे। अरे पकड़ लो दो मिनट के लिए गेहूं, यार पिसाना ही तो है, आटा बनवाना बस गेहूं का चल लो चुपचाप, ये क्या बहस है कि नहीं मैं इतना भारी आइटम नहीं पकड़ूंगा। अरे जब तुम दोस्ती में साथ बैठ नहीं सकते, मेरी आटे की बोरी 40 किलो की नहीं पकड़ सकते, कैसी दोस्ती यार। शह, फिर तो दोस्ती हो नहीं पाएगी भाई। आटा पिसवाना है तो चलो, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा। अरे माना मेरा बड़ा भाई है यार, उसको ले जाएंगे कैसे, बड़े भाई से दोस्ती थोड़ी करी, तुमसे करी है भाई, चल लो नहीं चल लो चुपचाप। और देखो यही एक सबसे मोहब्बत वाली चीज़ होती है, आपका बड़ा भाई आपका छोटा भाई उतना ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं होता जितना आपका दोस्त दोस्त होता है ना। उससे आप किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, अपनी यारी अपनी दिलदारी जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं मेरे दोस्त में ये क्वालिटी पसंद करता हूँ, जो अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाए और बिल वही पे करें। नवीद साहब, ऐसी दोस्ती की तलाशी में हम सब हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने कही थी कि हम सब चाहते हैं कि एक फाइटर दुनिया से लड़ने वाला शख्स पैदा हो, लेकिन मेरे घर नहीं, नेबर के घर में। वैसी नवीद भाई की ये वाली लाइन है कि हम नहीं खिलाएंगे, लेकिन अगर दूसरा ऐसा दोस्त मिल जाए के बड़े, अगर बिरयानी हो जाती मजा आ जाता क्या बात है नवीद साहब, मिल जाए तो बताना, मैं भी खुद ढूंढ रहा हूँ यार। सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ये कहना है हिशाम साहब का। बिल्कुल हिशाम साहब का बिल्कुल सही कहना है, सेल्फिश तो मुझे लगता है सेल्फिश जो है उसको ये बात पता होगी और वो खुद भी दोस्त नहीं बना पाता होगा। सेल्फिशनेस जो है आपकी बहुत लंबे वक्त तक नहीं चल सकती, 2 से 4 बार आप कर सकते हैं। दोस्तों में कुछ नहीं रखा, एक अच्छी सी, सलाम वालेकुम फैजान साहब आइए अब गाने की तरफ बढ़ते हैं छोटे से, और वक्त आ गया है कि छोटा सा ब्रेक ले लूं। अच्छा दोस्त चाहिए फैजान साहब को इंशाल्लाह। देखिए इसके लिए अगर आपको जो अच्छा दोस्त चाहिए, अपने अम्मी अब्बू से बात करनी पड़ेगी। आप जो दोस्त ढूंढना चाह रहे हैं उसमें निकाह की जरूरत पड़ती है। ओके, तो 6:13 स्टूडियो की घड़ी में, और हनी सिंह की आवाज में ये गाना आ रहा है जो आपको मजा दिला देगा। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

हां जी, FM 107 पे वाइब टू। वेल, आपने कभी गौर किया है कि बहुत जमाने पहले, बहुत पुराने वक्त में बहुत ज़्यादा जनता नहीं हुआ करती थी, बहुत भीड़ नहीं हुआ करती थी, बहुत लोग नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ इनोवेशन की वजह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई, पॉपुलेशन थोड़ी प्रॉस्पर करती गई, उनकी कमाई, उनकी इनकम थोड़ी बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते आज जो है बिलियंस ऑफ बिलियंस लोग हैं पूरे अर्थ पे अगर देखा जाए तो। लेकिन एक ज़माना था लोग कम थे, लेकिन अब बढ़ बहुत ज़्यादा गए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, आसान पैसा। और आसान पैसा कहाँ से आता है? जब इनोवेशन होती है। उसके अलावा इनोवेशन, कुछ ऐसी इनोवेशंस हुई हैं जिसकी वजह से हमारे और आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा लंबी चलने लग गई है। एक ज़माने में जब कोई बीमारी होती थी उसका इलाज नहीं हुआ करता था, लोग जल्दी मर जाया करते थे, तो जानबूझकर ज़्यादा, यू नो, जैसे आप कुछ जानवरों को देखते होंगे, अगर उनके 5 से 7 बच्चे होते हैं तो 2 ही बचते हैं या 1 ही बचते हैं, क्योंकि उनके पास इतना इनोवेशन नहीं है, है ना। कुछ बच्चे मर जाते, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है, और माँ भी ऐसा करती है जानवरों के साथ कि जो सबसे मजबूत जानवर है उनका, या सबसे मजबूत जो बच्चा है, जो ताकतवर है, उसी को दूध पिलाना, उसी का ख्याल रखना, वो जानबूझ के उनको करना पड़ता है, क्योंकि सर्वाइवल है ये। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। शुरुआत जब हुई इंसानों की, तो हुआ ये कि धीरे धीरे जब हम प्रॉस्पर करने लगे, जब हम कमाई करने लगे, तो कुछ इनोवेशन हुई, और एक इनोवेशन ऐसी हुई जिसके वजह से आज इतनी ज़्यादा भीड़ है, या इतने ज़्यादा लोग हैं, या हमारे लिए ज़िंदगी में आसानियाँ हैं। वो इनोवेशन है स्टील और आयरन की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एफएम 107 पे फजील के साथ हैं आप, और आज हम व्हाट इफ में यही बात करने वाले हैं, स्टील और आयरन के बारे में। अगर पास्ट में या जमानों पहले स्टील और आयरन की इनोवेशन नहीं होती तो क्या होता? व्हाट इफ अगर स्टील और आयरन की इनोवेशन नहीं हो रही होती तो पूरी इंसानियत एक एक्चुअली परमानेंट ब्रॉन्ज एज में फंस जाती। स्टील और आयरन के बिना हमारे पास मजबूत मशीन, बिल्डिंग्स, टूल्स जो हैं वो नहीं होते। इवन जो कार अभी आप चला रहे हैं वो कार नहीं होती आपके पास अगर स्टील और आयरन ना होता। इसकी वजह से ह्यूमंस के लिए सबसे डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं, और आज हम व्हाट इफ में यही बात करने वाले। सबसे बड़ी जो सिचुएशन आती पहले ही वो आती बिल्डिंग्स का अचानक गिर जाना। यू नो, आप एक ज़माने में देखते होंगे, या ज़माना क्या, अभी भी आप देखते होंगे कई ऐसे सुदूर इलाके हैं जहाँ पर आयरन या स्टील को ख़रीदना, लोहे को ख़रीदना आसान नहीं है लोगों के लिए, तो वो मिट्टी के घर बनाया करते हैं, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो होती ही नहीं, है ना। और मार्केट जो है वो हमेशा एक जगह होती है फिर, क्योंकि जब ऊंची बिल्डिंग नहीं है, जगह जगह पे बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो मार्केट एक जगह पे रखनी पड़ते, और फिर यू नो, एक जो बस्ती होती वो बस्ती अलग होती, लकड़ियों से किसी तरह से ऐसे घर बनाए जा सकते हैं जिसमें रहा जा सके। और एक दौर था जिस दौर में ये घर जो है वो बने थे, लेकिन अगर स्टील की, आयरन की इनोवेशन ना हुई होती तो फिर आज भी हम मिट्टी के घरों में रह रहे होते। स्टोन, लकड़ी और ब्रोंज के पास स्टील जैसी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो नहीं होती।

बिना स्टील बीम्स और रीइंफोर्स कंक्रीट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर थोड़े से अर्थक्वेक या हैवी रेन में भी पाउडर की तरह कोलैप्स हो जाते, जिससे हजारों लोग दबकर मर जाते। तो ये स्टील, ये जो इनोवेशन हुई है आयरन की, या कहें हम लोगों ने ढूंढा है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। डैम्स का टूटना और फ्लड आना, अगर ये काम करना बंद कर दें, यानी कि जो स्टील आज हमने यूज़ किया हुआ है अपने कारों में, है ना, इनकी जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ एक मिनट में अगर गायब हो जाए, कुछ देर के लिए अगर गायब हो जाए, तो क्या हो, उसमें डैम्स और बड़े बड़े जो फ्लड है वो आना शुरू हो जाएंगे। पानी के जो डैम्स हैं, रोकने के लिए स्टील के हैवी गेट्स और स्टील रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है। अगर स्टील नहीं होता तो पानी का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता, डैम्स जो हैं वो वायलेंट तरीके से बर्स्ट हो जाते और पूरे के पूरे शहर फ्लड में रह जाते। तो जब भी डैम्स उस ज़माने में भी बनते थे, उस दौर में भी बनते थे जब स्टील नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते थे। थोड़ी सी तेज़ बारिश या तूफान में वो डैम्स जो है वो टूट जाया करते थे और कई घर डूब जाया करते थे। जब मट्टियों के घर होते थे, मट्टियों में भी लकड़ी के सहारे, उन मट्टियों लकड़ी का सहारा जो है वो दिया जाता था घर को, और फिर मट्टी से ढका जाता था ताकि हवाएं जो है वो ना चले, और अगर हवाएं तेज आ रही हैं तो घर के अंदर ना घुसे, इसलिए सर्वाइव कर पाते थे। भुखमरी और फेमाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा आता, सॉइल और एग्रीकल्चर का फेलियर होता, यहां से शुरू होती। या कहें कि अगर स्टील और आयरन का इनोवेशन ना हुआ होता तो आज इतनी जनता भी ना होती। जनता तभी होती है, यानी कि हम बच्चे तभी करते हैं जब हमारे पास उतना उन बच्चों को पालने का पैसा हो या आसानियां हो। आसानियों के लिए हमारे पास खाना पीना होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन ये रोटी कपड़ा मकान तब आता जब हमारे पास आयरन होता। अगर आयरन और स्टील नहीं होता तो ब्रॉन्ज और लकड़ी के प्लोज जो है वो बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं। हमारे पास ब्रॉन्ज होता वो मुड़ जाते हैं या टूट जाते हैं बिल्कुल, तो सख्त और पथरीली ज़मीन को नहीं खोद पाते, और अगर ये नहीं खोद पाते तो इसकी वजह से खेती बहुत कम हो पाती और नामुमकिन हो पाती, और थोड़ा सा भी मौसम ख़राब होने पर पूरी दुनिया में भुखमरी जो है वो फैल जाती थी। और ये हुआ करता था, बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते थे, कबीले चलते थे, और उस कबीले में भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें हुआ करती थी, खाने के लिए तलाश किया करते थे, और इसी वजह से उस वक्त जनता या जो पॉपुलेशन वो एक्सप्लोड नहीं कर रही थी। उसके अलावा जंगली जानवरों के अटैक्स बहुत ज़्यादा होते अगर हमारे पास स्टील और आयरन ना होते। बिना सस्ते आयरन के लोग अपने घरों और खेतों के आसपास मजबूत फेंसेस नहीं लगा पाते। सेटलमेंट्स बहुत कमज़ोर होती हैं, जिससे लोग शेर, चीते और दूसरे खूंखार जानवरों से अटैक का उनका सामना ना कर पाते, उनसे बच ना पाते, उनका शिकार हो जाते। उसके अलावा माइन एक्सीडेंट्स में मौत होती लोगों की। ब्रॉन्ज के जो टूल्स हैं, हम ब्रॉन्ज एज में होते क्योंकि हमारे पास ब्रॉन्ज था, स्टील और आयरन का इनोवेशन हमने किया, अगर हम ब्रॉन्ज एज में होते तो ब्रॉन्ज के जो टूल्स हैं पत्थर तोड़ते वक्त बहुत जल्दी डल हो जाते हैं या टूट कर मतलब बिखर जाते हैं। पत्थरों को तोड़ना ब्रॉन्ज से आसान नहीं था, मजदूर को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती, जिससे माइंस के अंदर जो पहाड़ खिसकने और लिथल वर्क प्लेस है, एक्सीडेंट का खतरा जो है बहुत ज़्यादा पड़ जाता। आपको पता है कि मैं हर बार बात करता हूँ, जब भी किसी खदान के बारे में बात होती है तो पाकिस्तान में नमक जो नमक की खदान है वहाँ पर ऑब्वियसली उस नमक का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ स्टील का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, और जो स्टील के साथ साथ आयरन है उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, स्टेनलेस स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अगर ब्रॉन्ज होता तो वो खदान नहीं होती, वो खदान नहीं होती तो कितने वर्कर्स की जॉब चली जाती, और वो खदान नहीं होती तो सोचिए कितने लोग जो वहाँ टूरिस्ट हैं वो टूरिस्ट न जाते, और टूरिस्ट की वजह से वो शहर न चल पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता कि जैसे शेर या बाघ जो है ना टेरिटरी बनाते हैं, जहाँ सबसे बेहतर उनको खाना मिलता है, पानी मिलता है, शेल्टर मिलता है, तो ऐसी जगह पे वो टेरिटरी बनाते हैं। तो इंसान भी यही कर रहे होते, जो सबसे अच्छी टेरिटरी है जहाँ पर खाना होता, जहाँ पर खेत होते, जहाँ पर आसानी से बरसात होती, फिर वहीं पर बसता, फिर ऐसे जगहों पर ना बसता जहाँ उनको खाना पानी बरसात और यू नो ग्रीनरी ना मिल रही होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग के साथ हो रही होती है, और इतनी जनता एक्सप्लोड ना कर रही होती। सर्जिकल इन्फेक्शन और सेप्सिस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि अगर इंसान प्रॉस्पर कर रहा है या लगातार आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में, उसके थोड़ी भी आसानी है, क्योंकि एक ज़माना था वो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन अगर आज आसानी है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है मेडिकल साइंस। और मेडिकल साइंस में एक जो बेस्ट इनोवेशन हुई है स्टील या स्टेनलेस स्टील की, मेडिकल साइंस बगैर स्टेनलेस स्टील के सर्वाइव ही ना कर पाती। कैसे? मेडिकल साइंस में स्टेनलेस स्टील का यूज होता है क्योंकि इसे इजीली स्टेरलाइज किया जा सकता है। स्टील के बिना डॉक्टर्स जंग लगने वाले ब्रॉन्ज या पत्थर के ब्लेड

0: से ऑपरेशन करते जिससे माइनर सर्जरी के बाद भी ब्लड इन्फेक्शन से मरीज जो है वो मर सकता था। तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा से थी, और जब इलाज नहीं हो पाता था, सर्जरी नहीं हो पाती थी, लोगों को पता था, तो अलग अलग तरीके लोगों ने निकाले इलाज करने के, लेकिन उसमें भी मौतें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, कभी सेप्टिक से, कभी किसी परेशानी से। उस वक्त बीमारियाँ भी अलग अलग तरह की होती थी, खाने में पॉइजनिंग होती, फूड प्रोसेसिंग और बड़े जो स्केल पर खाना पकाने के लिए स्टेनलेस स्टील के वैट्स चाहिए होते हैं। अगर सिर्फ कॉपर, लेड या ब्रॉन्ज के बर्तन यूज़ होते तो एसिड वाले खाने में या मेटल्स जो है वो पिघल जाते, जिससे टॉक्सिक हैवी मेटल पॉइजनिंग आम बात बन जाती। इससे भी लोगों की बहुत मौत होती। एलीट या कहें अनस्टॉपेबल गुंडे ये भी कह सकते हैं, ब्रॉन्ज बहुत महंगा और रेयर होता। सिर्फ अमीर राजा और महाराजा ही ब्रॉन्ज के वेपन्स और आर्मर्स खरीद पाते, क्योंकि आम जनता के पास सस्ता आयरन नहीं होता, इसलिए वो अमीर रूलर्स के खिलाफ कभी भी खड़े ना हो पाते, बात ना कर पाते, अपनी चीज़ें ना कह पाते, हमेशा उनको स्लेव्स की तरह रहना पड़ता। और एक बहुत पुराना ज़माना था, जनता ऐसे ही स्लेव की तरह रहती थी। उसके अलावा जंग में जो है आर्मर का फटना, अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा कबीला होता जिनको बहुत मजबूत आर्मरी चाहिए होती या मजबूत स्टील वगैरह चाहिए होती, वो थी नहीं, तो ब्रॉन्ज मजबूरी थी इस्तेमाल करना, तो ब्रॉन्ज बहुत ही ब्रिटल होता है। जब जंग में ब्रॉन्ज की शील्ड या आर्मर पर भारी चोट पड़ती है तो वो पिघलने के बजाय टूट जाते हैं, वो भी एकदम आसानी से, अपने हाथों से आप तोड़ सकते हैं ऐसा समझे। इससे निकलने वाले जो छोटे छोटे शार्प टुकड़े होते हैं वो आसपास के सभी लोगों के अंदर आसानी से चले जाते, उससे भी बड़ा नुकसान होता। उसके अलावा ब्रिज का टूटना, नदियों पर बने ब्रिजेस जो हैं वो सिर्फ पत्थर और लकड़ी के होते, ये लंबे डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाते, और तेज़ हवाओं या दलदल में या तेज़ पानी बहने पर, बरसात होने पर, तूफान आने में ये आसानी से बह जाते या टूट जाते। इसकी वजह से ट्रैवल करना एक मौत का कुआं एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर उस पर ट्रेवल करेंगे तो मौत का कुआं ही है, जहां ब्रिजेस अचानक टूट सकते हैं, पानी में डूब सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी में। असल में अगर हम देखें तो हमारा जो जीवन चल रहा है इस वक्त वो इस इनोवेशन पे चल रहा है, स्टील और आयरन की इनोवेशन पे। तो हम इवन जो आपसे बात भी कर पा रहे हैं इसमें भी स्टील और आयरन की इनोवेशन की एक छोटी सी वजह तो है ही, है ना। ऑब्वियसली ये फ्रिक्वेंसी भी काम करता है, लेकिन एक वजह तो ऑब्वियसली है। आप कार चला रहे हैं, स्टील और आयरन की इनोवेशन। आप कहीं पर बैठकर खाना खा रहे हैं, स्टील की कुर्सी पे बैठे हैं, ऑब्वियसली ये तो नहीं होती कि लकड़ी की कुर्सी होती है लेकिन अगर अभी की हम बात करें, अगर आप कार में बैठे हैं तो ऑब्वियसली बेस तो लोहा ही है ना, आयरन ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैंने सिचुएशन बताई। वेल, ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ऐसा हो, स्टील और आयरन की इनोवेशन जो है वो हुई और अब अगर वो काम में ना आए, लेकिन फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे हमने डिस्कस करा कि स्टील और आयरन की इनोवेशन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर ये ना हुई होती तो शायद आज इतनी जनता, इतनी पॉपुलेशन ना होती। हमारे लिए जब आसानी थी, आसानी की वजह से हमने अपने परिवारों को बढ़ाया, अपनी फैमिली को बढ़ाया। तो दोस्तों ये था आज का व्हाट इफ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बढ़ेंगे आपके मैसेज की तरफ। बाकी आप हमें बताइएगा कि ये वाला व्हाट इफ कैसा लगा। एक छोटा सा ब्रेक और ये गाना मिका सिंह और नक्काश अजीज की आवाज में आ रहा है, पुष्पा पुष्पा
1: पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा
0: पुष्पा पुष्पा पुष्पा राज
1: पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

6:47 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, जरा बढ़ लेते हैं मैसेज की तरफ। ये मैसेज किस भाई का है? ओके, अच्छा दोस्त एक चाहिए था, फैजान साहब का कहना है, और एक अच्छी सी दोस्त चाहिए था। तो फैजान साहब कह रहे मेरी वाइफ देखेगी तो डिलीट कर दो फैजान साहब ये मैसेज। ओके, अगर डिलीट नहीं करा तो मुझे लग रहा है कि कहीं आप डिलीट ना हो जाए। बाकी मदस्सर साहब का भी मैसेज है, सलाम फजील भाई, आपका भाई मदस्सर। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ईद उल अदा मुबारक, आपको भी एडवांस में कर दिया है। फजील भाई, अच्छा दोस्त वो होता है जिसके बिहेवियर अच्छे हों, अखलाक अच्छा हो, क्या बात है। चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, बहुत बंदे अच्छे अखलाक के मालिक होने चाहिए, बट बंदा अच्छा अखलाक का मालिक होना चाहिए। बाकी आई हैव ऑल टाइप ऑफ क्वालिटी अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप, मैं मैनेज करता हूँ दोस्ती के उसूल, क्या बात है। बंगाज भाई, आपने ये जो बात बोली है ना, इससे होता खुश दिल, दिल जो है इससे बात खुश होती है, इससे बात बनती है। और जो अभी जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है उनको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या बातें हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज का सवाल था कि आपको क्या लगता है कि एक क्वालिटी आप क्या ढूंढते हैं, या आप जब भी आप दोस्ती करते हैं तो एक क्वालिटी आप क्या ढूंढते हैं किसी को दोस्त बनाने के लिए, तो उसका जवाब ये था। और बाकी भी एक जवाब नीचे चले गए वो थोड़ा सा। सलाम वालेकुम अस्सलाम, मेरा भाई कहते हैं कि दोस्ती में सबसे खास है वफादारी। ये वाला तो बहुत लोग भूल गए। हाँ बात तो है, वफादारी

देखते हैं और ये तो राशिद मियां में बात है ही है देखो। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे और एक नए व्हाट इफ के साथ, एक नए सवाल के साथ। तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी। चलो आशिक भाई चले जाए यार, दोस्त कहाँ चलना बताओ यार, अच्छी दोस्ती कैसे निभाओगे यार, पूछा मत करो कहाँ चलना है, आटा पिसवाने चलना है, अरे आटा नहीं गेहूं पिसवाने चलना है। हाँ मैं इसको लेकर जाता हूँ आशिक को अपने, मतलब मेरे दोस्त आशिक को, टैगर श्रॉफ जहान और तनिष्क बागची की आवाज में। गाना सुने और एंजॉय करें, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइजने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

नेचर अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। पॉनी डॉट एआई और मोवसलात मिलके कतर में रोबो टैक्सीज टेस्ट कर रहे हैं, मतलब अब स्टीयरिंग भी एआई संभालेगा। ये मोबिलिटी रिवोल्यूशन का शुभारंभ है। कतर अगेन ये प्रूफ कर रहा है कि ये फ्यूचर के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मिडिल ईस्ट एक परफेक्ट रेडियो टॉपिक ही नहीं है बल्कि दुनिया वालों के लिए एक बड़ी मिसाल बनने वाला है। कतर एयरवेज ने एसेंचर के साथ पार्टनरशिप की है ताकि एआई से ऑपरेशंस और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव किया जा सके। गूगल ने अपने लेटेस्ट एआई अपडेट्स रिलीज किए हैं। क्रोम में एआई मोड, विजुअल सर्च और रोबोटिक्स फीचर्स अब आ चुके हैं। कंज्यूमर टूल्स क्रिएटर जैसे लोगों के वर्कफ्लो में डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। वहीं एक बड़ी खबर में एलन मस्क ने कहा है कि एआई और रोबोट्स आखिर में सब जॉब्स रिप्लेस कर देंगे, लेकिन उन्होंने इसे एक पॉजिटिव फ्यूचर के रूप में देखा है जहां काम करना ऑप्शन हो जाएगा। उनके हिसाब से जब एआई रिपीटेटिव जॉब्स संभालेंगे तब ह्यूमंस अपना टाइम क्रिएटिविटी, हॉबीज और लर्निंग में लगा सकते हैं। इस विजन को उन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल हाई इनकम, मतलब हर इंसान के पास बेसिक से ऊपर इनकम होगी चाहे वो काम करे या ना करे। एक नए स्टडी में पता चला है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जब बार बार लो क्वालिटी सोशल मीडिया कंटेंट और क्लिक बेट से ट्रेन होते हैं तो उनका दिमाग कमजोर पड़ने लगता है। इसे रिसर्चर्स ने LLM ब्रेन रॉट बोला है। रिजल्ट, इन मॉडल्स की रीजनिंग, मेमोरी और एथिकल एक्यूरेसी बिगड़ जाती है और ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है, मतलब क्लीन डेटा से भी ठीक नहीं होता। मतलब भाई AI भी रील्स और क्लिक बेट देख देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है। AI भी बोल रहा होगा भाई मुझे भी तो एंगेजमेंट चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल और AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक के बीच एक मल्टी बिलियन डॉलर डील फनल हो रही है। इस डील के अंदर एंथ्रोपिक को मिलेगी गूगल की क्लाउड कंप्यूटिंग पावर और कस्टम चिप्स का एक्सेस, जिसका वैल्यू टेंस ऑफ बिलियंस में है। प्यू रिसर्च के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 21% अमेरिकन वर्कर्स अपने जॉब में AI इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पिछले साल सिर्फ 16% था। एडॉप्शन बढ़ रहे हैं लेकिन मेजोरिटी लोग अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं, स्पेशली एज और एजुकेशन के बेसिस पे डिवाइड हो रखा है। मतलब हाइप तो हाई है पर ग्राउंड रियलिटी में AI अभी इंटर्न लेवल पे है, मैनेजर लेवल पे नहीं। माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च के हिसाब से रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश के स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर अब AI का इस्तेमाल कर रहे हैं फेक कॉन्टेंट बनाने, फिशिंग ईमेल ट्रांसलेट करने और ऑफिशियल्स के डिजिटल क्लोन्स क्रिएट करने के लिए ये लगातार AI यूज कर रहे हैं। AI अब साइंस के हर फील्ड में रिवोल्यूशन ला रहा है। लाइफ साइंस, AI से ड्रग डिस्कवरी और mRNA वैक्सीन्स फास्टर हो रहे हैं। AI ने हजारों नए बैटरी और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स प्रेडिक्ट किए हैं। AI वेदर मॉडल ग्राफकास्ट ट्रेडिशनल सिस्टम से ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट क्लाइमेट बता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक OpenAI ने ChatGPT Atlas नाम का AI पावर्ड वेब ब्राउजर लॉन्च किया है जो ChatGPT को डायरेक्टली इंटरनेट के साथ मर्ज करेगा, मतलब अब ब्राउजिंग और चैटिंग एक ही जगह। प्रोडक्टिविटी का अल्टीमेट जुगाड़ हो गया भाई। और अगली खबरों में एक रिसर्च के मुताबिक कई अमेरिकन सब AI चैटबॉट्स के साथ रोमांटिक अटैचमेंट डेवलप कर रहे हैं। यूजर्स कहते हैं कि AI उन्हें समझाता है, जज नहीं करता और हमेशा अवेलेबल रहता है, अनलाइक ह्यूमंस। ये डिजिटल लोनलीनेस और इमोशनल डिपेंडेंसी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनाता हूँ आपको एक प्यारा सा गाना।

0: AI Unlocked.
1: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Ved.
0: Only on FM 107, दिल से देसी.

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं
1: AI Unlock.
2: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Vaid.
1: Only on FM 107, दिल से देसी.
0: और अब बात करते हैं आज के AI वर्ड ऑफ द वीक.
3: AI वर्ड ऑफ द वीक.
0: आज का AI वर्ड ऑफ द वीक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके बिना कोई भी AI एजेंट अधूरा है, और वो है फंक्शन कॉलिंग. नाम बड़ा टेक्निकल सा लगता है, पर आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. तो फंक्शन कॉलिंग का मतलब समझो, जब हम AI को सिर्फ बातें नहीं काम करने के लिए बोलते, जैसे आप बोलते हो hey AI मेरा कैलेंडर अपडेट कर दो, या वेदर बताओ, या ईमेल भेज. अब यहां AI सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि डिसाइड करता है कि कौन सी फंक्शन कॉल करनी है, क्या पैरामीटर्स देने हैं, और फिर आपकी ऐप वो एक्शन एग्जीक्यूट करती है. समझ लो कि ये AI के स्केलेटन की जैसा है, यही उसकी हड्डी असली है. अगर ये नहीं होगा तो AI बस एक चैटर बॉक्स होता है. और हाँ, प्रॉम्प्ट

0: कंप्यूटर डिजाइन यहाँ बहुत मैटर करता है, मतलब AI से सही काम करवाना है तो उससे सही तरीके से बात करनी पड़ेगी, सही तरीके से बोलना पड़ेगा। गूगल के जेमिनी लाइव API में भी यही पैटर्न फॉलो होता है। सो बेसिकली सब बड़े प्लेयर अब एक ही लाइन पे हैं, AI जो बोलता भी है और करता भी है। अब अगर आप डेवलपर नहीं हो तो भी ये समझना जरूरी है, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग के बिना कोई भी AI सिर्फ बोलता है, लेकिन फंक्शन कॉलिंग के साथ AI काम करता है। इमेजिन करो तुम्हारे फोन का AI ऑटोमेटिकली मीटिंग शेड्यूल कर दे या कोई फाइल समराइज करके रेडी कर दे। ये सब हो सकता है फंक्शन कॉलिंग से। तो जब अगली बार आपका AI असिस्टेंट आपके कहने से पहले काम कर दे, याद रखना उसके पीछे छुपा है एक स्मार्ट फंक्शन कॉल। अब बात करते हैं दोस्तों आज के AI टूल ऑफ द वीक।
1: AI टूल ऑफ द वीक,
0: और आज जो टूल मैं लेकर आया हूँ उसे सुन के आपका इनर कंटेंट क्रिएटर बोलेगा, भाई ये तो मेरे दिमाग का सीविर है। नाम है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो, जहाँ AI सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं पूरा टीम बन जाता है, मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन बॉस। आप सोचो आप

0: अलग फोल्डर में है, प्राइस लिस्ट किसी और मेल में, डेडलाइंस व्हाट्सएप में और पुराने रील्स कहीं वन ड्राइव में घूम रहे हैं। रिजल्ट, दिमाग फ्राइड हो जाएगा, डेडलाइन समझ में नहीं आएगी क्या हो जाएगा। यही एंट्री होती है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो की। एक ऐसा एआई टूल है जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है और आपके लिए काम करने वाले मिनी एजेंट्स क्रिएट करता है। तो चलो समझते हैं कि कैसे स्टार्ट करें कोपायलट स्टूडियो के साथ सिर्फ तीन सिंपल स्टेप्स में। नंबर वन, स्टार्टर कोपायलट चूज करो। सबसे पहले एक स्टार्टर कोपायलट सेलेक्ट करो और अपने डेटा कनेक्शंस जोड़ो, जैसे शेयरपॉइंट, वन ड्राइव, वेबसाइट या नॉलेज बेस, मतलब सारे स्कैटर्ड डॉक्स, ब्रांड ब्रीफ्स और रेट कार्ड्स एक ही जगह आ जाएंगे। अब कोपायलट तुम्हारे कंटेंट का इंसाइक्लोपीडिया भी बन गया है। नंबर टू, स्किल्स और एक्शन ऐड करो। इस कोपायलट को सिखाओ क्या करना है, जैसे ईमेल भेजना, कैलेंडर अपडेट करना, सीआरएम फिल करना या स्प्रेडशीट लिखना। सो बेसिकली हर रिपीटेटिव टास्क जो आप मैनुअली करते थे अब एआई करेगा। कह सकते हैं कि अब आपका जो इंटर्न है वो छुट चला गया, अब ये काम कर लेगा। नंबर थ्री, मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन मैजिक। अब आता है सबसे कूल पार्ट, मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन। आप अपने कोपायलट में अलग अलग एजेंट्स असाइन कर सकते हैं, जैसे रिसर्च एजेंट, कंटेंट एजेंट, कैलेंडर एजेंट। फिर आप एक सिंगल गोल देते हैं, आज 7 बजे 30 सेकंड की रील प्लस कैप्शन प्लस पोस्ट शेड्यूल कर दो और बस एजेंट्स मिल बैठकर पूरा काम कर देते हैं। वाह यार, कमाल की चीज है यार, ये तो कितना मजा आएगा। मतलब आपके इतने सारे असिस्टेंट हैं आपके अंडर काम करने वाले, वो अलग बात है, ह्यूमन कोई नहीं है, फील तो एकदम मैनेजर वाली आ रही है यार। बस एक बात, अप्रूवल्स ऑन रखना, क्योंकि एआई भी कभी कभी ओवर क्रिएटिव हो जाता है। और जैसे ब्रांड ने बोला कॉफी तो वो लिख सकता है करक चाय। या दैट्स व्हाई ब्रांड अप्रूवल ऑन रखोगे तो हर चीज होने के पहले आपके पास अप्रूवल के लिए पूछा जाएगा और फिर आप चेक करके उसे अप्रूव कर सकते हैं।
1: You are listening to AI Unlocked. सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में, AI Unlocked with RJ Ved.
2: Only on FM 107, दिल से देसी।
0: दोस्तों ये था आज का AI Unlocked। पर्सनल AI एजेंट्स का फंडा सिंपल है, काम उनसे करवाओ, कंट्रोल अपने पास रखो। आज का वर्ड फंक्शन कॉलिंग टूल था कोपायलट स्टूडियो और नेक्स्ट एपिसोड में होगी मुलाकात बहुत सी नई चीजों के साथ, बहुत सारे नए AI अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। मी वेद सानी गौरव सिंह, मां सलामा।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, भाई जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी नजर से छुपे रहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा। और दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही खासम खास है, क्रिएटर्स थिंकर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स एट वर्क, इनोवेशन हैपेंस बियॉन्ड फॉर्मल रूल्स। दोस्तों आज के इस खास प्रोग्राम में हम सिर्फ नौकरी डेजिग्नेशन या ऑफिस के काम की ही बात नहीं करेंगे बल्कि हम बात करेंगे आप खुद कौन हैं इस मसले के ऊपर। सवाल यही उठता है कि मैं कौन हूं, क्योंकि जब हम अपने आप को सिर्फ एक जॉब टाइटल तक लिमिटेड कर देते हैं दोस्तों, तो हम अपनी क्रिएटिव सोच, अपनी थिंकिंग और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी छोटा कर देते हैं। आज का टॉपिक ये याद दिलाता है कि हर इंसान अपने काम की जगह पर सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं होता बल्कि वो एक क्रिएटर भी होता है, एक थिंकर होता है और एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है। इनोवेशन सिर्फ बड़े बड़े ऑफिसेस ही में पैदा नहीं होती बल्कि आम डेस्क, वर्कशॉप, क्लासरूम्स और फील्ड से भी निकल कर आती हैं। दोस्तों अक्सर हम सुबह ऑफिस जाते हुए ये सोच कर निकलते हैं कि आज सिर्फ अपना असाइंड काम कंप्लीट करना है, लेकिन ये जो रूटीन माइंडसेट है यही इनोवेशन की सबसे बड़ी रुकावट होती है। क्रिएटिविटी उस वक्त पैदा होती है जब हम अपने काम को सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सोच के साथ देखते हैं। आप क्लर्क हो, इंजीनियर हो, टीचर हो या ड्राइवर, अगर आप सोच रहे हैं, बेहतर तरीका ढूंढ रहे हैं और मसाइल का हल निकाल रहे हैं, तो आप ऑलरेडी क्रिएटर और प्रॉब्लम सॉल्वर बन चुके हैं। आज के शो का मकसद यही है कि हम अपने अंदर छुपी हुई इस सलाहियत को, क्रिएटिव पावर को पहचान सकें। दोस्तों हमारी एजुकेशन और ट्रेनिंग अक्सर हमें ये सिखा देती है कि सवाल कम पूछो और इंस्ट्रक्शंस ज्यादा फॉलो करो, जबकि असल तरक्की वहीं से शुरू होती है जहां सवाल पूछे जाते हैं। भाई वर्क प्लेस पर जो लोग सिर्फ रूल्स पर चलते हैं वो सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन जो लोग सोचते हैं वो सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। इनोवेशन का मतलब कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन नहीं होती बल्कि कभी कभी एक छोटी सी बेहतरी, एक नया आइडिया और एक डिफरेंट अप्रोच भी इनोवेशन कहलाती है। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिएटिविटी का दायरा कितना वसी होता है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके या आपका कोई कलीग हर रोज एक मसले को इग्नोर करता है और आप उस मसले को एक सिंपल सॉल्यूशन सजेस्ट कर देते हैं, तो आपने

सिर्फ अपना काम ही नहीं किया बल्कि पूरी टीम की मदद की यही थिंकिंग आपको रोल से आगे लेकर जाती है कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस उन लोगों को कभी नहीं भूलती दोस्तों जो सिर्फ काम पूरा नहीं करते बल्कि काम को बेहतर बनाते हैं और ये एबिलिटी किसी डिग्री पोजीशन या सैलरी से नहीं आती बल्कि सोच बदलने से आती है आज का प्रोग्राम भी इसी सोच को जगाने के लिए है भाई हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम की जगह पर गुजरता है भाई अगर हम यहीं अपनी क्रिएटिव एनर्जी यूज नहीं करते तो फिर कहां करेंगे जब आप अपनी जॉब को सिर्फ टाइम पास या सैलरी का जरिया समझने लगते हैं तो अंदर से एक थकान एक बोरियत सी हो जाती है लेकिन जब हम उस काम में मीनिंग ढूंढने लगते हैं नए आइडियाज लाते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज समझते हैं तो वही काम हमें ग्रो भी करता है या कराता है इस शो में हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि कैसे क्रिएटिविटी और पर्पस आपस में जुड़े हुए हों विच इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं मैं क्या चेंज ला सकता हूं तो यही सोच सबसे पहली प्रॉब्लम है हिस्ट्री गवाह है कि कई बड़े चेंजेस उन लोगों से शुरू किए जो किसी हाई पोजीशन पर नहीं थे किरदार और सोच पोजीशन से ज्यादा ताकतवर होती है वर्कप्लेस पर हर प्रॉब्लम एक इनोवेशन होती है और इनोवेशन सोचने का बेहतर तरीका निकालने का और सीखने का नाम है भाई क्रिएटिव लोग वो नहीं होते जो हर वक्त नए आइडियाज बोलते रहते हैं बताते रहते हैं बल्कि वो होते हैं जो सुनते हैं समझते हैं और ऑब्जर्वेशन से काम लेते हैं भाई ऑफिस का एक छोटा सा प्रोसेस भी अगर रोज स्लो है तो कोई ना कोई तरीका होता है उसे सिंपल और फास्ट बनाने का फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इस पर गौर करता है और कोई इग्नोर कर देता है प्रॉब्लम सॉल्वर वो होता है जो कहता है शिकायत से शायद बेहतर हो सकता है भाई आज के फास्ट वर्ल्ड में कंपनी सिर्फ ओबीडियंट एम्प्लॉयज ही नहीं बल्कि थिंकिंग एम्प्लॉयज चाहती हैं जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी पहचान समझने लगते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं क्रिएटिविटी का मतलब ये भी है कि आप रिस्क के दायरे में बगैर सजेशन दिए नया आइडिया शेयर करें और कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनी आदत बनाएं। हर वर्कप्लेस एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है अगर हम सीखने का माइंडसेट रखें भाई दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हमने अभी तक यही कोशिश करी कि याद दिलाया जाए कि हम सिर्फ फाइल्स मूव करने वाले या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाले लोग बने ना रह जाएं। हम सोच सकते हैं क्रिएटिव काम कर सकते हैं और मसाइल का हल निकाल सकते हैं ये एबिलिटी अल्लाह सुबहाना उताला ने हर इंसान को दी है फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे यूज करता है और कोई इसे इग्नोर कर देता है तो दोस्तों अभी तक के प्रोग्राम में हमने ये समझने की कोशिश करी कि हम अपने काम के अलावा भी बहुत कुछ होते हैं सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है अपने आप को पहचानने की जरूरत है अपनी पहचान से अपनी सोच से और अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों से क्रिएटिव पावर से जब हम मिल लेते हैं तो फिर बहुत आराम हो जाता है मकसद आपको सिर्फ मोटिवेट करना ही नहीं दोस्तों बल्कि रियलाइज कराना भी है भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये समझेंगे कि कैसे फॉर्मल रोल्स से बाहर निकलकर इनोवेशन होती है और कैसे हम अपने वर्क प्लेस पर रियल चेंज ला सकते हैं तो आइए दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हु आर वी बियॉन्ड द वर्क अक्सर जब हम अपना तारुफ करवाते हैं तो सबसे पहले अपनी नौकरी का नाम लेते हैं मैं टीचर हूं मैं अकाउंटेंट हूं या मैं टेक्नीशियन हूं वगैरह वगैरह लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ यही हैं क्या हमारी पहचान सिर्फ ऑफिस की छत के नीचे खत्म हो जाती है हकीकत यह है कि हर इंसान अपनी जॉब से कहीं ज्यादा होता है काम सिर्फ एक हिस्सा होता है दोस्तों जिंदगी गुजारने का पूरी जिंदगी नहीं जब हम अपने आप को सिर्फ डेजिग्नेशन तक महदूद कर लेते हैं तो हम अपनी असली पर्सनैलिटी अपने शौक अपनी सोच और अपनी वैल्यूज को पीछे जोड़ देते हैं आज हम यही चीज समझ जाएं तो हमें बहुत फायदा हो सकता है और इस पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि हम काम के अलावा भी कौन हैं दोस्तों जरा सोचिए ऑफिस के बाहर जब आप घर पर होते हैं दोस्त के साथ बैठे होते हैं या तन्हा वक्त गुजार रहे होते हैं

0: आप कैसे इंसान होते हैं? कुछ लोग लिखना पसंद करते हैं, कुछ लोग बच्चों को समझाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मसाइल को एनालाइज करने में माहिर होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी क्वालिटीज काम के वक्त भी साथ होती हैं, बस हम उन्हें यूज नहीं करते। जब कोई एम्प्लॉई अपने पर्सनल स्किल्स और वर्क स्किल्स को अलग अलग रख देता है तो वो अपनी आधी कैपेसिटी पर काम करता है, जबकि जो लोग अपनी पूरी पर्सनैलिटी के साथ काम पर आते हैं वही असल में फर्क पैदा करते हैं। दोस्तों, हमारी पर्सनैलिटी लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। एक लेयर वो जो ऑफिस में नजर आती है और दूसरी वो जो सिर्फ घर वालों या खुद को मालूम होती है। लेकिन जब ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के करीब आ जाएं तो काम मीनिंगफुल बन जाता है। अगर आप फितरत में मददगार हैं तो आप वर्क प्लेस पर भी सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। अगर आप नेचुरली क्यूरियस हैं तो आप नए आइडियाज और बेहतर प्रोसेस डिस्कवर कर सकते हैं। अपनी फितरत को काम से अलग कर देना अपनी कुव्वत को जाया करना जैसा होता है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि ऑफिस में पर्सनल बात नहीं लानी चाहिए। बात तो ठीक है, ऐसा ठीक हो भी सकता है, लेकिन पर्सनल क्वालिटीज लानी जरूरी होती हैं। मेरा ऐसा मानना है भाई, एम्पैथी, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी और सब्र, पेशेंस, ये सब ह्यूमन क्वालिटीज ही हैं जो काम को सिर्फ काम नहीं रहने देती बल्कि कोलैबोरेशन बना देती हैं। भाई, जब हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और अपनी इंसानी पहलू को साइड पर रख देते हैं तो वर्क प्लेस एक मशीन बन जाता है। लेकिन जब इंसान अपनी पूरी पर्सनैलिटी के साथ काम करता है तो वही जगह ज्यादा महसूस होती है। भाई, हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में है ही नहीं। मैंने भी कहा है, आपने भी बहुत बार ऐसा सोचा होगा। ये जुमला सुनने में प्रोफेशनल लगता है लेकिन असल में ये ग्रोथ को रोक देता है। जॉब डिस्क्रिप्शन एक गाइड होती है लेकिन इंसान की पोटेंशियल उससे कहीं ज्यादा होती है। जब हम अपने आप को सिर्फ काम के दायरे में बंद कर देते हैं तो हम सीखना भी कम कर देते हैं। लेकिन जब हम ये समझने लगते हैं कि हम काम से आगे भी काफी कुछ हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज को पहचानना शुरू कर देते हैं। वहीं दोस्तों, वर्क प्लेस पर जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं वो सिर्फ काम ही नहीं बल्कि लोगों को भी समझते हैं। भाई, इस सलाहियत को कोई कोर्स नहीं सिखाएगा, ये आपके अंदर होती है बल्कि जिंदगी और तजुर्बे से आती है। अगर कोई एम्प्लॉई स्ट्रेस में है और आप उसकी खामोशी महसूस कर लेते हैं तो ये आपकी इंसानी क्वालिटी है कि सिर्फ प्रोफेशनल स्किल ही नहीं आपके अंदर दूसरी ताकतें भी हैं। जब ये क्वालिटीज काम का हिस्सा बन जाती हैं तो टीम स्ट्रांग होती है और ट्रस्ट क्रिएट होता है, और ट्रस्ट के बगैर इनोवेशन मुमकिन ही नहीं होती। भाई, हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। हम किसी के वालिद हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के मेंटर हैं। ये सारे रोल्स हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सब्र है, कम्युनिकेशन है, डिसीजन मेकिंग है, ये सब स्किल्स हम जिंदगी से सीखते हैं, सिर्फ ऑफिस से नहीं। भाई, जब हम इन स्किल्स को काम पर ले आते हैं तो हम एवरेज एम्प्लॉय से इफेक्टिव लीडर बनना शुरू कर देते हैं, चाहे हमारी पोजीशन कोई भी हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम काम के वक्त भी पूरे इंसान ही तो होते हैं, सिर्फ वर्कर नहीं। जब हम अपनी पहचान को सिर्फ सैलरी स्लिप तक महदूद कर देते हैं तो हम अंदर से खाली महसूस करना शुरू कर देते हैं, बस हमें आइडिया नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी वैल्यूज, अपनी सोच और अपने प्रिंसिपल्स के साथ काम करते हैं तो काम भी इबादत जैसा लगता है, और यही वो कनेक्शन है जो हमें बर्नआउट से बचाता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। अगर आज आप अपने आप से एक सवाल पूछें, मैं काम से आगे कौन हूं, तो शायद जवाब फौरन ना मिल पाए। लेकिन यही सवाल आपको सोचने पर मजबूर भी करेगा। आप किस चीज में बेहतर हैं, आप किस चीज पर फक्र महसूस करते हैं और आप कैसे बनना चाहते हैं, ये सब सवालात हमारी प्रोफेशनल जिंदगी पर भी असर डालते हैं। जो लोग अपनी पहचान को समझ लेते हैं वो काम को सिर्फ मजबूरी नहीं समझते। तो दोस्तों, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरवर मिर्जा आपके साथ, कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि अभी आगे हमें बहुत कुछ समझना बाकी है। बस मैं यूं गया और यूं वापस आया. देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है. एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं. एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ.
0: तो दोस्तों आइए अब प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम वर्कर बेहतर हैं, इंसान बेहतर हैं, या दोनों मिलकर हम एक बहुत बेहतर शख्सियत बन सकते हैं. पूरी सोच, जज्बात और पोटेंशियल अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम बेहतर इंसान बनते हैं. जब हम ये समझ लेते हैं तो हम क्रिएटिविटी, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को नेचुरल तरीके से अपने काम का हिस्सा बना लेते हैं. तो आइए अब बात करते हैं पर्पस और ग्रोथ की, कि क्या मकसद है और क्या हमारी ग्रोथ है, और इसको हम जोड़ कर भी देखेंगे कि कैसे अपनी पहचान से ही इनोवेशन का सफर शुरू होता है. तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने पर्पस की, यानी मकसद की. भाई मकसद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप पैसा कमा रहे हैं या प्रमोशन चाहते हैं. मकसद वो वजह होती है जो आपको सुबह उठकर काम पर जाने का हौसला देती है. जब इंसान अपने काम का मकसद समझ लेता है तो फिर काम बोझ नहीं रहता. ग्रोथ भी वहीं से शुरू होती है जहां पर्पस क्लियर होता है. जो लोग ये जानते हैं कि वो अपना काम क्यों कर रहे हैं, वो हर सिचुएशन से सीखते रहते हैं और उनके लिए हर चैलेंज एक लेसन जैसा होता है और हर प्रॉब्लम एक नया रास्ता खोलती है. दोस्तों अक्सर हम ग्रोथ को सिर्फ प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट से जोड़ देते हैं, जबकि असल ग्रोथ सोच, स्किल्स और एटीट्यूड में शामिल होती है, छुपी होती है. जब आप अपने काम को पर्पस के साथ जोड़ देते हैं तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी बड़ी बन जाती हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा काम सिस्टम को स्मूथ बनाता है, लोगों की मदद करता है या टाइम बचाता है, तो फिर आप नेचुरली बेहतर परफॉर्म करते हैं. ऐसी परफॉर्मेंस सिर्फ अप्रेजल फॉर्म में ही नहीं बल्कि लोगों के रवैये में भी नजर आने लगती है कि आप कितने बेहतर शख्स हैं. वहीं दोस्तों मकसद के बगैर ग्रोथ सिर्फ टेम्परेरी होती है. आज आप मोटिवेटेड हैं, कल शायद ना रहें, लेकिन जब काम आपके पर्सनल वैल्यूज से कनेक्टेड हो जाता है तो कंसिस्टेंसी आ जाती है. आप अपने काम को दिल से करना शुरू करते हैं, सिर्फ फर्ज समझकर ही नहीं. इस स्टेज पर क्रिएटिविटी खुद ब खुद निकल कर सामने आने लगती है क्योंकि आप बेहतरी चाहते हैं. आप सिर्फ पूछते नहीं कि मुझे क्या दिया जा रहा है, बल्कि ये भी सोचते हैं कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. ग्रोथ का एक और पहलू लर्निंग भी है. जो लोग पर्पस के साथ काम करते हैं वो सीखना कभी बंद नहीं करते. आप चाहे किसी भी स्टेज पर हो, लर्निंग ही आपको रिलेवेंट रखती है. वर्कप्लेस पर जो एम्प्लॉई नए टूल्स सीखने को तैयार होता है, फीडबैक को पॉजिटिव लेता है और अपनी कमजोरी का मानने वाला होता है, वही असल में ग्रो करता है. ग्रोथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं है दोस्तों, बल्कि बेहतर होना होता है, ये याद रखिए. और हर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो दोस्तों देखिए सारे ही पहलुओं को देखते हुए अगर हम बात करें तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं. हमारी एजुकेशन, हमारी ट्रेनिंग, अक्सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा रही होती हैं और वहां से हमें सवाल मिलते हैं, सवाल उठते हैं और हम उनको फिर फॉलो करना शुरू करते हैं. भाई जब के असल तरक्की वहीं से शुरू होती है जहाँ सवाल छुपे होते हैं. वर्क प्लेस पर जो लोग सिर्फ रूल्स पर चलते हैं वो सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन जो लोग सोचते हैं वो सिस्टम को बेहतर भी बनाते हैं, जैसे मैंने इससे पहले अर्ज किया. भाई इनोवेशन का मतलब कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन नहीं होता, बल्कि कभी कभी एक छोटी सी बेहतरी, एक नया आइडिया या एक डिफरेंट अप्रोच भी इनोवेशन कहलाती है. आज हम जब आज के दौर में जब हम इतनी ज्यादा कॉम्पिटिशन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेहतरी कैसे अपने अंदर लाई जाए। भाई कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम की जगह पर गुजरता है। अगर हम यहीं अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं उनको बेहतर करके प्रूफ करना शुरू करें तो कंपनी के लिए भी और हमारे लिए भी दोनों के लिए बेहतर होगा। जब हम अपनी जॉब को सिर्फ टाइम पास या सैलरी का जरिया नहीं समझते हैं ना, तो अंदर से हम बहुत बेहतर महसूस करते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज समझने लगते हैं। तो वही काम हमें ग्रो करने का जरिया भी बनता है और आगे का रास्ता भी दिखाता है। भाई क्रिएटिव लोग ही वो हैं जो नए आइडियाज को समझने की कोशिश करते रहते हैं। भाई समझते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। ऑफिस का एक छोटा सा प्रोसेस भी अगर स्लो हो रहा हो, कोई काम ना हो रहा हो, तो कोई ना कोई तरीका होता जरूर है कि आप उसे सिंपल और फास्ट बना लें। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इस पर गौर नहीं करता, या जो गौर करते हैं तो उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो मसला यही है कि पर्पस इंडिविजुअल लेवल पर होता है, लेकिन इसका असर पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। जब एक बंदा मकसद के साथ काम करता है तो उसकी एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचती है। टीम्स वहीं स्ट्रांग होती हैं जहां लोग सिर्फ टास्क कंप्लीट नहीं करते बल्कि मिशन फील करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहते भी हैं। इनोवेशन ऐसे ही माहौल में पैदा होता है दोस्तों, क्योंकि लोग डर के बगैर सोचते हैं और बोलते हैं। जहां पर्पस होता है वहां सिर्फ काम ही नहीं होता, वहां कमिटमेंट जरूरी है। आपका पर्पस वक्त के साथ इवॉल्व भी हो सकता है। जो आज आपको मोटिवेट करता है वो हो सकता है कि कल और चीज बन जाए। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप से रेगुलरली सवाल पूछते रहें। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं इससे क्या सीख रहा हूँ, मैं कौन सा स्किल डेवलप कर रहा हूँ। भाई ये सवालात ग्रोथ को डायरेक्शन देते हैं। जैसे कि पास डायरेक्शन होती है, उसके लिए मेहनत भी मीनिंगफुल होती है। ग्रोथ सिर्फ इंडिविजुअल सक्सेस का नाम नहीं बल्कि दूसरों को उठाने का भी नाम है। जब आप सीखते हैं और ग्रो करते हैं तो आपके पास शेयर करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। आप जूनियर कलीग्स को गाइड कर सकते हैं, टीम्स को मोटिवेट कर सकते हैं और पॉजिटिव कल्चर बिल्ड कर सकते हैं। ये वही लोग होते हैं जो लीडर बनते हैं बिना किसी ऑफिशियल टाइटल के। पर्पस ड्राइविंग लोग इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं और इन्फ्लुएंस ही असल ताकत होती है। भाई कभी कभी ग्रोथ स्लो लगती है और यही वो वक्त होता है कि जब पर्पस का इम्तिहान होता है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं तो थक जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रोसेस को वैल्यू करते हैं तो हर दिन इम्पोर्टेंट लगता है। आज का एक छोटा सा इम्पोर्टेंट कल बड़ी चेंज बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ एंड रिजल्ट तक ही नहीं बल्कि जर्नी को भी अप्रिशिएट करते रहें। भाई आज के वर्कप्लेस में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वही लोग होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। ये लोग कहते हैं मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। ये सोच ही उन्हें प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने पर मजबूर करती है। पर्पस और ग्रोथ जब मिल जाते हैं तो काम सिर्फ जॉब तक महदूद नहीं रहता या काम सिर्फ काम नहीं रहता बल्कि एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाता है, और यही जर्नी इनोवेशन को पैदा करती है। तो दोस्तों प्रोग्राम के इस हिस्से में ये समझ लीजिए कि पर्पस के बगैर ग्रोथ अधूरी है और ग्रोथ के बगैर पर्पस बेकार है। जब दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं तो इंसान अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। वहीं दोस्तों वर्कप्लेस पर क्रिएटर्स, थिंकर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स वही बनते हैं जो अपने काम को मकसद से ज्यादा लेकर चलते हैं या एटलीस्ट मकसद के साथ जुड़े रहते हैं। इसी सोच के साथ हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगियां बेहतर बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पर्पस के बगैर काम सिर्फ रूटीन बन जाता है या बन गया है। भाई रूटीन जिंदा रहते हुए भी इंसान को अंदर से थका देती है। लेकिन जब इंसान अपने काम में मकसद ढूंढ लेता है तो वही रूटीन भी मीनिंगफुल बन जाती है।

0: भाई पापा, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर रोज मोटिवेटेड महसूस करें, बल्कि इसका मतलब होता है कि मुश्किल दिनों में भी आप काम छोड़ने के बजाय सीखने का फैसला करते हैं। ये एक साइलेंट स्ट्रेंथ है दोस्तों, जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो अपनी जिंदगी और काम को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं या जोड़कर देखते रहते हैं। ग्रोथ अक्सर शोर के बगैर होती है। लोग समझते हैं कि ग्रोथ हमेशा विजिबल होनी चाहिए कि वो बन गया, फलाना वो बन गया, उसने वो खरीद दिया। क्या ग्रोथ है भाई, क्या आगे बढ़ रहा है भाई। ओके, दैट्स फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी अल्लाह ताला नवाज रहा है, दूसरों को भी नवाज रहा है, लेकिन असल ग्रोथ अंदर से होती है। जब आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, जब आप बेहतर फैसले लेने लगते हैं, जब आप प्रेशर में भी काम रहते हैं, ये सब ग्रोथ की निशानियां हैं मेरे भाई। वर्क प्लेस पर जो लोग इमोशनल और मेंटल ग्रोथ पर काम करते हैं, वो फ्यूचर चैलेंजेस के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। और ऐसे लोग सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को भी अपग्रेड करते रहते हैं। पर्पस आपको डायरेक्शन देता है और ग्रोथ आपको मूवमेंट। इसको ऐसे समझिए, जब दोनों साथ चलें तो इंसान खो नहीं जाता, उसकी पर्सनैलिटी गुम नहीं हो जाती। आज के दौर में बहुत से लोग बिजी हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसमें देखिए कितना फर्क है दोनों चीजों में भाई। बिजी होना और पर्पसफुल होना दोनों अलग चीजें हैं। पर्पसफुल इंसान हर काम में लर्निंग और बेहतरी का मौका देखता है। ऐसा इंसान छोटी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करता है और फेलियर से भागता नहीं है, बल्कि उसे फीडबैक समझकर एक्सेप्ट करता है। और ये माइंडसेट ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाता है। भाई वर्क प्लेस में ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन कंफर्ट जोन होता है। जब हम सिर्फ वही काम करते हैं जो हमें आता है तो हम खुद को सेफ समझते हैं, लेकिन ग्रो नहीं करते। पर्पस जो मकसद है वो हमें ये करेज देता है कि हम नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करें। भाई जब आप ये समझ लेते हैं कि हर नया चैलेंज आपकी ग्रोथ का हिस्सा है, तो फिर डर कम हो जाता है। ऐसे लोग मिस्टेक से घबराते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ग्रोथ परफेक्ट होने से नहीं, ट्राई करने से आती है। ट्राई ट्राई ट्राई, नेवर से डाई। तो ये एक चीज याद रखिए, आज के वर्क प्लेस में जो लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जो लोग सोचते हैं, बेहतरी सजेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, वो सिस्टम को इवॉल्व करते हैं। पर्पस ड्राइवन लोग अक्सर बिना कहे एक्स्ट्रा एफर्ट डालते ही रहते हैं, क्योंकि उनके लिए काम सिर्फ ऑब्लिगेशन ही नहीं है भाई, यही लोग बाद में रेफरेंस बन जाते हैं। ये बंदा काम को सीरियस लेता है, ये बंदा सॉल्यूशन लाता है। वो जो लड़की है भाई, ग्रोथ को बहुत अच्छी तरह समझती है। तो ये मुख्तलिफ चीजें ग्रोथ इसी रेपुटेशन से भी जुड़ी होती है, ये हमेशा याद रखिए। आपका काम आपके नाम से, आपका नाम आपकी बेहतर सोच से, इस तरीके से जिंदगी गुजारना बेहतर है। ये भी जरूरी है कि हम अपनी ग्रोथ का कंपैरिजन दूसरों से करना बंद करें। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं भी इसका शिकार होता रहता हूँ, हुआ हूँ, मैं मानता हूँ, है एक आदत है हम लोगों की। बट जब एटलीस्ट पता होता है, बात समझ में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो काम भी करने लगती है। भाई हर इंसान की जर्नी अलग है, हर इंसान का काम अलग है, हर इंसान का तरीका अलग है, हर इंसान का आइडिया अलग है, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। तो अब किसी को किसी से कंपेयर करना या आप खुद किसी को कंपेयर करें, ये वाकई हक की बात नहीं है। जब आप अपने पर्पस पर फोकस्ड रहते हैं तो कंपैरिजन आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप अपनी रेस खुद दौड़ते हैं। वर्क प्लेस पर मेंटल पीस भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है, याद रखिए, और ये उसी वक्त मिलती है जब इंसान अपनी ग्रोथ को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन कर लेता है। भाई पर्पस और ग्रोथ मिलकर इंसान को क्रिएटर बनाते हैं। क्रिएटर का मतलब सिर्फ आर्टिस्ट या इन्वेंटर ही नहीं है, बल्कि वो इंसान जो चीजों को बेहतर बनाता है, अपने आसपास के माहौल को अच्छा रखता है, अपने ऊपर काम करता है, दूसरों की कमियों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जो रूटीन को भी इम्प्रूवमेंट का मौका समझता है, जो सिर्फ प्रॉब्लम पॉइंट आउट नहीं करता बल्कि सॉल्यूशन लेकर आता है। ऐसे ही लोग वर्क प्लेस की कल्चर को आराम से खामोशी के साथ चेंज कर देते हैं और उनके साथ काम करना लोगों को पसंद होता है क्योंकि वो नेगेटिविटी कम और क्रिएटिविटी ज्यादा लाते हैं। तो दोस्तों सोचिए अगर हर एम्प्लॉई ये सवाल अपने आप से पूछने लगे कि मैं यहाँ सिर्फ काम कर रहा हूँ या कुछ सीख भी रहा हूँ, तो काम की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। ग्रोथ का मतलब सिर्फ हायर पोजीशन ही नहीं बल्कि हायर थिंकिंग होता है। तो जनाब प्रोग्राम के एंड पर हम ये कह सकते हैं कि इनोवेशन कोई स्पेशल लोगों का हक नहीं बल्कि हर उस इंसान का हक है जो सोचना चाहता है, सीखना चाहता है और बेहतर बनना चाहता है। आपकी जॉब चाहे जो भी हो, आपका एटीट्यूड ही आपको क्रिएटर या सिर्फ परफॉर्मर बनाता है। पर्पस आपके हाथ में है अगर ग्रोथ आपकी डिसीजंस में शामिल है। तो चलिए भाई आज इस सफर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन असल सफर यहां से शुरू भी होता है जब आप अपने काम पर वापस जाकर खुद से ये कहते हैं कि मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा, क्रिएट करूंगा और मसाइल का हल भी निकालूंगा। क्योंकि असल इनोवेशन काम के टाइटल से नहीं बल्कि काम की नीयत से पैदा होती है और जब नीयत क्लियर हो तो ग्रोथ रुकती नहीं। दोस्त एक बात क्लियर है, हमारी पहचान सिर्फ हमारी नौकरी नहीं है, हमारी वर्थ हमारे जज्बात, हमारे एक्शन और रिलेशनशिप से डिफाइन होती है। अपने आप से ये सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी को किस तरफ मीनिंगफुल बना रहा हूँ। आप जितने भी रोल्स प्ले करते हैं घर पर, ऑफिस में, सोसाइटी में, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वैल्यू समझिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। याद रखिए आपकी ह्यूमन वर्थ किसी टाइटल से कम नहीं और आपकी इंसानियत सबसे ज्यादा पहले है। इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: ईद की महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार। ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: FM 107 पेश करते हैं ईद स्पेशल शो ईद की धुन, और इस मौसीकी भरी महफिल की मेजबानी कर रही हैं आपकी अपनी ए फॉर अमिता। सुपरहिट नगमे हो या ईद की दिलचस्प और अनोखी बातें, ए फॉर अमिता बनाएंगी आपकी ईद को और भी यादगार। तो रास्ते के ट्रैफिक में हो या घर पर दोस्तों के साथ, ईद की धुन से हम बदल देंगे आपका मूड। तो सुनिए ईद की धुन ईद के चारों दिन ए फॉर अमिता के साथ शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। भाई एक ऐसा सफर जहां हम उन किताबों की कहानी सुनते हैं जिनके अल्फाज ने दुनिया भर के लोगों को बदला या बेहतर सोच दी है और जिंदगी को एक नए अंदाज से देखना सिखाया है। हर एपिसोड में एक ऐसी किताब पर हम बातचीत करते हैं जिसने दुनिया भर के सोचने वालों का तरीका बदल दिया है, और आज हम एक ऐसी ही किताब पर बातचीत करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लाखों कायरीन के दिलों को छुआ है, और वो है द सीक्रेट। लिखने वाले हैं रोंडा बर्न्स।

एक सोच है, एक नया अंदाज़े ज़िंदगी है, और इस किताब का नाम है, जैसे मैंने अर्ज किया, The Secret. और लिखने वाले हैं होंडा बाइन. ये किताब दुनिया भर में काफी लोगों की जिंदगी पर असर डाल चुकी है. आज का प्रोग्राम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी बनेगा. दोस्तों, आज हम सिर्फ पेजेस ही नहीं पलट रहे हैं इस किताब के, बल्कि अपनी सोच, अपनी आदत और अपनी नजर को एक नए एंगल से देख रहे हैं. इसलिए आज का ये वक्त, आज के ये कुछ लम्हात सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा भी है. तो साहब, द सीक्रेट की बुनियादी पैगाम बहुत सीधे हैं, लेकिन उतना ही गहरे भी हैं. ये किताब कहती है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनती है. जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो हम बिलीव या यकीन करते हैं, वही चीजें हमारी जिंदगी में वापस आती हैं. इस किताब के राइटर इस कंसेप्ट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से एक्सप्लेन करते हैं. इसका सीधा मतलब ये है कि आप जो सोचते हैं, कायनात उसी किस्म का जवाब आपको देती है. अगर हम सिर्फ मसाइल या कमी और डर पर फोकस करते हैं तो वही ज्यादा होता चला जाता है. भाई, दिमाग उसी तरीके से हमें बनाता चला जाता है ना, और ये तो हमें सिखाया जाता है. हमारे बड़े भी कहते हैं और हमारा दीन भी कहता है कि अच्छा सोचो, अच्छा ही सोचो और अच्छी ही उम्मीद रखो. और सुभान अल्लाह, उम्मीद रखना भी एक ईमान का हिस्सा है. लेकिन अगर हम शुक्र, उम्मीद और यकीन का साथ देना छोड़ देते हैं या उसके साथ जीना छोड़ देते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना होता है. और वहीं इसके बरअक्स, हमें अगर यही चीजें हम फॉलो करते हैं तो जिंदगी और भी बेहतर होती चली जाती है, धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है. तो भाई, इस प्रोग्राम के दौरान हम आपसे कोई गायबाना बात नहीं करने जा रहे हैं या ख्याली बातें नहीं करने जा रहे हैं. ये जो बुक है द सीक्रेट, हमें ये बताती है कि सोच और जज्बा मिलकर अमल बनाते हैं. जब हम सिर्फ पॉजिटिव बात नहीं कहते बल्कि उसे महसूस भी करते हैं, तब असर अच्छा होता है. और इसके राइटर रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल और दिमाग में उसे पा चुके होते हैं या उसे पाने का एहसास कीजिए. तो ये भी जरूरी है कि हम अपनी रोजमर्रा की नॉर्मल सोच पर भी गौर करें. हम सुबह उठकर किस मूड में होते हैं, शिकायत के साथ या शुक्र के साथ? तो भाई, ये चीजें असर डालती है ना, क्योंकि वही सोच पूरे दिन शेप करती है. अच्छा मूड होता है, सुबह सुबह अच्छे उठते हैं. तो ये चीजें हमारे खुद के हाथ में है दोस्तों. चलिए जी, अब थोड़ा डिटेल में अब बात करते हैं और जानते हैं कि बुक ऑफ द वीक, ये जो द सीक्रेट किताब है, इसको हमने क्यों चुना है और इससे हमें क्या पैगाम मिलता है. एक्चुअल में हमें ये किताब क्या सिखाती है? भाई, किताब के मुताबिक जिंदगी में तीन बुनियादी कदम होते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव. मतलब पहला कदम ये है कि आप वाजे तौर पर जाने कि आप चाहते क्या हैं. दूसरा कदम यकीन का है, बिना शक और डर के. और तीसरा कदम है उस चीज को हासिल करने का जज्बा, शुक्र और इंतजार के साथ. तो यहां पर इस किताब के राइटर के मुताबिक अक्सर लोग पहले ही कदम पर अटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो चाहते क्या हैं. ये किताब हमें क्लियरिटी सिखाती है. द सीक्रेट में बहुत सी हकीकी कहानियां शामिल की गई हैं, जहां लोगों ने सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी हेल्थ, पैसे और रिश्तों में फर्क महसूस किया है. यहाँ एक ही बात बार बार रिपीट होती है, फोकस की पावर. जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो बेहतर होती चली जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हम सोचते हैं, हमारी आदतें बेहतर होती हैं, हम उसको मुख्तलिफ तरीके से करने की और बदलने की कोशिश भी करते हैं. तो अगर आप सिर्फ बिल्स, कर्ज और टेंशन पर फोकस करते रहेंगे तो वो ही बढ़ती चली जाएगी, जाहिर है. तो जब आप अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पर शुक्र करते हैं, तब जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होती चली जाती है. किताब ये भी कहती है कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्र करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल हिस्सा होता है. मजीद ये भी वो वाजे करती हैं कि द सीक्रेट का मतलब ये नहीं कि आप बिना मेहनत के सब कुछ हासिल कर लेंगे, बल्कि ये किताब हमें राइट डायरेक्शन में एक्शन लेना सिखाती है. जब सोच और अमल एक हो जाते हैं तब नतीजा सामने आता है. मिसाल के तौर पर, अगर आप सेहतमंद होना चाहते हैं तो सिर्फ सेहत के बारे में सोचना ही काफी नहीं होगा, बल्कि सेहत के मुताबिक जिंदगी भी जीनी होगी. किताब का असल असर दोस्तों ये है कि ये आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सिखाती है,
कि जो कुछ भी आज जिंदगी में है वो किसी हद तक हमारी अपनी सोच का नतीजा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों पर जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है इसका। तो दोस्तों द सीक्रेट ने सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नया डिस्कशन शुरू किया है। इस किताब के बाद लोग पर्सनल डेवलपमेंट, माइंडफुलनेस और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ज्यादा मुतवज्जे हुए हैं। कॉर्पोरेट दुनिया, स्पोर्ट्स, हेल्थ और एजुकेशन में भी इस सोच का असर देखा गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, डिसीजन मेकिंग बेहतर हुई और लाइफ के चैलेंजेस हैंडल करना आसान हुए। ये किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि हम मजबूर नहीं बल्कि पावरफुल हैं। बस हमें अपनी सोच को पहचानने और कंट्रोल की जरूरत होती है। तो दोस्तों आज के दौर में जब स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर वगैरह हर जगह है तो ये किताब द सीक्रेट एक पॉज लेने का पैगाम देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ भाग दौड़ ही नहीं भाई, ये महसूस करने का भी नाम है। जब आप अपनी एनर्जीज को ठीक जगह पर लगाने शुरू कर देते हैं तब चीजें आसान होती चली जाती हैं। इस किताब का असर सिर्फ पढ़ते वक्त तक महफूज नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे डेली लाइफ के डिसीजंस पर नजर आता है दोस्तों। इसीलिए आज जब सालों बाद द सीक्रेट उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले दिन थी। द सीक्रेट का एक बहुत गहरा और असर दुनिया पर ये पड़ा है या जिन लोगों ने इसको पढ़ा है उन पर ये पड़ा है कि सोचने के तरीकों को बदलो, उस पर ताकत लाओ। पहले लोग अपनी जिंदगी को ज्यादातर सर्कमस्टेंसेस के हवाले कर देते थे लेकिन इस किताब के बाद एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या हम वाकई अपनी जिंदगी पे काबू पा सकते हैं? तो वो है। इस सोच ने बहुत से लोगों को पैसिव रहने के बजाय एक्टिव बनने पर मजबूर कर दिया। स्कूल्स में पॉजिटिव थिंकिंग पर बात होने लगी, ऑफिसेज में माइंडसेट और मोटिवेशन पर ट्रेनिंग शुरू हुई और लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये देखने लगे कि उनकी सोच, उनके जज्बात और फैसलों को किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन था दोस्तों जो धीरे धीरे हर इंसान को मदद करने लगा है। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर बात करें तो द सीक्रेट का काफी गहरा इम्पैक्ट देखा गया है। मोटिवेशनल स्पीकर्स, लाइफ कोचेस और ट्रेनर्स ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी सेशन का हिस्सा बनाना शुरू किया है। वहीं वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर या सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर हम देखते हैं पॉडकास्ट और सेमिनार्स वगैरह में ये मैसेज कॉमन हो गया कि अपनी रियलिटी को खुद डिजाइन किया जा सकता है जब आप अच्छी सोच रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल खत्म हो जाती हैं बल्कि ये कि मुश्किलात को देखने का नजरिया बदल जाता है। जब इंसान ये समझने लगता है कि वो हर रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देने की ताकत रखता है तब उसकी पूरी पर्सनैलिटी में एक बैलेंस आ जाता है। इसी वजह से द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं रही बल्कि एक मूवमेंट बनती जा रही है। दोस्तों कॉर्पोरेट दुनिया में भी द सीक्रेट के कंसेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। लीडरशिप और मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ये बात होने लगी कि लीडर

सबसे पहले अपनी सोच को कंट्रोल करते हैं। जब लीडर्स पॉजिटिव, क्लियर और फोकस्ड होते हैं तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। और यहाँ इस किताब की राइटर का भी ये मानना है कि जब आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर यूज करते हैं तो चीजें नेचुरली अलाइन होने लगती हैं। बहुत सी कंपनीज ने ग्रेटिट्यूड कल्चर इंट्रोड्यूस किया जहां एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट किया जाता है। इस चेंज का नतीजा सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि मेंटल पीस और जॉब सेटिस्फेक्शन की सूरत में भी सामने आ रहा है। वहीं पर्सनल लेवल पर अगर देखा जाए तो द सीक्रेट ने लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ लाया है। लोगों ने अपने पैटर्न्स देखने शुरू किए। बार बार वही मसला क्यों रिपीट होता है, वही रिश्तों के कन्फ्लिक्ट क्यों आते हैं या वही फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों वापस आ जाता है। इस किताब ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद हम सिर्फ सिचुएशन के शिकार नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं। ये रियलाइजेशन आसान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जिम्मेदारी लेना मुश्किल होता है, लेकिन जब इंसान ये कदम उठाता है तब अंदर से एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हेल्थ और वेलनेस की फील्ड में भी दोस्तों द सीक्रेट का असर देखने में आया है। बहुत से डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट ने माइंड बॉडी कनेक्शन पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया। ये समझ आने लगा कि स्ट्रेस, नेगेटिव सोच और इमोशनल बर्डन हेल्थ पर सीधा असर डालती हैं। जब इंसान अपनी सोच को थोड़ा हल्का करता है, शुक्र और उम्मीद को ज्यादा जगा देता है तो बॉडी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगती है। यहाँ राइटर भी यही कहती हैं कि फील गुड टू अट्रैक्ट गुड सिर्फ ये एक स्लोगन ही नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बनना चाहिए। इसी वजह से माइंडफुलनेस और पॉजिटिविटी पर बेस्ड रूटीन्स दुनिया भर में पॉपुलर होती चली गई। भाई तनकीद भी द सीक्रेट का एक हिस्सा रहा है और ये बात भी समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं होता और ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो किताब का असल मैसेज ये नहीं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि ये है कि प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे किया जाए। जब आप अपनी एनर्जी सिर्फ शिकवा और शिकायतों पर खर्च नहीं करते बल्कि सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं तब चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। इसी बैलेंस की वजह से ये किताब रेलिवेंट है। अगर हम इस किताब को एक जुमले में समझे दोस्तों तो शायद ये कहा जा सकता है कि ये जिंदगी का कंट्रोल पूरी तरह सिखाने में मदद करती है। इंसान के पास अपनी सोच, अपने जज्बात और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना आसान होता है और यही तीन चीजें मिलकर फ्यूचर को शेप करती हैं। द सीक्रेट ने दुनिया को ये याद दिलाया कि हर इंसान के अंदर एक टीचर छुपा होता है। जब तक हम अपनी इस ताकत को नहीं पहचानते तब तक हम सिर्फ रिएक्ट करते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस बात को समझ लेते हैं जिंदगी धीरे धीरे मीनिंगफुल बनने लगती है। दुनिया भर में द सीक्रेट को जो एक्सेप्टेंस मिली उसका एक रीजन ये भी था कि लोग अपनी लाइफ को मीनिंग देना चाहते थे। 2006 में पहले डॉक्यूमेंट्री आई और फिर बुक ने उस मैसेज को और ज्यादा फैला दिया। जब कोई आइडिया फिल्म, टीवी इंटरव्यूज और फिर किताब की शक्ल में आता है दोस्तों तो आम इंसान को लगता है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं कुछ प्रैक्टिकल भी होगा। इसी वजह से बहुत से लोगों ने इसे अपनी रूटीन में फिट करना शुरू किया। सुबह उठकर पॉजिटिव लाइन बोलना, अल्लाह का कलाम पढ़ना, शुक्र अदा करना और साथ ही साथ अपने गोल्स को विजुलाइज करना। भाई दोस्तों ये चीजें सिंपल लगती हैं लेकिन जब रोज की जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप रिपीट होती हैं तो इंसान का मूड, उसकी सेल्फ टॉक और उसका अप्रोच चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी किताब का ग्लोबल इम्पैक्ट सिर्फ फैंस तक लिमिटेड नहीं रहा, क्रिटिक्स ने भी इस पर काफी बात की। भाई दोस्तों जब कोई चीज कंट्रोवर्शियल होती है तो लोग उसे इग्नोर नहीं करते, लोग या तो डिफेंड करते हैं या क्वेश्चन करते हैं और दोनों सूरत में डिस्कशन बढ़ता है। और डिस्कशन का फायदा ये होता है कि लोग अपनी सोच को एग्जामिन करने लगते हैं। मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ, मैं शिकायत क्यों करता हूँ, मैं शुक्र क्यों नहीं करता, मैं गोल्स क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा। भाई वर्ल्ड इंपैक्ट की बात करें तो द सीक्रेट ने सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दी। वहीं कुछ बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसका जिक्र हुआ,
जिससे और ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचा। आज भी आप ऑनलाइन देखें तो मैनिफेस्टेशंस, विजन बोर्ड्स, अफर्मेशन, जर्नलिंग, ये सब टर्म्स बहुत कॉमन हैं। ये सब चीजें पहले भी मौजूद थी, लेकिन ये किताब द सीक्रेट ने इनको मेन स्ट्रीम बनाया। इसका असर एक आम घर तक भी गया। माँ बाप अपने बच्चों को कहने लगे, बेटा पॉजिटिव सोचो। स्टूडेंट्स को सिखाया गया अपने गोल

इमेजिन करो और वर्किंग लोगों ने अपने डेस्क पर मोटिवेशनल लाइन चिपकाना शुरू कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज इंस्टेंटली चेंज हो गई है दोस्तों, लेकिन एक कल्चर शिफ्ट जरूर आया है या आ भी सकता है। लोगों ने अपनी लैंग्वेज और अपनी डेली थिंकिंग पर फोकस देना स्टार्ट किया है। किताब की पॉपुलैरिटी का एक मेजरेबल साइन ये भी है कि ये बहुत सी जुबानों में ट्रांसलेट हुई। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक द सीक्रेट प्रोडक्ट्स और बुक्स 52 यानी 52 से ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। वहीं 50 लैंग्वेज और मल्टी मिलियन सेल्स का जिक्र भी मिलता है। जब कोई मैसेज इतनी जुबानों में फैलाया जाए तो उसका मतलब होता है कि उस मैसेज में कोई बात तो ऐसी है जो अपनाई जा सकती है। भाई आपको जो अच्छा लगे आप रख लें, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ दें, ये तो हमें बड़े समझाते ही हैं। तो जैसे होप, कंट्रोल और बेटर फ्यूचर का ख्वाब होता है दोस्तों, वहीं अगर हम अपने ऊपर काम करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हर मुल्क में लोग स्ट्रेस से गुजरते हैं, हर कल्चर में लोग चाहते हैं कि उनकी मेहनत का नतीजा निकले, इसलिए इस बुक का आइडिया दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में लोगों को अपने आप से मिलता जुलता लगा, चाहे वो इसे किताबी समझें या माइंडसेट ट्रेनिंग। भाई इम्पैक्ट का एक पहलू ये भी है कि इस किताब ने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लफ्ज़ से दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया। जब किताब कहती है कि आप अपनी सोच से अपनी रियलिटी को शेप करते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि इंसान अपने आप को विक्टिम कम समझने लगता है। लेकिन यहाँ बैलेंस ज़रूरी है, हर प्रॉब्लम सिर्फ सोच की वजह से नहीं होती, कभी हालात, इकॉनमी, हेल्थ और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। इसलिए बेस्ट अप्रोच ये है कि आप इस कंसेप्ट को ब्लेम की जगह चॉइस के लिए यूज करें। भाई जो चीज मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर फोकस करूं, मेरा एटीट्यूड, मेरा एफर्ट्स, मेरी प्लानिंग, मेरी आदतें, ये सब मेरे हाथ में है। जब ये माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है दोस्तों तो इंसान छोटी छोटी चीजों में भी बेहतर करना शुरू कर देता है। दोस्तों दुनिया में सेल्फ हेल्प का मार्केट हमेशा से स्ट्रांग रहा, लेकिन द सीक्रेट ने इसे और ज्यादा कॉमर्शियल और विजिबल बना दिया। भाई बुक और फिल्म ने 2009 तक ह्यूज सेल्स जनरेट किए और रिलेटेड मर्चेंडाइज भी निकाले। ये चीज कुछ लोगों को पसंद आती है और कुछ को नहीं, लेकिन मार्केट रियलिटी ये है कि जब लोग किसी मैसेज से इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो वो उससे रिलेटेड टूल्स भी लेना शुरू कर देते हैं। जर्नल्स, प्लानर्स, विजन बोर्ड किट्स, ग्रेचुअल नोटबुक्स वगैरह वगैरह। इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि लोग प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करते हैं। नेगेटिव साइड ये हो सकता है कि कोई इंसान शॉपिंग को सेल्फ इम्प्रूवमेंट समझ ले। इसलिए दोस्तों असल चीज आपकी डेली प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी में छुपी है। एजुकेशन पर इम्पैक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब टीचर्स और ट्रेनर्स पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट और ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं वही आइडिया होता है कि सोच और एफर्ट से आउटकम्स इम्प्रूव हो सकते हैं। द सीक्रेट का मैसेज कभी कभी सिंप्लीफाइड होता है, लेकिन इसने एक सीधा सा लेसन पॉपुलर किया। आप अपने दिमाग को जिस डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं आपका बिहेवियर उसी तरफ जाता जाता है। इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने आप से बेहतर बात करना सीखते हैं, अपनी तैयारी को नेगेटिव प्रिडिक्शन से साबोटाज नहीं करते और अपने गोल्स को क्लियर लिखते हैं। यहाँ पे बेस्ट अप्रोच ये है कि पॉजिटिव सोच के साथ रियलिस्टिक प्लानिंग भी हो, यानी टाइम टेबल, प्रैक्टिस, फीडबैक और इम्प्रूवमेंट। इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप का एंगल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भाई ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जब आप अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स के लिए शुक्र अदा करना शुरू करते हैं तो आपका एटीट्यूड सॉफ्ट हो जाता है और कन्फ्लिक्ट्स कम होने लगते हैं। इसका दुनिया पर असर इस तरह आया कि लोग कंप्लेंट्स की जगह अप्रिसिएशन की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी थैंक यू, ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्स जैसे एक्सप्रेशंस कॉमन हो गए हैं। अब ये हर जगह जेन्युइन हो जरूरी नहीं, लेकिन ट्रेंड ये जरूर बना कि लोग पॉजिटिविटी को पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं। अगर इस ट्रेंड को मैच्योर तरीके से यूज किया जाए तो फैमिलीज में मोहब्बत बढ़ती है, वर्क प्लेस में कोऑपरेशन इम्प्रूव हो सकता है और फ्रेंडशिप में एम्पैथी आ सकती है। दोस्तों हेल्थ और मेंटल वेलबींग पर द सीक्रेट का इम्पैक्ट दो तरह से देखने में आया है। एक तरफ किताब का मैसेज लोगों को होप देता है, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस

0: पॉजिटिव से मूड लिफ्ट होता है. दूसरी तरफ अगर कोई इंसान सीरियस बीमारी या डिप्रेशन में हो तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ट्रीट करने की कोशिश करें और मेडिकल हेल्प ना लें तो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है. इसलिए आप अपनी सोच को हेल्दी रखें, दुआ करें, होप रखें, ग्रेटिट्यूड जरूर करें, लेकिन साथ साथ प्रोफेशनल गाइडेंस, थेरेपी, डॉक्टर्स कंसल्टेशंस और प्रैक्टिकल रूटीन्स को भी इम्पोर्टेंस दें. भाई किस तरीके से हमें बताया गया, हमारे दीन में भी तो ऐसे ही है कि पहले अपना काम करो, फर्ज अदा करो और फिर अल्लाह से उम्मीद रखो. तो दुनिया में इस बैलेंस की बात बढ़ने लगी और सेल्फ हेल्प को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के साथ कनेक्ट किया गया. दोस्तों इस किताब का एक मेजर कल्चर इम्पैक्ट विजुअलाइजेशन का ट्रेंड है. आज आप एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और परफॉर्मर्स को देखें, वो अपनी परफॉर्मेंस से पहले सीन इमेजिन करते हैं. ये कंसेप्ट न्यू नहीं, लेकिन इस किताब से इसे हाउस होल्ड टर्म बना दिया. विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिकल बेनिफिट ये होता है कि आपका दिमाग अपने टारगेट को क्लियर देखता है और फिर स्टेप्स प्लान करना आसान हो जाते हैं. जब टारगेट होता है दोस्तों तो इंसान कंफ्यूज रहता है, लेकिन जब आप डिटेल्स में इमेजिन करते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी रूटीन कैसी है, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, तो दिमाग नेचुरली अलाइनमेंट ढूंढता है. इसलिए दुनिया में विजन बोर्ड्स और गोल जर्नलिंग का क्रेज आया. ऑफिशियल द सीक्रेट प्लेटफॉर्म पर भी लैंग्वेजेस और प्रोडक्ट्स का मेंशन इसी एक्सपेंशन को शो करता है. भाई मीडिया स्टडीज के एंगल से देखें तो द सीक्रेट ने स्पिरिचुअलिटी प्लस सेल्फ हेल्प को एंटरटेनमेंट फॉर्मेट में पॉपुलर किया. तो भाई कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के तौर पर डिस्क्राइब की गई और कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंटरव्यू के जरिए प्रेजेंट किया गया. जब कोई आइडिया सिनेमैटिक म्यूजिक, स्टोरीज और इंस्पायरिंग टोन में प्रेजेंट होता है तो ऑडियंस इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करती है. यही वजह है कि इस कंसेप्ट का स्प्रेड फास्ट हुआ. लेकिन यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है दोस्तों, ऑडियंस को ये समझना कि स्टोरी और इंस्पिरेशन के साथ रियलिटी चेक्स भी जरूरी है. भाई आप होप क्रिएट करें लेकिन फॉल्स गारंटीज ना दें. आप मोटिवेशन दें लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी मेंशन करें. इस बैलेंस से ऑडियंस को बेनिफिट मिलता है. एक और वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि द सीक्रेट ने लोगों को लैंग्वेज ऑफ ऑडियंस सिखाया. पहले लोग अक्सर बोलते थे मेरे पास नहीं, मुझे या मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वगैरह वगैरह. तो इस किताब के बाद काफ़ी लोगों ने अपनी लैंग्वेज चेंज करनी शुरू की. मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं चांसेस ढूंढ सकता हूँ. भाई ये सिर्फ वर्ड का चेंज नहीं होता, ये आइडेंटिटी का चेंज होता है. आप जब अपने आप को कैपेबल बोलते हैं तो आप ज़्यादा ट्राई करते चले जाते हैं, और जब आप ज़्यादा ट्राई करते हैं तो रिजल्ट्स का चांस बेहतर होते चले जाते हैं. दुनिया भर में कोचिंग कल्चर इसलिए ग्रो हुआ कि लोग चाहते थे कोई उन्हें गाइड करे कि नेगेटिव सेल्फ टॉक से कैसे निकलें. भाई द सीक्रेट ने इस डिमांड को पॉपुलर डिस्कोर्स में ला दिया. किताब की क्रिटिसिज्म का सबसे सेंसिटिव पॉइंट विक्टिम ब्लेमिंग का रिस्क है. कुछ क्रिटिक्स का कहना होता है कि अगर आप हर चीज को थॉट्स का नतीजा समझें तो फिर किसी मुश्किल सिचुएशन का शिकार इंसान को भी आप ब्लेम कर सकते हैं, जो अनफेयर है. भाई मैसेज ये हो कि आप अपनी सोच को बेहतर बनाएं, लेकिन साथ ही ये भी हो कि आप किसी की तकलीफ का मजाक ना बनाएं, ना उसे ब्लेम करें. कंपैशन और रियलिटी एक साथ चलती हैं दोस्तों. ये अप्रोच हमें काफी मैच्योर बनाती है और सेल्फ हेल्प को इंसानियत तक पहुंचाती है. दोस्तों आप जरा सोसाइटी लेवल पर देखें तो इस किताब ने चैरिटी और गिविंग की लैंग्वेज को भी एम्पलीफाई किया. जब आप ग्रेटिट्यूड और एबंडेंस का माइंडसेट रखते हैं तो आप शेयरिंग के लिए ज़्यादा ओपन होते हैं. ये ट्रेंड बहुत सी कम्युनिटीज़ में देखा गया. लोग इंस्पायर होकर वॉलंटियर वर्क, डोनेशंस और हेल्पिंग कल्चर को प्रोमोट करते हैं. जब आप खुद को कुछ करने के लिए लगा देते हैं तो आप अपने जहन को भी बेहतर बना रहे होते हैं. जब आप खुद को ब्लेस्ड समझते हैं तो आप ओपन हो जाते हैं. इसलिए इस किताब का इम्पैक्ट सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं, कभी कभी सोशल वॉर्म्थ भी बन जाता है. हाँ ये हर जगह परफेक्ट नहीं, लेकिन कन्वर्सेशंस का रुख व्हाट आई कैन गिव की तरफ जरूर जाता है और ये सोसाइटी के लिए हेल्दी साइन है. दोस्तों दुनिया में द सीक्रेट जैसी किताबों का इफेक्ट एक और जगह नजर आता है, वर्क प्लेस मोटिवेशन और एचआर कल्चर में, जो आज की जिंदगी का एक बहुत अहम और बड़ा हिस्सा है। कंपनीज टीम बिल्डिंग में ग्रेटिट्यूड सर्कल्स, एप्रिसिएशन ईमेल्स और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करती हैं। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि एम्प्लॉयज अपने आप को सीन फील करते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास होता है उनको। जब इंसान अप्रिशिएटेड होता है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनता चला जाता है और कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर बैलेंस जरूरी है, सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करके ओवरवर्क को जस्टिफाई ना किया जाए। भाई रियलिस्टिक वर्क प्लेस कल्चर वो होता है जहाँ पॉजिटिविटी के साथ बाउंड्रीज भी रिस्पेक्टेड हों, और इसलिए इस किताब का बेस्ट यूज ये है कि आप एनवायरमेंट को सपोर्ट बनाएं। चलिए दोस्तों अब इम्पैक्ट को डेली रूटीन की लैंग्वेज में समझते हैं। द सीक्रेट ने बहुत से लोगों को मॉर्निंग रूटीन की तरफ पुश किया। सुबह उठकर शुक्र अदा करना, अपनी दीनी चीजें पूरी करना, अपनी इबादत पूरी करना और गोल्स को पूरा करना, फिर काम ब्रीदिंग, फिर डे प्लानिंग वगैरह वगैरह। ये रूटीन से दुनिया भर में पॉपुलर हुए और सोशल मीडिया पर ये बातें आम होती चली गईं। इससे फायदा ये हुआ कि लोग रिएक्शन के मोड में दिन स्टार्ट नहीं करते बल्कि इंटेंशन के मोड में स्टार्ट करते हैं। आप इमेजिन करें, जब आप सुबह फोन की नोटिफिकेशन से दिन स्टार्ट करते हैं तो माइंड स्कैटर्ड होता है, लेकिन जब आप 2 मिनट शुक्र से स्टार्ट करते हैं तो जहन कितना सुकून पाता है। ये छोटी सी शिफ्ट पूरे दिन का टोन सेट कर देती है। इसीलिए इस किताब का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट लाइफस्टाइल डिजाइन के कंसेप्ट को भी मजबूत करता है। भाई ग्लोबल कल्चर में एक और चेंज ये आया कि लोग अपनी सोच को सीरियसली लेने लगे। पहले सोच को बच्चों की बात समझा जाता था, लेकिन इस किताब ने बड़ों को ये बात सिखाई। इसका फायदा यह है कि इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिट नहीं रखता बल्कि ग्रोथ तक ले जाता है। लेकिन यहाँ फिर एक रिस्पॉन्सिबल नोट ये कि भाई सोच के साथ डिसिप्लिन जरूरी है, सोच को रियलिस्टिक स्टेप्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, वरना फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए जब आप को कोई चीज इंस्पायर करती है तो साथ ही ये भी बताती है कि भाई सोच प्लान जो है उसको बेहतर बनाइए। छोटे गोल, छोटी डेडलाइन, छोटे एक्शंस वगैरह वगैरह। दुनिया में सेल्फ हेल्प का मैच्योरिटी लेवल तब बढ़ता है दोस्तों जब इंस्पिरेशन और प्लानिंग दोनों एक साथ चलती हैं।
1: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
0: दोस्तों ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है, और हाँ सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइन्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: ईद की रात होगी और भी ज्यादा स्पेशल, जहां होगा नॉन स्टॉप फन, म्यूजिक और सेलिब्रेशन, क्योंकि आ रहा है शो जश्न ईद।
4: ईद मुबारक।
5: और होगी आपकी रिक्वेस्ट, फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ, तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज, ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज।
0: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब। तो मिस मत कीजिए जश्ने ईद। ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
3: कहीं बिरयानी की खुशबू तो कहीं शीर खुरमे की मिठास, कहीं दोस्तों का हल्ला गुल्ला तो कहीं बुजुर्गों की दुआएं। ईद के रंग हजार हैं मगर हर रंग सजता है अपनों के साथ, इसलिए इस बार हमने सोचा क्यों ना ईद आपके घर चलकर मनाई जाए। पेश है खास शो घर घर ईद, आपकी फरमाइश, आपकी बातें और ईद के वो किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुना। हम बनेंगे आपकी खुशियों के साथी ताकि हर घर मुस्कुराए और हर दिल गुनगुनाए। तो हो जाइए तैयार, सुनिए घर घर ईद ए फॉर अमिता और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ईद के चारों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ एफएम 107 पर।
1: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
0: तो दोस्तों, द सीक्रेट का इम्पैक्ट रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के डिस्कशंस पर भी हुआ है, क्योंकि इसमें यूनिवर्स बेहतरीन चीज़ जो हमारे अंदर की एनर्जी है और फेथ जैसे लैंग्वेज आते हैं। राइटर के मुताबिक बुक अपने 3 स्टेप्स प्रोसेस करती है कि भाई वो क्या है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो इसको भी कोर्ट के कंटेक्स्ट में मेंशन किया गया है और इससे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड्स में अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन लेते हैं। कुछ लोग इसे प्योरली स्पिरिचुअल समझते हैं, कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल टूल समझते हैं और कुछ लोग इसे मार्केटिंग समझते हैं। भाई बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप इसे माइंडसेट एंड ग्रैटिट्यूड के लेंस से प्रेजेंट करें ताकि हर जानने वाले और समझने वाले को ये मैसेज मिल सके। यानी आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि भाई एक ही तरह से समझ लो चीज़ को, आप बस इतना कर सकते हैं कि अपनी सोच को आप क्लीन कर सकते हैं, अपने गोल्स को क्लियर कर सकते हैं और शुक्र के साथ एक्शन ले सकते हैं और ये यूनिवर्सल मैसेज बन जाता है। वर्ल्ड इम्पैक्ट का एक पहलू होप इकॉनमी भी है। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग होप बेस्ड कंटेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। द सीक्रेट ने होप को एक सिस्टम की शक्ल दी, विजुअलाइजेशंस, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस, इसलिए क्राइसिस के दिनों में भी लोग इस किताब को रिविजिट करते हैं। भाई ज़रा सोच के देखिए, जब कोई इंसान अपनी जॉब लूज़ कर दे या कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए तो उस वक्त दिमाग किस कदर नेगेटिव हो जाता है या नेगेटिविटी में चला जाता है। ऐसे मैसेज या ऐसे वक्त में या ऐसे हाल में अगर कोई फ्रेमवर्क मिल जाए जो कहे रुक जाओ, अपनी सोच को रीसेट करो, तो वो एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, एक दोस्त की तरह, एक पार्टनर की तरह। इसलिए इम्पैक्ट सिर्फ सक्सेस स्टोरीज का ही नहीं बल्कि इमोशनल कोपिंग का भी होता है। हाँ, ये रिप्लेसमेंट नहीं लेकिन सपोर्ट डेफिनेटली हो सकती है और इसी सपोर्ट की वजह से इस किताब का नाम बार बार वापस आता है। तो साहब, किताब का कंसेप्ट ये है कि कम्युनिटी सर्कल्स जो हैं उनको भी शेप किया जाए। दुनिया भर में बुक क्लब्स, ऑनलाइन ग्रुप्स और सेमिनार बनाए जाएं जहां लोग अपने एक्सप्रेशंस को शेयर कर सकें। इस शेयरिंग से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप होता है। जब आप दूसरे लोगों को स्ट्रगल और प्रोग्रेस शेयर करते हुए देखते हैं या सुनते हैं तो आपको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है दोस्तों, इसीलिए द सीक्रेट का इम्पैक्ट सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं सोशल भी है दोस्तों। लेकिन यहाँ कॉजन की बात है, कॉजन लेना ज़रूरी है या कॉजन आ जाता है कि हर स्टोरी को एब्सोल्यूट ट्रुथ ना समझा जाए। पढ़ने वालों को ये मैसेज मिलना चाहिए कि हर इंसान की जर्नी डिफरेंट होती है। आप अपनी स्पीड से चलें, अपनी कंडीशंस को समझें, यानी हर चीज़ को समझकर, हर चीज़ को समझते हुए कदम उठाएं। इस मैच्योरिटी से कम्युनिटी सपोर्ट हेल्दी रहता है। भाई मनी माइंडसेट की अगर बात करें तो इसके इंपैक्ट को भी छुआ है इस किताब ने, क्योंकि इस किताब में प्रॉस्पेरिटी पर भी फोकस किया गया है। ऑफिशियल पब्लिशर पेजेस और समरीज ये बताती हैं कि बुक पैसों से, हेल्थ से, रिलेशनशिप से और हैप्पीनेस पर अप्लाई करने की बात करती है। इससे दुनिया में फाइनेंशियल मोटिवेशन कंटेंट का बूम आता है। लोग बजटिंग के साथ साथ पैसों को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना सीखते हैं और इन मुख्तलिफ चीज़ों पर बात भी करने लगते हैं। कई लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनके अंदर मैं पैसा डिज़र्व नहीं करता, ये पैसा गंदी चीज़ है जैसी बिलीव्स बैठी हुई हैं। जब आप बिलीव्स को चैलेंज करते हैं तो आप अर्निंग और सेविंग हैबिट्स को भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ दोबारा बैलेंस, यानी कि सिर्फ बिलीव से ही पैसा नहीं आता दोस्तों, स्किल से, एफर्ट से, मार्केट नॉलेज से और प्लानिंग भी चाहिए होती है। तो बेस्ट मैसेज यही है कि माइंड सेट प्लस स्किल सेट, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ लोग द सीक्रेट बुक को इसलिए पसंद करते हैं कि ये उन्हें होप और कंट्रोल देती है, और कुछ लोग इसलिए डिसलाइक करते हैं कि ये लाइफ को ओवर सिंप्लीफाई करती है। भाई इस बहस का पॉजिटिव आउटकम ये है कि ऑडियंस क्रिटिकल थिंकिंग सीखती है, है ना। तो आज अगर मैं बात करूं इस किताब के हवाले से तो ये कहा जा सकता है कि हर बुक एक लेंस होती है दोस्तों। आप डिसाइड करें कि आपको क्या यूजफुल लगता है, है ना। भाई हाईलाइट ये किया गया है कि साइंटिफिक क्लेम्स पर डिबेट करी जाए, इसलिए आप सबको मैं ये कहूँगा कि टेक अवेज जो हैं उनको चूज कीजिए। ग्रैटिट्यूड की हैबिट्स हैं, गोल्स की क्लियरिटी हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक का कंट्रोल है और डेली एक्शंस वगैरह। अगर सिर्फ चार चीज़ों पर भी काम किया जाए तो लाइफ बेहतर हो सकती है, आप बेहतर फील कर सकते हैं भाई बिना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के। दोस्तों दुनिया में कंटेंट क्रिएशन पर भी द सीक्रेट का इंपैक्ट आया है। आज आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर देखें तो यहाँ पर कितनी टिप्स देखने के लिए मिलती हैं। अफर्मेशन ऑडियोज देखें, विजन बोर्ड ट्यूटोरियल्स देखें, ये सब कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। और इस ट्रेंड का बेनिफिट ये है कि पॉजिटिविटी शेयर होती है, लोग इंस्पायर होते हैं। लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि कंटेंट ख़राब भी हो जाता है, कभी कभार आपको दूसरी तरफ भी ले जाता है, सिर्फ कोट्स या कहना चाहिए रियल वर्क मिसिंग होना ही इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती, बहकना भी इसका एक मसला होता है। इसलिए एडवांटेज ये है कि आप डेप्थ तक जा सकते हैं और समझ सकते हैं, और ये भी कि हर जगह प्रोसेस समझा जा सकता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है, ग्रेटिट्यूड का टाइम क्या है, ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिकल स्टेप क्या है, ये सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, सीखी जा सकती हैं कि उनको फोकस किया जाए जो चीज़ परफेक्ट हो लाइफ के अंदर। पर ये भी नहीं कि सिर्फ इन पे ही हम डिपेंड करें, बल्कि बेटर नेक्स्ट स्टेप पर हम बिलीव करें, और ये रियलिस्टिक पॉजिटिविटी है। तो दोस्तों अब इम्पैक्ट ऑन यूथ की बात करते हैं, जो युवा पीढ़ी पे, जवान पीढ़ी पे जो इस किताब को पढ़ते हैं उनका क्या असर पड़ा है। यंग जनरेशन को इस बुक का आइडिया इसलिए अपील करता है कि ये उन्हें ख्वाब और कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन यूथ के लिए गाइडेंस ज़रूरी भी होती है। भाई सिर्फ विजुअल्स ही ना करें या विजुअलाइज ही ना करें, स्किल बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पॉजिटिविटी के साथ स्टडी प्लान भी हो, अगर आप जॉब सीकर हैं तो अफर्मेशंस के साथ सीवी इंप्रूवमेंट हो, नेटवर्किंग हो और इंटरव्यू प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज का रूटीन भी हो। इस तरह इस किताब का मैसेज युवा पीढ़ी को कंफ्यूज नहीं करता बल्कि मोटिवेट करता है। ग्लोबल इंपैक्ट का बेस्ट वर्जन वही है जहां सेल्फ हेल्प को प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कनेक्ट किया जाए, और ये एक ब्रिज का काम करता है दो लोगों के बीच में, किताब और उसके पढ़ने वाले के दरमियान। और किताब का इम्पैक्ट सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस पर भी हुआ है। लोग अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखे हैं। अब आप सोचें, दिन भर में हम कितनी बार अपने आप को नेगेटिव लेबल कर देते हैं, मैं स्लो हूँ, मैं लकी हूँ, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, वगैरह वगैरह। भाई जब आप इस पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को रीराइट कर सकते हैं। मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता हूँ। दोस्तों ये आइडेंटिटी शिफ्ट दुनिया भर में थेरेपी और कोचिंग के थ्रू भी डिस्कस होती है। द सीक्रेट ने इस डिस्कशन को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज दी, यानी आप अपने माइंड के नरेटर को चेंज कर सकते हैं, और जब नरेटर चेंज होता है तो इमोशंस चेंज होते हैं, और इमोशंस चेंज होते हैं तो डिसीजंस चेंज होते हैं, और ये चेन इफेक्ट वर्ल्ड इम्पैक्ट का हिडन पार्ट है। दोस्तों एक और पहलू ग्रेटिट्यूड कल्चर का भी है। ऑफिशियल पेजेस पर भी द सीक्रेट की इंटेंशन यही बताई जाती है कि जॉय वेलबींग अबंडेंस की तरफ गाइड करें, यानी ग्रेटिट्यूड की पावर इसलिए स्ट्रांग होती है कि यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। जब आप शुक्र करते हैं आपका दिमाग स्कार्सिटी से निकल कर अबंडेंस की तरफ जाता है। प्रैक्टिकल लेवल पर आप छोटी चीजों का शुक्र करते हैं, सेहत, फैमिली, जॉब, सेफ्टी, रूफ, फूड, हर एक चीज। इससे माइंड काम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। भाई आज दुनिया में ग्रेटिट्यूड जर्नल्स का ट्रेंड इसलिए है कि लोग अपनी अटेंशन को दुनिया भर में ट्रेन करना चाहते हैं, और इसी की वजह से ये बुक द सीक्रेट का लॉन्ग टर्म कल्चरल फुटप्रिंट है। अब यहाँ से हम थोड़ा हाउ सोसाइटी कंज्यूम होप पर बात कर लेते हैं। जब कोई बुक सिंपल प्रॉमिस करती है दोस्तों, तो लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए किताब को कभी कभी तो टू गुड टू बी ट्रू भी कहा गया है। लेकिन अगर आप मैसेज को मैच्योर लेंस से देखें तो ये प्रॉमिस से ज़्यादा प्रैक्टिस बन सकता है ना। अब हम अगर अपनी और आपकी ही बात करें तो आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। आप अपनी इंटेंशन, एफर्ट्स, हैबिट्स कंट्रोल करते हैं। रिजल्ट अल्लाह की मर्जी, सर्कमस्टांसेस और टाइम पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए बेस्ट इंटरप्रिटेशन ये है, पॉजिटिव माइंडसेट से आप अपना बेस्ट वर्जन एक्टिवेट करते हैं, और जब आप बेस्ट वर्जन में होते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा नोटिस करते हैं और बेहतर डिसीजंस लेते हैं, और ये रियलिस्टिक सोशल मैसेज बन जाता है। दुनिया में इस किताब ने एक और चेंज ये किया है कि लोग कंप्लेंट डिटॉक्स की बात करने लगे हैं, यानी दिन भर में कितनी कंप्लेंट्स हम बोलते हैं और वो हमारे मूड को कितना डाउन करती हैं। जब आप कंप्लेंट कम करते हैं आपका मूड नेचुरली अपलिफ्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स डिस्कस ना करें, मतलब ये है कि प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए सॉल्यूशंस भी ढूंढें। भाई एक प्रैक्टिस ये है कि आप ये शुरू करें कि मैं आज एक दिन में 10 कंप्लेंट्स काउंट करूंगा और उनको 10 सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करूंगा। ये एक्सरसाइज पढ़ने वालों को एम्पावर करती है। भाई इस किताब का ग्लोबल इम्पैक्ट का प्रैक्टिकल फेस ये है कि लैंग्वेज और फोकस को रीट्रेन करा जाए। आप अपने घर, ऑफिस, दोस्तों के सर्किल में भी इस अप्रोच से पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। इस बुक का इम्पैक्ट फेथ इन पॉसिबिलिटीज के कल्चर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आज दुनिया में इनोवेशन और स्टार्टअप्स का जमाना है दोस्तों, पॉसिबिलिटी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाउंडर पहले ही कह दे कि नहीं होगा तो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं होता। इस किताब के जरिए पॉसिबिलिटी को इमोशनली अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन रियल दुनिया में पॉसिबिलिटी को स्ट्रक्चर चाहिए। रिसर्च है, प्लानिंग है, टेस्टिंग है, फेलियर्स हैं, लर्निंग है। तो इसीलिए द सीक्रेट का बेस्ट यूज एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स के लिए ये हो सकता है कि वो अपनी फेयर बेस्ड थिंकिंग को रिड्यूस करें और एक्शन बेस्ड थिंकिंग बढ़ाएं। भाई आप अपने जहन को Why not का सवाल सिखाइए, फिर how का प्लान बनाइए। ये कॉम्बिनेशन वर्ल्ड इम्पैक्ट को यूजफुल बनाता है, वरना सिर्फ ख्वाब ही ख्वाब रह जाते हैं। तो दोस्तों आप चलिए लॉन्ग रनिंग बेस्ट सेलर के हवाले से बात करें या इसके वाली बात करें तो इम्पैक्ट के तौर पर देखें। पब्लिशर सोर्सेज और ऑथर के ऑफिशियल पेजेस ये शो करते हैं कि द सीक्रेट लॉन्ग लास्टिंग बेस्ट सेलर और ग्लोबल इम्पैक्ट का पार्ट बन चुकी है। ऐसी बुक्स का इम्पैक्ट इसलिए ड्यूरेबल होता है कि हर जनरेशन को एक सिंपल मैसेज दे देती है। जिस तरह कुछ क्लासिक बुक्स हर दौर में रेलिवेंट रहती हैं, इसी तरह ये बुक भी या इसका मैसेज भी लोग अपने फेस के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं. कोई इसे करियर के लिए यूज करता है, कोई हीलिंग के लिए, कोई रिलेशनशिप के लिए वगैरह वगैरह. और ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसका राज है. और जब कोई मैसेज फ्लेक्सिबल हो तो वो कल्चर में घुल मिल जाता है और फ्रेजेस, हैबिट्स और रिचुअल्स की शक्ल ले लेता है. दोस्तों, इस प्रोग्राम के एंड की तरफ आते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि द सीक्रेट का वर्ल्ड इम्पैक्ट तब सबसे हेल्दी होता है जब हम इसे टूल बॉक्स समझें, फाइनल ट्रूथ नहीं. टूल बॉक्स में से आपको जो टूल सूट करता है आप यूज करिए. मिसाल के तौर पर ग्रेजुएटिट्यूड का टूल है, विजुअलाइजेशन का टूल है, सेल्फ टॉक का टूल है और वहीं क्लियरिटी ऑफ गोल्स का टूल है. और साथ में आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करें, मेहनत, अल्लाह सुबहाना व ताला से दुआ, सब्र और कंसिस्टेंसी दोस्तों, क्योंकि लाइफ एक रात में चेंज नहीं होती. लाइफ छोटी छोटी चेंजेस से चेंज होती है और जब आप छोटी तब्दीली को सेलिब्रेट करते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है. दोस्तों, अगर आप चाहें तो आज से इस किताब का एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, जो दुनिया भर के लोग यूज़

ये चीज बहुत सिंपल हो सकती है आज वक्त पर उठ जाना घर का सुकून किसी दोस्त को मैसेज सेहत का बेहतर फील करना तिलावत करना इबादत करना काम का एक टास्क कंप्लीट करना वगैरह वगैरह इस लिस्ट का मकसद ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स को डिनाई करें मकसद ये है कि आप अपनी अटेंशन को बैलेंस करें क्योंकि अटेंशन जिस तरफ जाती हैं एनर्जी भी उधर जाती है जब आप शुक्र को हैबिट बना लेते हैं आपका माइंड रेजिलियंस बिल्ड करता है और रेजिलियंस ही वो चीज है जो दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान को अलग बनाती है ये छोटा सा प्रिंसिपल आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देगा और जब ग्रोथ आती है दोस्तों तब जिंदगी में होप नेचुरली बढ़ती है और होप ही वो रोशनी है जो अंधेरे से बाहर निकालती है या बाहर का रास्ता दिखाती है तो दोस्तों आज हमने इस किताब के जरिए ये देखा कि किस तरीके से दुनिया भर पे इसका इम्पैक्ट पड़ा जो बैलेंस्ड है रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है पूरे तरीके से इस किताब ने दुनिया को एक सिंपल मैसेज दिया कि आपकी सोच आपका फोकस और आपका शुक्र आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेप करता है साथ ही इस पर डिबेट भी रही और ये भी जरूरी है कि हम ब्लाइंड प्रोमिसेस के बजाय मैच्योर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें अगर आप इस प्रोग्राम से सिर्फ एक चीज लेकर जा रहे हैं तो वो ये हो कि आज से अपनी लैंग्वेज और अपनी अटेंशन को थोड़ा सा बेहतर कर दीजिए शुक्र क्लियरिटी और छोटे एक्शन बस ये तीन चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ महसूस हुआ होगा और अपनी लाइफ में एक नया स्टेप लेने में ये प्रोग्राम आपको मदद करेगा अल्लाह सुभान व तआला आपको खुश रखे अपनी हिफाजत में रखे और आपके आज के दिन को और मजीद जिंदगी को और भी बेहतर बनाए तो दोस्तों इसी के साथ सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे

0: दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो है ये पल्स ऑफ कुरान। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे होंगे। आज पल्स ऑफ कुरान में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूरह अल इंशिकाक की आयत नंबर 6, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इंसान, बेशक तू अपने रब की तरफ से मुसलसल मेहनत और मुशक्कत के साथ बढ़ रहा है, फिर तू उससे जा मिलेगा। इस आयत का मरकजी मौजू इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी जद्दोजहद, दुनिया की आजमाइश और आखिरकार अल्लाह ताला से मुलाकात है। कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ अंदाज से मुखातिब फरमाया है। कहीं या अय्युहल लजीना आमनु कहकर ईमान वालों को पुकारा, कहीं या बनी आदम कहकर औलादे आदम को याद दिलाया, और यहाँ या अय्युहल इंसानों कहकर पूरी इंसानियत से खिताब फरमाया। इसमें हर इंसान शामिल है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, नेक हो या गुनाहगार, ताकतवर हो या कमजोर। ये खिताब हर उस शख्स के लिए है जो इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है। इस एक जुमले में अल्लाह ताला ने इंसान की हकीकत, उसकी हैसियत और उसकी जिम्मेदारी को याद दिलाया है। इंसान दुनिया में खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, कभी अपनी दौलत पर फख्र करता है, कभी अपनी खूबसूरती पर, कभी अपने इल्म पर और कभी ताकत पर। लेकिन कुरान इंसान को उसकी असल हकीकत की तरफ वापस बुलाता है। अल्लाह ताला इंसान को ये पुकार के कहते हैं, एहसास दिलाते हैं कि तुम एक मखलूक हो, तुम्हारा एक रब है और तुम्हें एक दिन उसके सामने हाजिर होना है। ये खिताब मोहब्बत भी है और तंबीह भी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आवाज देकर अहम बात समझाती है, इसी तरह अल्लाह ताला इंसान को मुखातिब करके उसे जगा रहे हैं। इंसान दुनिया की मसरूफियत में इतना खो जाता है कि वो अपने मकसद जिंदगी को भूल जाता है। सुबह से रात तक वो रिज्क, तालीम, नौकरी, कारोबार, ताल्लुकात, ख्वाहिशात और दुनियावी कामयाबियों के पीछे भागता रहता है, मगर ये नहीं सोचता कि आखिर ये सब क्यों है, जिंदगी का अंजाम क्या है, मौत के बाद क्या होगा। यह आयत इंसान को झंझोड़ती है कि ए इंसान, जरा रुक कर सोच, तू कौन है, कहां से आया है और कहां वापस जाना है। कुरान का अंदाज ये नहीं कि सिर्फ हुक्म दे, बल्कि पहले इंसान के दिल को मुतवज्जो करता है। या अय्युहल इंसान, इसमें बहुत अपनाइयत है। ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह ताला अपने बंदे से बराहे रास्त बात कर रहे हो। यह एहसास इंसान के दिल में आजजी पैदा करता है। आज का इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है। ऊंची इमारतें, जदीद मशीनें, मस्नूई जहानत और तेज रफ्तार सफर, इंसान को लगता है कि वो बहुत ताकतवर हो गया है, मगर हकीकत यह है कि इंसान आज भी उतना ही कमजोर है जितना पहले था। एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को रोक सकता है। एक बीमारी इंसान को बिस्तर पे ला सकती है। एक हादसा सारी ताकत खत्म कर सकता है। एक लम्हे में जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह ताला इंसान को याद दिला रहे हैं कि अपनी हकीकत ना भूलो। ये खिताब इसलिए भी अहम है क्योंकि इंसान अक्सर दूसरों की बात सुन तो लेता है मगर अल्लाह की बात सुनने से गाफिल रहता है। जब कुरान पढ़ा जाता है तो बहुत लोग उसे सिर्फ तिलावत समझते हैं मगर हकीकत में ये अल्लाह का पैगाम है। जब अल्लाह फरमाते हैं ऐ इंसान, तो गोया वो हर शख्स को अलग अलग पुकार रहे हैं। सोचिए, अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत आपको नाम लेकर बुलाए तो आप फौरन मुतवज्जो हो जाते हैं। तो फिर जब कायनात का खालिक इंसान को मुखातिब करे तो दिल में कैसा एहसास होना चाहिए। यही एहसास ईमान को मजबूत करता है। इस खिताब में इंसान की इज्जत भी पोशीदा है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार मखलूकात पर फजीलत दी, उसे अकल दी, सोच दी, एहसास दिए, जबान दी, इख्तियार दिया। फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं मगर इंसान को ये इख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो अल्लाह की अताअत करे और चाहे तो नाफरमानी करे। यही इख्तियार इंसान को आजमाइश में डालता है। इंसान की जिंदगी दरअसल एक इम्तिहान है, इसीलिए अल्लाह ताला पहले इंसान को मुतवज्जो करते हैं ताकि वो आने वाली बात को संजीदगी से समझे। आज हम देखते हैं कि लोग अपनी शनाख्त मुख्तलिफ चीजों में तलाश करते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई अपनी कौमियत पे फख्र करता है, कोई अपनी शोहरत पर। लेकिन कुरान सबसे पहले इंसान को उसकी असल पहचान देता है, इंसान। ये पहचान इंसान को आजजी सिखाती है। हम सब इंसान हैं, हमारी जरूरतें एक जैसी हैं, हमारी कमजोरियां एक जैसी हैं और हमारा अंजाम भी एक जैसा है। हमें भूख लगती है, हमें नींद आती है, हम बीमार होते हैं, हम गम महसूस करते हैं और एक दिन हम सब ने इस दुनिया से जाना है। इस हकीकत को याद रखने वाला इंसान तकब्बुर से बच जाता है। इस खिताब में एक और खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाहों के बावजूद उसे अपनी रहमत से दूर नहीं किया। इंसान बार बार गलतियां करता है फिर भी अल्लाह उसे पुकार रहे हैं, गोया अभी भी वापसी का दरवाजा खुला है, अभी भी इंसान संभल सकता है, अभी भी तौबा कर सकता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। बाज लोग अपने गुनाहों की वजह से मायूस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा मगर कुरान का अंदाज उम्मीद देता है। अल्लाह ताला इंसान को रद्द नहीं करते बल्कि उसे समझाते हैं, बुलाते हैं और सीधा रास्ता दिखाते हैं। या अय्युहल इंसान में यही पैगाम है कि इंसान अपने रब की तरफ वापस आ जाओ। ये खिताब हमें भी सिखाता है कि इंसान को दूसरों के साथ भी एहतराम से बात करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो सबसे बुलंद और अजीम है वो भी इंसान को हिकमत और मोहब्बत से मुखातिब करते हैं, तो हमें भी अपने घर वालों, बच्चों, दोस्तों और दूसरों से नरम अंदाज में बात करनी चाहिए। ये समझना जरूरी है कि इस आयत का आगाज ही इंसान को बेदार करने के लिए काफी है। अगर इंसान सिर्फ इतना सोच ले कि मेरा रब मुझे पुकार रहा है तो उसके दिल में तब्दीली आ सकती है। ये दुनिया आरजी है मगर अल्लाह का पैगाम हमेशा के लिए है। आज भी कुरान इंसान को वही

ही आवाज दे रहा है। ए इंसान, क्या हम इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं? आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक तुम मुसलसल मेहनत और मुशक्कत कर रहा है। ये अल्फाज इंसान की पूरी जिंदगी की हकीकत बयान करते हैं। दुनिया में आने के बाद इंसान की जिंदगी आराम का नाम नहीं, बल्कि मुसलसल कोशिश, जद्दोजहद, मेहनत, हकन और आजमाइश का नाम है। हर इंसान किसी ना किसी बोझ, फिक्र, मकसद या जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजार रहा है। कादिख अरबी जबान का ऐसा लफ्ज है जिसमें सिर्फ आम मेहनत नहीं, बल्कि थका देने वाली मुसलसल कोशिश का मफहूम पाया जाता है। ऐसी मेहनत जिसमें इंसान अपनी ताकत लगा देता है। कभी जिस्मानी थकन होती है, कभी जहनी दबाव, कभी दिल के गम और कभी रूहानी आजमाइश। अल्लाह ताला इंसान को ये हकीकत बता रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी आसानी के लिए नहीं बनाई गई। यहाँ हर शख्स को किसी ना किसी शक्ल में मेहनत करनी पड़ती है। एक बच्चा पैदा होता है तो रोना शुरू कर देता है, फिर बचपन में सीखने की मेहनत, जवानी में मुस्तकबिल की फिक्र, तालीम, नौकरी, शादी, घर, बच्चों की परवरिश, रिस्क की तलाश, बीमारियों का सामना, बुढ़ापा। जिंदगी का हर मरहला जद्दोजहद से भरा होता है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बेफिक्र हो। बाज लोग जाहिरी तौर पर बहुत खुशहाल नजर आते हैं, मगर उनके दिल में भी कई परेशानियां होती हैं। कोई दौलत के बावजूद सुकून नहीं पाता, कोई रिश्तों की वजह से परेशान है, कोई बीमारी से, कोई तन्हाई से, कोई मुस्तकबिल के खौफ से। इंसान की जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसे आजमाइश में रखता है। यही दुनिया की हकीकत है। कुरान इंसान को उस हकीकत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करता है ताकि वो मुश्किलात आने पर टूट ना जाए। आज बहुत से लोग इसलिए मायूस हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जिंदगी में हमेशा आसानी होनी चाहिए। जब मुश्किलात आती हैं तो शिकवा करने लगते हैं, अल्लाह से नाराज हो जाते हैं या नाउमीद हो जाते हैं। मगर कुरान पहले ही बता देता है कि ए इंसान, तू मेहनत और मुशक्कत के सफर में है। यानी अगर जिंदगी में मुश्किलात आ रही हैं तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं, ये तो दुनिया की फितरत है। अंबिया अलैहि सलाम की जिंदगियां देखें तो वो भी आजमाइशों से भरी हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। ताइफ की तकलीफ, मक्का की मुखालफत, गुर्बत, भूख, अपने प्यारों की जुदाई, और ये सब इस बात की दलील है कि दुनिया आराम की जगह नहीं बल्कि इम्तिहान की जगह है। इसी तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में आजमाए गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल देखी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन का सामना किया। अगर अल्लाह के महबूब बंदे आजमाइशों से गुजरे तो आम इंसान कैसे बच सकते हैं? असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान को मुश्किलात का सामना ही ना करना पड़े, बल्कि असल कामयाबी ये है कि इंसान मुश्किलात में अपना ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा कायम रखे। जिंदगी की जद्दोजहद सिर्फ दुनियावी मामलात तक महदूद नहीं, बल्कि रूहानी जद्दोजहद भी बहुत बड़ी हकीकत है। नफ्स इंसान को गुनाहों की तरफ बुलाता है, शैतान बहकाता है, माहौल असरअंदाज होता है। ऐसे में नमाज कायम रखना, हलाल रिस्क कमाना, सच बोलना, गुस्सा काबू करना, वालदेन के साथ अच्छा सलूक करना, हराम चीजों से बचना, ये सब भी एक जद्दोजहद है। कभी इंसान को अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जाकर अल्लाह की रजा को इख्तियार करना पड़ता है, और यही असल मेहनत है।
مثلا فجر کی نماز کے لیے

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

0: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपके आरजे महवेश खान। शो लेकर आ गए हैं एक दफा फिर से आपके लिए इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, और उम्मीद करते हैं कि आज भी ये आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, मजे में होंगे, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज इस्लामिक मॉडर्न लाइफ में

मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे अपनी पर्सनल बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। अक्सर ऐसा ये होता है कि कुछ सोशल प्रेशर की वजह से या कुछ और ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हम इन बाउंड्रीज को इग्नोर कर देते हैं या हमें लगता है कि इतनी जरूरी चीज नहीं है। लेकिन आज हम आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव बताएंगे कि क्यों आपकी जो पर्सनल बाउंड्रीज है वो मैटर करती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो पर्सनल बाउंड्रीज हैं ये होती क्या है। इंसानी जिंदगी ताल्लुकात से बनती है। हम घर में वालदैन, बहन भाइयों, शरीक कोई हयात और बच्चों के साथ जुड़े होते हैं। बाहर दोस्त, पड़ोसी, साथी, कारकुन और माशरे के दीगर अफराद से हमारा वास्ता रहता है। इन ताल्लुकात को खूबसूरत, मुतवाजन और बावकार बनाने के लिए एक चीज बहुत ही जरूरी है और वो है आपकी जाती हुदूद यानी पर्सनल बाउंड्री। सादा लफ्जों में बाउंड्रीज का मतलब है अपनी जिंदगी, वक्त, जज्बात, तवनाई और हुकूक के गिर्द एक मुनासिब दायरा कायम करना, ताकि दूसरों के साथ मोहब्बत, एहतराम और तवाजुन के साथ जिया जा सके। कि दीवार खड़ी करना नहीं बल्कि अपने लिए एक सेहतमंद हद मुकर्रर करना है। बाज लोग समझते हैं कि बाउंड्रीज बनाना खुदगर्जी है या दूसरों से दूरी इख्तियार करना है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। ज़ाती हुदूद दरअसल हमारे ताल्लुकात को खराब नहीं बल्कि बेहतर बनाती है। ये इंसान को सिखाती है कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं, कहाँ खामोश रहना है और कहाँ अपनी बात रखनी है। आज के दौर में बहुत से लोग जज्बाती दबाव, जहनी थकन और ताल्लुकात के बोझ का शिकार हैं। अक्सर वजह ये नहीं होती कि उनके पास मसाइल बहुत ज्यादा हैं, बल्कि वजह ये होती है कि उनके पास अपनी हुदूद वाज़े नहीं होती। हर एक को खुश करने की कोशिश, हर मुतालबा मान लेना, हर बात बर्दाश्त करते रहना, अपनी राय ना देना, ये सब इंसान को अंदर से थका देते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स हर वक्त आपसे वक्त मांगता है, आपके आराम की परवाह नहीं करता, कोई बार बार ऐसी बातें कहता है जो दिल को चुभती हैं, कोई आपकी निजी जिंदगी में बेजा मुदाखलत करता है। अगर इंसान इन मामलात में हद मुकर्रर ना करे तो आहिस्ता आहिस्ता दिल बोझल हो जाता है। यही वजह है कि बाउंड्रीज सिर्फ एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक इंसानी जरूरत है। बाउंड्री सिर्फ एक चीज का नाम नहीं, इसकी कई शक्लें हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल स्पेस की। इसका मतलब है कि अपने दिल और जज्बात की हिफाजत। हर शख्स को हक है कि वो अपनी इमोशनल स्पेस महफूज रखे। हर किसी को अपनी कमजोरियां बताना जरूरी नहीं। हर शख्स को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारी सेल्फ वर्थ को नुकसान पहुंचाए। फिर आ जाते हैं कि हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं। आपका वक्त भी कीमती है। बास औकात मैं भी मसरूफ हूं कहना भी एक हेल्दी बाउंड्री है। इस्लाम ने जिस्मानी हुदूद का तसव्वुर बहुत वाज़े रखा है। प्राइवेसी, पर्दा, पर्सनल स्पेस, ये सब बाउंड्रीज का हिस्सा है। हर किसी की राय मानना जरूरी नहीं। दूसरों के ख्यालात सुनना और अपनी सोच रखना अलग बातें हैं। अपनी सोच और उसूलों की हिफाजत भी बाउंड्री है। बाज़ लोग समझते हैं बाउंड्रीज एक मगरबी तसव्वुर है, हालांकि इस्लाम ने तो सदियों पहले इसकी बुनियाद रख दी थी। इस्लाम ने हमें हुकूक और हुदूद दोनों सिखाई हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इज्जत दी और बेशक हमने औलाद आदम को इज्जत बख्शी। ये अल्लाह ताला का फरमान है सूरह इसरा में। जब अल्लाह ने इंसान को डिग्निटी दी

0: نارملائز نہیں کرتا. یہی اسلامی وقار ہے. آپ کا دل امانت ہے, آپ کا سکون امانت ہے, آپ کی عزت امانت ہے. ان کی حفاظت کرنا ایک اسپرچل رسپانسبلٹی بھی ہے. یہ صرف سائیکولوجیکل ایڈوائس نہیں, دینی شعور بھی ہے. اسلام نے باؤنڈریز کو الگ عنوان سے نہیں بلکہ پورے طرز زندگی میں سمو دیا ہے. حقوق میں, ادب میں, وقار میں, رحمت میں, حدود میں اور انصاف میں. اس لیے پرسنل باؤنڈریز کوئی امپورٹڈ کانسیپٹ نہیں, یہ اسلامی زندگی کے مزاج میں شامل ہے. اور جب مسلمان اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ جیتا ہے تو وہ صرف خود کو نہیں بچاتا, اپنے تعلقات کو بھی بہتر بناتا ہے. بظاہر لوگوں کو خوش رکھنا بہت اچھی بات ہے. نرم مزاج ہونا, دوسروں کا خیال رکھنا, مدد کرنا, رشتے نبھانا, یہ سب خوبصورت صفات ہیں. اسلام بھی حسن اخلاق, اثار اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. لیکن ایک جگہ اگر یہی خوبی حد سے زیادہ بڑھ جائے اور انسان ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ذات, سکون, ضروریات اور عزت قربان کرنے لگے تو یہی چیز پیپل پلیزنگ بن جاتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایموشنل برڈن بن سکتی ہے. پیپل پلیزنگ کیا ہے؟ پیپل پلیزنگ کا مطلب ہے کہ ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کی, راضی رکھنے کی کوشش کرنا, چاہے اس کے لیے خود کو نظر انداز کرنا پڑے, ہر بات پر ہاں کہنا, انکار سے ڈرنا, دوسروں کے اپروول پر جینا, کانفلکٹ سے بچنے کے لیے خاموش رہنا, اپنی ضروریات دبانا, یہ کائنڈنس نہیں, اکثر فیئر بیسڈ بیہیویئر ہوتا ہے. باہر سے یہ نرمی لگتی ہے, اندر سے یہ ایگزاسٹ کرتا ہے. لوگ پیپل پلیزنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. کبھی ریجیکشن کا خوف, کبھی ناراضگی کا ڈر, کبھی کوئی بچپن کا ایسی کوئی کنڈیشننگ, کبھی لو سیلف ورتھ, کبھی احساس کہ اگر سب خوش نہ ہوئے تو میں اچھا انسان نہیں, اور کبھی صرف عادت. بعض لوگ بچپن سے سنتے ہیں سب کو خوش رکھو, انکار مت کرو, اپنے بارے میں بعد میں سوچنا, خاموش رہنا ادب ہے, اور آہستہ آہستہ وہ اپنی خواہش, اپنی آواز, اپنی باؤنڈریز بھول جاتے ہیں. ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کی قیمت اکثر بہت مہنگی ہوتی ہے. آپ کو جذباتی تھکن ہو سکتی ہے. پیپل پلیزنگ انسان کو ایموشنلی ڈرین کر دیتی ہے. ہر وقت یہ سوچنا کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے, کسی کو برا نہ لگ جائے, میں کیسے سب مینج کروں, یہ مسلسل ذہنی دباؤ ہے. باہر سے مسکراہٹ, اندر تھکن, بہت کامن ہے. جب انسان ہمیشہ دوسروں کی مرضی کے مطابق جیتا ہے, ایک وقت آتا ہے جب اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ خود کیا چاہتا ہے. اسے اپنی پسند تک معلوم نہیں رہتی, کیونکہ ساری زندگی تو اس نے خود کو پرائیورٹی ہی نہیں دی, ہمیشہ دوسروں کو پرائیورٹی دی ہے. یہ سیلف لاس ہے اور یہ بہت تکلیف دہ ہے. جو شخص ہر وقت سیکریفائز کرتا رہے, اکثر اندر کہیں غصہ جمع ہونے لگتا ہے, میں ہی کیوں, سب مجھ سے ہی کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کسی نے میرے بارے میں بھی سوچا, اور پھر دل میں ریسینٹمنٹ آتا ہے. باہر محبت, اندر تھکن اور ناراضگی, یہ ہیلدی نہیں. سخت حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ ایکسیسو نائسنس ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. وہ جان لیتے ہیں کہ انکار نہیں کرے گا, یہ ہر بار مان جائے گا, یہ گلٹ میں آ جائے گا, اور پھر استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ریلیشن شپ نہیں, امبیلنس بن جاتا ہے. ہر بات خود کو اگنور کرنا ایک پیغام دیتا ہے کہ میں اہم نہیں, اور یہ آہستہ آہستہ سیلف ورتھ کو کمزور کرتا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اسلام دوسروں کے حقوق سکھاتا ہے, مگر انسان کو अप्रूवल सीकिंग गुलामी नहीं सिखाता। मोमिन का मकसद लोगों को हर हाल में खुश रखना नहीं, अल्लाह को राजी करना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर हर फैसले का मयार लोग क्या कहेंगे हो जाए तो इंसान आजाद नहीं रहता। इस्लाम लोग क्या कहेंगे के खौफ से आजाद करता है। सबको खुश रखना मुमकिन ही नहीं और ये एक हकीकत है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, सब कभी खुश नहीं होंगे। किसी को आप बहुत सॉफ्ट लगेंगे तो किसी को बहुत ही सख्त, किसी को ज्यादा अवेलेबल तो किसी को कम। लोगों की तवक्कात कभी खत्म नहीं होंगी। अगर जिंदगी अप्रूवल के पीछे गुजरी तो सुकून नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसे लोग जो नहीं कहते वो गिल्ट महसूस करते हैं। मसलन, मैंने इनकार किया, शायद मैं सेल्फिश हूँ। मैंने अपना वक्त बचाया, शायद गलत किया। मैंने बाउंड्री कायम की, शायद उनको बुरा लग गया हो। ये गिल्ट अक्सर अनहेल्दी कंडीशनिंग का नतीजा होता है। हर गिल्ट सच्चा नहीं होता। बाज गिल्ट सिर्फ आदत टूटने का डिस्कम्फर्ट होता है। फर्क समझना जरूरी है। खिदमत और पीपल प्लीजिंग में फर्क है और ये बहुत अहम फर्क है। खिदमत मोहब्बत से होती है जबकि पीपल प्लीजिंग खौफ से। खिदमत चॉइस है, पीपल प्लीजिंग कंपल्शन है। खिदमत में सुकून होता है जबकि पीपल प्लीजिंग में एग्जॉशन होता है। ये फर्क पहचानना मैच्योरिटी है। हर हाँ नेकी नहीं, बाज़ औकात हाँ कहना नुकसान होता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। क्योंकि मुसलसल आपका अवेलेबल रहना बाज़ औकात दूसरों को अनहेल्दी डिपेंडेंट बना देता है और खुद को बर्न आउट करना। इसलिए हर यस वर्च्यू नहीं। अगर आप अच्छा बनने की कोशिश करते रहे मुमकिन है कि आप अच्छे नजर आए मगर अंदर से खाली हो जाएंगे। और एक एम्प्टी इंसान दूसरों को भी हेल्दी मोहब्बत नहीं दे सकता। खुद को बचाना सेल्फिशनेस नहीं, जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कंपैशनेट थे मगर पीपल प्लीजर नहीं थे। फर्क समझे, रहमत थे मगर प्रिंसिपल भी थे। नरमी थी मगर हुदूद भी थी। ये आइडियल मॉडल है। अगर आप में ये चीजें हों तो गौर करें। हर बात पर फौरन यस कहना, इनकार से घबराना, लोगों के मूड के मुताबिक खुद को बदलना, नाराजगी के खौफ से सच ना कहना, अपनी जरूरियात पर शर्मिंदा होना, हर वक्त अप्रूवल ढूंढना, ये साइंस हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझें, आप सबके जिम्मेदार नहीं। आप हर मसला सॉल्व नहीं कर सकते। आप हर एक को खुश नहीं रख सकते और ये फेलियर नहीं, हकीकत है। फिर छोटी बाउंड्रीज बनाएं। छोटी छोटी बातों पर भी कभी आपको लगे ठीक नहीं है तो नहीं कहना शुरू करें। छोटी जगहों पर अपनी राय दें, आहिस्ता आहिस्ता दिल मजबूत होगा। अक्सर लोग सिर्फ तब खुश होंगे जब आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ें। तो क्या वो एक्सेप्टेंस सेहतमंद है? सोचने की बात है। मोहब्बत जो आपको मिटा दे और उसके बाद मिले वो मोहब्बत नहीं, बोझ बन सकती है। खुद से सवाल करें कि अल्लाह की रजा या लोगों की रजा, और ये बहुत बुनियादी सवाल है। अगर इंसान हर वक्त लोगों की खुशनुदी के पीछे भागता रहे तो अक्सर अल्लाह की रजा, अपनी सेहत, अपना सुकून पीछे रह जाता है। इस्लाम तरजीह दुरुस्त करता है, पहले हक फिर हिकमत फिर ताल्लुकात। ये तरतीब जरूरी है। बाउंड्रीज में हेल्दी काइंडनेस होती है, कंपैशन होता है मगर सेल्फ निगलेक्ट नहीं, नरमी होती है मगर सेल्फ लॉस नहीं। ये बैलेंस्ड गुडनेस है। लोगों को खुश रखना अच्छी बात है मगर खुद को मिटा कर नहीं। मोहब्बत अच्छी है मगर अपनी इज्जत गवा कर नहीं। मदद खूबसूरत है मगर बर्न आउट तक नहीं। अक्सर मोहब्बत नहीं, पीपल प्लीजिंग खौफ का लिबास पहन लेती है और बाउंड्रीज इस खौफ से आजादी देती हैं या हमें सिखाती हैं कि हर वक्त सबको खुश रखना जरूरी नहीं, सच्चाई, तवाजुन और वकार के साथ जीना जरूरी है। आज सेल्फ केयर का लफ्ज बहुत आम हो चुका है। अमूमन लोग सेल्फ केयर को आराम, छुट्टी, अच्छी खुराक, एक्सरसाइज या स्पा डे जैसे ख्यालात से जोड़ते हैं। ये चीजें अपनी जगह अच्छी हैं, मगर सेल्फ केयर सिर्फ ये नहीं, हकीकी सेल्फ केयर बहुत गहरी चीज है और इसका एक अहम हिस्सा है हेल्दी बाउंड्रीज। बाज़ औक़ात सबसे बड़ी सेल्फ केयर किसी एक्सपेंसिव चीज में नहीं बल्कि एक बावकार नहीं में होती है। कभी अपनी एनर्जी बचाना सेल्फ केयर है, कभी अनहेल्दी डिमांड रद्द करना सेल्फ केयर है, कभी इमोशनल डिस्टेंस सेल्फ केयर है, खुद से मोहब्बत का अमली इजहार है सेल्फ केयर, अपनी जज्बानी, ज़हनी और जज्बाती और रूहानी सेहत का ख्याल रखना, और बाउंड्रीज इन सब की हिफाजत करती हैं। अगर बाउंड्रीज ना हो तो सेल्फ केयर अक्सर नामुकम्मल रहती है। पर्सनल बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट का ये जो टॉपिक है ये एक सिर्फ नजरी बात नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी की एक हकीकत है। हम सब किसी ना किसी सतह पर ताल्लुकात, जिम्मेदारियों और तवक्कात के दरमियान जीते हैं। ऐसे में अगर इंसान अपनी हुदूद वाज़े ना करे तो आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरों की तवक्कात के बोझ तले दब जाता है। आज की पूरी जो गुफ्तगू है इसका बुनियादी नुक्ता यह है कि अपनी इज्जत, वक्त, जज्बात और तवानाई की हिफाजत करना खुद गर्जी नहीं बल्कि शऊर है। आज हमने देखा कि पर्सनल बाउंड्री इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए कितनी जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्री की बुनियाद है। इस्लाम इंसान को वक्कार, इज्जत और तवाजुन के साथ जीने की तालीम देता है। हर वक्त लोगों को खुश रखने की कोशिश, पीपल प्लीजिंग, अंदर से इंसान को थका देती है और बाउंड्रीज असल में एक ताकतवर सेल्फ केयर का नतीजा है और जरिया है। लिसनर्स, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड और इसमें हमने जान लिया कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, और ये भी मैं कहती चलूँ आखिर में कि जब इंसान अपनी बाउंड्रीज जान लेता है तो वो सख्त नहीं होता बल्कि बहुत क्लियर हो जाता है, और क्लैरिटी ही वो चीज़ है जो आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाएगी और दिल को सुकून देगी और जिंदगी को बोझ के बजाय मीनिंग्स देगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कम्युनिटी, चैरिटी और सोशल इम्पैक्ट के हवाले से। तो आप हमारे साथ रहिए, सुनते रहें ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज, इबादत और अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह अपने आप को हवाले करने के जज्बे को उजागर करता है। इस खास पेशकश में ईमान अफरोज गुफ्तगु, दिल को जगा देने वाले रूहानी पैगाम और ऐसी याद दहानियां शामिल हैं जो कुर्बानी, मोहब्बत इलाही और इत्तेहाद के असल मायने को रोशन करती हैं। ईद उल अज़हा के इस बाबरकत मौके पर सुनिए लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा ईद के चौथे दिन दोपहर 1 बजे से सीन के साथ ओनली ऑन FM 107
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करना एक अहम और नोबल काम है, लेकिन आजकल फ्रॉडस्टर्स इसका फायदा उठाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसी स्कीम से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। यहाँ कुछ और हिदायत दी गई हैं, जो आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचाने में मदद दे सकती हैं। चैरिटेबल वेबसाइट की वेरिफिकेशन करें। जब आप ऑनलाइन चैरिटी देने का सोच रहे हो, तो इंश्योर करें कि जिस वेबसाइट पर आप चैरिटी दे रहे हैं वो ऑफिशियल और सिक्योर हो। ऐसी वेबसाइट्स पर https.// होने चाहिए और उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ओवर द फोन डोनेशंस। अगर आपको फोन पर चैरिटी देने की दरख्वास्त मिले तो इस पर शक करें। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अक्सर डायरेक्ट कॉल्स नहीं करती। अगर आपको कॉल आती है तो पहले उनका वेरिफिकेशन करें। तीसरा, सोशल मीडिया रिक्वेस्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर फ्रॉडस्टर्स अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट को अवॉइड करें और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मदद दें जो पहले से एस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड हों। चौथा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एड्रेस एक्सेट्रा किसी भी अननोन सोर्स को ना दें। अगर आपको किसी भी चैरिटी की रिक्वेस्ट के दौरान अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का कहा जाए तो उसे फौरन रिजेक्ट करें। पांचवा, टैक्स रिसीप्ट। जेन्युइन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन के बाद टैक्स रिसीप्ट्स भी देती हैं। अगर आपको रिसीप्ट ना मिले तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है कि हो सकता है जो आपने चैरिटी दी वो इल्लीगल या फेक ऑर्गेनाइजेशन के पास गई हो। अगर आपको कभी भी शक हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल आपको धोखा दे रहा है तो फौरन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। आप अपनी कंप्लेंट्स हॉटलाइन नंबर 3361-8627 पर कॉल करके या मेत्राज ऐप का इस्तेमाल करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टिप्स आपकी चैरिटी को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद देंगी और आपको फ्रॉडस्टर्स के जाल में नहीं आने देंगी। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil Se Desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी नोटिस किया है हम बर्थडे रिमाइंडर सेट करते हैं, ईएमआई रिमाइंडर सेट करते हैं, मोबाइल रिचार्ज रिमाइंडर भी सेट करते हैं, पर अपनी बॉडी के लिए बस अज्यूम कर लेते हैं सब ठीक ही तो लग रहा है और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। आज हम बात कर रहे हैं रूटीन हेल्थ चेकअप्स की और मैं आपसे एक सिंपल सी बात शेयर करना चाहती हूँ। हेल्थ चेकअप्स का मतलब प्रॉब्लम ढूंढना नहीं होता, हेल्थ चेकअप्स का मतलब होता है पीस ऑफ माइंड। सोचिए जब आप फ्लाइट में बैठे हो और पायलट कहता है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कितना रिलैक्स फील करते हैं ना आप। बस वही वाली जो फीलिंग है वो हेल्थ चेकअप हमें देती है। अक्सर लोग बोलते हैं मुझे कुछ दर्द नहीं है, कुछ अनयूजुअल फील नहीं हो रहा है, पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि बॉडी हमेशा पेन के थ्रू बात नहीं करती, कभी वो सिर्फ नंबर्स के थ्रू बात करती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में सिर्फ रिपोर्ट में ही दिखते हैं और उसके बाद डे टू डे लाइफ में दिखना स्टार्ट होते हैं। रूटीन चेकअप्स का फायदा ये होता है कि आप सरप्राइजेस से बच जाते हो, आप सडनली ओ नो इस स्टेज तक पहुंच गए ये नौबत नहीं आने देते हो, और सबसे अच्छी बात जब चीज टाइम पर पकड़ में आ जाती है तो सॉल्यूशंस भी बड़े सिंपल होते हैं। थोड़ा सा बस अपने खान पीन में चेंज कर लो, मूवमेंट्स कर लो, रूटीन एडजस्टमेंट कर लो, कोई पैनिक नहीं, कोई हैवी ट्रीटमेंट नहीं और सब कुछ अलाइन हो जाता है। और ये सब फिजिकल हेल्थ तक के लिमिटेड नहीं है, आजकल के चेकअप्स में डॉक्टर स्लीप, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल्स के बारे में भी आपसे पूछते हैं, मतलब आप अपनी बॉडी के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो। ये आइडिया भी गलत है कि चेकअप सिर्फ एल्डर्स के लिए होते हैं। आज की फास्ट लाइफ में जहाँ पे लेट नाइट्स हो रही है, स्क्रीन टाइमिंग्स इतना

0: बढ़ चुका है, इरेगुलर मील्स हो रहे हैं, यंग बॉडीज भी काफी ओवरलोड हो रही है, तो हम जैसे लोगों को भी, आपको और मुझे भी रूटीन चेकअप्स कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का सेल्फ चेक इन होता है। जैसे आप किसी क्लोज फ्रेंड से पूछते हो ना सब ठीक चल रहा है, बस वही सवाल आपको अपनी बॉडी से पूछना है, और जब आंसर हाँ आता है तो दिल हल्का हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हेल्थ को लेके अननेसेसरी टेंशन कम होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कैलेंडर देखें तो एक छोटा सा स्लॉट अपनी हेल्थ के नाम भी रखिए, क्योंकि रूटीन हेल्थ चेकअप्स फेयर का साइन नहीं केयर का साइन होता है, और जब आप केयर करते हो ना तो बॉडी भी आपका साथ देती है, एनर्जी के साथ, क्लैरिटी के साथ और एक प्यारा सा सुकून के साथ। इसलिए याद रखिए, रूटीन हेल्थ चेकअप्स मतलब अपनी बॉडी को ये कहना आई हैव गॉट यू एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Your Health Matters, Your Health Matter with RJ Shruti। आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के एक नौजवान क्रिकेटर के बारे में जिनका नाम है नाहिद राणा। जी हाँ दोस्तों, नाहिद राणा यही बॉलर है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को पहले टेस्ट में जीत दिलाने में मदद की और ये टेस्ट मैच जो है मीरपुर में खेला गया था। पाकिस्तान के सेकेंड इनिंग्स में नाहिद राणा ने 40 रन देकर 5 विकेट लिए एंड दैट इज सो क्रिटिकल इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ दिस टेस्ट मैच। बताता चलूं कि दुनिया भर में अगर तेज रफ्तार बॉलर्स की बात किया जाए तो नाहिद राणा इज वन ऑफ देम। यंग एज में ही नाहिद राणा ने अपनी स्पीड और एग्रेशन से क्रिकेट एक्सपर्ट्स को काफी मुतासिर किया। उनकी बॉलिंग अक्सर 145 किलोमीटर फी घंटा के करीब देखी गई है जो कि बांग्लादेश के लिए एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। मीरपुर में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नाहिद राणा ने शानदार परफॉर्मेंस देकर सबकी तवज्जो हासिल की। उन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैन को अपनी पेस और बाउंस से काफी परेशान किया। नाहिद राणा की फर्स्ट बॉलिंग ने मैच में बांग्लादेश को स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाने में अहम किरदार अदा किया और आगे जाकर बांग्लादेश विंस दिस टेस्ट मैच विच इज अ क्वाइट एन एस्टोनिशिंग रिकॉर्ड फॉर द बांग्लादेशी क्रिकेट टीम। और देखा जाए तो पिछले 3 टेस्ट मैचेस मुसलसल बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने हासिल किया। 2024 सीरीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब पाकिस्तान में जाकर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को मात दी थी एंड सीरीज भी जीती थी एंड दैट वाज अ हिस्टोरिक टूर ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट टीम। क्रिकेट फैंस और एनालिस्ट ने नाहिद राणा के इस कॉन्फिडेंस और अटैकिंग अप्रोच की बहुत तारीफ की। नाहिद राणा को बांग्लादेश क्रिकेट का फ्यूचर स्टार तो हम मानते ही हैं और सबको ये कह रहा है कि हाँ ही इज़ अ रियल रियल बिग स्टार दैट इज़ कमिंग अप। कोचेस का कहना है कि अगर वो इसी तरह हार्डवर्क और डिसिप्लिन के साथ अपना परफॉर्मेंस देता रहा तो वो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में शामिल हो सकता है। यंग क्रिकेटर्स के लिए नाहिद राणा एक मिसाल है कि डेडिकेशन और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्टार खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
3: फ्रॉड अवेयरनेस।
4: मोबाइल में देखते देखते आपको एकदम से आपके शहर में हो रहे मेगा इवेंट का एक पोस्टर दिखाई देता है और लिखा है बाय टिकट्स ऑनलाइन। क्लिक करते हैं, टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन जब इवेंट में जाते हैं तो वो टिकट वैलिड ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम है वेद और यह है फ्रॉड अवेयरनेस। दोस्तों, जैसे ही कोई बड़ा इवेंट कतर में अनाउंस होता है, वैसे ही कई सारी फेक वेबसाइट्स बन जाती हैं जो दावा करती हैं कि वो उस इवेंट की टिकट्स बेच रही हैं। रियल वेबसाइट की ये बिल्कुल रेप्लिका होती है। बहुत ज्यादा गौर से देख के ही फर्क महसूस कर पाएंगे, नॉर्मल नजर भी नहीं आएगा। आप अपनी टिकट्स वहां से परचेस कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, अपनी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स वहां शेयर कर देते हैं। एंड जब आप इवेंट में पहुंचते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये टिकट्स तो यहाँ वैलिड ही नहीं है, आपके साथ टिकट स्कैम हो चुका है। किसी भी बड़े इवेंट की टिकट बुक करने से पहले आप ये सोच लें कि आप सही वेबसाइट पे आए हैं। आप ऑथेंटिक वेबसाइट में जाके ही टिकट को परचेस करें, किसी ऐसी वैसी वेबसाइट पे ना जाएं जो उस वेबसाइट की रेप्लिका हो। जरा गौर फरमाइएगा, टिकट लेने से पहले मेक श्योर करें कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं टिकट को परचेस करने के लिए, वरना आप टिकट तो खरीद लेंगे लेकिन जिसके टिकट आपने खरीदे हैं वो इवेंट एंजॉय नहीं कर पाएंगे और पैसे भी गवा बैठे।
3: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
5: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

फीमेल मेंबर्स होती है ना जो खातीन होती हैं उन पर लोड आता है और दूसरे आपके हाउस हेल्प के ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। अब आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये कि आप अपने हाउस हेल्प के साथ क्या मोहब्बत और रहम दिली से पेश आते हैं, क्योंकि इंसानियत का असल रूप तो यही आपका नजर आता है। देखिए, ईद हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी, इंसान का सबसे

दे हाउस हिल, चाहे वो मेड हो, ड्राइवर हो या कोई और मदद करने वाला शख्स, वो भी इंसान है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अक्सर हम अपने फैमिली, अपने घर के फैमिली मेंबर्स की, रिलेटिव्स की, इन सब के कपड़े लाते हैं, इनका ख्याल करते हैं, इनकी कंफर्ट का ख्याल रखते हैं, लेकिन अक्सर हम हमारी जो हेल्पिंग हैंड्स हैं या जो हाउस हेल्प हैं उनका उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते। देखिए, हाउस हेल्प वो लोग हैं जो हमारे घर को मैनेज कर रहे होते हैं, हमारी मदद कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड बना रहे होते हैं। इसलिए उनके साथ काइंडनेस और कंपैशन दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ईद हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उसका पैगाम भी यही है कि हम शेयरिंग और केयरिंग करें। जब हम अपने हाउस हेल्प को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, उनके लिए नए कपड़े लाते हैं, उन्हें अच्छा खाना देते हैं, उनके साथ एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छा हमारा एटीट्यूड होता है, तो कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा रहती है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी आना चाहिए। किसी से पोलाइटली बात करना, उसे इज्जत देना है, उनके काम की तारीफ करना बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इसका असर बड़ा गहरा होता है। कभी कभी सिर्फ एक थैंक यू कह देना या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कह देना किसी का दिन बना देता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों रिलक्टेंट हो जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हमें दूसरों के वेलबींग का भी ख्याल रखना है। देखिए, हम समझते हैं कि हम सब के ऊपर लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, लेकिन क्या वो स्ट्रेस और टेंशन हम इन लोगों पर निकाल रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत तरीका है। हमें और आपको खुद को थोड़ी देर जो है वो बैठा के समझाने की ज़रूरत है। कई घरों में मैंने देखा है कि ऐसा भी माहौल होता है कि खुद तो फ्रेश और अच्छा खाना खाया जाता है, लेकिन हाउस हेल्प को खराब या शायद खराब होने वाला हो इस

बात जो है वो नरमी से बात करना, चीखना चिल्लाना नहीं, गलतियां हर एक से होती हैं, नजरअंदाज करना, प्यार से समझाना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक रूल्स हैं। अगर हम अपने हाउस हेल्प को भी अपने साथ बिठा कर खाने की टेबल पर साथ में खाना खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको इज्जत दे रहे होते हैं, और ये इज्जत देने का जो एटीट्यूड है ना, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। बच्चे भी देख रहे होते हैं और वो भी इसे चाके ना चाके अडॉप्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है एम्पैथी, यानी दूसरे के जज्बात को भी समझना। सोचिए कि वो अपने घर वालों से दूर हैं, अपनी फैमिली को मिस करते हैं। अगर हम उनसे प्यार और रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो उनके हालात समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके कहीं हम कह सकते हैं कि उनके अकेलेपन को हम महसूस करके दूर कर पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें कहने में बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। जब हम किसी के साथ काइंडनेस से पेश आते हैं तो वो भी पॉजिटिव फील करता है और अपने काम में और ज्यादा डेडिकेशन लेकर आता है। इससे ना सिर्फ रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है बल्कि घर का एनवायरमेंट भी पीसफुल बन जाता है। बस आखिर में यही कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने हाउस हेल्प के साथ मोहब्बत और रहमदिली से पेश आए तो ये सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी भी बेहतर बनाता है। रिस्पेक्ट देना, काइंडनेस और पोलाइटली बात करना, ये हर एक इंसान का बुनियादी हक है, चाहे बड़ा हो या छोटा, शायद आपसे ताकतवर, शायद आपसे कमजोर, फाइनेंशियली आपसे स्ट्रॉन्ग या फाइनेंशियली आपसे वीक। लेकिन हाँ, ये कुछ चीजें हर इंसान की फंडामेंटल राइट है।

और हमें और आपको उस शख्स को उस राइट से डिप्राइव रखने का कोई भी हक नहीं बनता। दोस्तों याद रखिए कि असल खुशी जो है वो दूसरों की खुशी में तलाश करने में है। कोशिश कीजिए कि अपने असल सुकून को, अपने असल खुशी को दूसरों की खुशियों के साथ भी जोड़कर देखा जाए। आज मैं आपको सिर्फ यही इस थॉटफुल क्वेश्चन, इस थॉटफुल पॉइंट पर छोड़ रही हूँ। अपना ख्याल रखिए। जब नेक्स्ट टाइम आपसे मेरी बात होगी तो मुझे बताइएगा कि कितना डीपली आप इस टॉपिक को सोच पाए, समझ पाए। कहने को वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरी कोशिश है कि आज उस पॉइंट को लेकर आया जाए जिस पॉइंट को हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं या फिर इस पर बात ही नहीं करना चाहते। इस टॉपिक को जब भी वक्त मिले, थोड़ी देर के लिए रात में सही, मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त या जब भी आपको मौका मिलता है, सोचिएगा कि जो आपसे जूनियर हैं, जो आपके मातहत हैं, उनके साथ आपका किस तरह का रवैया है। और अगर आपको पॉजिटिव आंसर मिलता है तो अपनी पीठ थपथपाइएगा, और अगर उतना पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता है तो कोशिश कल से ही शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि छोटी सी कोशिश बड़ी तब्दीली लेकर आती है। मुझे नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم